0: से बाहर कर दिया और अब मायावती ने भतीजे आकाश पर गंभीर आरोप लगाए।
1: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में न आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है।
0: तो मायावती आरोप लगा रही है कि आकाश आनंद और उनके ससुर मायावती की बीमारी की अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपस में ही ये सिर्फ फुटोवल क्यों है। बीजेपी कहती है कि अकेले बीएसपी ही नहीं पूरा विपक्ष भ्रम में है।
2: तो मायावती जी जहां रोज अपना उत्तराधिकारी बदल रही हैं, ताश के पत्तों की तरह परिवार से एक नया पत्ता लाती हैं और अब तो अपने ही भतीजे को कह रही हैं कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पार्टी के झंडे का रंग बदलने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं, पीडीए की रोज नई परिभाषा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मायावती जी, अखिलेश यादव या कांग्रेस के किसी भी भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है।
0: इधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि बीएसपी का कोर वोटर यानी दलित कब का बीएसपी से दूर जा चुका है, अब वो पीडीए का हिस्सा है।
3: तो इस समय लोकसभा में 0 सीट और विधानसभा में ले देखिए अब 1 सीट थी और उनके वो भी दिवंगत हो गए हैं, तो एक भी सीट नहीं है। तो ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई व्यक्ति है बीएसपी का, ना लोकसभा में कोई व्यक्ति है उस पार्टी का जो पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाती है। इससे पता चलता है कि अब जो बहुजन समाज है वो बीएसपी को बहुत पहले ही छोड़ चुका है।
0: मौका अच्छा देख आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने चौका मारने की कोशिश की। उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया।
4: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुष के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए, वो आए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बहुजन समाज के जो महापुरुषों से अधूरे काम को पूरा करेंगे।
0: अब सवाल ये है कि बीएसपी की ये कैसी रणनीति है जिसमें पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
5: चुनौती चाहे विपक्ष से हो चाहे परिवार से हो, मायावती लड़ने के लिए तैयार हैं। काफी दिनों से चर्चा इस बात की थी कि क्या आकाश आनंद के रूप में मायावती के बाद एक उत्तराधिकारी तैनात हो रहा है, लेकिन आज मायावती ने उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। यानी कि आसान भाषा में बहुजन समाज पार्टी का मतलब केवल और केवल मायावती है। फिर बात चाहे सिंबल की हो, संगठन की हो या आंदोलन की हो, बात बहुजन समाज पार्टी की होगी तो मतलब बात केवल मायावती की होगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: अब खबर मुंबई से, जहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह ने मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी में गणेश ज्ञानार्थी विशेष पांडुलिपि प्रदर्शनी में वो पहुंचे, समारोह में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
7: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
6: पंजाब में बिजली की जबरदस्त किल्लत है, 10 से 14 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन अब बिजली कटौती पर जोरदार सियासत चल रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भगवंत मान की सरकार फेल हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है आरोप लगा रही है कि उनके हिस्से का जो बिजली है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है और इसीलिए परेशानी बढ़ गई है।

0: पंजाब में जबरदस्त बिजली संकट है। ऐसा संकट कि उद्योग ठप पड़ गया है क्योंकि औद्योगिक यूनिट बंद है। आदमी परेशान है, किसान परेशान है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और खेतों में खड़े धान सूख रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये सब परेशानी की जड़ भगवंत मान है।
1: ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनके थर्मल प्लांटों पे आज इम्प्लाई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनका वहां अरेंजमेंट नहीं है, तो कैसे पंजाब चलेगा भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसी नलायक सरकार को चलता करना चाहिए और उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार है नहीं।
0: लेकिन भगवंत मान की सरकार के मंत्री बिजली संकट का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि केंद्र की सरकार ने पंजाब के हिस्से की बिजली नहीं दी।
2: जो 3000 मेगावाट की हमारे यहाँ शॉर्टेज है, उसके तीन प्रमुख कारण निकल के सामने आए। नंबर एक के 1000 मेगावाट बिजली जो हमें केंद्र सरकार से मिलती है, जो हमारा पंजाब का हक बनता है, मतलब के जो हमारे पंजाब का शेयर है, वो बेसिकली पूल में से शेयर है, हमें इस बार 1000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के पूल से मिल नहीं रही।
0: इतना ही नहीं, पंजाब में बिजली उत्पादन करने वाले पंजाब सरकार की 10 यूनिट है, 2 प्राइवेट यूनिट है जिनमें तकनीकी खराबी के चलते बिजली का संकट बढ़ा है।
2: दूसरा, हमारे जो पंजाब सरकार के खुद के चलाए हुए 10 यूनिट हैं, वो 10 यूनिट दिन रात चल रहे हैं, परंतु 2 प्राइवेट यूनिट हैं जो पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, एक तलवंडी साबो, एक NPL राजपुरा। ये दोनों यूनिट 3300 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। इसमें एक दिक्कत आई है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ये 3 यूनिट इसमें से शटडाउन हुए थे और हमें जो तकनीकी माहर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों यूनिट हैं ये भी लाइट अप कर देंगे।
0: पंजाब की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब में बिजली के संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है, बल्कि वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी बिजली दी जा रही है।
3: पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ना दी कोई चीज इन्हें पल्ले नहीं रही, और झूठ और फरेब दी राजनीति के अलावा कोई चारा नहीं है कोई।
0: इस शिकायत के बीच फंसे हुए हैं पंजाब वाले, क्योंकि बत्ती गुल है, परेशानी फुल है। मोगा से कमलजीत संधु और असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब आज पश्चिम बंगाल के जहां पर 252 मदरसों पर ताला लगा दिया गया है, सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसे मदरसे जो कि बगैर मान्यता के चल रहे थे उन्हें बंद किया जाना चाहिए, और इसी कड़ी में इन मदरसों पर ताले लगा दिए गए।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार का फरमान, गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर लग गया ताला, बंद कर दिए गए 250 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने लगभग 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: एवं संग्रहित तथ्य सठीक जाचाइर जन्य राज्य स्तर থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল পাঠানো হয়েছিল। যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
0: সরকারি সূত্রকে মোতাবেক জিন মাদ্রাসাকে বন্ধ করার নোটিশ মিলা হ্যায় উনমে সে জ্যাদাতর खारजी मदरसे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि कोलकाता और 22 जिलों के सभी मदरसों से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, जिनके पास वैध मान्यता है वे चलते रहेंगे। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।
5: এছাড়া গুরুতর অসঙ্গতি পাওয়া গেছে, আরো এমন 100টি মাদ্রাসা কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বৈধ অনুমোদনহীন কর্তৃত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
0: আর বঙ্গাল মে মাদ্রাসা কি রাজনীতি জোর পকড় রহি হ্যায়। অনুপম মিশ্রা, কলকাতা, আজ তক।
4: अब बात यूपी की, जहां पर अपराधियों के भीतर यूपी पुलिस का खौफ दिख रहा है। दरअसल व्यापारी पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी मेरठ एसएसपी ऑफिस में सरेंडर करने के लिए पहुंचा, जहां उसने कहा कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा था और इसीलिए उसने सरेंडर करना ठीक समझा।
0: एक शूटर के हाथ में माफी की ये तख्ती बताती है कि अपराधियों में सीएम योगी का कैसा खौफ है। ये तख्ती बताती है कि योगी के राज में गुंडे मवाली और माफियाओं की क्या हालत है। ये तख्ती दिखाती है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कैसा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स रवीश है। इस पर आरोप है कि इसने स्क्रैप व्यापारी पर गोलीबारी की है। ये फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फिर इसके भीतर एक खौफ ने जन्म लिया कि अगर पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई तो इसका एनकाउंटर हो सकता है। इसी डर से ये एसएसपी ऑफिस पहुंचा सरेंडर करने और साथ में माफीनामे की ये तख्ती दिखाई।
6: मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मेरे सर जी से हाथ जोड़ के विनती है, काम करो के विनती है कि ये जो मैंने गलती की उसकी गलती की माफी चाहता हूँ। जो मैंने क्राइम किया अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े भाई ये ऐसे गंदे काम ना करें, हाथ जोड़ के उनसे मेरी रिक्वेस्ट है।
0: पुलिस से सुनिए कि आखिर ये एसएसपी ऑफिस कब पहुंचा और इसका अपराध क्या था।
7: एक अभियुक्त जो फायरिंग की घटना का एक अभियुक्त है, रवीश पुत्र इरशाद, थाना लोहिया नगर का, वो पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं जो लगातार दबाव दबिश और दबाव बनाया जा रहा है उसी के बदौलत वो मतलब हमारे कार्यालय पहुंच चुके थे और अपने आप को माफ़ी मांगते हुए उसने सरेंडर कर लिया है। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंच गए, उनको हिरासत में ले लिया, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: अब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सीएम योगी का खौफ अपराधियों में किस कदर है। मेरठ से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब आज राजधानी दिल्ली के, जहां पर एक 20 साल के युवक को चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। मृतक के परिजन आरोप लगा रहे कि मारने वालों ने उनके परिवार से 10,000 रुपए की फिरौती भी मांगी थी।
8: एक 20 साल के नौजवान को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उस पर बेल्ट बरसाई जा रही है। वो चीख रहा है मगर मारने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बार बार कह रहा है कि भैया लग रहा है, मगर बेल्ट बरसाने वालों पर मानो फूल सवार है। इस युवक को इन चारों लोगों ने बांध कर इतना मारा कि वो मर गया। जी हाँ, राम नाम के इस 20 साल के नौजवान की जान चली गई। इन लोगों ने इसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा था और मारना शुरू किया। इसे मारते हुए सोनीपत ले गए, वहां इसे अधमरा कर दिया, साथ में परिवार से फिरौती मांगी। सुनिए क्या क्या हुआ।
9: ये कंपनी वालों ने पकड़ के मेरे भाई को इतना मारा कि अधमरा यहाँ मार के तो यहाँ से गाड़ी में बिठा के सोनीपत में ले जाके मारा। वहां से फिर हमारे पास मेरे भाई के फोन से फोन करता है कि तुम यहाँ आओ सोनीपत में। मेरे भाई के फोन से ही बोलता है तुम सोनीपत आओ, अभी आओ तो 10,000, सवेरे आओ 40,000, सवेरे आओ 40,000। तो हम लोग रात ही रात चले जाए, 10,000 रुपये हम लोग वहां से दे के आए। हमने देखा पूरा हमारा भाई अधमरा पड़ा हुआ।
8: लेकिन ज्यादती सिर्फ इतनी नहीं थी, आगे सुनिए क्या हुआ।
9: अरे ये लोग हॉस्पिटल में लेके चले जाते ना, जो स्टाफ थे पुलिस से लेके चले जाते तो मेरे भाई की जान बच जाती। ये लोग कोई सुनवाई नहीं किए तो मैं अपने भाई की प्राइवेट में इलाज करवाने लगा। प्राइवेट में इलाज करवाने के बाद जब नहीं हुआ, जब सांस ऊपर नीचे हुआ तो मैं जब जीवन राम लेते गया।
8: अब परिवार इंसाफ मांग रहा है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।
10: परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आखिर वो कौन सी वजह थी, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा सामने होते हुए आया। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके से उनकी उस दिन मदद नहीं की। अगर समय पर इलाज मिल गया होता, समय पर कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज राम जिंदा होता। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में एक मामला जो है FIR रजिस्टर कर ली है और 3 से 4 लोगों को, अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये देखना होगा इस गिरफ्तारी के बाद वो कौन से सबूत ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस जुटा पाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
4: बात अब बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर एक स्कूल के गेट पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने लगभग 18 राउंड फायरिंग की और स्कूल के गेट पर एक पर्ची चिपका कर गए जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई।
11: ये बिहार के मुजफ्फरपुर में बने एक स्कूल की तस्वीरें हैं। स्कूल के गेट पर गोलियों के निशान हैं और साथ में एक पर्ची चिपकाई गई है जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। देखिए, कांटी थाना क्षेत्र में ये चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल है। रविवार की रात 3 से 4 बजे के बीच दो बदमाश यहां आते हैं और स्कूल के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 18 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद बदमाशों ने स्कूल के गेट पर 50 लाख की रंगदारी वाली पर्ची भी चिपकाई।
12: उसके गेट पे लगभग 17-18 राउंड जो है वो फायरिंग हुई है। फायरिंग 4-5 राउंड खोखा भी बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, साथ ही एक पर्ची साटा गया है जिसमें 50 लाख रुपए के की रंगदारी की बात की गई है। हम लोगों ने FSL की टीम को सूचित किया है, तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
11: बदमाशों की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। हालांकि बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा था जिसकी वजह से उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा, लेकिन अब पुलिस तलाश में जुट गई है कि आखिर ये बदमाश कौन थे।
12: CCTV फुटेज में दो लोग दिख रहे हैं जो कि पर्ची भी साट रहे हैं और गोली चला रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
11: अब इलाके में दहशत का माहौल है, स्कूल चलाने वाले भी डरे हुए हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक।
4: अब आज मौसम की मार की यूपी बिहार में कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं पर पानी परेशानी बन गया है तो कई शहरों में पानी उतरने भी लगा है जिससे लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं।
13: बच्चों को देख के दूसरा भी एक कूदता है, उसको देख के दूसरा भी कूदने लगता है, इसलिए थोड़ा संभाल के रहिए।
8: बढ़ा जल स्तर, बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से राहत, घरों से निकला पानी। उफनती नदियां खतरे के निशान पार। बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर को लेकर तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। तस्वीर प्रयागराज की है। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद घाटों और आसपास के इलाकों में पानी उतरने लगा है। जलस्तर घटने के साथ ही बंद किए गए मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं। हालांकि प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन की नजर लगातार हालात पर बनी हुई है। अगली तस्वीर मुरादाबाद की है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटीय इलाकों में पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, रास्ते नदी में तब्दील हो गए हैं।
14: समस्या बहुत है, दुकानदारी का काम है, आना जाना भी है, मैं अंत मंजूरी वाले आदमी है, कहाँ पे जाएंगे हम?
15: घर में आना जाना रास्ता बंद हो गया,
16: घर में भी पानी है,
15: घर में पानी है
17: और खेती भी साहब बिल्कुल पट हो गई।
8: वहीं बाढ़ की मार झेल रहे बिहार में कुछ इलाकों में अब पानी कम होता नजर आ रहा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। देखिए ये तस्वीरें बेगूसराय की है। बाढ़ का पानी अब कम होना शुरू हो गया है। पानी घटने के साथ लोगों को राहत मिल रही है लेकिन कई इलाकों में अब भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है।
18: रोड से पानी उतरेगा तब ना परेशानी दूर होगी,
19: आने जाने में दिक्कत हो रहा है।
18: सरकार
19: कहते हैं टैंकर से पानी भेज रहे हैं,
18: कहाँ भेज रहा है, नीचा में एक टैंकर का पानी नहीं आ रहा है।
8: वही भागलपुर में गंगा का जल स्तर घटने के बाद भी खतरा मंडरा रहा है। नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और राहत टीम सुरक्षित रेस्क्यू करने में लगी हुई है।
20: 1.5 से 2 फीट पानी घट गया है लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है। अभी खतरा टला नहीं है लेकिन खतरा टल जाएगा, जिस हिसाब से पानी घट रहा है खतरा टल जाएगा। और SDRF टीम लगातार तैनात है।
8: यानी यूपी हो या बिहार, दोनों प्रदेश के हालात मिले जुले हैं। कहीं नदियों का पानी उतरने लगा है और राहत की उम्मीद जगी है, तो कहीं जलस्तर अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। आज तक ब्यूरो।
4: गुजरात और सिक्किम में बादलों ने तबाही मचा दी है। जोरदार बरसात से शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं पर भूस्खलन लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है।
11: भारी बारिश से भूस्खलन। सिक्किम के रिम्बी गांव में बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के साथ भूस्खलन हुआ। पूरे सड़क पर मलबा आ गया। वहीं तबाही के बाद मलबा बहकर ढलान की ओर पहुंचा। वहां स्थित दो मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के बीच इलाके में और लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई। वहीं गुजरात के भरूच में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने एक बार फिर जोरदार दस्तक दी है। रात में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांवों तक मौसम बदल दिया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। हालांकि तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। महज दो घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तालाब में बदल दिया। इन हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं नवसारी में भी लंबे समय के बाद बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इस बीच मानसून का कहर मुंबई पर भी बरपा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव देखने को मिला। मानसूनी आफत ने मुंबई के सायन इलाके में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रतीक्षा नगर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई जगह सड़कें जलमग्न नजर आईं और लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव की वजह से वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। लगातार बारिश को देखते हुए आने वाले घंटों में भी इलाके में जलभराव की चुनौती बनी रहने की आशंका है। यानी सिक्किम से लेकर गुजरात और मुंबई तक कहीं बारिश के बाद बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर जलभराव ने रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम एशिया में हुती के हमलों ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया और उनके और सऊदी अरब के बीच में जंग भीषण हो गई है। एक तरफ जहां हुती ने बाब अल मंदेब पर कब्जे का ऐलान किया है, तो वहीं सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमलों के बाद से घमासान तेज है। इन हमलों के मद्देनजर अब हर किसी की नजर मक्का समझौते पर है और सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब का साथ देंगे? क्या ये हमला मक्का समझौते की शर्तों वाला हमला माना जाएगा?

0: मिडिल ईस्ट में हुतियों ने मचाया कोहराम। पाप अल मंदिर पर कब्जे का किया ऐलान। कई ठिकानों पर हमले, सऊदी अरब में घमासान। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर महायुद्ध की जद में अमेरिकी और ईरानी ठिकानों के अलावा बाकी देशों के इलाके भी आ रहे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब के शरूराह में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। हुतियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। इस हमले में सैन्य अड्डे के हथियारों के डिपो और कमांड एंड कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा है। सऊदी सिविल डिफेंस ने भी हुती हमले से नुकसान को माना है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल से जीजान में दो लोग घायल हो गए। हॉर्मुज के साथ साथ जंग की आग बाब अल मंदिब को भी अपनी चपेट में ले चुकी। इसे लाल सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके मयून द्वीप पेरिम पर हुतियों ने कब्जा कर लिया है। यमन के मोखा पर कब्जे की जंग में लगातार बम बरस रहे हैं। शहर के कई इलाकों पर हुतियों का कब्जा है, जबकि एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के ताबड़तोड़ हमलों ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए हैं। बंदरगाह के इलाके से आ रही तबाही की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि हुतियों के हमलों से कितना नुकसान हुआ है। टैंक जलकर राख हो गए हैं, सेना की गाड़ियां जल चुकी हैं और पूरा का पूरा सैन्य ठिकाना मरघट में तब्दील हो चुका है। इस पर कब्जे के बाद मिलिट्री व्हीकल के ऊपर हथियार लेकर खड़े हुतियों की जश्न मनाती ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हुतियों ने दावा किया है कि लाल सागर से तेल और गैस के टैंकरों के गुजरने वाले इस इलाके पर कब्जा करके वो तेल के खेल में अमेरिका पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाना चाहते हैं। हुती लगातार धमकी दे रहा है कि अगर सऊदी अरब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा तो वो न सिर्फ इसी तरह जवाबी हमले करता रहेगा बल्कि सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाएगा। हुती प्रवक्ता के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से पिछले दो दिन में 129 एयर स्ट्राइक की गई है। सऊदी अरब ने इन हमलों को देखते हुए लाल सागर की तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हॉर्मुज संकट के दौरान 1200 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के जरिए कई देशों को आसानी से तेल भेजा जाता रहा है। ये पाइपलाइन हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर बड़ी राहत दे रही थी। अगर हुतियों के हमले की वजह से ये जल्द ना खुली तो दुनिया भर में तेल का संकट गहरा सकता है और इसका सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ सकता है। हुतियों के इन हमलों के बारे में आज तक ने जब ईरान के राष्ट्रपति से सीधा सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: फिलहाल में हमने कई सारे अटैक्स देखे सर, जो हुतीज ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कैरी किए, रिटेलिएटरी अटैक्स जो ईरान के हो रहे हैं गल्फ स्टेट्स पर। ऐसे में हम डिवाइड बढ़ता देख रहे हैं ईरान और अरब वर्ल्ड के बीच में। क्या यही कुछ देश नहीं चाहते हैं कि आप बटे रहें, कि आप डिवाइडेड रहें?
2: क्या आपको इस बारे में कोई शक है? असल में वो बांटो और राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। अगर आप उनके लेखों को देखें और वो उन्हें प्रकाशित भी कर चुके हैं तो आप पाएंगे कि उनका मकसद अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा करना है ताकि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें और वो हमारे तेल का फायदा उठा सकें। बाद में वो अरब देशों को हथियार बेचेंगे ताकि हम लड़ते रहें। तो इसके पीछे क्या तर्क है? क्या एक देश को दूसरे देश से डरना चाहिए? क्या इंसानों को एक दूसरे से डरना चाहिए?
0: फिलहाल सऊदी अरब हुतियों के हमले से बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का समझौता करने के बावजूद उसे इन देशों से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा उसने अमेरिका से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने ये मांग ठुकरा दी है और सैन्य मदद की जगह खुफिया जानकारी साझा करने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है ये हालात आने वाले दिनों में युद्ध के और भीषण होने के संकेत दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विमेंस एशिया कप का चैंपियन बना भारत, फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं ली जीत की ट्रॉफी। हॉकी में भारत का डबल धमाका, एशिया कप पर बेटियों और बेटों का कब्जा, जूनियर महिला टीम के बाद पुरुष टीम भी बनी चैंपियन, देश का बढ़ाया मान। दुनिया में दिल्ली डिक्लेरेशन का डंका के बीच देश में सियासी हल्ला, विपक्ष ने परिणाम से लेकर खानपान तक पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली पचा नहीं पा रहे हैं भारत की बढ़ती ताकत। इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज समंदर में डूबा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 129 अभी भी लापता। आज से देश भर में गणेशोत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजेंगे गजानन, बापा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेशोत्सव, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त।

साथ में हूँ आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं, देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज गणेश चतुर्थी है, शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर शुरुआत करेंगे एक शुभ खबर के साथ। अच्छी खबर यह कि खेल के मैदान से भारत के लिए एक शानदार खबर एक के बाद एक आ रही है। तो पहली खबर यह कि भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। महिला एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर देशवासियों को जश्न का मौका दिया है। तो वहीं हॉकी के मैदान से भी भारत के लिए डबल खुशी की खबर आई है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से करारी शिकस्त देकर लगातार 4th बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली। 2 अलग-अलग खेलों में भारत के नाम खिताब। तो एक ही दिन में भारतीय हॉकी टीम की बेटियों ने और बेटों ने एशिया में अपना दबदबा कायम कर दिया। ये 3 तस्वीरें देखिए। महिला एशिया कप में भारत ने जीता खिताब, जूनियर महिला हॉकी कप में चैंपियन और जूनियर पुरुष हॉकी में भी एशिया कप में भारत बना चैंपियन। और जब इस तरह की कामयाबी मिली, दबदबा भारत ने कायम किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को शानदार जीत पर बधाई दी। युवा खिलाड़ियों के जज्बे, अनुशासन, प्रतिभा की जमकर तारीफ की। तो महिला एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को 72 रनों से हराया। रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 183 रन बनाए। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 129 रन की बड़ी साझेदारी की। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल किया। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 111 रनों पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लिए, श्री चंडी ने 3 विकेट झटके और तब भारत की जीत इसी से पक्की कर दी। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का टारगेट दिया था, लेकिन 111 रन पे श्रीलंका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने समेट कर पवेलियन पहुंचा दिया और इसी के साथ वो जबरदस्त जीत अपने नाम की। श्री चंडी ने 4 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए और इन 7 विकेट की बदौलत श्रीलंका की टीम लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद विमेंस एशिया कप में भारत बना चैंपियन। तो खेल के मैदान से एक और अच्छी खबर भारत के लिए आई है, वो ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जब एशिया कप का खिताब अपने नाम किया तो फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। महिला एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रन से करारी शिकस्त देकर ये रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी कामयाबी। एक तरफ चैंपियन बनी टीम इंडिया, एशिया कप पर कब्जा हुआ, तो दूसरी तरफ नकवी से ट्रॉफी नहीं ली।

0: दुबई में भारतीय बेटियों ने एशिया कप पर फिर अपना राज्य कायम किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 72 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की और 8वीं बार महिला एशिया कप अपने नाम किया। पहले बल्ले से हमला हुआ, शैफाली वर्मा ने 68 रन ठोके, स्मृति मंदाना ने 59 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर गेंदबाजों ने श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया। श्री चरणी ने 4 विकेट चटकाए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। श्रीलंका सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गया। 72 रन की जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चैंपियंस को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय बेटियों ने सिर्फ कप नहीं जीता, करोड़ों दिल जीत लिए। यानी दुबई में तिरंगा लहराया और करोड़ों भारतीयों के दिल गर्व से भर गए, क्योंकि जब भारतीय बेटियां मैदान पर उतरती हैं, तो सिर्फ मैच नहीं जीतती, इतिहास लिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: लेकिन जीत के बाद जो ट्रॉफी के सेरेमनी में हुआ, उसने इस पूरे जश्न को एक बड़े विवाद में बदल दिया। भारत ने खिताब अपने नाम किया, खिलाड़ी जश्न में डूबे रहे, लेकिन जब ट्रॉफी देने की बारी आई तो तस्वीर बदल गई। भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर बीसीसीआई की तरफ से भी सफाई सामने आई है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक, भारतीय टीम पहले से ही नकवी से ट्रॉफी लेने के पक्ष में नहीं थी। बीसीसीआई ने दो विकल्प सुझाए थे, या तो एसीसी के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जरूनी ट्रॉफी सौंपे, या हाल की परंपरा के मुताबिक विजेता बोर्ड का प्रतिनिधि ट्रॉफी प्रदान करे। लेकिन नकवी अपने रुख पर कायम रहे, टीम इंडिया ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। यानी मैदान पर भारत की जीत ऐतिहासिक तो रही, लेकिन ट्रॉफी सेरेमनी ने इस जीत को अलग वजह से सुर्खियों में ला दिया। उधर एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम तो कर ली, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार ने पूरे समारोह को सुर्खियों में तो ला दिया था। भारतीय महिला टीम ने एसीसी प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया।

0: भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर के भारत और मोहसिन नकवी के बीच गतिरोध आखिर टूट क्यों नहीं रहा है? फाइनल के बाद ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ इनकार कर दिया लेकिन अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि इस पूरे विवाद के बीच भारत की तरफ से दो विकल्प पहले दिए गए थे। पूरा मामला क्या, सुनिए जरा।
2: एक जो खुशी का पल था, जो मेंस टीम जो थी इंडिया की एशिया कप फाइनल पिछले साल जब जीती थी तब भी ट्रॉफी नहीं ले पाई थी, मना कर दिया, और इस साल हमने देखा इस बार दोबारा इंडिया की विमेंस टीम ने एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से। वजह बता सकते हैं सर?
3: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहाँ मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूँ। हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है, उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया, और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा। वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था। सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है। सो वो लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है। हमारा
1: देश पहले है, बाकी चीजें बाद में। वैसे आज गणेश चतुर्थी है तो पूरे देश में आपको आज एक उत्सव भी दिखाई देगा क्योंकि गणेश उत्सव की भव्य शुरुआत हो रही है। घर घर पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश विराजमान होंगे। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए भक्तों में खासा उत्साह है। बाजारों से लेकर पूजा पंडालों तक रौनक नजर आ रही है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और अगले 10 दिनों तक पूजा अर्चना भक्ति उत्सव का माहौल पूरे देश में रहेगा। खासकर महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा गणेश उत्सव की धूम होती है, मुंबई में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। क्या आम, क्या खास, क्या सेलिब्रिटी, हर कोई गणपति बप्पा के रंग में रंगा रहेगा। श्रद्धालु पूरे उत्साह और सुरक्षा के माहौल में बप्पा का स्वागत कर सके इसके लिए भी तैयारियां हो रही। देखिए अलग अलग तस्वीरें, आप लालबाग के राजा की तस्वीरें देख रहे हैं। लालबाग के राजा वो देखने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु हर दिन पंक्तिबद्ध होकर इंतजार करते हैं। तो लालबाग के राजा और इसी के साथ साथ पुरी में भी गणेश उत्सव को देखते हुए जो सैंड आर्टिस्ट हैं उन्होंने विशेष, सुदर्शन पटनायक ने देखिए कैसे उकेरा है इसे। आज गणेश उत्सव की धूम है तो हर जगह, और महाराष्ट्र, गुजरात और इसी के साथ उत्तर भारत में धीरे धीरे जो परंपरा त्योहार आगे बढ़ रही है, आस्था का सैलाब उमड़ेगा। देखिए रोबोटिक गणेश, हर बार गणेश पंडालों में अलग अलग थीम दिखाई देती है, तो आपको कहीं पर रोबोटिक गणेश दिखाई देंगे, कहीं रथ यात्रा निकल रही है, तो कहीं पर 164 साल पुरानी गजानन प्रतिमा की भी पूजा हो रही है। गणपति बापा मोरिया के जयकारों के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आज भगवान गणेश को अपने घर लाएंगे और यहां से गणेशोत्सव पूजा अर्चना शुरुआत होती है। अगले 10 दिनों तक एक त्योहार पूरे देश के लिए। चलिए अगली खबर मुंबई से, जहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह ने मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी में गणेश ज्ञानार्थी विशेष पांडुलिपि प्रदर्शनी के उद्घाटन में समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: चलिए मुंबई के बाद आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में बिजली की जबरदस्त किल्लत है, 10 से 14 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन बिजली कटौती पर जोरदार सियासत हो रही है, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भगवंत मान की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है कि उनके हिस्से की बिजली केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है, इसलिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

0: पंजाब में जबरदस्त बिजली संकट है। ऐसा संकट कि उद्योग ठप पड़ गया है क्योंकि औद्योगिक यूनिट बंद है। आदमी परेशान है, किसान परेशान है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और खेतों में खड़े धान सूख रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये सब परेशानी की जड़ भगवंत मान है।
1: ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनके थर्मल प्लांटों पे आज एम्प्लॉई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनका वहां अरेंजमेंट नहीं है, तो कैसे पंजाब चलेगा भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसी नलायक सरकार को चलता करना चाहिए और उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार है नहीं।
0: लेकिन भगवंत मान की सरकार के मंत्री बिजली संकट का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि केंद्र की सरकार ने पंजाब के हिस्से की बिजली नहीं दी।
2: जो 3000 मेगावाट की हमारे यहाँ शॉर्टेज है उसके तीन प्रमुख कारण निकल के सामने आए। नंबर एक के 1000 मेगावाट बिजली जो हमें केंद्र सरकार से मिलती है, जो हमारा पंजाब का हक बनता है, मतलब कि जो हमारे पंजाब का शेयर है, वो बेसिकली पूल में से शेयर है, हमें इस बार 1000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के पूल से मिल नहीं रही।
0: इतना ही नहीं, पंजाब में बिजली उत्पादन करने वाले पंजाब सरकार की 10 यूनिट है, 2 प्राइवेट यूनिट है जिनमें तकनीकी खराबी के चलते बिजली का संकट बढ़ा है।
2: दूसरा, हमारे जो पंजाब सरकार के खुद के चलाए हुए 10 यूनिट हैं, वो 10 यूनिट दिन रात चल रहे हैं, परंतु 2 प्राइवेट यूनिट हैं जो पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, एक तलवंडी साबो, एक एनपीएल राजपुरा। ये दोनों यूनिट 3300 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। इसमें एक दिक्कत आई है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ये 3 यूनिट इसमें से शटडाउन हुए थे और हमें जो तकनीकी माहर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों यूनिट हैं ये भी लाइट अप कर देंगे।
0: पंजाब की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब में बिजली के संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है, बल्कि वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी बिजली दी जा रही है।
3: पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ना दी कोई चीज इन्हें पल्ले नहीं रही, और झूठ और फरेब दी राजनीति के अलावा इन्हें कोई चारा नहीं है कोने।
0: इस शिकायत के बीच फंसे हुए हैं पंजाब वाले, क्योंकि बत्ती गुल है, परेशानी फुल है। मोगा से कमलजीत संधू और असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां 252 मदरसों में ताला लगा दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसे मदरसे जो बगैर मान्यता के चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा, और इसी कड़ी में इन मदरसों पर ताले लगा दिए गए।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार का फरमान, गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर लग गया ताला। बंद कर दिए गए 250 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने लगभग 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: एवं संग्रहित तथ्य सठीक जांचाइर जन्य राज्य स्तर থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল পাঠানো হয়েছিল। যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
0: सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन मदरसों को बंद करने का नोटिस मिला है उनमें से ज्यादातर खारजी मदरसे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि कोलकाता और 22 जिलों के सभी मदरसों से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, जिनके पास वैध मान्यता है वे चलते रहेंगे। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।
5: गुरुतर असंगति पावा गेछे आरो एमन 100 मद्रासा के कारण दर्शानोर नोटिस देवा हयेछे। বৈধ অনুমোদন হীন কর্তৃত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
0: अब बंगाल में मदरसों की राजनीति जोर पकड़ रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
4: बात करेंगे यूपी की, जहां अपराधियों के भीतर यूपी पुलिस का खौफ दिखा, क्योंकि व्यापारी पर फायरिंग करने का एक आरोपी मेरठ एसएसपी ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचा। उसने कहा कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है, इसलिए उसने सरेंडर करना सही समझा।
0: एक शूटर के हाथ में माफी की ये तख्ती बताती है कि अपराधियों में सीएम योगी का कैसा खौफ है। ये तख्ती बताती है कि योगी के राज में गुंडे, मवाली और माफियाओं की क्या हालत है। ये तख्ती दिखाती है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कैसा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स रवीश है। इस पर आरोप है कि इसने स्क्रैप व्यापारी पर गोलीबारी की है। ये फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फिर इसके भीतर एक खौफ ने जन्म लिया कि अगर पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई तो इसका एनकाउंटर हो सकता है। इसी डर से ये एसएसपी ऑफिस पहुंचा सरेंडर करने और साथ में माफीनामे की ये तख्ती दिखाई।
6: मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मेरे सर जी से हाथ जोड़ के विनती है, काम करो के विनती है कि ये जो मैंने गलती की उसकी गलती की माफी चाहता हूँ। जो मैंने क्राइम किया अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े भाई ये ऐसे गंदे काम ना करें, हाथ जोड़ के उनसे मेरी रिक्वेस्ट।
0: पुलिस से सुनिए कि आखिर ये एसएसपी ऑफिस कब पहुंचा और इसका अपराध क्या था।
7: एक अभियुक्त जो फायरिंग की घटना का एक अभियुक्त है, रवीश पुत्र इरशाद, थाना लोहिया नगर का, वो पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं जो लगातार दबाव, दबिश और दबाव बनाया जा रहा है, उसी के बदौलत वो मतलब हमारे कार्यालय पहुंच चुके थे और अपने आप को माफ़ी मांगते हुए उसने सरेंडर कर लिया है। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुँच गए, उनको हिरासत में ले लिया, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: अब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सीएम योगी का खौफ अपराधियों में किस कदर है। मेरठ से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक 20 साल के युवक को चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मरने वालों ने उनके परिवार से 10,000 रुपए की फिरौती भी मांगी थी और उसके बाद इतनी भी विभत्स तस्वीरें सामने आई है। देखिए रिपोर्ट।
8: एक 20 साल के नौजवान को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उस पर बेल्ट बरसाई जा रही है, वो चीख रहा है मगर मारने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बार बार कह रहा है कि भैया लग रहा है, मगर बेल्ट बरसाने वालों पर मानो फूल सवार है। इस युवक को इन चारों लोगों ने बांध कर इतना मारा कि वो मर गया। जी हाँ, राम नाम के इस 20 साल के नौजवान की जान चली गई। इन लोगों ने इसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा था और मारना शुरू किया। इसे मारते हुए सोनीपत ले गए, वहां इसे अधमरा कर दिया, साथ में परिवार से फिरौती मांगी। सुनिए क्या क्या हुआ।
9: ये कंपनी वालों ने पकड़ के मेरे भाई को इतना मारा कि अधमरा यहाँ मार के, तो यहाँ से गाड़ी में बिठा के सोनीपत में ले जाके मारा। वहां से फिर हमारे पास मेरे भाई के फोन से फोन करता है कि तुम यहाँ आओ सोनीपत में। मेरे भाई के फोन से ही बोलता है तुम सोनीपत आओ, अभी आओ तो 10,000, सवेरे आओ तो 40,000, सवेरे आओ तो 40,000। तो हम लोग रात ही रात चले जाए, 10,000 रुपये हम लोग वहां से दे जाए। हमने देखा पूरा हमारा भाई अधमरा पड़ा हुआ।
8: लेकिन ज्यादती सिर्फ इतनी नहीं थी, आगे सुनिए क्या हुआ।
9: अरे ये लोग हॉस्पिटल में लेके चले जाते ना, जो स्टाफ थे पुलिस से, अरे लेके चले जाते तो मेरे भाई की जान बच जाती। ये लोग कोई सुनवाई नहीं किए तो मैं अपने भाई की प्राइवेट में इलाज करवाने के बाद जब नहीं हुआ, जब सांस ऊपर नीचे हुआ, तो मैं जब जीवन राम लेते गया।
8: अब परिवार इंसाफ मांग रहा है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।
10: परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आखिर वो कौन सी वजह थी, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा सामने होते हुए आया। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके से उनकी उस दिन मदद नहीं की। अगर समय पर इलाज मिल गया होता, समय पर कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज राम जिंदा होता। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में एक मामला जो है एफआईआर रजिस्टर कर ली है और 3 से 4 लोगों को, अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये देखना होगा इस गिरफ्तारी के बाद वो कौन से सबूत ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस जुटा पाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
4: पश्चिम एशिया में हूती के हमलों ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। उनके और सऊदी अरब के बीच जंग भीषण हो गई। एक तरफ हूती बाब अल मंदेब पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं तो सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमलों के बाद घमासान तेज हो गया। इस हमले के मद्देनजर हर किसी की नजर टिक गई है मक्का समझौते पर, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब का साथ देंगे और यह हमला क्या मक्का समझौते की शर्तों वाला हमला माना जाएगा।

0: मिडिल ईस्ट में हुतियों ने मचाया कोहराम, पाप अल मंदिब पर कब्जे का किया ऐलान, कई ठिकानों पर हमले, सऊदी अरब में घमासान, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर महायुद्ध की जद में अमेरिकी और ईरानी ठिकानों के अलावा बाकी देशों के इलाके भी आ रहे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब के शरूराह में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। हुतियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। इस हमले में सैन्य अड्डे के हथियारों के डिपो और कमांड एंड कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा है। सऊदी सिविल डिफेंस ने भी हुती हमले से नुकसान को माना है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल से जीजान में दो लोग घायल हो गए। हुर्मुज के साथ साथ जंग की आग बाब अल मंदिब को भी अपनी चपेट में ले चुकी। इसे लाल सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके मयून द्वीप पेरिम पर हुतियों ने कब्जा कर लिया है। यमन के मोखा पर कब्जे की जंग में लगातार बम बरस रहे हैं। शहर के कई इलाकों पर हुतियों का कब्जा है, जबकि एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के ताबड़तोड़ हमलों ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए हैं। बंदरगाह के इलाके से आ रही तबाही की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि हुतियों के हमलों से कितना नुकसान हुआ है। टैंक जलकर राख हो गए हैं, सेना की गाड़ियां जल चुकी हैं और पूरा का पूरा सैन्य ठिकाना मरघट में तब्दील हो चुका है। इस पर कब्जे के बाद मिलिट्री व्हीकल के ऊपर हथियार लेकर खड़े हुतियों की जश्न मनाती ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हुतियों ने दावा किया है कि लाल सागर से तेल और गैस के टैंकरों के गुजरने वाले इस इलाके पर कब्जा करके वो तेल के खेल में अमेरिका पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाना चाहते हैं। हुती लगातार धमकी दे रहा है कि अगर सऊदी अरब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा तो वो न सिर्फ इसी तरह जवाबी हमले करता रहेगा बल्कि सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाएगा। हुती प्रवक्ता के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से पिछले दो दिन में 129 एयर स्ट्राइक की गई है। सऊदी अरब ने इन हमलों को देखते हुए लाल सागर की तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हुर्मुज संकट के दौरान 1200 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के जरिए कई देशों को आसानी से तेल भेजा जाता रहा है। ये पाइपलाइन हुर्मुज के विकल्प के तौर पर बड़ी राहत दे रही थी। अगर हुतियों के हमले की वजह से ये जल्द ना खुली तो दुनिया भर में तेल का संकट गहरा सकता है और इसका सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ सकता है। हुतियों के इन हमलों के बारे में आज तक ने जब ईरान के राष्ट्रपति से सीधा सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: फिलहाल में हमने कई सारे अटैक्स देखे सर, जो हुतीज ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कैरी किए, रिटेलिएटरी अटैक्स जो ईरान के हो रहे हैं गल्फ स्टेट्स पर। ऐसे में हम डिवाइड बढ़ता देख रहे हैं ईरान और अरब वर्ल्ड के बीच में। क्या यही कुछ देश नहीं चाहते हैं कि आप बटे रहें, कि आप डिवाइडेड रहें?

0: देखें और वो उन्हें प्रकाशित भी कर चुके हैं तो आप पाएंगे कि उनका मकसद अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा करना है ताकि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें और वो हमारे तेल का फायदा उठा सकें।
1: मोबे जंगीम नफ्त मोरो मनोबे मोरो मिबरन बाद उन चीजों के आज उन्होंने बोर्डन
0: बाद में वो अरब देशों को हथियार बेचेंगे ताकि हम लड़ते रहें। तो इसके पीछे क्या तर्क है? क्या एक देश को दूसरे देश से डरना चाहिए? क्या इंसानों को एक दूसरे से डरना चाहिए?
1: हर कश्मीरी चनों खुद से मुसल्लह बकोने कि आज हम दिगे बतरसें आदमों में आज हम दिगे मितरसें।
2: फिलहाल सऊदी अरब हूतियों के हमले से बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का समझौता करने के बावजूद उसे इन देशों से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा उसने अमेरिका से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने ये मांग ठुकरा दी है और सैन्य मदद की जगह खुफिया जानकारी साझा करने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है ये हालात आने वाले दिनों में युद्ध के और भीषण होने के संकेत दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
5: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व का महत्व? गणपति की अलग अलग मूर्तियों का क्या है रहस्य? क्या है गणपति की पूजा का विधान? और भगवान गणेश की कृपा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व का महत्व? गणपति की अलग अलग मूर्तियों का क्या है रहस्य? क्या है गणपति की पूजा का विधान? और भगवान गणेश की कृपा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

विमेंस एशिया कप का चैंपियन बना भारत, फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं ली जीत की ट्रॉफी। हॉकी में भारत का डबल धमाका, एशिया कप पर बेटियों और बेटों का कब्जा, जूनियर महिला टीम के बाद पुरुष टीम भी बनी चैंपियन, देश का बढ़ाया मान। दुनिया में दिल्ली डिक्लेरेशन का डंका के बीच देश में सियासी हल्ला, विपक्ष ने परिणाम से लेकर खानपान तक पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली पचा नहीं पा रहे हैं भारत की बढ़ती ताकत। इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज समंदर में डूबा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 129 अभी भी

0: हो रही है। घर घर पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश विराजमान होंगे और गणपति के स्वागत के लिए भक्तों में खासा उत्साह है। बाजारों से लेकर पूजा पंडालों तक रौनक नजर आ रही है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में गणेशोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो अगले 10 दिनों तक पूजा अर्चना भक्ति उत्सव का माहौल रहेगा। मुंबई में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु पूरे उत्साह और सुरक्षित माहौल में बाप्पा का स्वागत कर सके। गणपति बाप्पा के जयकारों के साथ आस्था, उमंग और भक्ति का ये महापर्व शुरू हो रहा है। देखिए लालबाग के राजा की तस्वीरें धूमधाम से गजानन विराज चुके हैं और पूजा अर्चना के बाद जैसे ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है उसके बाद अगले 10 दिनों तक भव्य गणेशोत्सव। महाराष्ट्र जहां इसकी परंपरा सबसे पुरानी है, महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के अब क्या पूरब क्या पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जैसे जैसे धीरे धीरे ये परंपरा ये त्यौहार आगे बढ़ रही है। और उसी के साथ ये देखिए रेत पर भी आकृति उकेरी गई है। श्रद्धालु अलग अलग तरीके से अपनी आस्था दिखाते हैं गणपति के प्रति और पूरे देश में अब गणेशोत्सव की धूम है। खासकर महाराष्ट्र में जहां रंग दिखते हैं जब क्या आम क्या खास क्या सितारे सेलिब्रिटी हर कोई जब गणपति को घर लेकर के आता है और उसी के साथ साथ तैयारियां भी शुरू होती हैं। खासकर महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा गणेशोत्सव की धूम होती है ऐसे में सुरक्षा मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस ने सुनिश्चित की है। तो भक्ति भाव देखने को मिलेगा, कहीं रथ यात्रा देखने को मिल रही है, कहीं 150 साल से पुरानी गजानन की प्रतिमा की पूजा अर्चना होगी। तो आस्था का सैलाब दिखेगा आज से। और जब हम बात करते हैं गणेशोत्सव में इस तरह की जो परंपराएं त्यौहार हैं तो उसमें थीम बहुत सारा दिखाई देता है। खासकर मुंबई में महाराष्ट्र में पंडालों में आपको तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रोबोटिक गणेश भी दिखाए गए हैं। और अगली शुभ खबर खेल के मैदान से, क्योंकि भारत के लिए एक के बाद एक शानदार खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। महिला एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की, देशवासियों को जश्न का मौका दिया। तो हॉकी के मैदान से भी भारत के लिए डबल खुशी की खबर आई है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से करारी शिकस्त देकर लगातार चौथी बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली है। देखिए तीन खुशखबरी, महिला एशिया कप में भारत ने खिताब जीत लिया, जूनियर महिला हॉकी में एशिया कप में चैंपियन और जूनियर पुरुष हॉकी में भी भारत एशिया कप चैंपियन बन गया। यानी एक ही दिन में भारतीय हॉकी की बेटियों और बेटों ने एशिया पर अपना दबदबा कायम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को शानदार जीत पर बधाई दी। युवा खिलाड़ियों के जज्बे अनुशासन प्रतिभा की जमकर तारीफ की। तो महिला एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया था। रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 183 रन बनाए। स्मृति मंधाना शेफाली वर्मा ने टीम की शानदार शुरुआत दी लेकिन पहले विकेट के लिए 129 रन की बड़ी साझेदारी की, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमान संभाली और उसके बाद कमाल कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम को 111 रनों पर समेट कर पवेलियन भेज दिया। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट झटके, श्रीचरणी ने 3 विकेट लिया और इसी के साथ भारत की जीत दोनों बल्लेबाजों ने पक्की कर दी थी। श्रीलंका की टीम 111 रनों पर सिमट गई, 183 रन का लक्ष्य मानो जैसे पहाड़ हो गया हो। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 68 रनों की पारी खेली लेकिन 4 और 3 विकेट बारी बारी लेने के बाद मानो श्रीलंका की टीम लड़खड़ाने लगी। तो खेल के मैदान से भारत के लिए तो अच्छी खबर आई, शानदार खबर आई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, ये मुकाबला अपने नाम किया। महिला एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रन से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: दुबई में भारतीय बेटियों ने एशिया कप पर फिर अपना राज्य कायम किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 72 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की और 8वीं बार महिला एशिया कप अपने नाम किया। पहले बल्ले से हमला हुआ, शैफाली वर्मा ने 68 रन ठोके, स्मृति मंधाना ने 59 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर गेंदबाजों ने श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया। श्रीचरणी ने 4 विकेट चटकाए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके, श्रीलंका सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गया। 72 रन की जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चैंपियंस को बधाई दी। उन्होंने कहा भारतीय बेटियों ने सिर्फ कप नहीं जीता, करोड़ों दिल जीत लिए। यानी दुबई में तिरंगा लहराया और करोड़ों भारतीयों के दिल गर्व से भर गए, क्योंकि जब भारतीय बेटियां मैदान पर उतरती हैं तो सिर्फ मैच नहीं जीतती, इतिहास लिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो भारत ने इधर कप जीता, लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में जो हुआ उससे पूरे जश्न को बड़े विवाद में बदल दिया। भारत ने खिताब अपने नाम तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ी जश्न में डूबे रहे। तब तक ट्रॉफी देने की जब बारी आई तो तस्वीर बदल गई। हुआ ये कि भारतीय टीम ने ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और अब इस पूरे मामले पर BCCI की तरफ से सफाई सामने आई। BCCI सचिव देवजीत सेठिया के मुताबिक भारतीय टीम पहले से भी नकवी से ट्रॉफी लेने के पक्ष में नहीं थी। BCCI ने तब दो विकल्प दिए, या तो ACC के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जरूरी ट्रॉफी सौंप दे, या फिर जो हाल की परंपरा रही है उसके मुताबिक विजेता बोर्ड का प्रतिनिधि ट्रॉफी प्रदान करे। लेकिन नकवी अपने रुख पर कायम रहे, टीम इंडिया ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो मैदान पर भारत की जीत ऐतिहासिक रही, लेकिन ट्रॉफी सेरेमनी ने जीत को अलग वजह से सुर्खियों में ला दिया।

उत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजेंगे गजानन, बापा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेश उत्सव, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, आज गणेश चतुर्थी है तो देशभर में आज से गणेश उत्सव की भव्य शुरुआत।

0: भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर के भारत और मोहसिन नकवी के बीच गतिरोध आखिर खत्म क्यों नहीं हुआ, कैस क्यों नहीं टूटा? क्योंकि फाइनल के बाद ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ इनकार कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजी सौकिया ने बताया कि इस पूरे विवाद के बीच भारत की तरफ से दो विकल्प दिए गए थे। वो विकल्प क्या थे, सुनिए।
2: एक जो खुशी का पल था, जो मेंस टीम जो थी इंडिया की एशिया कप फाइनल पिछले साल जब जीती थी तब भी ट्रॉफी नहीं ले पाई थी, मना कर दिया। और इस साल हमने देखा, इस बार दोबारा इंडिया की विमेंस टीम ने एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से। वजह बता सकते हैं सर?
3: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहाँ मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूँ। हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया। उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है, उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया। और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा, वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा। वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई, वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था। सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है। सो वो, लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है, उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है हमारा।
1: खबर मुंबई से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने एक बयान में यह कहा कि साल 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: खबर पंजाब से, जहां बिजली की जबरदस्त किल्लत है, 10 से 14 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली कटौती पर जोरदार सियासत हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि भगवंत मान की सरकार पूरी तरह फेल हो गई, तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके हिस्से की बिजली केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है।

0: पंजाब में जबरदस्त बिजली संकट है। ऐसा संकट कि उद्योग ठप पड़ गया है क्योंकि औद्योगिक यूनिट बंद है। आदमी परेशान है, किसान परेशान है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और खेतों में खड़े धान सूख रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये सब परेशानी की जड़ भगवंत मान है।
1: ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनके थर्मल प्लांटों पे आज इम्प्लाई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनका वहां अरेंजमेंट नहीं है, तो कैसे पंजाब चलेगा भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसी नलायक सरकार को चलता करना चाहिए और उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार है नहीं।
0: लेकिन भगवंत मान की सरकार के मंत्री बिजली संकट का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि केंद्र की सरकार ने पंजाब के हिस्से की बिजली नहीं दी।
2: जो 3000 मेगावाट की हमारे यहाँ शॉर्टेज है, उसके तीन प्रमुख कारण निकल के सामने आए। नंबर एक के 1000 मेगावाट बिजली जो हमें केंद्र सरकार से मिलती है, जो हमारा पंजाब का हक बनता है, मतलब के जो हमारे पंजाब का शेयर है, वो बेसिकली पूल में से शेयर है, हमें इस बार 1000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के पूल से मिल नहीं रही।
0: इतना ही नहीं, पंजाब में बिजली उत्पादन करने वाले पंजाब सरकार की 10 यूनिट है, 2 प्राइवेट यूनिट है जिनमें तकनीकी खराबी के चलते बिजली का संकट बढ़ा है।
2: दूसरा, हमारे जो पंजाब सरकार के खुद के चलाए हुए 10 यूनिट हैं, वो 10 यूनिट दिन रात चल रहे हैं, परंतु 2 प्राइवेट यूनिट हैं जो पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, एक तलवंडी साबो, एक NPL राजपुरा। ये दोनों यूनिट 3300 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। इसमें एक दिक्कत आई है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ये 3 यूनिट इसमें से शटडाउन हुए थे और हमें जो तकनीकी माहर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों यूनिट हैं ये भी लाइट अप कर देंगे।
0: पंजाब की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब में बिजली के संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है, बल्कि वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी बिजली दी जा रही है।
3: पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ना दी कोई चीज इन्हें पल्ले नहीं रही, और झूठ और फरेब दी राजनीति के अलावा कोई चारा नहीं है कोले।
0: इस शिकायत के बीच फंसे हुए हैं पंजाब वाले, क्योंकि बत्ती गुल है, परेशानी फुल है। मोगा से कमलजीत संधु और असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां 252 मदरसों में ताला लगा दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसे मदरसे जो बगैर मान्यता के चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा, और इसी कड़ी में इन मदरसों पर ताले लगा दिए गए।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार का फरमान, गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर लग गया ताला। बंद कर दिए गए 250 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने लगभग 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: एवं संग्रहित तथ्य सठीक जाचाइर जन्य राज्य स्तर থেকেও বিশেষ পরিদর্শক দল পাঠানো হয়েছিল। যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
0: सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन मदरसों को बंद करने का नोटिस मिला है उनमें से ज्यादातर खारजी मदरसे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि कोलकाता और 22 जिलों के सभी मदरसों से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, जिनके पास वैध मान्यता है वे चलते रहेंगे। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।
5: कारण दर्शानोर नोटिस देवा हयेछे। बैध अनुमोदन हीन कर्तृत्व प्रमाण करते व्यर्थ होले यथाजथ प्रक्रियार माध्यमे एइसब प्रतिष्ठानके प्रतिष्ठानेर बिरुद्धे बन्धे पदक्षेप नेवा होबे।
0: अब बंगाल में मदरसों की राजनीति जोर पकड़ रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
4: बात करेंगे यूपी की, जहां अपराधियों के भीतर यूपी पुलिस का खौफ दिखा, क्योंकि व्यापारी पर फायरिंग करने का एक आरोपी मेरठ एसएसपी ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचा। उसने कहा कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है, इसलिए उसने सरेंडर करना सही समझा।
0: एक शूटर के हाथ में माफी की ये तख्ती बताती है कि अपराधियों में सीएम योगी का कैसा खौफ है। ये तख्ती बताती है कि योगी के राज में गुंडे, मवाली और माफियाओं की क्या हालत है। ये तख्ती दिखाती है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कैसा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स रवीश है। इस पर आरोप है कि इसने स्क्रैप व्यापारी पर गोलीबारी की है। ये फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फिर इसके भीतर एक खौफ ने जन्म लिया कि अगर पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई तो इसका एनकाउंटर हो सकता है। इसी डर से ये एसएसपी ऑफिस पहुंचा सरेंडर करने और साथ में माफीनामे की ये तख्ती दिखाई।
6: मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मेरे सर जी से हाथ जोड़ के विनती है, काम करो के विनती है कि ये जो मैंने गलती की उसकी गलती की माफी चाहता हूँ। जो मैंने क्राइम किया अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े भाई ये ऐसे गंदे काम ना करें, हाथ जोड़ के उनसे मेरी रिक्वेस्ट है।
0: पुलिस से सुनिए कि आखिर ये एसएसपी ऑफिस कब पहुंचा और इसका अपराध क्या था।
7: एक अभियुक्त जो फायरिंग के घटना का एक अभियुक्त है, रवीश पुत्र इरशाद, थाना लोहिया नगर का, वो पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं जो लगातार दबाव, दबिश और दबाव बनाया जा रहा है, उसी के बदौलत वो मतलब हमारे कार्यालय पहुंच चुके थे और अपने आप को माफ़ी मांगते हुए उसने सरेंडर कर लिया है। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंच गए, उनको हिरासत में ले लिया, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: अब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सीएम योगी का खौफ अपराधियों में किस कदर है। मेरठ से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां एक स्कूल के गेट पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, करीब 18 राउंड फायरिंग की और स्कूल के गेट पर एक पर्ची भी चिपका गई जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई।
8: ये बिहार के मुजफ्फरपुर में बने एक स्कूल की तस्वीरें हैं। स्कूल के गेट पर गोलियों के निशान हैं और साथ में एक पर्ची चिपकाई गई है जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। देखिए, कांटी थाना क्षेत्र में ये चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल है। रविवार की रात 3 से 4 बजे के बीच दो बदमाश यहाँ आते हैं और स्कूल के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 18 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद बदमाशों ने स्कूल के गेट पर 50 लाख की रंगदारी वाली पर्ची भी चिपकाई।
9: उसके गेट पे लगभग 17-18 राउंड जो है वो फायरिंग हुई है। फायरिंग 4-5 राउंड खोखा भी बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, साथ ही एक पर्ची साटा गया है जिसमें 50 लाख रुपए के की रंगदारी की बात की गई है। हम लोगों ने FSL की टीम को सूचित किया है, तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
8: बदमाशों की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। हालांकि बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा था जिसकी वजह से उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा, लेकिन अब पुलिस तलाश में जुट गई है कि आखिर ये बदमाश कौन थे।
9: CCTV फुटेज में दो लोग दिख रहे हैं जो कि पर्ची भी साट रहे हैं और गोली चला रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
8: अब इलाके में दहशत का माहौल है, स्कूल चलाने वाले भी डरे हुए हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर आज तक।
4: पश्चिम एशिया में हूती के हमलों ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। उनके और सऊदी अरब के बीच जंग भीषण हो गई। एक तरफ हूती बाब अल मंदेब पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं, तो सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमलों के बाद घमासान तेज हो गया। इस हमले के मद्देनजर हर किसी की नजर टिक गई है मक्का समझौते पर, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब का साथ देंगे और यह हमला क्या मक्का समझौते की शर्तों वाला हमला माना जाएगा।

0: मिडिल ईस्ट में हुतियों ने मचाया कोहराम, बाब अल मंदिब पर कब्जे का किया ऐलान, कई ठिकानों पर हमले, सऊदी अरब में घमासान, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर महायुद्ध की जद में अमेरिकी और ईरानी ठिकानों के अलावा बाकी देशों के इलाके भी आ रहे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब के शरूराह में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। हुतियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। इस हमले में सैन्य अड्डे के हथियारों के डिपो और कमांड एंड कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा है। सऊदी सिविल डिफेंस ने भी हुती हमले से नुकसान को माना है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल से जीजान में दो लोग घायल हो गए। हॉर्मुज के साथ साथ जंग की आग बाब अल मंदिब को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। इसे लाल सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके मयून द्वीप पेरिम पर हुतियों ने कब्जा कर लिया है। यमन के मोखा पर कब्जे की जंग में लगातार बम बरस रहे हैं। शहर के कई इलाकों पर हुतियों का कब्जा है, जबकि एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के ताबड़तोड़ हमलों ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए हैं। बंदरगाह के इलाके से आ रही तबाही की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि हुतियों के हमलों से कितना नुकसान हुआ है। टैंक जलकर राख हो गए हैं, सेना की गाड़ियां जल चुकी हैं और पूरा का पूरा सैन्य ठिकाना मरघट में तब्दील हो चुका है। इस पर कब्जे के बाद मिलिट्री व्हीकल के ऊपर हथियार लेकर खड़े हुतियों की जश्न मनाती ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हुतियों ने दावा किया है कि लाल सागर से तेल और गैस के टैंकरों के गुजरने वाले इस इलाके पर कब्जा करके वो तेल के खेल में अमेरिका पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाना चाहते हैं। हुती लगातार धमकी दे रहा है कि अगर सऊदी अरब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा तो वो न सिर्फ इसी तरह जवाबी हमले करता रहेगा बल्कि सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाएगा। हुती प्रवक्ता के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से पिछले दो दिन में 129 एयर स्ट्राइक की गई है। सऊदी अरब ने इन हमलों को देखते हुए लाल सागर की तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हॉर्मुज संकट के दौरान 1200 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के जरिए कई देशों को आसानी से तेल भेजा जाता रहा है। ये पाइपलाइन हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर बड़ी राहत दे रही थी। अगर हुतियों के हमले की वजह से ये जल्द ना खुली तो दुनिया भर में तेल का संकट गहरा सकता है और इसका सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ सकता है। हुतियों के इन हमलों के बारे में आज तक ने जब ईरान के राष्ट्रपति से सीधा सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: फिलहाल में हमने कई सारे अटैक्स देखे सर, जो हुतीज ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कैरी किए, रिटेलिएटरी अटैक्स जो ईरान के हो रहे हैं गल्फ स्टेट्स पर। ऐसे में हम डिवाइड बढ़ता देख रहे हैं ईरान और अरब वर्ल्ड के बीच में। क्या यही कुछ देश नहीं चाहते हैं कि आप बटे रहें, कि आप डिवाइडेड रहें?
2: क्या आपको इस बारे में कोई शक है? असल में वो बांटो और राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। अगर आप उनके लेखों को देखें और वो उन्हें प्रकाशित भी कर चुके हैं तो आप पाएंगे कि उनका मकसद अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा करना है ताकि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें और वो हमारे तेल का फायदा उठा सकें। बाद में वो अरब देशों को हथियार बेचेंगे ताकि हम लड़ते रहें। तो इसके पीछे क्या तर्क है? क्या एक देश को दूसरे देश से डरना चाहिए? क्या इंसानों को एक दूसरे से डरना चाहिए?
0: फिलहाल सऊदी अरब हुतियों के हमले से बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का समझौता करने के बावजूद उसे इन देशों से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा उसने अमेरिका से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने ये मांग ठुकरा दी है और सैन्य मदद की जगह खुफिया जानकारी साझा करने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है ये हालात आने वाले दिनों में युद्ध के और भीषण होने के संकेत दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व का महत्व? गणपति की अलग अलग मूर्तियों का क्या है रहस्य? क्या है गणपति की पूजा का विधान? और भगवान गणेश की कृपा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विमेंस एशिया कप का चैंपियन बना भारत, फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं ली जीत की ट्रॉफी। हॉकी में भारत का डबल धमाका, एशिया कप पर बेटियों और बेटों का कब्जा, जूनियर महिला टीम के बाद पुरुष टीम भी बनी चैंपियन, देश का बढ़ाया मान। दुनिया में दिल्ली डिक्लेरेशन का डंका के बीच देश में सियासी हल्ला, विपक्ष ने परिणाम से लेकर खान पान तक पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली पचा नहीं पा रहे हैं भारत की बढ़ती ताकत। इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज समंदर में डूबा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 129 अभी भी लापता। आज से देश भर में गणेशोत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजेंगे गजानन, बापा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेशोत्सव, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पर्व की और गणेश महोत्सव के महिमा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी के साथ आज से गणपति महोत्सव का आरंभ हो रहा है। साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है, तो क्या है इस पर्व की महिमा, पहले ये जानते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। ये भी माना जाता है कि इसी दिन से भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है। इस बार ये पर्व 14 सितंबर से यानी आज से आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर तक गणपति महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वैसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सबसे बड़ी चतुर्थी है, जो कि आज है और आज के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। देखिए, गणपति महोत्सव में भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। वैसे तो सारे स्वरूप ही भगवान गणेश के हैं, लेकिन उनकी अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग महत्व बताया गया है। कैसी मूर्तियां होती हैं? गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम पूजा करने पर देती हैं। सबसे ज्यादा जिस मूर्ति की उपासना और पूजा की जाती है वो है पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या रक्त वर्ण लाल रंग के गणेश जी की मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा की जाती है और वो सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है, विशेष दशाओं में ही की जाती है। हल्दी से बनी हुई गणपति की मूर्ति या हल्दी का जिस मूर्ति पर लेपन होता है, ऐसी मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। और ये हरिद्रा गणपति का जो स्वरूप है, ये कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए इस मूर्ति को शुभ मानते हैं। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर लेता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। श्वेत रंग के गणपति की अगर आप पूजा करें तो आपको ऋणों से कर्जों से मुक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति लाल रंग के गणेश जी, जिनकी चार भुजाएं हैं, उनको संकष्ट हरण गणपति कहा जाता है। और इनकी उपासना करने से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजाओं वाले गणेश जी को महागणपति कहते हैं। और महागणपति के अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं। सारे गणपति का स्वरूप इनके अंदर पाया जाता है। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति यानी प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, ऐसी मूर्ति को या ऐसी प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। गणपति महोत्सव के अलावा सामान्य समय में भी पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या लाल रंग के गणेश जी की मूर्ति अगर आप घर में स्थापित करके उनकी पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। गणेश जी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन

आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रोहित कुमार ने हमें लिखा है और रोहित कुमार हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1973, जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं इंदौर से। रोहित कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर हो और मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। रोहित, आपकी कुंडली के हिसाब से नवंबर 2026 से आपके व्यापार के हालात, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आने वाले समय में लंबे समय तक बेहतर बनी रहेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम के समय लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। रोज शाम को एक बार माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें और एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज के दिन भगवान गणेश की पूजा उपासना हमें कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर आप प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं, तो ये दोपहर के समय में करिएगा। आज भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय करना अच्छा होगा। उनकी मूर्ति स्थापित करने के अलावा कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करिए। दिन भर आज केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करिए या केवल फल ग्रहण करिए। दोपहर में भगवान गणेश को स्थापित करते समय तो उनकी पूजा करेंगे ही, शाम के समय गणेश जी की जितना संभव हो पूजा करिएगा। घी का दीपक जलाइएगा। जितनी आपकी उम्र है

भोग लगाइएगा या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करिएगा। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिएगा। अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें, गणपति चालीसा पढ़ें, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। रात के समय चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन चंद्रमा को निगाह नीची करके नीची दृष्टि से अर्घ दीजिएगा। आज चंद्रमा का दर्शन करना बेहतर नहीं होता। अगर आज चंद्र दर्शन करेंगे तो आपको अपयश मिलेगा। अगर चंद्रमा का दर्शन हो ही गया है तो उसके दोष का उपचार कर लीजिएगा। इसके बाद संध्या पूजा के बाद प्रसाद बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप पूरे गणपति महोत्सव में गणपति को स्थापित करते हैं तो आपको रोज सुबह शाम उनकी पूजा करनी है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति की मूर्ति का विसर्जन भी आपको विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। गणेश जी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज का दिन आपके जन्म की तारीख के अनुसार कैसा है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

की व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

राशि धन लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, चतुर्थी के दिन यानी आज आप जब भी भगवान गणेश की पूजा करेंगे, पीले या सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करना आपके लिए जरूरी है।

नीले वस्त्र धारण मत करिएगा। गणेश जी की प्रतिमा अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मध्यम आकार की गणपति की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर नदी की मिट्टी ला करके स्वयं भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो इसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा, इसका सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आप आज व्रत रखते हैं तो चंद्र देव को अर्घ देना जरूरी है, बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन ना करें। नजर नीची रख करके आपको अर्घ देना चाहिए। और आज पूजा में आप लड्डू, फूल, मिठाई, फल सब भगवान गणेश को चढ़ाएं, लेकिन उनको तुलसी दल अर्पित मत करिएगा। दूर्वा अर्पित करना भगवान गणेश की पूजा में जरूरी है, वो अगर आप अर्पित करें तो काफी बेहतर होगा। क्रोध ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। पूरी तरह से भगवान गणेश का स्मरण करते हुए दिन के समय में पूजा करें, आपको लाभ होगा। और आज गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है, प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 तक, इस समय में अगर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

ही महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, करियर के लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान गणेश की पूजा में उनको लड्डू अर्पित करना, सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कौन सी चीज अर्पित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, कहा जाता है कि शिव जी

शिव जी को जल, भगवान विष्णु को अलंकार और सूर्य देव को नमस्कार प्रिय है। इसी तरह से भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है। आप उनकी पूजा में उन्हें फल, मिठाई, धूप, दीप ये सब अर्पित ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप भगवान गणेश की पूजा में केवल उनको दूर्वा अर्पित कर दें और दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें तो इसी से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

के योग बन रहे हैं। नंबर दो, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर चार, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर पांच, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर छह, धन लाभ के योग हैं। नंबर सात, मित्रों से विवाद से बचाव करें। नंबर आठ, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। और नंबर नौ, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके काम में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सी चीनी खा के जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना हो तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो सफेद रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

आज चतुर्थी तिथि लग गई है सुबह 7 बजे के बाद, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। और आज चंद्रमा का दर्शन करने से भी बचिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पहले एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर अपना कब्जा किया। टीम इंडिया की रही शानदार शुरुआत, शेफाली वर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी खेली, स्मृति मंधाना ने 59 रन का अहम योगदान दिया। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रन का लक्ष्य दिया था, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में महज 111 रन पर ही सिमट गई। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने भी कहर बरपाया, श्री चंडी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 के हार का बदला लिया, एशिया कप में सभी 5 विकेट जीत कर अजय और विजेता बना भारत। महिला एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को बधाई दी। भारत अफगानिस्तान टी20 आई से पहले दिल्ली स्टेडियम में पहली बार गूंजा वंदे मातरम, 6 अंतरों के बाद बजा राष्ट्रगान जनगणमन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीरें। जिसके बाद भारतीय टीम का बड़ा फैसला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजी सरकिया का बड़ा खुलासा, कहा एसीसी डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को तैयार थी टीम इंडिया, लेकिन प्रस्ताव ठुकराया तो सेरेमनी का बहिष्कार किया। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को बैटन सौंपी, बोले टेक्नोलॉजी और मिनरल्स को हथियार बनाना दुनिया की तरक्की के लिए गलत है। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के सियासत गरमाई, जयराम रमेश का आरोप, भारत चीन रिश्तों में कैलिब्रेटेड कैपिटुलेशन, गलवान लद्दाख पर सरकार से जवाब मांगा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, पाकिस्तान को चीन के समर्थन और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर के भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, सरकार से कहा भारत चीन रिश्तों पर स्पष्ट जवाब की मांग। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष में मतभेद, राशिद अलवी ने कूटनीतिक जीत मानने से इनकार किया तो मायावती ने बताया उपलब्धि। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष की अलग अलग राय, मायावती ने इसे कूटनीतिक उपलब्धि कहा, रामगोपाल यादव ने कहा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ब्रिक्स डिनर के शाकाहारी मेन्यू पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का लक्ष्य, बोले इंडिया फर्स्ट हमारी नीति का आधार। शाह ने कहा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया है, पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाई है। भाषा विभाग पर अमित शाह ने कहा मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति, अवैध घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई का भी दावा किया। सीएम मोहन यादव का नेहरू गांधी परिवार पर तंज, बोले समुद्र नहीं होता तो अरब देशों तक पहुंच जाते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की किस्त जारी की गई, 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंचे 1835 करोड़ रुपए। रायबरेली में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा रहेगा तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि एक जिला एक माफिया से एक जिला एक उत्पाद तक बदली यूपी की तस्वीर। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, विकास की तस्वीर दिखी है, पहले सड़कों और सुरक्षा की स्थिति खराब थी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की स्थिति साफ करते हुए कहा कि अभी भी अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में है, वो बीएसपी संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए। मायावती ने बीमारी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, लगातार काम कर रही हूं। पंजाब में बिजली संकट गहराया, उद्योगों में से 12 से 14 घंटे तक कटौती हो रही, बिजली की मांग 16,519 मेगावाट तक पहुंची। पंजाब में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पटियाला में पीसीपीसीएल दफ्तर के बाहर राजा वाडिंग के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। किसानों का आप सरकार के खिलाफ 5 दिन का प्रदर्शन, आज से मंत्रियों विधानसभा स्पीकर के घरों के बाहर आंदोलन होगा। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल की तैयारी तेज, सुखबीर बादल ने 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई। पंजाब के बिजली संकट पर केंद्र का दावा, कोयले की कमी नहीं है, राज्य को पर्याप्त कोयला दिया जा रहा है। नोएडा के डू क्षेत्र बिजली पानी की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे लोग, पैदल मार्च से करीब आधे घंटे जाम लग गया, पुलिस ने उसके बाद स्थिति संभाली। तेलंगाना के विकाराबाद में वेतन के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया, नगर पालिका कर्मियों ने एक पैर पर खड़े होकर के विरोध जताया, 10 दिन से आंदोलन जारी है। रायपुर के सदर बाजार में जर्जर इमारत पर नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है, ध्वस्तीकरण अभियान। टेहरी में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे 19 बच्चे, मरम्मत के अभाव में 30 साल पुराने भवन में दरारें पड़ी हैं, छत का प्लास्टर उखड़ चुका है, डीएम से मरम्मत की मांग की गई है। दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगाम लगाने की तैयारी, कैमरों से लैस होंगे सेंटर्स, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस की जांच हाईटेक की जाएगी। दिल्ली शहर में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल।
आज सुबह से दोपहर के बीच करीब कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक स्थिति में पहुंच गई है। शाम 6 बजे 86 दर्ज किया गया AQI राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक। नवसारी में बारिश के चलते अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर है। तड़ेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया है। चिखली की कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों को लेकर के प्रशासन अलर्ट। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास पानी भी भरा। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रहा है। SDRF की टीम ने 300 लोगों को रेस्क्यू किया। यूपी के मुरादाबाद में गागन नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम सुहाना हुआ। डल झील में पर्यटक अब मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में भी मौसम अचानक बिगड़ा। डल झील में तेज हवाओं के बीच नाव पर फंसे रहे पर्यटक। SDRF ने हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक। 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने उनकी जान बचाई। आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रख रही है।

हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर के भव्य समारोह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बापा का पंडाल, दूर दूर से पंडाल देखने बापा के दर्शन को आ रहे हैं लोग। गणेशोत्सव को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी, धूमधाम से होगी गजानन की स्थापना, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेशोत्सव। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, सुरक्षा के माहौल में होगी गणेशोत्सव। महाराष्ट्र के ठाणे में रेत पर सजे बप्पा के 5 रूपों के भव्य दर्शन, आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारी, जबरदस्त रोशनी से सजाकर बापा विनायकर का मंदिर। तमिलनाडु में भी गणेशोत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शिवगंगा जिले के विनयागर मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लगी, घंटों मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। कोटपुतली में 11,000 किलोवाट की बिजली लाइन की चपेट में आया एक डंपर धू धू कर जल गया, चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में प्राइवेट बिजली बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी में भीषण आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड़ में कार में अचानक आग लग गई, बाल बाल बचा एक दंपत्ति। बरनाला में पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने 7 से 8 राउंड गोली चलाई, जांच के लिए टीमें गठित। गुजरात के राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में भीषण आग लगी, प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक हो गया, 2 से 3 घंटे में काबू पाया गया। और अयोध्या में मिठाई की दुकान के बेसमेंट में फटा गैस सिलेंडर, धमाके में 4 लोग घायल। बाराबंकी थाने में 2 सिपाहियों में मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, दोनों लाइन हाजिर किए गए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रेम प्रसंग के विवादों में प्रेमिका की गला काटकर हत्या की गई, प्लास्टिक में शव लपेटकर बाइक दुकान लगाने निकला युवक नाका चेकिंग में पकड़ा गया। भावनगर में दोस्त ने जहरीली शराब पिलाकर युवक की हत्या की, 13 मौतों वाली नकली शराब के कांड में तरजी साजी, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के ये कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: पापा
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ
9: ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
18: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
19: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नई काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: ब्रिक्स के मंच पर 10 सहयोगी एक तरफ, जिनपिंग का चीन दूसरी तरफ। पूरे ब्रिक्स मंच पर चीन का दबदबा कुछ ऐसा है कि 20 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ चीन अकेला 60% ब्रिक्स है। ब्रिक्स में ब्राजील के साथ 180 अरब डॉलर, भारत के साथ 137 अरब डॉलर, यूएई से 101 अरब डॉलर के साथ चीन का कारोबार आसमान पर है। ग्लोबल वैल्यू चेन में 35% हिस्सेदारी रखने वाले चीन को अब मिडल ईस्ट से अफ्रीका तक क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम का फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन के मंच पर चीन के राष्ट्रपति चाहे जितने असहज दिख रहे हों, लेकिन विश्व के मंच पर चीन की नजर अपने कारोबार पर थी और यही अपील वो ब्रिक्स के मंच पर भी कर रहे थे।
1: हमें समानता और व्यवस्था पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तथा समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण की वकालत करनी चाहिए ताकि विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके।
0: दरअसल ब्रिक्स ने दिल्ली के सम्मेलन में जो भी फैसले किए उसके दूरगामी और सुरक्षित फायदे चीन को मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप से टैरिफ वॉर में उलझे चीन ने अमेरिका और यूरोप से बाहर सुरक्षित कारोबारी डेस्टिनेशन तलाश कर लिए हैं। फायदे के तौर पर देखें तो ब्रिक्स के 11 सदस्य और 10 सहयोगी अब 43% कच्चा तेल और 32% नेचुरल गैस के उत्पादकों का समूह है। चीन इन देशों में बिना किसी डर के अपने उत्पाद बेच सकेगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने चीनी ईवी सोलर पैनल पर 50-100% टैरिफ लगा रखा है और चीन इस समय दुनिया के 80% से ज्यादा सोलर सप्लाई चेन और गैर पश्चिमी देशों के ईवी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
13: Papa!
14: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
15: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
14: छक्का
15: सब कैशलेस हो गया
14: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
16: चार्ज हुआ यार,
17: बैट किसका है?
18: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इम्पैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स एट 20 का संकल्प हो।
1: वो मंच जिसने दुनिया की वर्तमान चुनौतियों पर बात की है, उन चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है, समस्या के समाधान की पहल की है। सदा वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देने वाले भारत ने दुनिया को शांति वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही असर है कि इस ब्रिक्स समिट में एक दूसरे के प्रति नाराजगी रखने वाले दो देश एक दूसरे के गले मिले, शिकवा शिकायत पर एक दूसरे से बात की है और अपनी कड़वाहट दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी मंच पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को अबूधाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। खाड़ी में जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बात की। इन्होंने क्षेत्रीय शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रयासों के समर्थन पर सहमति जताई। ये वही मंच है जहां नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों में सहमति बनी, जिसमें पश्चिमी एशिया के जारी तनाव को दूर करने के लिए वार्ता की पहल की गई। भारत की इस पहल पर सभी देशों ने एक स्वर में साथ दिया। इस समिट में नील नदी के पानी को लेकर टकराने वाले इथियोपिया और मिस्र भी शामिल हुए, साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी इस मंच पर नजर आए। ये ब्रिक्स की बड़ी कामयाबी है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में दोस्ती वाले दांव से अहम भूमिका निभाई है। शिवानी शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक।
0: आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, वीमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्यमों को नॉलेज, फाइनेंस और नए मार्केट से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे शहरों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जीत का परचम, फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया। पाकिस्तान की फिर से फजीहत, टीम इंडिया का मोहसिन नकवी से नहीं ट्रॉफी लेने से इनकार। हॉकी में भारत का डबल धमाका, जूनियर एशिया कप में मेंस विमेंस टीम दोनों बनी चैंपियन, शानदार जीत पर बधाइयों का तांता। ब्रिक्स समिट पर सियासी हल्ला बोल, दिल्ली डिक्लेरेशन पर विपक्ष के सवाल, चीन के सामने घुटने टेकने का आरोप, बीजेपी बोली पचा नहीं पा रहे हैं भारत की बढ़ती ताकत।

0: 12 घंटे तक की पावर कट, मान सरकार पर हमलों की बौछार, आज पंजाब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देश भर में गणेश उत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजे गजानन बप्पा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समय हो गया है सुपर 8 बुलेटिन का, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की 8 बड़ी खबरों से। तो वहीं मैं इस कुछ ही मिनटों में खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर, जो कि टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं हॉकी में भी भारत को बड़ी जीत मिली है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जी हां, वहीं भारी बारिश और उफनती नदियों से यूपी बिहार में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है, डिटेल के साथ इस खबर पर भी होगी बात। वही जावा सागर में सवारियों से भरी नाव पलटने से हड़कंप मच गया, देश के अलग अलग हिस्सों में आग की घटनाओं में अफरा तफरी मच गई है, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो वहीं मायावती को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, सियासी बयानबाजी तेज है, इस पर भी होगी बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी 2029 तक लागू करने का बीजेपी का संकल्प है, ऐसे में भीम आर्मी के प्रदर्शन से हंगामा मचा हुआ है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते खेल के मैदान की खबर से जुड़ी। दरअसल यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। महिला एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर देशवासियों को जश्न का मौका दिया, और वहीं हॉकी के मैदान से भी भारत के लिए डबल खुशी की खबर है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो वहीं जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से करारी शिकस्त देकर लगातार चौथी बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली है, यानी एक ही दिन में भारतीय हॉकी की बेटियों और बेटों ने एशिया पर अपना दबदबा कायम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों टीमों को शानदार जीत पर बधाई दी है, साथ ही युवा खिलाड़ियों के जज्बे, अनुशासन और प्रतिभा की जमकर तारीफ भी पीएम मोदी ने की। तो महिला एशिया कप को लेकर भारत ने खिताब जीत लिया है, वहीं जूनियर महिला हॉकी टीम ने भी एशिया कप चैंपियन बन चुकी है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की, जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों पर ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जी हां, मोहसिन नकवी खड़े खड़े देखते रह गए, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। पिछले साल सितंबर में हुए पुरुष एशिया कप में भी भारत ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फर्क यह था कि इस बार मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर नहीं गए। भारतीय विमेंस टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, वो तस्वीरें सामने आई एशिया कप जीतने के बाद। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और मोहसिन नकवी वहां खड़े खड़े देखते रह गए।

0: भारत एशिया का चैंपियन बना, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी, लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई, लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही, लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर भारत और मोहसिन नकवी के बीच गतिरोध आखिर क्यों नहीं टूटा? फाइनल के बाद ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि इस पूरे विवाद के बीच भारत की तरफ से दो विकल्प दिए गए थे। सुनिए पूरा मामला क्या है।
2: एक जो खुशी का पल था, जो मेंस टीम जो थी इंडिया की एशिया कप फाइनल पिछले साल जब जीती थी तब भी ट्रॉफी नहीं ले पाई थी, मना कर दिया, और इस साल हमने देखा इस बार दोबारा इंडिया की विमेंस टीम ने एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से। वजह बता सकते हैं सर?
3: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहां मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूं। हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया, और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा, वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था, सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है। सो वो लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है हमारा।
1: चलिए राहुल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को सुन रहे थे हम, उन्होंने एक बड़ी वजह पहलगाम बताया ट्रॉफी लेने से जो टीम इंडिया ने इनकार किया। राहुल
2: जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये अनएक्सपेक्टेड था जो कल भारतीय महिला टीम ने किया, क्योंकि कुछ लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि विमेन्स टीम जो है वो ट्रॉफी ले ले मोहसिन नकवी से। लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कि जो पहलगाम अटैक हुए थे या फिर इंडियन मेंस टीम ने जब पिछले साल वो एशिया कप जीता था और टाइटल या ट्रॉफी नहीं ली थी, उसके बीच और आज क्या बदला है? तो ऐसा कुछ बदला नहीं है। दूसरी चीज, वहां पर मोहसिन नकवी जब मौजूद थे, ये मेरी बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सैकिया से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मोहसिन नकवी को बीसीसीआई ने ऑफर किया था कि जो डिप्टी चेयर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के खालिद अल जरूनी, उनको ट्रॉफी देने दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पर अड़े रहे। उसके बाद जो देवजीत सैकिया ने भी बताया, जो दूसरा ऑप्शन था, कि अब ऐसा होता है कि आपकी कोई फाइनलिस्ट टीम जो हो उसका उनके बोर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके ट्रॉफी दे दे, क्योंकि वहां पर देवजीत सैकिया बोर्ड सेक्रेटरी खुद मौजूद थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में बीसीसीआई की पोजीशन बन जाती है बोर्ड सेक्रेटरी की, उसके साथ बोर्ड्स वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी मौजूद थे, उनको ट्रॉफी देने के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा।
1: वही हुआ, वो खड़े खड़े देखते ही रह गए जब उनसे ट्रॉफी नहीं ली गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए। वहीं खेल के मैदान से भारत के लिए एक शानदार खबर भी आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया। फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। महिला एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रन से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।

0: दुबई में भारतीय बेटियों ने एशिया कप पर फिर अपना राज कायम किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 72 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की और 8वीं बार महिला एशिया कप अपने नाम किया। पहले बल्ले से हमला हुआ, शैफाली वर्मा ने 68 रन ठोके, स्मृति मंदाना ने 59 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर गेंदबाजों ने श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया। श्री चरणी ने 4 विकेट चटकाए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। श्रीलंका सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गया। 72 रन की जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चैंपियंस को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय बेटियों ने सिर्फ कप नहीं जीता, करोड़ों दिल जीत लिए। यानी दुबई में तिरंगा लहराया और करोड़ों भारतीयों के दिल गर्व से भर गए, क्योंकि जब भारतीय बेटियां मैदान पर उतरती हैं तो सिर्फ मैच नहीं जीतती, इतिहास लिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासत की, जहां पर मायावती की पार्टी में बवाल मचा हुआ है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद सामने आई और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद अपने ससुर के साथ मिलकर मायावती के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। मायावती ने आरोप लगाया है कि उनकी बीमारी की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का विरोधियों पर बड़ा एक्शन, वहीं मेरी बीमारी का भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, मायावती ने यह साफ कहा।
0: मायावती के मन में क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 27 के समर के पहले मायावती के अपने दल में ही बवाल मचा है। पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में शामिल किया, कुछ महीनों बाद उनके ससुर को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर आकाश आनंद को भी पार्टी के सभी पदों से बाहर कर दिया और अब मायावती ने भतीजे आकाश पर गंभीर आरोप लगाए।
2: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले 1-2 दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में न आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है।
0: तो मायावती आरोप लगा रही है कि आकाश आनंद और उनके ससुर मायावती की बीमारी की अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपस में ही ये सिर्फ फुट ऑफ वॉल क्यों है। बीजेपी कहती है कि अकेले बीएसपी ही नहीं, पूरा विपक्ष भ्रम में है। इधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि बीएसपी का कोर वोटर यानी दलित कब का बीएसपी से दूर जा चुका है, अब वो पीडीए का हिस्सा है। मौका अच्छा देख आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने चौका मारने की कोशिश की। उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया।
3: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं और जो महापुरुष विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए।
0: अब सवाल ये है कि बीएसपी की ये कैसी रणनीति है जिसमें पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
4: चुनौती चाहे विपक्ष से हो चाहे परिवार से हो, मायावती लड़ने के लिए तैयार हैं। काफी दिनों से चर्चा इस बात की थी कि क्या आकाश आनंद के रूप में मायावती के बाद एक उत्तराधिकारी तैनात हो रहा है, लेकिन आज मायावती ने उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: चलिए अब खबर मुंबई से, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मंत्री अमित शाह ने मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी में गणेश ज्ञानार्थी विशेष पांडुलिपि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
5: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान की, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर अगले 1 महीने तक चलेगा और ये कार्यक्रम देश के हर जिले और हर विधानसभा में मनाया भी जाएगा। उन्होंने ये तक कहा है कि पीएम मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी एनडीए के घटक दलों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी।
5: 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, पहले गुजरात में और बाद में देश भर में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और कई जगह एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह से वो जन्मदिन को मनाने का काम करते थे, परंतु इस वर्ष एक विशेष प्रयोजन है क्योंकि एक लंबी संगठनात्मक कारकीर्दी के बाद 60 अक्टूबर 2026 को मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 25 साल पूरा हो रहे हैं।
1: बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर 252 मदरसों में ताला लगा दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसे मदरसे जो बगैर मान्यता के चल रहे थे उन्हें बंद किया जाएगा, और इसी कड़ी में आज इन मदरसों पर ताले लगा दिए गए।
6: पश्चिम बंगाल में सरकार का फरमान, गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर लग गया ताला। बंद कर दिए गए 250 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने लगभग 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
7: एवं संग्रहित तथ्य सठीक जांचाइर जन्य राज्य स्तर থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল পাঠানো হয়েছিল। যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
6: सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन मदरसों को बंद करने का नोटिस मिला है उनमें से ज्यादातर खारजी मदरसे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि कोलकाता और 22 जिलों के सभी मदरसों से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, जिनके पास वैध मान्यता है वे चलते रहेंगे। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।
7: गुरुतर असंगति पावा गेछे आरो एमन 100 मद्रासा के कारण दर्शानोर नोटिस देवा हयेछे। बैध अनुमोदन हीन कर्तृत्व प्रमाण करते व्यर्थ हले यथाजथ प्रक्रियार माध्यमे एइसब प्रतिष्ठानके प्रतिष्ठानेर बिरुद्धे बन्धे पदक्षेप नेवा हबे।
6: अब बंगाल में मदरसों की राजनीति जोर पकड़ रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
1: अब बात कर लेते हैं गणपति उत्सव की। देश भर में आज से गणपति उत्सव की भव्य शुरुआत हो रही है। घर घर पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश विराजमान होंगे, और साथ ही गणपति बप्पा के स्वागत के लिए भक्तों में खास उत्साह भी नजर आ रहा है। बाजारों से लेकर पूजा पंडाल तक रौनक नजर आ रही है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गणेश उत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आपको ये बता दें कि अगले 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी, भक्ति और उत्सव का माहौल रहेगा। वहीं मुंबई में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि श्रद्धालु पूरे उत्साह और सुरक्षित माहौल में बप्पा का स्वागत कर सके। गणपति बप्पा मौर्या के जयकारों के साथ शुरू हो रहा है आस्था, उमंग और भक्ति का ये महापर्व। तो अलग अलग तस्वीरें अब देश से भी सामने आने लगी हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुस्तफा, अभी आप कहां पर मौजूद है? देखिए, जिस उत्सव का इंतजार किया जा रहा था उसकी अब शुरुआत हो चुकी है।
8: जी बिल्कुल, और आप भी जानती हैं कि मुंबई में गणेश उत्सव कितने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और घर घर पंडाल पंडाल बप्पा आते हैं। जो पूजा अर्चना है, स्थापना है, वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, पुलिस सिक्योरिटी जो है वो हर जगह तो दी गई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी अभी भी मुंबई दौरे पर हैं। कल मुंबई में थे, आज भी मुंबई में हैं। कई जगहों पर वो दर्शन लेने वाले हैं, जिसमें लालबाग का राजा, जिसमें वो हर साल आते हैं, वो इस साल भी तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में लालबाग का राजा के यहाँ पर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन लेंगे। और ये एक तरह से पूरे 10 दिन भक्ति लय भक्तिमय जो है मुंबई रहने वाली है। हर किसी जान पहचान के लोगों के घर जाना, वहां पर गणपति बप्पा के दर्शन लेना, ये सभी आप कह सकते हैं कि एक तरह से पर्व जो है शुरू हो गया है, और जो आप अंत होगा वो विसर्जन के साथ अगले दिन सुबह में होगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत खुशी का माहौल मुंबई करों के लिए, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर के लोगों के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये उम्मीद करेंगे कि जो भी दर्शन के लिए मुंबई आते हैं, लालबाग का राजा आते हैं, उनको बिना किसी तकलीफ के इस साल भी दर्शन मिल जाए। जी
1: मुस्तफा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आग की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। कहीं पर प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लगी है जिससे विकराल रूप ले लिया गया, तो वहीं हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने की वजह से डंपर धू-धू कर जल उठा। पश्चिम बंगाल में बिजली कंपनी के परिसर में भीषण आग लगी, जबकि गुजरात के वलसाड में चलती कार आग का गोला बन गई। राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में लगी आग ने प्लास्टिक के बड़े जखीरे को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद कई जगह पर आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिल्ली, राजस्थान, जहां पर भीषण आग की नजर तस्वीरें सामने आई। तो वहीं हैदराबाद के अमीरपेट में सामने आया एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हादसा ठीक पहले पूरा घटनाक्रम बयां कर रही है। आरटीसी बस और रैपिडो बाइक की टक्कर में 26 साल की युवती की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं इंडोनेशिया के जावा सागर में यात्री जहाज पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 129 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 108 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहाज में कुल 243 लोग सवार थे, जिनमें से 30 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे।
0: इंडोनेशिया के जावा सागर का ये मंजर दूर दूर तक सिर्फ पानी और इसी पानी के बीच पलटा हुआ है। यात्री जहाज ऊपर से, जहाज का बड़ा हिस्सा समुद्र में डूबा नजर आ रहा है। ये मंजर किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। रविवार को जहाज पलटने के इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और 129 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 108 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये जहाज सुराबाया से रवाना हुआ था, जिसमें कुल 243 लोग सवार थे, 30 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। लेकिन सफर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे में बदल गया और अब इन तस्वीरों के बीच समुद्र में जारी है एक कोशिश ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो वहीं पीएम मोदी ने एशिया कप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल है। एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला। ये जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। In association with
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का,
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हां ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: बिलोटे चार्ज हुआ यार,
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
8: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
8: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: लेके जन्म पहला पहला कदम।
13: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
3: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस. तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
5: अभी तो चार्ज हुआ यार।
6: ओले बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
8: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
8: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
20: देखे जन्म पहला पहला कदम।
21: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
22: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस. तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना.
5: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
6: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
7: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई.
8: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए.
9: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता.
10: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी.
5: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज.
11: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
12: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे. गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है. और क्या लोग हैं?

0: के बाद भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार, बीसीसीआई बोली पहलगाम हमले के बाद से ही हमारा स्टैंड साफ। यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 2029 तक बीजेपी शासन वाले सभी राज्यों में यूसीसी लागू करने का ऐलान, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प। ब्रिक्स समिट पर सियासी हल्ला बोल, दिल्ली डिक्लेरेशन पर विपक्ष के सवाल, चीन के सामने घुटने टेकने का आरोप, बीजेपी बोली पचा नहीं पा रहे हैं भारत की बढ़ती ताकत। पंजाब में बिजली संकट से बिगड़े हालात, औद्योगिक क्षेत्रों में 12 घंटे तक की पावर कट, मान सरकार पर हमलों की बौछार, आज पंजाब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देशभर में गणेश उत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजे गजानन, बाप्पा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर किया कब्जा। टीम इंडिया की रही शानदार शुरुआत, शेफाली वर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी खेली, स्मृति मंधाना ने 59 रन का दिया अहम योगदान। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रन का दिया था विशाल लक्ष्य, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में महज 111 रन बना पाई। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने भी बरपाया कहर, श्री चर्णी ने सर्वाधिक 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 के हार का भी बदला लिया, एशिया कप में सभी 5 जीत कर अजय और विजेता बने भारत। महिला एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को दी बधाई। भारत अफगानिस्तान T20I से पहले दिल्ली स्टेडियम में पहली बार गूंजा वंदे मातरम, 6 अंतरों के बाद बजा राष्ट्रगान जनगणमन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीरें। जीत के बाद भारतीय टीम का बड़ा फैसला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया गया इनकार। ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा, उन्होंने कहा कि एसीसी डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को तैयार थी टीम इंडिया, प्रस्ताव ठुकराया तो सेरेमनी का किया बहिष्कार। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराया, सानिका चंद्रकांता ने 17वें मिनट में किया मैच का एकमात्र गोल। हॉकी इंडिया ने की विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड की घोषणा, स्पोर्ट्स स्टाफ को 1 लाख से ज्यादा रुपए नकद पुरस्कार देने का ऐलान। जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में एक और कामयाबी, भारत लगातार 4वीं बार बना चैंपियन, साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की की। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, पीएम मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बेटन और बोले की टेक्नोलॉजी और मिनरल्स को हथियार बनाना दुनिया की तरक्की के लिए गलत। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर गरमाई सियासत, जयराम रमेश का आरोप, भारत चीन रिश्तों में कैलिब्रेटेड कैपिटुलेशन, गलवान और लद्दाख पर सरकार से मांगा जवाब। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, पाकिस्तान को चीन के समर्थन और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, सरकार से भारत चीन रिश्तों पर स्पष्ट जवाब की मांग की। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विशेष मतभेद, और वहीं राशिद अलवी ने कूटनीतिक जीत मानने से किया इनकार, तो मायावती ने बताया उपलब्धि। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष की अलग अलग राय, मायावती ने बताया कूटनीतिक उपलब्धि, तो रामगोपाल यादव ने कहा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ब्रिक्स डिनर के शाकाहारी मेन्यू पर राहुल गांधी का तंज। अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का लक्ष्य, बोले इंडिया फर्स्ट हमारी नीति का आधार। अमित शाह बोले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश, पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाई। भाषा विवाद पर अमित शाह बोले मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति, अवैध घुसपैठियों की पहचान पर कार्रवाई का दिया दावा। सीएम मोहन यादव का नेहरू गांधी परिवार पर तंज, बोले समुद्र नहीं होता तो अरब देशों तक पहुंच जाते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की किस्त जारी, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए। रायबरेली में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा रहेगा। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ की, बोले एक जिला एक माफिया से एक जिला एक उत्पाद तक बिजली, यूपी की तस्वीर। वहीं राजनाथ सिंह का दावा, योगी सरकार में बदली उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर, पहले सड़कों और सुरक्षा की स्थिति खराब थी। मायावती ने आकाश आनंद पर स्थिति की साफ बोली, अभी भी अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में, वहीं बीएसपी संगठन के बड़े बदलाव किए। मायावती ने बीमारी के अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और लगातार काम कर रही हूं। पंजाब में बिजली संकट गहराया, उद्योगों में 12 से 14 घंटे तक कटौती, बिजली की मांग 16,519 मेगावाट पहुंची। पंजाब में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पटियाला में पीएसपीसीएल दफ्तर के बाहर राजा वर्डिंग के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। किसानों का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 5 दिन का प्रदर्शन, आज से मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर के घरों के बाहर होगा आंदोलन। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले एसएडी की तैयारी तेज, सुखबीर बादल ने 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई। पंजाब के बिजली संकट पर केंद्र का दावा, कोयले की कमी नहीं, राज्य को पर्याप्त कोयला दिया जा रहा। नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, पैदल मार्च से करीब आधे घंटे जाम लगा, पुलिस ने संभाली स्थिति। तेलंगाना के विकाराबाद में वेतन के लिए अनोखा प्रदर्शन, नगर पालिका कर्मियों ने एक पैर पर खड़े होकर जताया विरोध, 10 दिन से आंदोलन जारी। रायपुर के सदर बाजार में जर्जर इमारतों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है, ध्वस्तीकरण अभियान। टिहरी में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे 19 बच्चे, मरम्मत के अभाव में 30 साल पुराने भवन में दरारें पड़ गई हैं और छत का प्लास्टर उखड़ चुका है, डीएम से मरम्मत की मांग। दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, कैमरों से लेस होंगे सेंटर्स, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच होगी हाईटेक। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल। आज सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बारिश के बीच दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक, कल शाम 6 बजे 86 दर्ज किया गया राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचक। नवसारी में बारिश के चलते अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर पहुंची, तड़ेश्वर मंदिर जलमग्न हुआ। चिखली की कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मुंबई में कई इलाकों में जोरदार बारिश, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास भरा पानी। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अभी ऊपर, एसडीआरएफ की टीम ने 300 लोगों को रेस्क्यू किया। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, वहीं कई इलाकों में बाढ़ की आशंका। जम्मू कश्मीर में मौसम सुहाना हुआ, डल झील में पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। श्रीनगर में अचानक से बिगड़ा मौसम का हाल, डल झील में तेज हवाओं के बीच नाव पर फंसे पर्यटक, एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: महिला एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, फाइनल जीतने के

गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी। आज धूमधाम से होगी गजानन की स्थापना। 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। महाराष्ट्र के ठाणे में रेत पर सजे बापा के 5 रुपयों के भव्य दर्शन। आस्था और कला का अद्भुत संगम। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारी। जबरदस्त रोशनी से सजा बापा का मंदिर। तमिलनाडु में भी गणेश उत्सव की धूम। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शिवगंगा जिले के विनयागर मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। पूर्वी दिल्ली के दलूपुरा इलाके में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कोटपुतली में 11,000 किलोवाट बिजली लाइन की चपेट में आया डंपर। धू धू कर जला। चालक ने कूद कर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में प्राइवेट बिजली बनाने और सप्लाई करने वाले कंपनी में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड में कार में अचानक से लगी भीषण आग। बाल बाल बचा दंपति। बरनाला में पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई। वहीं जांच के लिए टीमें गठित। गुजरात के राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में लगी भीषण आग। प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक हुआ। 2 से 3 घंटे में पाया गया काबू। औरैया में मिठाई दुकान के बेसमेंट में फटा गैस सिलेंडर। धमाके में 4 लोग घायल। बाराबंकी थाने में 2 सिपाहियों में मारपीट हुई। एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा। दोनों किए गए लाइन हासिल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रेम प्रसंग के विवाद में प्रेमिका की गला काटकर हत्या। प्लास्टिक में शव लपेट कर बाइक से ठिकाने लगाने निकला युवक नाका चेकिंग में पकड़ा गया। भावनगर में दोस्तों ने जहरीली शराब पिलाकर की युवक की हत्या। 13 मौत वाले नकली शराब कांड की आड़ में साजिश को रचा गया। 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने पर विवाद। स्कूल शिक्षिका से जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हैदराबाद में जल बोर्ड मीटर रीडर की हार्ट अटैक से मौत हुई। वहीं साथी आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन। पुलिस ने झड़पकार। बिहार के गोपालगंज में उत्पादन विभाग की शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गंडक नदी में चेकिंग के दौरान 574 लीटर शराब बरामद। नाव और वाहन जब्त हुए। 1 तस्कर गिरफ्तार। लुधियाना में 2 गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। दोनों तरफ से हुई 25 राउंड की फायरिंग। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में आपसी विवाद के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर शव को फेंका गया। पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लिया। भोपाल में पुरानी रंजिश में मंदिर में महिला महंत के साथ मारपीट। आरोपी ने वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। फरीदाबाद में तेज रफ्तार थार ने कई बाइक को मारी भीषण टक्कर। 1 की मौत। हादसे में परिवार ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। अजमेर में चैन स्नैचिंग की कोशिश में रिटायर्ड डॉक्टर दंपति पर हमला। बदमाश ने दिखाई नकली पिस्तौल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चित्तौड़गढ़ में आवारा सांड का आतंक। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज में बुजुर्ग महिला पर हमला करते सांड कैद। अहमदाबाद में पति के सामने तेज रफ्तार बाइक ने नवविवाहिता की जान ली। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। बाइक छोड़कर आरोपी मौके से फरार। गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज हुआ। एआर रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। राम नाम की भक्ति में रंगेगा रामायण का पहला गाना। जय जय राम के जरिए फिल्म की भव्यता की झलक मिलने की उम्मीद। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की बम्पर कमाई। रविवार को 22.5 करोड़ का नेट कलेक्शन। 38 दिन में ग्रॉस कलेक्शन 253.55 करोड़ तक पहुंचा। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बना रही है कमाई के नए रिकॉर्ड्स। मिर्जापुर द मूवी और हैवान को भी कमाई में मात दी। 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी का जलवा। संडे को 15 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 215 करोड़ के पार पहुंचा। इंडोनेशिया में बड़ा हादसा। जावा सागर में यात्री जहाज पलटा। 129 लोग लापता। 6 की मौत। 108 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा में रूस का भीषण हमला। लॉजिस्टिक्स गोदाम में बनाया गया निशाना। हमले के बाद उछा धुएं का गुबार। अक्टूबर में अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच हो सकती है त्रिपक्षीय वार्ता। यूक्रेन के एक सीनियर अधिकारी ने दी जानकारी। ड्रोन की अफवाह की वजह से लिथुआनिया के विनियस एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। 38 मिनट तक बंद रहा एयरपोर्ट। तो वहीं होर्मूज के पास ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला। 1 की मौत। 3 लोग हुए घायल। गाजा सिटी में इजरायली सेना का भीषण हमला। एयर स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत हुई। कई घायल। युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना कर रही है बमबारी। इंडोनेशिया में 243 यात्रियों को लेकर जा रहा यात्री जहाज डूबा। हादसे में 1 की मौत। 102 लोगों को बचाया गया। एंथ्रोपिक से इस्तीफे के बाद पूर्व रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने एआई को लेकर चेतावनी दी। कहा एआई मानवता के लिए खतरा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

लाभ के योग बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रहेगी, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, करियर के लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा।

चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

हिंदुस्तान की धरती पर दुनिया की 45 फीसदी आबादी और 35 फीसदी की जीडीपी वाली ताकतों ने नया प्राण लिया है। ग्यारह सदस्य देश, 12 मेहमान देश, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सैकड़ों प्रतिनिधियों के बीच 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में 3 दिन के मंथन के बाद जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें 5 बड़ी बातें थी। पहली घोषणा आतंक के खिलाफ थी जिसमें पहलगाम का जिक्र हुआ, टेरर फंडिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी। दूसरी बड़ी बात एक तरफा युद्ध या सैन्य कार्रवाई को लेकर बनी जिसमें जंग के बीच कमर्शियल शिपिंग रूट्स को लेकर शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने की बात कही गई। तीसरी बड़ी बात ग्लोबल वैल्यू चेन 2026-30 के तहत बाजारों को एक दूसरे के लिए खोलने और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इंटरनेशनल व्यापार में बिना सोचे समझे एक तरफा टैरिफ लगाने को लेकर चिंता भी जताई गई। चौथी बात पर्यावरण जैसी चुनौतियों पर नजर रखने के लिए ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन सहयोग समझौते को मंजूरी दी गई। और पांचवी यूएनएससी की संरचना में सुधार की मांग को दोहराया गया, ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई। भारत को क्या मिला? ब्रिक्स के मंच पर हुए मंथन और सहमति के दस्तावेजों को देखा जाए तो साझा घोषणा पत्र को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है जिसमें एक हिस्सा निंदा का है। इसमें आतंकवाद, एक तरफा जंग या सैन्य कार्रवाई और एक तरफा टैरिफ जैसे मुद्दे पर निंदा आलोचना की गई। दूसरा हिस्सा मांग का था जिसमें यूएनएससी में सुधार जैसी बातें कही गई। और तीसरा हिस्सा ठोस योजनाओं का था जिसमें जीवीसी प्लान से लेकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तक की योजना बनी है। ग्लोबल वैल्यू चेन का प्लान, ब्रिक्स 2026 की सबसे ठोस कामयाबियों में ग्लोबल वैल्यू चेन को लेकर बना 4 साल का एक्शन प्लान है जिसमें ब्रिक्स टेक्निकल काउंसिल दूसरे देशों की सीमा पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की अड़चनों को खत्म करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एक सीमा पार बिलिंग सिस्टम चालू किया जा रहा है। इसके तहत ब्रिक्स पे और रुपया रूबल या रुपया युआन दिरहम में व्यापार आसान होगा और ट्रांजैक्शन फीस घटेगी। ब्रिक्स की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन भारत के लिए कुछ जरूरी कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत के रास्ते खोलेगा तो कई बाजारों तक पहुंच भी देगा। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट गेटवे की तैयारी से भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के साथ जोड़ने जा रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ भारत का सालाना व्यापार 200 अरब डॉलर से अधिक का है। स्थानीय मुद्राओं रुपया दिरहम रुपया रूबल में व्यापार होने और यूपीआई के एकीकरण से डॉलर कन्वर्ट करने की ट्रांजैक्शन फीस में 3-5% की सीधी बचत होगी। भारतीय कंपनियों को सालाना 4-6 अरब डॉलर की बचत केवल करेंसी एक्सचेंज फीस में होगी। इससे भारत के 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई को ब्राजील, रूस या दक्षिण अफ्रीका में माल बेचने पर भुगतान के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे सीमा पार व्यापार में लगने वाला समय 70% तक कम हो जाएगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

महिला एशिया कप में पाकिस्तान की बेइज्जती, फाइनल जीतने पर भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोली, पहलगाम मामले के बाद से ही हमारा स्टैंड साफ है। ब्रिक्स में खान पान पर और बड़ा घमासान, राहुल गांधी के पोस्ट पर तेज हुई तनातनी। विपक्ष का खान पान थोपने का आरोप, विपक्ष बोला ब्रिक्स की सफलता पचा नहीं पा रहे। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी, सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। पंजाब में बिजली संकट से बिगड़े हालात, औद्योगिक क्षेत्रों में 12 घंटे तक की पावर कट, मान सरकार पर हमलों की बौछार, आज पंजाब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देश भर में गणेशोत्सव की भव्य शुरुआत, घर घर विराजे गजानन, बप्पा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, मुंबई पुलिस का सुरक्षा को लेकर मेगा बंदोबस्त।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या पाकिस्तान को अपनी फजीहत कराने में मजा आता है? भारत के साफ बयान के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी देने क्यों आ गए मोहसिन नकवी? पूरी खबर डिटेल में आपसे कुछ ही देर बाद। और पंजाब में बिजली को लेकर हाहाकार, 12 से 14 घंटे बिजली कट, पंजाब के बिजली संकट पर भी होगी बात इसी बुलेटिन में। गुजरात की नवसारी से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां मूसलाधार बारिश से उफान पर आ गई अंबिका और कावेरी नदी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि क्रिकेट के जगत से है। अहम बात यह है कि चर्चा क्रिकेट की नहीं बल्कि इससे जुड़ी पॉलिटिक्स की हो रही है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने विमेंस T20 एशिया कप जीत लिया है, लेकिन भारतीय महिला टीम ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पोडियम पर मोहसिन नकवी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का इंतजार करते रहे, लेकिन हरमनप्रीत नहीं आई। पिछले साल भारत की पुरुष टीम ने भी एशिया कप जीतने पर मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ का सबूत मिलने के बाद भारत ने यह कदम उठाया था। कल फाइनल से पहले BCCI ने साफ कर दिया कि टीम इंडिया अगर जीती तो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेने आएगी। इसके बावजूद नकवी ट्रॉफी देने आ गए और फिर बात टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो विमेंस कप जीतने के बावजूद नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई।

0: पाकिस्तान की फजीहत की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विजेता भारत की महिला क्रिकेट टीम को T20 वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी देने का मंच सजा था। एशियाई क्रिकेट परिषद के पदाधिकारियों के साथ ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मंच पर मौजूद हैं। नकवी विजेता टीम को ट्रॉफी देने पहुंचे थे, लेकिन भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने नहीं आई। एशिया कप के मंच पर दुबई में लगातार दूसरे साल पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की फजीहत हुई। तस्वीर में नकवी के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। दोनों हाथ पीछे किए नकवी संभवतः भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे हैं, शायद सोच रहे हों कि काश उन्हें ट्रॉफी देने का सम्मान मिल जाए। दरअसल इस फजीहत और बेइज्जती के लिए मोहसिन नकवी खुद ही जिम्मेदार हैं। फाइनल शुरू होने से पहले ही BCCI ने साफ कर दिया था कि चैंपियन बनने पर भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। नकवी की जगह एशियाई क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष खालिद अल ज़रूनी ट्रॉफी दे। BCCI के साफ कहने के बावजूद नकवी ट्रॉफी देने आ गए। ऐसे में भारतीय टीम के आगे नकवी का बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
1: हम लोग का कोशिश था कि डिप्टी चेयरमैन, हम लोग नहीं बोल रहे कि BCCI चैंपियन है तो BCCI का कोई करियर का टास्क का हाथ से ट्रॉफी दे दीजिए। हम लोग का यही कोशिश था कि जो डिप्टी चेयरमैन है खालिद भाई, उनका हाथ से ट्रॉफी दे दे, लेकिन वो हमारा बिनती कबूल नहीं किया है। वो लोग ने तो हमारा कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रॉफी जीतता है। आप भी अभी बोल रहे हैं भारत चैंपियन हुआ, सारे विश्व ने टेलीविजन में देखा है, मेंस में भी एशिया कप में मेंस में इंडिया चैंपियन हुआ था, आज वुमेन्स में भी चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना वाला है, स्कोर बोर्ड में काफी स्कोर क्लियरली लिखा हुआ है, सबने टेलीविजन में देखा है कि इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया है 72 रन से। सो इससे बड़ा खुशियां का मौका हमारा नहीं हो सकता है।
0: ये लगातार दूसरा मौका है जब नकवी के हाथों भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले पिछले साल T20 एशिया कप फाइनल जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली मेंस क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
2: पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है?
3: ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी।
2: अच्छा मुझे एक चीज बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज बताएं, जब वो सब चीजें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नजर आ रहे थे।
3: प्लेयर्स रिलैक्स ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली, पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया।
0: दरअसल पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक बाद मेंस एशिया कप खेला गया था। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ का सबूत मिला। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। खास बात यह है कि ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में भारत का साफ मानना है कि जो देश हमारे खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हो उसके मंत्री से भला भारतीय टीम कैसे ट्रॉफी ले सकती है। दिल्ली से राहुल रावत और नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: राहुल रावत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, जब BCCI ने पहले ही साफ कर दिया था कि नकवी के हाथ ट्रॉफी नहीं लेंगी महिला टीम, फिर भी नकवी वहां पहुंच गए, वो क्या साबित करता है? जानबूझकर नकवी ऐसी हरकत कर रहे हैं, आखिर पाकिस्तान संदेश क्या देना चाहता है इसके जरिए?
5: नेहा, ये बात तो तय है जैसा आपने कहा कि वो ये एक ईगो की लड़ाई हो चुकी है। अब स्पेशली अगर आप मोहसिन नकवी को देखें, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है और साथ ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब आप लगा लीजिए वो गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के ए, और उनको पहले ही ये हिदायत दे दी गई थी, बता दिया गया था कि इंडियन टीम आपसे ट्रॉफी नहीं लेगी। इंडियन BCCI ने ये कहा कि डेप्यूटी चेयर यानी खालिद अल ज़रूनी जो है वो दे दें, या फिर जो पहले तक चलता आ रहा है, जब जयशाह ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, आपको याद होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एक फाइनल हुआ था जिसमें श्रीलंका जयशाह बतौर ACC चेयरमैन, उन्होंने तब भी ये ट्रॉफी नहीं दी थी और ये एक अनरिटन रूल कह लीजिए या फिर एक नॉर्म सा बनता आ गया था। लेकिन मोहसिन नकवी ने मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने पिछले साल जो हुआ था उसी को दोहराया। और नेहा, एक चीज यहाँ पर ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि अगर हम कोई से सोच रहा था कि इंडिया इस बार ट्रॉफी ले लेगा या फिर मोहसिन नकवी या कोई और सोच रहा होगा, तो आप मुझे बताइए कि पिछले एशिया कप और इस एशिया कप के दरमियान ऐसा बेहतर क्या हुआ? आपको याद होगा अभी इसके बीच में इंडिया ने एक T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था जिस पर पाकिस्तान और मोहसिन नकवी स्पेशली इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी, हर मुमकिन कोशिश करी कि इंडिया का वो वर्ल्ड कप किसी तरह साबोटाज हो जाए। इन्होंने बांग्लादेश को इंस्टिगेट किया कि भाई आप मत आइए, आप खेलियो मत, हम आपके साथ हैं, और बांग्लादेश का हुआ क्या, बांग्लादेश ने टूर्नामेंट अपना छोड़ दिया, नुकसान उनका हुआ, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, इन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश करी है, और यहां पर भी वही चीज दोहराने की कोशिश करी। खैर, इंडिया ने कहा है कि ट्रॉफी वापस आएगी। पर
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका। इस पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता देवजीत सेकिया ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया से बात की।
5: एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से, वजह बता सकते हैं सर?
1: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहां मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूं। हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है, उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया, और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा, वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा। वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई, वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था। सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है। सो वो लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है, उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है, हमारा नेशन इज फर्स्ट। सो नेशन का ये मानना है कि हम ऐसा एक देश का जो नेतृत्व कर रहा है हमारा देश का खिलाफ युद्ध में, उनसे हमको हम लोग कैसे ट्रॉफी ले सकता है। सो हम लोग इसीलिए मेंस का टाइम पे भी जब एशिया कप का चैंपियन हुआ हम ट्रॉफी नहीं लिया, और आज महिला दल भी चैंपियन हुआ है, हम ट्रॉफी नहीं ले सकता हूं उनका हाथ से। हम लोग का कोशिश था कि डिप्टी चेयरमैन, हम लोग नहीं बोल रहे कि बीसीसीआई चैंपियन है तो बीसीसीआई का कोई करियर का टास्क का हाथ से ट्रॉफी दे दीजिए। हम लोग का यही कोशिश था कि जो डिप्टी चेयरमैन है खालिद भाई, उनका हाथ से ट्रॉफी दे दे, लेकिन वो हमारा बिनती कबूल नहीं किया है वो लोग ने। तो हमारा कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रॉफी जीतता है। आप भी अभी बोल रहे हैं भारत चैंपियन हुआ, सारे विश्व ने टेलीविजन में देखा है, मेंस में भी एशिया कप में मेंस में इंडिया चैंपियन हुआ था, आज वुमेन्स में भी चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्कोरबोर्ड में काफी स्कोर क्लियरली लिखा हुआ है, सबने टेलीविजन में देखा है कि इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया है 72 रन से। सो इससे बड़ा खुशियां का मौका हमारा नहीं हो सकता है। अभी हमको पूरा फोकस ये ट्रॉफी लेना नहीं लेना से नहीं है, हमारा फोकस है एशियन गेम्स में हमको गोल्ड मेडल लाना है, उसी में हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
4: विवादों से निकलकर अब असली खबर, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कल दुबई में श्रीलंका को 72 रन से हराकर विमेन्स टी20 एशिया कप अपने नाम कर लिया। ये आठवीं बार है जब भारतीय महिलाओं ने टी20 एशिया कप जीता है। कल के फाइनल में पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 183 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 111 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से ओपनर स्मृति मंदाना ने 59 और शिफाली वर्मा ने 68 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में श्री चरणी ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। तो शिफाली वर्मा ने 68 रन बनाए 39 गेंद में, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे। वहीं दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए। ये अहम योगदान महिला टीम का इस जीत की ओर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला टीम को जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट के लिए यह गर्व का पल है। एशिया कप जीते पर भारतीय महिला टीम को बधाई, प्रधानमंत्री का यह ट्वीट। पूरे टूर्नामेंट में उनका आत्मविश्वास, स्थायित्व और उल्लेखनीय जज्बा देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने सराहना की है भारतीय महिला टीम की और कहा है कि ये जीत देश भर के लाखों युवाओं को ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं अमित शाह ने भी बधाई दी है, उन्होंने कहा कि आठवीं बार महिला एशिया कप खिताब जीतने पर हमारी चैंपियंस टीम को बहुत बहुत बधाई। कल एशिया कप हॉकी में भारत की जीत का डंका बजा। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जूनियर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर लगातार चौथी बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली है। और अब बात राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। चुनावी नतीजों में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस भी ठीक ठाक प्रदर्शन करती दिख रही है। राजस्थान नगर निकाय के 309 सीटों पर बीजेपी ने अब तक 163 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस भी 103 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। 43 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत दिखाई दे रही है। 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सुबह से ही मतगणना जारी थी जिसके नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। निकाय चुनाव राजस्थान का 309 सीटों पर हुआ जिसमें 163 सीटों पर बीजेपी की जीत। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, जैसा की उम्मीद की जा रही थी वैसे ही नतीजे आ रहे हैं। शरद, जैसा की उम्मीद की जा रही थी वैसे ही नतीजे आ रहे हैं।
6: देखिए, अभी शुरुआती नतीजे हैं नेहा, वार्ड छोटे होते हैं इसलिए छोटे छोटे परिणाम आ रहे हैं, मगर देखिए ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अभी परिणाम आए हैं उसमें से 223 पर बीजेपी आगे है, 137 पर कांग्रेस आगे हैं, मगर 65 सीटों पर निर्दलीय भी जीते हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी से जिनका मोह भंग हुआ है वो भी अच्छी खासी संख्या में जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में तो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, मगर जोधपुर जो उनका गढ़ है जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। ये एक चिंता का विषय है। जहां पर 36 साल से अजमेर में बीजेपी का वोट बनता रहा है वहां पर भी शुरुआती नतीजों में अजमेर में कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है। तो बड़े नगर निगम में कांग्रेस ने कुछ डेंट तो किए हैं, मगर कुल सीटों में अगर जहां रुझान देखे वहां पर बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। नगर परिषद में, नगर पालिका में कई जगह के परिणाम साफ भी हो गए हैं, जैसे पुष्कर के हैं, भिवाड़ी के हैं, बांसवाड़ा के हैं, नगर परिषद के, वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, मगर कई जगहों पर कांग्रेस जो है उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। ये भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कितना एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस क्या विपक्ष का रोल निभा पाई है, ये सारा देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उस लिहाज से देखें तो बड़े शहरों में अगर बीजेपी कमजोर होती है, जोधपुर, अजमेर शहरों में, बीकानेर में जहां उनका गढ़ रहा है, तो ये बीजेपी के लिए धक्का हो सकता है। मगर कुल सीटों में अभी तक के जो नतीजे आए हैं, छोटे वार्ड होते हैं उसमें जल्दी नतीजे आ जाते हैं, उसमें बीजेपी ने करीब करीब अब 100 सीटों से आगे बनी हुई है। हालांकि देखिए जिसकी सत्ता रहती है वो कम से कम क्लीन स्वीप करता है नगर निकाय चुनाव में, अगर कांग्रेस अपना इज्जत बचा लेती है तो ये भी बड़ी बात है, और कई जगह बोर्ड बना लेती है तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। निर्दलीय बड़ी संख्या में चुनाव में जीत रहे हैं, तो क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों से भी जनता का मोह भंग हो रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत रहे हैं?
4: शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात ब्रिक्स सम्मेलन पर जारी सियासत की, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन की उपलब्धियों से लेकर खान पान तक विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूरी खबर डिटेल में देखिये।

0: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में दो दिन के ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया ने मोदी सरकार का कूटनीतिक दमखम देखा। एक साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर बताती है कि किस तरह भारत सबको साथ लेकर चलने में कामयाब रहा। इसकी तस्दीक ब्रिक्स के साझा बयान से भी हो गई, जिसके जारी होने पर ही संशय जताया जा रहा था। ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न हो चुका है, मेहमान अपने वतन लौट चुके हैं, लेकिन अब भारत में इस पर सियासत की एंट्री हो गई है।
2: जिस तरह से चाइना ने अरुणाचल हो, लद्दाख हो, इस पे जिस तरह से कब्जा करके रखा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने दो टुक बोलकर वहां से चाइना को हटाना चाहिए, वही ये समिट का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए देश की जनता को एक बड़ी परेशानी इस तरह से कि चाइना से भी सरेंडर नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया क्या, ये बात आज सामने आ रही है।
1: नाना पटोले को आपने सुना, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को सुनिए।
3: जो थोड़े से जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहे हैं और जिसकी ज्यादा चिंता हम सबको है, उसमें टेररिज्म है, उसमें जो खाड़ी का युद्ध है उसके बारे में है, ईरान और अमेरिका के संबंध के बारे में है, वही यूरोप में जो हुआ उसका तो कोई उल्लेख नहीं हुआ है, यूक्रेन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एक बैकग्राउंड का मामला वो भी रहा है। तो इन सब में अब आगे क्या होगा उससे पता लगेगा कि ठोस कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
1: विपक्ष हमलावर है, सम्मेलन की सफलता पर सवाल उठ रहा है। उधर बीजेपी सवाल कर रही है कि भारत के सम्मान की घड़ी में भी विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है।
4: भारत को मिल रहे सम्मान का वो स्वागत क्यों नहीं कर सकते, समस्या ये है। क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड अंकल बने हुए घूम रहे हैं? भारत को सम्मान मिल रहा है, पूरी दुनिया आज दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। भारत ने 11 ब्रिक्स देश सदस्य और टोटल पार्टनर देश अगर मिला लें तो 21 टोटल कंट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नंबर 2 नंबर 3 आज दिल्ली में है, बायलेटरल डिस्कशंस हो रहे हैं, किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है, उनके इश्यूज भारत उठा रहा है, इन सारी चीजों का स्वागत कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती।
1: सम्मेलन की कूटनीतिक कामयाबी ही नहीं बल्कि ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भोज के मेन्यू पर भी सियासत शुरू हो गई है। भोज में शाकाहारी खाना परोसने पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में 80% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। भारत का नॉनवेज खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, दूसरे भारतीयों पर अपनी खान पान की पसंद थोपने की बीजेपी की आदत पहले से ही बहुत समस्या वाली रही है, अब उन्होंने दुनिया भर से आए मेहमानों पर भी अपनी पसंद थोपकर इसे और आगे बढ़ा दिया है। भारत एक समृद्ध और विविध देश है जहां कई तरह के व्यंजन मिलते हैं। यहां मांसाहारी भोजन के ऐसे बेहतरीन व्यंजन भी हैं जिनका स्वाद दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। तो फिर मोदी सरकार ने भारत की संस्कृति के इस पहलू को छिपाने का फैसला क्यों किया? क्या उसे उस विविधता में शर्म आती है जो भारत की असली पहचान है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू पर भी राजनीति कर रही है। हमारे मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी भोजन का आनंद लिया जो स्वाद और पोषण से भरपूर था और जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं की झलक थी। आज तक ब्यूरो।
5: ब्रिक्स नेताओं को दी गई दावत के मेन्यू पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया, पलटवार किया। देखिए
6: वो क्या भारत के चीफ डाइटरी स्टैटिस्टिशियन बन चुके हैं? पूरी दुनिया में आज ब्रिक्स की बात हो रही है। पूरी दुनिया में ब्रिक्स में किस तरह से पाकिस्तान को एक तमाचा पड़ा है उसके बारे में चर्चा हो रही है, किस तरह से ब्रिक्स नेशन ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया उसकी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी यहाँ पे डाइटरी स्पेशलिस्ट बने हुए घूम रहे हैं। राहुल जी कभी तो अपने पद की गरिमा के अनुसार बात कीजिए। क्या आप शाकाहार के विरोध में है क्या राहुल गांधी जी, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए।
5: और अब बात भारत चीन सीमा पर तैनाती को लेकर खबर आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की सार रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर चीन ने सेना की तैनाती में कमी की है। 2025 में उत्तरी सीमाओं पर चीनी पीएलए की तैनाती में अब कमी देखी जा रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी एलएसी सेक्टर्स में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत और मुस्तैद है, वो किसी भी अचानक पैदा हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, तैनाती में कमी चीन की ओर से किस वजह से है?
7: देखिए, लगातार भारत और चीन के बीच में तनाव को कम करने के लिए प्रयास चल रहे हैं नेहा, और 2024 से ही प्रधानमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति से, और कल भी इसी तरह की एक मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग के साथ। और आप जमीन पर देखिए कि गलवान के बाद जो तनाव बहुत बढ़ गया था उसको किस तरह से कूटनीतिक और अपनी तैनाती के साथ साथ हर तरफ प्रयास करते हुए भारत ने बेहतर बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये एक रिपोर्ट आई है रक्षा मंत्रालय की 2025 और 26 की, जिसमें ये साफ कहा गया है कि चीन की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो कम हुए हैं और अब वो 10 कंबाइंड आर्म्स के साथ वहाँ पर तैनात है, जबकि हमारी जो तैनाती

0: के तौर पर मायावती के भतीजे पर डोरे डाल रहे हैं। आकाश आनंद चुनावी राजनीति में अभी अनटेस्टेड हैं, लेकिन मायावती का भतीजा होने के नाते यूपी के दलित समाज में उनकी पहुंच है। आज तक ब्यूरो।
1: रबात गणपति उत्सव की देश भर में आज से ही गणपति उत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। घर घर और पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश विराजमान हो गए हैं। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। बाजारों से लेकर पूजा पंडालों तक रौनक दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में कई हिस्सों में गणेश उत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। अगले 10 दिन तक पूजा अर्चना, भक्ति और उत्सव का माहौल रहेगा। मुंबई में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु पूरे उत्साह और सुरक्षित माहौल में बप्पा का स्वागत कर सकें। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ आस्था, उमंग और भक्ति का ये महापर्व शुरू हो चुका है। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता। किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार। महिला एशिया कप में पाकिस्तान की बेइज्जती। फाइनल जीतने पर भारत के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोली, पहलगाम हमले के बाद से हमारा स्टैंड साफ। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत। कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी। आज जेडीयू की दो टूक, बिहार में बीजेपी ने नहीं एनडीए का शासन। ब्रिक्स में खान पान में बड़ा घमासान। राहुल गांधी के पोस्ट पर तेज सनातनी। विपक्ष का खान पान थोपने का आरोप। बीजेपी बोली, ब्रिक्स की सफलता पचा नहीं पा रहे।

100 से ज्यादा मरर से चलने का खुलासा। और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। पूर्वी दिल्ली के दलूपुरा इलाके में प्लाईवुड गोदाम में आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। कोटपुतली में 11,000 किलोवाट बिजली लाइन की चपेट में आया डंपर, दूध कर जला, चालक ने कूद कर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में प्राइवेट बिजली बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड में कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचा दंपत्ति। बरनाला में पंजाबी गायक गुलाब सिद्ध के घर के बाहर फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने 7 से 8 राउंड चलाई गोलियां, जांच के लिए टीम गठित। महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर किया कब्जा। टीम इंडिया की शानदार शुरुआत, शिफाली वर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी खेली, स्मृति बंधाना ने 59 रन का दिया अहम योगदान। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रन का दिया था विशाल लक्ष्य, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने बरपाया कहर, श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया की शानदार जीत के साथ 2024 की हार का लिया बदला, एशिया कप में सभी 5 जीतकर अजय और विजेता बना भारत। महिला एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को दी बधाई। भारत अफगानिस्तान T20 से पहले दिल्ली स्टेडियम में पहली बार गूंजा वंदे मातरम, 6 अंतरों के बाद बजा राष्ट्रगान जनगणमन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीरें। जीत के बाद भारतीय

टीम का बड़ा फैसला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इनकार। ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया का बड़ा खुलासा, कहा एसीसी डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को तैयार थी टीम इंडिया, प्रस्ताव ठुकराया तो सेरेमनी का किया बहिष्कार। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप ने से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराया, सानिका चंद्रकांत ने 17वें मिनट में किया मैच का एकमात्र गोल। हॉकी इंडिया ने अविजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड की घोषणा की, सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने का ऐलान। जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में एक और कामयाबी, भारत लगातार चौथी बार बना चैंपियन, साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, FIAH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की की। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, पीएम मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बेटन, बोले टेक्नोलॉजी और मिनरल्स को हथियार बनाना दुनिया की तरक्की के लिए गलत है। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर गरमाई से आसर, जयराम रमेश का आरोप, भारत चीन रिश्तों को कैलिब्रेटेड कैपिटलेशन, गलवान और लद्दाख पर सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश पर चीन के दावे, पाकिस्तान को चीन के समर्थन और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, सरकार से भारत चीन रिश्ते पर स्पष्ट जवाब की मांग। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष में मतभेद, राशिद अल्वी ने कूटनीतिक जीत मानने से किया इनकार, तो मायावती ने बताया उपलब्धि। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष की अलग अलग राय, मायावती ने बताया कूटनीतिक उपलब्धि, तो रामगोपाल यादव ने कहा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ब्रिक्स डिनर के शाकाहारी मेन्यू पर राहुल गांधी का तंज, बोले 80% भारतीय नॉनवेज। अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का लक्ष्य, बोले इंडिया फर्स्ट हमारी नीति का आधार। अमित शाह बोले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश है, पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाई। भाषा विवाद पर अमित शाह बोले मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति, अवैध घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई का दावा। सीएम मोहन यादव का नेहरू गांधी परिवार पर तंज, बोले समुद्र नहीं होता तो अरब देशों तक पहुंच जाते। मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना की किश्तदारी, 125,000 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1,835 करोड़ रुपए। उत्तरी सीमा पर पीएलए की तैनाती में बड़ी कमी, एलएसी के सभी सेक्टर्स में भारतीय सेना मजबूत और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत में स्थिरता, राजनीतिक कूटनीतिक सैन्य स्तर पर संवाद जारी, विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता शुरू। एलएसी पर भारत चीन सैन्य संवाद जारी, पूर्वी लद्दाख में कमांडर स्तर की बैठक और बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में आपसी चिंताओं के समाधान पर जोर। बंगाल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य में ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस, करीब 100 मदरसों को शो कॉज नोटिस। सरकार के मुताबिक 2,132 मदरसे वैध मंजूरी के साथ चल रहे हैं, जबकि 2,396 संस्थानों के पास जरूरी सरकारी अनुमति ही नहीं है। बंगाल के मदरसों पर दिलीप घोष का बड़ा बयान, बोले आतंकी हमलों में मदरसों के शिक्षकों की भूमिका की जांच जरूरी है, मदरसों में हर एक चीज संदिग्ध है। टीएमसी सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई, ईसीआई के नोटिस पर ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा 16 सितंबर तक अंतिम जवाब, 17 को फिर हो सकती है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में डेंगू केयर मरीजों की संख्या 5,000 के पार, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित। बेंगलुरु में नकली कैंसर दवाओं का बड़ा रैकेट बेनकाब, 90 से ज्यादा अस्पताल जांच के घेरे में, 5 करोड़ रुपए का संदिग्ध नकली दवाएं बरामद। फार्मेसी मालिक के मुताबिक मुख्य आरोपी फरार, कई राज्यों तक फैला है नेटवर्क। पंजाब में बिजली संकट गहराया, उद्योगों में 12 में से 14 घंटे तक कटौती, बिजली की मांग 16,519 मेगावाट। पंजाब में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पटियाला में PSPCL दफ्तर के बाहर राजा वड़िंग के नेतृत्व में होगा विरोध। किसानों का आप सरकार खिलाफ 5 दिन का प्रदर्शन आज से, मंत्री और विधानसभा स्पीकर के घरों के बाहर होगा आंदोलन। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले एसएडी की तैयारी तेज, सुखबीर बादल ने 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई। पंजाब बिजली संकट पर केंद्र का दावा, कोयले की कमी नहीं, राज्य को पर्याप्त कोयला दिया जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर लखनऊ में 33 जिलों
के में डीआईवी मीटिंग, ईवीएम वीवीपैट पर मंथन। आज 7 मंडलों के अधिकारी होंगे शामिल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले, पारदर्शिता और गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। लखनऊ में 33 जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की मिलेगा प्रशिक्षण। ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी पर रहेगा विशेष फोकस। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा रहेगा तो भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ की, बोले एक जिला एक माफिया से एक जिला एक उत्पाद तक बदली है यूपी की तस्वीर। राजनाथ सिंह का दावा, योगी सरकार में बदली उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर, पहले सड़क और सुरक्षा की स्थिति खराब थी। मायावती ने आकाश आनंद पर स्थिति की साफ, बोली अभी भी अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में, बीएसपी संगठन में किए बड़े बदलाव। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 177 सीटों में से 92 पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। निकाय चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटों पर जीत, 27 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने दर्ज की जीत। दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे काले बादल। आज सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हो सकती हल्की फुल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के बीच दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक, कल शाम 6 बजे 86 दर्ज किया गया राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक। नवसारी में बारिश के चलते अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर, तड़ेश्वर मंदिर जलमग्न हुआ। चिखली की कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास भरा पानी। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, एसडीआरएफ की टीम ने 300 लोगों का किया रेस्क्यू। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में मौसम सुहावना, डल झील में पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। श्रीनगर में अचानक बिगड़ा मौसम। डल झील में तेज हवाओं के बीच नावों पर फंसे पर्यटक, एसडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। सुहागने अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रख रही है निर्जला व्रत। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा। गणेश चतुर्थी समारोह की 85 वर्षगांठ को लेकर भव्य समारोह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, दूर दूर से पंडाल देखने और बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं लोग। गणेशोत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी, आज धूमधाम से होगी गजानन की स्थापना, 10 दिन चलेगा भव्य गणेशोत्सव। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती। महाराष्ट्र के थाने में रेत पर सजे बप्पा के 5 रूपों का भव्य दर्शन, आस्था और कला का अद्भुत संगम। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की तैयारी, जबरदस्त रोशनी से सजा कारपागा विन्यागर मंदिर। तमिलनाडु में गणेश उत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शिवगंगा जिले में विन्यागर मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। राजगढ़ में बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, चोरी की झूठी कहानी रचकर पुलिस को किया गुमराह। राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में आग, प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक, 2-3 घंटे में पाया गया काबू। अरैया मिठाई दुकान में बेसमेंट में फटा गैस सिलेंडर, 4 लोग घायल। बाराबंकी थाने में 2 सिपाहियों ने की मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, दोनों किए गए लाइन हाजिर। पुरुलिया में प्रेम प्रसंग विवाद में प्रेमिका की गला काटकर हत्या, प्लास्टिक में शव लपेटकर बाइक से ठिकाने लगाने निकला युवक, नाका चेकिंग में पकड़ा गया। गाजियाबाद में कुत्ते से लिपट को लिफ्ट में ले जाने पर विवाद, स्कूल शिक्षिका से जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हैदराबाद में जल बोर्ड मीटर रीडर की हार्ट अटैक से मौत, साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गंडक नदी में चेकिंग के दौरान 574 लीटर शराब बरामद। लुधियाना में 2 गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दोनों तरफ से 25 राउंड फायर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपसी विवाद के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर शव को फेंका, पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लिया। भोपाल पुरानी रंजिश मंदिर में महिला महंत के साथ मारपीट, वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी।
फरीदाबाद में तेज रफ्तार थार ने कई बाइक्स को मारी टक्कर, एक की मौत। अजमेर में चेन स्नैचिंग की कोशिश में रिटायर्ड डॉक्टर दंपति पर हमला, बदमाश ने दिखाई नकली पिस्टल। चित्तौड़गढ़ में आवारा सांड का आतंक, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल, सीसीटीवी फुटेज में बुजुर्ग महिला पर हमला करते दिखा सांड। अहमदाबाद में पति के सामने तेज रफ्तार बाइक ने नवविवाहिता की जान ली, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज। राम नाम की भक्ति में रंगेगा रामायण का पहला गाना, जय जय राम के जरिए फिल्म की भव्यता की झलक मिलने की उम्मीद।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
12: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इम्पैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स G20 का संकल्प हो।
1: वो मंच जिसने दुनिया की वर्तमान चुनौतियों पर बात की है, उन चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है, समस्या के समाधान की पहल की है। सदा वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देने वाले भारत ने दुनिया को शांति वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही असर है कि इस ब्रिक्स समिट में एक दूसरे के प्रति नाराजगी रखने वाले दो देश एक दूसरे के गले मिले, शिकवा शिकायत पर एक दूसरे से बात की है और अपनी कड़वाहट दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी मंच पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को अबू धाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। खाड़ी में जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बात की। इन्होंने क्षेत्रीय शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रयासों के समर्थन पर सहमति जताई। ये वही मंच है जहां नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों में सहमति बनी, जिसमें पश्चिमी एशिया के जारी तनाव को दूर करने के लिए वार्ता की पहल की गई। भारत की इस पहल पर सभी देशों ने एक स्वर में साथ दिया। इस समिट में नील नदी के पानी को लेकर टकराने वाले इथियोपिया और मिस्र भी शामिल हुए। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी इस मंच पर नजर आए। ये ब्रिक्स की बड़ी कामयाबी है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में दोस्ती वाले दांव से अहम भूमिका निभाई है। शिवानी शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक।
0: आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्यमों को नॉलेज, फाइनेंस और नए मार्केट से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे शहरों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नाती रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बड़ी स्थिरता, किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार। महिला एशिया कप में पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये के चलते शर्मसार, फाइनल जीतने पर भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोली, पहलगाम हमले के बाद से ही हमारा स्टैंड साफ। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की दो टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले, सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का हुआ खुलासा। और राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को शुरुआती बढ़त, 1707 सीटों के नतीजे, बीजेपी को 708 सीट, कांग्रेस को 613 सीटें।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी पर अमित शाह के बयान को लेकर जारी सियासत की। दिखाएंगे कि कैसे बिहार में इस पर बयानबाजी तेज है। खबर यूपी चुनाव की भी होगी, कैसे राज्य में चुनावी तैयारी तेज हो रही है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे बीएसपी में मचे अंदरूनी घमासान का। एक और बड़ी खबर बंगाल से है, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार का एक्शन हुआ है और अब तक मंत्रियों ने भी आतंकी कनेक्शन की बात कर दी है। इस पर पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई और जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। राजस्थान के 309 नगर निकाय में से बीजेपी ने अब तक 163 पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस भी 103 पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं 43 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। राजस्थान के 309 नगर निकाय के करीब 10,167 वार्ड के पार्षद पद पर चुनाव हुए हैं और मतगणना जारी है। कुल 38,889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 10 नगर निगम के साथ ही 252 नगर पालिका और 47 नगर परिषद शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मतदान 9 और 11 सितंबर को 2 चरण में हुए थे और सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। आइए रुक करते हैं उन्हीं का और जानने की कोशिश करते हैं आखिर वहां पर मतगणना कैसी चल रही है। शरद, ये समझाए कि ये जो जीत के आंकड़े आ रहे हैं या आगे बढ़ने के आंकड़े आ रहे हैं, इनसे राजस्थान की राजनीति का क्या पता चलता है, उसका भी थोड़ा विश्लेषण करें आंकड़ों के अलावा भी।
1: देखिए अंजलि, इसमें जिसकी सत्ता होती है उसके ज्यादा वोट बनते हैं, ज्यादा सदस्य जीतते हैं, और चूंकि ये 2.5 साल हो गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये रेफरेंडम है एक सरकार के कामकाज पर। भजन लाल शर्मा पहली बार के सीएम है, पहली बार की विधायक है, उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है। अगर हम निकायों में देखें तो वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, मगर पिछले परिणामों को देखें, जो सत्ता में रहती है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री करती है लोकल बड़ी चुनाव में। भजन लाल शर्मा के लिए राहत की बात है कि निकाय चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं, मगर कांग्रेस पूरी तरह से साफ नहीं हो रही है। वो भी 100 निकाय से ज्यादा जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अभी तो कई राउंड की मतगणना बाकी है। जब सबसे बड़ी चिंता जो देखिए यहां पर अंजलि बीजेपी के लिए है कि जयपुर, उदयपुर, भिलवाड़ा, ये इन जगहों पर छोड़कर और कोटा, इन जगहों पर छोड़कर सारे बड़े शहरों में पीछे चल रही है। अजमेर में 36 साल से वोट बनता था, वहां पीछे चल रही है। जोधपुर में पीछे चल रही है, बीकानेर में पीछे चल रही है, पाली में पीछे चल रही है, भरतपुर में जहां से सीएम आते हैं वहां पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका है। अभी जो परिणाम आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि बड़े शहरों में बीजेपी पीछे चल रही है। यूसीसी ये जो जाति को लेकर अगड़ी जातियां जो थी वो काफी विरोध कर रही थी बड़े शहरों में। राजपूत नेताओं को घेर घेर कर पूछा जा रहा था, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, कि यूसीसी पर आपका क्या कहना है और आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। तो छोटे चुनाव में भी बड़ा मुद्दा फैक्टर रहा। बड़े शहरों में बारिश के बाद सड़कें टूटी, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। बारिश के दिन में अमूमन चुनाव होते नहीं है, मगर भजन लाल शर्मा की सरकार ने ठीक बारिश में चुनाव कराया है, इसलिए भी जो गढ़ माने जाते थे जोधपुर, अजमेर, पाली, बीकानेर, यहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। मगर छोटे निकाय जो हैं वहां पर जिला परिषद हो या फिर नगर पालिका हो, यहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है। बांसवाड़ा जैसे आदिवासी इलाके में तो बांसवाड़ा नगर परिषद भी जीत ली, कुशलगढ़ नगर पालिका भी जीत ली, पुष्कर में क्लीन स्वीप कर लिया। तो जो उनका इलाका रहा है बीजेपी का परंपरागत रूप से छोटे शहरों में, वहां पर वो क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजसमंद का इलाका है, जो उदयपुर का इलाका है, उदयपुर के पूरे इलाके में बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। जयपुर के आसपास के इलाके में मुश्किल आ रही है कांग्रेस को, बीजेपी को। तो कुल मिलाकर जिस तरह के परिणाम सत्ता रहते हुए सत्ताधारी को दल को मिलता है, उतना तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन भजन लाल शर्मा अपना ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि छोटे निकाय चुनाव में सभी बड़े शहरों में सभी बड़े शहरों में भजन लाल शर्मा ने अपना रोड शो किया। वैसे छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री रोड शो करते नहीं है, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं थी, उसके बावजूद अगर सीट आ रही है तो ये दिखाता है कि बीजेपी से जो नाराज वोटर थे वो कांग्रेस की तरफ गए थे। कांग्रेस चुनाव में लड़ती भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, अच्छी खासी सीटें इनके पास आ रही है। बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत रहे हैं, निर्दलीय 65 निकाय में आगे चल रहे हैं, यह महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आप समझिए कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर लोगों ने विकल्प चुना है। तो यहाँ पर भजन शर्मा के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके आगे पंचायत चुनाव है जहाँ पर माना जाता है कि कांग्रेस का दबदबा है। बड़े शहरों में बीजेपी का दबदबा रहता था, भजन लाल शर्मा के लिए राहत।
0: जी शरद, बिल्कुल। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, एक बार अपने दर्शकों को बता दें, 919 वार्डों पर कांग्रेस की जीत हो रही है और 543 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। ये इस वक्त आंकड़े आने लगे हैं और इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। खबर मुंबई से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां यूसीसी को लागू किया गया है, कई बीजेपी शासित राज्य इसकी तैयारी में हैं। अमित शाह ने अब ऐलान कर दिया है कि 2029 तक सभी बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जाएगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जोड़ा है। तीन तलाक की समाप्ति कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया, ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, ये पहला राज्य है जहां इसे लागू किया गया है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो चुका है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि यूसीसी पर अमित शाह ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2029 तक बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने 21 राज्यों की बात कही कि वहां पर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसको लेकर जाहिर तौर पर बयान भी आ रहे हैं। बिहार में अब सियासत इसको लेकर तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री का बयान संविधान की मूल भावना और एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। वहीं जेडीयू कह रही है कि ऐसे मामलों में आपसी सहमति से ही आगे बढ़ा जाना चाहिए, यानी कि सभी एनडीए के घटक दलों से बात होनी चाहिए। जीतनराम मांझी की पार्टी ने अमित शाह के बयान का हालांकि समर्थन कर दिया है और कहा है कि देश में समानता और आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए यूसीसी बेहद जरूरी है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान संविधान के अनुच्छेद 44 की मूल भावना को दर्शाता है, एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। उन्हें 2029 तक करने की बात कही है। हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे। महिलाओं को अधिकार देने की बात विशेष रूप से इसमें है, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। इससे जो बहुत सारी कुरीतियां समाज में थी खत्म भी हुई है, इससे तीन तलाक ये सब खत्म हुआ है और महिलाओं को संपत्ति में अन्य चीजों में अधिकार मिलेगा। तो महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए एनडीए सरकार शुरू से काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी और इस क्रम में इसे भी लागू करना आवश्यक है।
4: देखिए, यूसीसी पर हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का स्पष्ट मानना है कि यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृहमंत्री जी ने यह कहा है, वह स्वागत योग्य है और हम विपक्ष से भी मांग करेंगे कि वो भी इसका स्वागत करें और अपने अपने राज्य में लागू करवाने का प्रयास करें और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करें।
0: वहीं बीजेपी की पार्टनर जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने समय समय पर ऐसे मामलों पर अपनी राय स्पष्ट की है। पार्टी के मुताबिक ऐसे मामलों में आपसी सहमति से ही आगे बढ़ा जा सकता है।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है और ऐसे विषयों पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समय समय पर अपने स्टैंड को स्पष्ट किया है। हमारा मानना है कि किसी भी वर्ग किस को आहत नहीं करना है और सबकी सहमति लेकर ही ऐसे विषयों पर आगे बढ़ा जा सकता है।
0: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं पटना का, शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, ये बताएं कि कितनी आसान या मुश्किल होगी आगे की डगर बीजेपी के लिए, क्योंकि जेडीयू इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है?
6: देखिए अंजलि, जेडीयू ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि यूसीसी के एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पर नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेतृत्व है, उसकी राय अलग है। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड शुरू से ये रहा है कि यूसीसी जैसे सवालों पर आम सहमति, जिसमें सभी राजनीतिक दल और सभी पक्ष और सभी धर्म से जुड़े लोग जो हैं, उनकी जब तक सहमति नहीं बन जाती, इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यही वजह है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया तो उसके बाद जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो आई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मसले पर जो सहमति है वो बनानी होगी। पार्टी का स्टैंड, नीतीश कुमार का रुख क्या रहा है, वो पहले से डिक्लेयर्ड है। और सबसे बड़ी बात जो जेडीयू ने कही है वो ये कि बिहार में एनडीए की सरकार है, मतलब ये मैसेज साफ है कि बीजेपी की अकेले की सरकार नहीं है, तो यहाँ पर जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक यूसीसी पर बढ़ना आसान नहीं होगा। और यही मुश्किल होगी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में, सम्राट सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार में यूसीसी लागू अगर होता है या उसको लागू कराने में बीजेपी आगे बढ़ पाती है तो समझिए बहुत बड़ी उनकी सफलता भी होगी अलायंस के लेवल पे। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उसका समर्थन किया है, अमित शाह के बयान के साथ वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि उनका स्टैंड है कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहां क्या स्टैंड होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो असल लिटमस टेस्ट अगर हम कहें तो वो बिहार में होगा यूसीसी को लेकर के, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही हैं उसके मद्देनजर।
0: शशि, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अब देखते हैं कि विपक्ष ने अमित शाह के बयान को लेकर क्या सवाल उठाए हैं।
7: भाजपा की सरकार जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं करती है। भाजपा सरकार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास पर कोई बात नहीं कर रही है। देश के गृह मंत्री ये बताते नहीं हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, किसके आदेश पर पुलिस ने बेटियों के कपड़े फाड़ने का काम किया। गृह मंत्री बताएं कि बैरिकेटिंग पर करंट लगाने का आदेश किसने दिया था। जानबूझ करके देश के गृह मंत्री जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं।
8: और क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ देश के अंदर जो सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकार के अनुसार जीने का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कमजोर करने वाली कार्रवाई के साथ खड़े हैं? स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कहीं ना कहीं देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना, देश के अंदर उस तरह की व्यवस्था कायम करना जो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के लोगों के लिए उचित नहीं है।
0: बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, खबर पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन मदरसों को बंद किया करने का नोटिस मिला है, माफ कीजिएगा, उनमें से ज्यादातर खारिजी मदरसे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है और बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी वहां पनाह लेते थे।
9: इगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहां सरकार की अनुमति नहीं है वहां नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मद्रासा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति लें और चलाएं। जिनके पास अनुमति है उनका चलेगा। नहीं, मद्रासा में हर बात डाउट में है। पहली बार नहीं है, पिछले 20 साल से देखिए बंगाल में कितने बार इस प्रकार घटना घटी है। जो यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें कोई ना कोई मद्रासा टीचर रहा है और आज भी हैं, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है। बुद्ध बाबू से लेकर कई नेता बार बार चिंता प्रकट की है, लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया है, उसका हम लोग समाधान करेंगे।
10: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मद्रासा में बॉम्ब बना रहे हैं, मद्रासा के आसपास में बहुत सारा कुछ मतलब इलीगल काम होते हैं, मद्रासा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था। लेकिन जो पिछले सरकार था उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, तो हमारे सरकार संकल्प लिया है जो जितना सारा इलीगल, जितना सारा देश विरोधी कार्यकलाप होगा उसके ऊपर इन लोग पूरा देखेंगे। इसलिए बहुत सारा मदरसा का हुआ है, फिर भी होगा। अगर मदरसा कोई बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा काम करते, अच्छा शिक्षा देते, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो मदरसा में देश विरोधी कार्यकलाप होते हैं, जो मदरसा में जो अस्त्र शस्त्र को लेके बम बंदूक गोली का कारोबार चलते हैं, वो मदरसा क्यों रखना है हमारे देश में? हमारे देश में बच्चा लोगों को खराब नहीं करना है, हमारे देश में बच्चे लोगों को शिक्षा देके विकसित भारत करने के लिए आगे बढ़ाना है।
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का कोलकाता से। अनुपम, शायद यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये जो मदरसे जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है ये गैर मान्यता प्राप्त है, ये इलीगल है।
11: जी देखिए, राज्य सरकार ने एक सर्वे किया था पिछले कई दिनों में, ये सर्वे हुआ। सभी जो डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको कहा गया था कि आपके जो ज़िले हैं उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। तो अब ये जब लिस्ट सामने आई तो उसमें देखा गया लगभग 2300 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट सामने आई है पूरे पश्चिम बंगाल में। अब ये क्या है, ये इलीगल तो नहीं कहा जा सकता, ये गैर मान्यता प्राप्त है। इनको राज्य सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं है, कोई एड नहीं मिलती है, ये अपने बलबूते पर चलते हैं। और बहुत जगहों पर देखा जाता है कि जो राज्य सरकार का करिकुलम होता है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उससे थोड़ा सा अलग भी होता है इनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है। तो ऐसे में राज्य
0: जी बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन है ये पश्चिम बंगाल का। अब रुख करते हैं गुरुग्राम का। तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और वहां से भाग गया। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया है कि एक कार में सवार लोग पहले उनका पीछा कर रहे थे और बाद में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। और यह हादसा गुरुग्राम के बेहद पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ है। हादसे का वीडियो उनकी बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। सिया ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनके मुताबिक रविवार को अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ वो इस इलाके में थी जब ये हादसा या हिट एंड रन कहें हुआ है।
12: रोकने के लिए गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। आयन वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक एंड मैं कोशिश करती हूँ। एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ। गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। आयन वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलो।
0: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का। अरविंद, कार का नंबर साफ है, चलाने वाले का चेहरा साफ है, क्या एक्शन हुआ है अभी तक?
12: के पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ। गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। एंड वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ
0: सकते हैं कि ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो शख्स जिसने ये टक्कर मानी और साफ तौर पे नजर आता है कि ये टक्कर किसी तरह से जानबूझकर एक महिला बाइकर को मानी गई। गुरुग्राम का ये इलाका जहां गोल्फ कोर्स रोड पर ये हादसा हुआ है, महिला गिर जाती है, उसके कैमरे पर ये रिकॉर्ड होता है, उसके साथ चला रहे बाइकर्स जो है वो गाड़ी को रोकने की भी कोशिश करते हैं। रेड लाइट पर आके जा करके इस गाड़ी को जब रोका जाता है तो आदमी अपना शीशा नीचे करके कहता है कि उसकी गलती नहीं है। तो हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कार का नंबर साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में और चेहरा भी इस शख्स का नजर आ रहा है, क्या अभी तक पुलिस का कोई एक्शन हो पाया है?
13: देखिए, जो ये पूरा मामला है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, जो गुरुग्राम पुलिस है उसको लिखित शिकायत नहीं मिली ऐसा अभी जानकारी में सामने आया है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने खुद सू मोटो लिया है और जो वीडियो है उसमें जो दिखाई दे रहा है जो महिला बाइकर है वो चला रही होती है और पीछे से कार एक टक्कर मारती है। जब ये पूरा मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी खुलासा हो पाएगा कि किसमें इस पूरे मामले में किसकी गलती है। ये गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स के पास ये पूरा हादसा हुआ जो कैमरे में कैद हुआ है, जो इसमें महिला बाइकर्स गिरी हैं, उनको चोट आई है, फिर उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया।
0: अरविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और खबर गुरुग्राम से ही, जहां के मैग्नम ग्लोबल पार्क में एक पार्किंग अटेंडेंट ने करगिल युद्ध के एक पूर्व अवसर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और हाथ की हड्डी भी टूट गई है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि अटेंडेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने पुलिस पर मदद न करने और अस्पताल पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप भी लगाया है। अमित कुमार गुप्ता ऑपरेशन सफेद सागर का हिस्सा थे, जिस पर हमला हाल ही में ऑपरेशन सफेद सागर वेब सीरीज भी बनी है। अमित गुप्ता मैग्नम ग्लोबल पार्क के एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ डिनर करने आए थे, जहां पार्किंग करते वक्त पार्किंग अटेंडेंट ने उन पर हमला किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: GK Max.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: GK Max. Best putty.
7: JK Wall Max.
5: Best paint.
8: JK Max.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: In association with
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
21: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
22: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
23: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
24: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द PRA।
25: अब मैं क्या ही बोलूं?
26: परिवार,

0: भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
7: बिना चार्ज हुआ यार।
8: ला बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
17: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
21: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
22: ये है एक लेगेसी। मेरे शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
23: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
24: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
25: अब मैं क्या ही बोलूं?
26: परिवार अटूट भरोसा।
27: In association with
28: Signature Finest Cardamom Seeds,
29: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
30: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
31: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
32: इन एसोसिएशन विद
33: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बड़ी स्थिरता, किसी भी हालत से निपटने को भारत है तैयार। महिला एशिया कप में पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये के चलते शर्मसार, फाइनल जीतने पर भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोली, पहलगाम हमले के बाद से ही हमारा स्टैंड है साफ। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की दो टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी के 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की शुरुआती बढ़त, 1707 सीटों के नतीजे, बीजेपी को 708 सीट, कांग्रेस को 613 सीटें।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे एशिया कप चैंपियंस की और पाकिस्तान की फजीहत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीत लिया है। भारत की महिला ब्रिगेड ने शानदार खेल दिखाते हुए एशिया कप अपने नाम किया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रन से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। 2025 में पुरुष टीम ने खिताब जीता और अब एक साल बाद 2026 में महिलाओं ने बाजी मार ली है। लेकिन एक चीज और हुई है, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।
1: दुबई में भारतीय बेटियों ने एशिया कप पर फिर अपना राज्य कायम किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भारत ने 72 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की और 8वीं बार महिला एशिया कप अपने नाम किया। पहले बल्ले से हमला हुआ, शैफाली वर्मा ने 68 रन ठोके, स्मृति मंदाना ने 59 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर गेंदबाजों ने श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया। श्री चरणी ने 4 विकेट चटकाए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। श्रीलंका सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गया। 72 रन की जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चैंपियंस को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय बेटियों ने सिर्फ कप नहीं जीता, करोड़ों दिल जीत लिए। यानी दुबई में तिरंगा लहराया और करोड़ों भारतीयों के दिल गर्व से भर गए, क्योंकि जब भारतीय बेटियां मैदान पर उतरती हैं तो सिर्फ मैच नहीं जीतती, इतिहास लिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो एशिया कप जीता हिंदुस्तान की बेटियों ने, लेकिन फजीहत हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया है। 28 सितंबर 2025 को सूर्य कुमार यादव और अब 13 सितंबर 2026 को हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार किया है। दरअसल अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है। पिछले साल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये चेयरमैनशिप थी, तब सूर्य कुमार यादव ने स्टैंड लिया कि पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे और अब हरमनप्रीत ने भी वही किया है। पाकिस्तान की फिर से फजीहत हुई है। पिछली बार तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग ही गए थे, इस बार भी वही हुआ है। वो आए बताने के बावजूद वो वहां ट्रॉफी देने आए और भारतीय टीम नहीं गई।

0: पाकिस्तान की फजीहत की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विजेता भारत की महिला क्रिकेट टीम को T20 वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी देने का मंच सजा था। एशियाई क्रिकेट परिषद के पदाधिकारियों के साथ ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मंच पर मौजूद हैं। नकवी विजेता टीम को ट्रॉफी देने पहुंचे थे, लेकिन भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने नहीं आई। एशिया कप के मंच पर दुबई में लगातार दूसरे साल पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की फजीहत हुई। तस्वीर में नकवी के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। दोनों हाथ पीछे किए नकवी संभवतः भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे हैं, शायद सोच रहे हों कि काश उन्हें ट्रॉफी देने का सम्मान मिल जाए। दरअसल इस फजीहत और बेइज्जती के लिए मोहसिन नकवी खुद ही जिम्मेदार हैं। फाइनल शुरू होने से पहले ही BCCI ने साफ कर दिया था कि चैंपियन बनने पर भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। नकवी की जगह एशियाई क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दे। BCCI के साफ कहने के बावजूद नकवी ट्रॉफी देने आ गए। ऐसे में भारतीय टीम के आगे नकवी का बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
1: हम लोग का कोशिश था कि डिप्यूटी चेयरमैन, हम लोग नहीं बोल रहे कि BCCI चैंपियन है तो BCCI का कोई करियर का टास्क का हाथ से ट्रॉफी दे दीजिए। हम लोग का यही कोशिश था कि जो डिप्यूटी चेयरमैन है खालिद भाई, उनका हाथ से ट्रॉफी दे दे, लेकिन वो हमारा विनती कबूल नहीं किया है। वो लोग ने तो हमारा कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रॉफी जीतता है। आप भी अभी बोल रहे हैं भारत चैंपियन हुआ, सारे विश्व ने टेलीविजन में देखा है, मेंस में भी एशिया कप में मेंस में इंडिया चैंपियन हुआ था, आज वुमेन्स में भी चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्कोरबोर्ड में काफी स्कोर क्लियरली लिखा हुआ है, सबने टेलीविजन में देखा है कि इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया है 72 रन से। सो इससे बड़ा खुशियां का मौका हमारा नहीं हो सकता है।
0: ये लगातार दूसरा मौका है जब नकवी के हाथों भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले पिछले साल T20 एशिया कप फाइनल जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली मेंस क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
2: पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है?
3: ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी।
2: अच्छा मुझे एक चीज बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज बताएं, जब वो सब चीजें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नजर आ रहे थे।
3: प्लेयर्स रिलैक्स ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली, पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया।
0: दरअसल पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक बाद मेंस एशिया कप खेला गया था। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ का सबूत मिला। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। खास बात यह है कि ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में भारत का साफ मानना है कि जो देश हमारे खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, उसके मंत्री से भला भारतीय टीम कैसे ट्रॉफी ले सकती है। दिल्ली से राहुल रावत और नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: पीएम मोदी ने एशिया कप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल, एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई, पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला है। ये जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट है और ये जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। जो भारतीय टीम की महिला खिलाड़ी हैं उनको बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि जो देश के युवा हैं वो इससे प्रेरणा लें और खेलें और आगे बढ़ें। और अब बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। आज गणेश चतुर्थी है और आज से ही गणेश देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में भक्तगण अपने तरीके से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। सामूहिक पंडालों में वहां से लेकर घरों तक हर जगह महागणेश के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई में गणेश उत्सव का अलग ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव को लोक उत्सव बनाने में मुंबई का बड़ा रोल है। अब देश भर में गणेश उत्सव की धूम है।
5: भगत से कोई शरणागत आवे, संपत्ति सब ही भरपूर

भगवान गणेश के अनेकों नाम है, श्रद्धालु अलग अलग नामों से उनका स्मरण करते हैं, लेकिन इस हाईटेक दौर में गणेश जी की पूजा भी अलग अलग रूपों में हो रही है। हैदराबाद में रोबोटिक गणेश देखने को मिले, तो कहीं कोलकाता में अलग ही रंग रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: गणेश चतुर्थी की पावन घड़ी आई। और बप्पा का दरबार लग गया। ये उत्सव, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये उत्साह इसलिए है क्योंकि पूरे एक बरस बाद महागणेश का आगमन हुआ है। वक्रतुंड, सिद्धि विनायक और गजानन, भगवान गणेश के ऐसे हर रूप में दिव्य प्रकाश बसता है। उनकी ही कृपा से भक्ति शांति का आशीर्वाद बरसता है। हर बार की तरह इस बार भी पंडालों में स्थापित किए गए बप्पा के ऐसे कई रूप आपने देखे हैं जिनका मात्र दर्शन पूजन ही मन की हर अभिलाषा दूर करने वाला है। लेकिन अब क्योंकि जमाना AI का है तो अपने गणपति भी रोबोटिक हो गए हैं। ऐसे ही बप्पा स्थापित किए गए हैं हैदराबाद के उप्पुगुडा स्थित ललिता बाग में। दरअसल गणेश उत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा है जिसे यहाँ की मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी चौथी पीढ़ी ने तैयार किया है। यानी 2047 का भारत कैसा होगा, कितना आगे जाएगा, इसको देखते हुए न केवल पंडाल और गणेश जी की मूर्ति को रोबोटिक रूप दिया गया बल्कि पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहां पिछले साल इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है।
1: इस बार 2047 का विकसित भारत, भारत 2047 तक कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में रहता, अपना भारत कितना आगे जाके कितना स्मार्ट सिटी बनता, कितना स्मार्ट इंडिया बनता, वो हम दिखाने का प्रयत्न ही ये विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करने का वजह है। वही थीम में सिलेक्शन के वजह से इच गणेश जी को भी जी आर्मर के रूप में हम लोग कलाकार से तैयार कराए हुए हैं। बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्केचेस करके उनको रेडी करने करके दिए कलाकार रविंद्राचारी बोल के विश्वकर्मा डिजाइन्स।
0: जाहिर है इस अनोखी थीम के तहत आर्मर के रूप में दर्शन दे रहे भगवान गणपति के माध्यम से केवल ईश्वर भक्ति ही नहीं बल्कि देशभक्ति के प्रति भी देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल तो एसोसिएशन द्वारा आयोजित 50वें वर्ष के गणेश चतुर्थी समारोह में रोबोटिक बप्पा की ये प्रतिमा और आसपास की झांकी श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण बनी है जो देश के विकास और भविष्य की कल्पना संजो रही है। वहीं कोलकाता में भी गणेशोत्सव को लेकर एक ऐसी अनूठी झांकी तैयार की गई है जिसमें मौजूदा वक्त में विकसित बंगाल में परिवर्तन को दर्शाया गया है। एक तरफ जहाँ पंडाल में बप्पा की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है तो सफेद कुर्ता और नारंगी पगड़ी पहने विघ्नहर्ता का ये रूप बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। इसमें भगवान के हाथ दूरदर्शी नेतृत्व, जिम्मेदारी और सुशासन जैसे पहलुओं को दर्शा रहे हैं। तो विकास के विजन के साथ ही कुछ सामाजिक चुनौतियां भी इस पंडाल के मुख्य आकर्षण हैं। यकीनन ये भव्य गणेशोत्सव पंडाल किसी भी रूप में स्थापित किए गए हैं मगर इनसे निकला संदेश भारतीय बढ़ते विकास, मजबूत भक्ति और विश्वास की मिसाल ही पेश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख। सीधा उन्हीं का रुख करके जानते कैसे रूप दिख रहे हैं वहां पर। धर्मेंद्र, पहले आपके पास आते हैं, जरा नजारा दिखाइए और दर्शन भी कराए वहां पर भगवान गणेश के।
3: बिल्कुल अंजलि, मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इस तरह की गूंज यहां पर गूंज रही है और सीधे अब लालबाग के राजा का आप दर्शन करें, बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं हर साल की तरह। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी खासियत इस बात को लेकर के है क्योंकि रामेश्वर की थीम दी गई है। आप बप्पा के पीछे का जो चलचित्र देखें वो भी रामेश्वर की तरह ही दिख रहा है, साथ ही साथ जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में, ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर। इस समय बहुत ज्यादा खुश है, फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से बप्पा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां मौजूद हो रहे हैं। आज पहला दिन है, सुबह 5 बजे से ही दर्शन शुरू हो गया है, दरबार बप्पा का खोल दिया गया था। और जरा गणेश भक्तों की ये भीड़ देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज पहला दिन है। जहां तक भी नजर जाएं, जहां तक भी हम देखें, सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्त श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि रोजाना गणपति बप्पा का, लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3 से 4 लाख लोग आते हैं और 3 दिन बाद ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी 1.5 दिन की गणपति है, 3 दिन की गणपति। बहुत से लोगों ने अपने घर में ही स्थापना की है गणेश जी की, उनके विसर्जन के बाद वो भी लालबाग के राजा की तरफ बढ़ेंगे। लगभग 2-3 घंटे कतार लगने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा बप्पा को सिर्फ दूर से देखकर, यानी कि दूरदर्शन करके, क्योंकि बप्पा का पग छूने के लिए एक दूसरी कतार है जो बप्पा के समीप से जाती है और उसकी जो लाइन है, उसका जो समय है, 8 से 10 घंटे का समय लगता है तब जाकर के वो बप्पा तक पहुंच पाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 8-10 घंटे लोग भले ही कतार में खड़े हों, लेकिन जैसे ही
2: आप हमारे साथ बने रहे, 8 से 10 घंटे पैर छूने के लिए भक्तगण वहां पर मौजूद है। मुस्तफा आपके पास आ रहे हैं, दर्शन हो गए हमारे, अब ये भी बताएं कि जो वहां पे भक्त मौजूद है उनके मन में किस तरह का कौतूहल होता है कि एक बार दर्शन कर लें, एक बार पैर छू लें, एक बार बप्पा के दरबार में पहुंच जाएं। मुस्तफा
4: मुझसे पूछा क्या सवाल है?
2: हाँ जी आप ही से बात कर रही हूँ।
4: जी बिल्कुल, इस वक्त हम चिंचपोकली चिंतामणि में है, लालबाग के राजा से थोड़ी ही दूर। आप कह सकते हैं कि परेल लालबाग गणेश गली एक 5 मानवीय गणपति बाप्पा जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आपको यहाँ पर दिखा दें कि तिरुपति बालाजी की थीम में इस बार चिंचपोकली चिंतामणि जो है उन्हें बनाया गया है। आशीर्वाद देने की मुद्रा में यह है, 107 वर्ष जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। कुछ यहाँ पर जो युवा है वो यहाँ पर है, आप लोगों ने दर्शन लिए, आपसे बात करना चाहेंगे। ये सर चिंचपोकली चिंतामणि जैन जी के फेवरेट गणपति क्यों जाने जा रहे हैं?
5: चिंतामणि चिंचपोकली का चिंतामणि जो गणपति है वो जैन जी का नहीं, हर जनरेशन का फेवरेट है। आप यहाँ पे देखिए, इतने एजेड लोग भी है, हम लोग भी, हमारे पीछे जो जैन जी वो भी है, सबके फेवरेट चिंचपोकली का चिंतामणि। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि जैन जी के फेवरेट है, सबके फेवरेट। इनका जो रूप है ना वो सब लोगों को मन में
4: आशीर्वाद मुद्रा है,
5: आशीर्वाद मुद्रा है।
4: और इस बार सोने का मुकुट है, क्या क्या
5: हमारे पास? ये सोने का मुकुट है, जो बाजूबंद है, जो बीच में हार है, ये सोन पाउल है, जो हम कोई भक्तों अगर नालियर चढ़ाए या कुछ ऐसा चढ़ाए उसके वजह से मूर्ति को कुछ हो नहीं, इसके लिए हमने सोन पाउल भी लगाया। अभी वो जो हम आप सोन पे देख रहे उसको सोन पट्टा
2: जी। मुस्तफा तो चलिए हमने अपने दर्शकों की भी हाजिरी लगा दी बप्पा के दरबार में। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
6: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
11: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
12: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
13: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
14: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
15: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
16: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
11: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
10: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
17: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहां सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: एक फोन जिसकी कीमत सुनकर आप रुक जाएंगे, एक लॉन्च जिसमें आईफोन के साथ वॉच और एयरपॉड्स भी नए अवतार में आए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारत में कितने का पड़ेगा एप्पल का ये नया प्रो फोन। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रो मॉडल्स की नहीं है। एप्पल ने पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन डुओ भी पेश किया है, जिसकी 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन खुलते ही फोन को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देती है। यानी एप्पल अब उस फोल्डेबल रेस में उतर चुका है जिसमें सैमसंग जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद है। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल 256 GB से लेकर 2 TB तक के स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किए हैं। कलर भी 4 बरगंडी, ग्लेशियर, सिल्वर और ब्लैक। भारत समेत 65 से ज्यादा देशों में 12 सितंबर से प्री ऑर्डर, जबकि 18 सितंबर से ओपन सेल शुरू होगी। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 164,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 179,900 रुपए है, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमत 2,99,900 रुपए से शुरू होती है। लेकिन एप्पल का सरप्राइज यही खत्म नहीं होता। कंपनी ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं। ओपन ईयर डिजाइन के साथ इनमें बेहतर ऑडियो और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। इसके साथ एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 भी लॉन्च हुई हैं। इनमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड हार्ट रेट को अब हर 5 सेकंड में मॉनिटर करता है। यानी एप्पल का नया लॉन्च सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं। सवाल अब ये है, क्या 1,65,000 रुपए से शुरू होने वाला आईफोन 18 प्रो भारतीय बाजार में नया प्रीमियम बेंचमार्क बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता। किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार।
1: महिला एशिया कप में पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये के चलते फिर शर्मसार। फाइनल जीतने पर भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोली, पहलगाम हमले के बाद से हमारा स्टैंड साफ।
0: यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत। कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी। जेडीयू की दो टूक, बिहार बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन।
1: पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन। 252 मदरसों पर चढ़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलाने का खुलासा हुआ।
0: और राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को शुरुआती बढ़त। जयपुर कोटा भीलवाड़ा में बीजेपी आगे। अजमेर पाली बीकानेर जोधपुर में कांग्रेस भारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजस्थान की बड़ी खबर की। नगर निकाय चुनावों के सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गए हैं और जो शुरुआती नतीजे हैं उनमें बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में दिखाई दे रही है।
0: राजस्थान के 10 नगर निगम के रुझान सामने आ चुके हैं। जयपुर कोटा उदयपुर भीलवाड़ा अलवर नगर निगम में बीजेपी आगे है। अजमेर पाली बीकानेर जोधपुर में कांग्रेस आगे है और भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। वहीं राजस्थान के 309 नगर निकाय में से बीजेपी ने अब तक 163 पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस भी 103 पर जीत दर्ज कर चुकी है। 43 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं।
1: तो 10 में से 5 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रहे हैं और 309 नगर निकायों में से 10,167 वार्ड के पार्षद पद पर हुए चुनाव पर मतगणना इस समय चल रही है। कुल 38,889 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आ रहा है।
0: दरवाजा हो गया है शतक आज तक का।
1: गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार सवार ने महिला बाइकर को मारी टक्कर और उसके बाद भाग निकला। मौके का वीडियो बाइक पर लगे हुए कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया है कि कार में सवार लोग पहले उनका पीछा कर रहे थे और बाद में उनकी बाइक को टक्कर मारकर वो मौके से फरार हुए। गंभीर रूप से घायल महिला बाइकर अस्पताल में भर्ती। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उठ रहे हैं गंभीर सवाल। देवरिया में मोनू हत्याकांड के हाफ एनकाउंटर पर बवाल। ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। एसएचओ बोले, दबाव आया तो लिखकर थाने से चला जाऊंगा। मुर्शिदाबाद में पुलिस पर उपद्रवियों ने फेंके बम। बम से एक एएसआई घायल। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का लक्ष्य। बोले, इंडिया फर्स्ट हमारी नीति का आधार। अमित शाह बोले, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाई। भाषा विवाद पर अमित शाह बोले, मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति। अवैध घुसपैठियों की पहचान करके कार्रवाई का दावा। सीएम मोहन यादव का नेहरू गांधी परिवार पर तंज। बोले, समुद्र नहीं होता तो अरब देशों तक पहुंच जाते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की किश्तदारी। 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन। पीएम मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैटन। बोले, टेक्नोलॉजी और मिनरल्स को हथियार बनाना दुनिया की तरक्की के लिए गलत।
0: ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर गरमाई सियासत। जयराम रमेश का आरोप, भारत चीन रिश्तों में कैलिब्रेटेड कैपिटलाइजेशन। गलवान और लद्दाख पर सरकार से मांगा जवाब। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे। पाकिस्तान को चीन के समर्थन और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। ब्रिक्स घोषणा पत्र पर विपक्ष की अलग अलग राय। मायावती ने बताया कूटनीतिक उपलब्धि तो रामगोपाल यादव ने कहा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ब्रिक्स डिनर के शाकाहारी मेन्यू पर राहुल गांधी का तंज। बोले, 80% भारतीय नॉनवेज खाते हैं। बयान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तरी सीमा पर पीएलए की तैनाती में बड़ी कमी, एलएसी के सभी सेक्टर्स में भारतीय सेना मजबूत और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत से स्थिरता, राजनीतिक कूटनीतिक सैन्य स्तर पर संवाद जारी, विशेष प्रतिनिधियों की भी वार्ता शुरू। बंगाल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य में ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस। 100 मदरसों को शो कॉज नोटिस, सरकार के मुताबिक 2132 मदरसे वैध मंजूरी के साथ चल रहे हैं, 2396 संस्थानों के पास जरूरी सरकारी अनुमति नहीं है। बंगाल के मदरसों पर दिलीप घोष का बड़ा बयान, बोले आतंकी हमलों में मदरसों के शिक्षकों की भूमिका की जांच जरूरी, मदरसों के हर एक चीज संदिग्ध।
1: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे की टीचर की भूमिका सामने आई है और बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी पहले यहां पनाह लेते थे। टीएमसी सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस पर विक्रमादित्य बैनर्जी ने कहा कि 16 सितंबर तक अंतिम जवाब, 17 को फिर से हो सकती है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 5000 के पार, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा। बेंगलुरु में नकली कैंसर दवाओं का बड़े रैकेट, बेनकाब 90 से ज्यादा अस्पताल अब जांच के घेरे में। 5 करोड़ रुपए की संदिग्ध नकली दवाइयां बरामद, फार्मेसी मालिक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क, हो रही है जांच। पंजाब में बिजली संकट गहराया और उद्योगों में 12 से 14 घंटे तक बिजली कटौती और बिजली की मांग 16519 मेगावाट पहुंचे। पंजाब में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पटियाला में पीएसपीसीएल दफ्तर के बाहर राजा वर्डिंग के नेतृत्व में विरोध होगा। किसानों का अब सरकार के खिलाफ 5 दिनों का प्रदर्शन, आज से मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर के घरों के बाहर होगा आंदोलन। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले एसीडी की तैयारियां थे, सुखबीर बादल ने 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई। पंजाब के बिजली संकट पर केंद्र का दावा, कोयले की कमी नहीं है, राज्य को पर्याप्त कोयला दिया जा रहा है।
0: यूपी चुनाव 2027 को लेकर लखनऊ में 33 जिलों के डीआईवी की मीटिंग, ईवीएम वीवीपैट पर मंथन, आज 7 मंडलों के अधिकारी होंगे शामिल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले, पारदर्शिता और गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। लखनऊ में 133 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी पर रहेगा विशेष फोकस। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा रहेगा तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ की, बोले एक जिला एक माफिया से एक जिला एक उत्पाद तक बदली यूपी की तस्वीर। राजनाथ सिंह का दावा, योगी सरकार ने बदली उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर, पहले सड़क और सुरक्षा की स्थिति खराब थी। मायावती ने आकाश आनंद पर स्थिति साफ की, बोले अभी भी अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में है, बीएसपी संगठन में किए बड़े बदलाव। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 170 सीटों में 92 पर जीत दर्ज कर बीजेपी बनी बड़ी पार्टी। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटों पर जीत, 27 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत।
1: दिल्ली एनसीआर में फिर से बादल, बारिश के आसार, अगले 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल। आज सुबह से दोपहर के बीच में कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया। बारिश के बीच में दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक है और शाम 6 बजे तक 86 दर्ज किया गया राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक। नवसारी में बारिश के चलते अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर और तड़ेश्वर मंदिर जलमग्न। चिखली की कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद नजदीक और निचले इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास भरा पानी। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के समय ऊपर ही है और एसडीआरएफ की टीमें 300 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं। यूपी के मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ की आशंका है। जम्मू कश्मीर में मौसम सुहावना, डल झील में पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं।
0: महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर किया कब्जा। टीम इंडिया की रही शानदार शुरुआत, शिफाली वर्मा ने 68 रन की पारी खेली, स्मृति मंधाना ने 59 रन का दिया अहम योगदान। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रन का दिया था विशाल लक्ष्य, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने बरपा के है, श्री चढ़नी ने सर्वाधिक 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 की हार का लिया बदला। एशिया कप में सभी पांच जीतकर अजय और विजेता बना भारत। महिला एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को दी बधाई। भारत अफगानिस्तान T20 से पहले दिल्ली स्टेडियम में पहली बार गूंजा वंदे मातरम। 6 अंतरों के बाद बजा राष्ट्रगान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीरें। जीत के बाद भारतीय टीम का बड़ा फैसला। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया टीम इंडिया ने इनकार। ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा। एसीसी डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को तैयार थी टीम इंडिया, प्रस्ताव ठुकराया तो सेरेमनी का किया बहिष्कार।
1: जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भी भारत का शानदार प्रदर्शन, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराया और सनिका चंद्रकांत ने 7वें मिनट में मैच में एकमात्र गोल किया। हॉकी इंडिया ने विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए के कैश रिवॉर्ड का ऐलान किया। सपोर्ट साहब को 1.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देने का ऐलान। जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में एक और कामयाबी, भारत लगातार चौथी बार चैंपियन। साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड और FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह भी पक्की। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में फ्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाई। कोटपुतले में 11,000 वॉट बिजली लाइन की चपेट में आए एक डंपर दूध होकर जला और बाइक सवार ने कूद कर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में प्राइवेट बिजली बनाने सप्लाई करने वाली कंपनी में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड में कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचा दंपति। बरनाला में पंजाबी गायक गुलाब सिंह सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग, बदमाश पहुंचे थे और 3 बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जांच टीम गठित।
0: राजगढ़ में बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, चोरी की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह किया। राजकोट में पॉलिमर्स कंपनी भीषण आग, प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक। 2-3 घंटे में आग पर पाया जा सका काबू। औरैया में मिठाई दुकान की बेसमेंट में फटा गैस सिलेंडर, 4 लोग घायल। बाराबंकी थाने में 2 सिपाहियों में मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, दोनों किए गए लाइन हाजिर। पुरुलिया में प्रेम प्रसंग के विवाद में प्रेमिका की गला काटकर हत्या, प्लास्टिक में शव लपेट, बाइक से ठिकाने लगाने निकला युवक। गाजियाबाद में कुत्ते को लिफ्ट ले जाने पर विवाद, स्कूल शिक्षिका से जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हैदराबाद में जल बोर्ड मीटर रीडर की हार्ट अटैक से मौत, साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गंडक नदी में चेकिंग के दौरान 574 लीटर शराब बरामद। लुधियाना में 2 गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दोनों तरफ से हुई 25 राउंड की फायरिंग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपसी विवाद के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या, शव को फेंका।
1: भोपाल में पुरानी रंजिश में मंदिर में महिला महंत के साथ मारपीट, आरोपी ने वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। फरीदाबाद में तेज रफ्तार थार ने कई बाइकों को मारी टक्कर, एक केस में मौत, हादसे में परिवार ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। अजमेर में चेन स्नैचिंग की कोशिश में रिटायर्ड डॉक्टर दंपति पर हमला, बदमाशों ने नकली पिस्तौल दिखाई, घटना सीसीटीवी में कैद। चित्तौड़गढ़ में आवारा सांड का आतंक, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद, बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए सांड कैद। अहमदाबाद में पति के सामने तेज रफ्तार बाइक ने नवविवाहिता की जान ले ली, सीसीटीवी में हादसा कैद। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी, आज धूमधाम से गजानन की होगी स्थापना, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम, 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। महाराष्ट्र के ठाणे में रेत से सजे बाबा के 5 रूपों को का भव्य दर्शन, आस्था और कला का अद्भुत संगम। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारी, जबरदस्त रोशनी से करपागा विजयागर मंदिर सजा। तमिलनाडु में भी गणेश उत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर शिवगंगा जिले के विजयागर मंदिर में भव्य यात्रा निकाली गई।
0: गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज, AR रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। राम नाम की भक्ति में रंगेगा रामायण का पहला गाना, जय जय राम के जरिए फिल्म की भव्यता की झलक। हनुमान अंश की बंपर कमाई, रविवार को 22.5 करोड़ का नेट कलेक्शन। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बना रही कमाई के नए रिकॉर्ड, मिर्जापुर द मूवी और हैवान को भी कमाई में दी मात। 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर का जलवा, संडे को 15 करोड़ रुपए कमाए।

0: और अब बात गुरुग्राम की, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और भाग निकला। महिला बाइकर सियार ने आरोप लगाया कि कार में सवार कुछ लोग पहले उसका पीछा करते रहे और बाद में उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे का वीडियो उसकी बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। सिया ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सिया के मुताबिक रविवार को वो अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ कॉर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी। सिया के मुताबिक कार में बैठे लोग नशे में लग रहे थे।
1: ये एक तस्वीर भी है और उनकी मोटरसाइकिल जब गिरती है और उस पर कैमरा लगा हुआ है ये गाड़ी। और इस गाड़ी अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो वो अपनी लेन पर चलते दिख रहे हैं और लास्ट लेन में चल रहे हैं और एक गाड़ी आती है और बिल्कुल उनकी तरफ जो इंटेंशनली जानबूझकर आप देखेंगे कि उनकी लेन में आकर बाइक को टक्कर मारी जाती है। इंतजार है गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कब करती है।
2: मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ एक्शन करता है। मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलें एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके भी, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ एक्शन करता है। मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलें एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके भी,
1: तो महिलाएं कितनी सेफ है सड़कों पर। मोटरसाइकिल चला रही महिला, उसको छेड़खानी भी एक तरीके से होती है, उसको मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा जाता है और नशे में धुत वो आरोप लगाने के थे। नशे में थे या नहीं थे, लेकिन जो उनकी हरकत थी ये निसंदेह इन पर एक्शन होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल को टक्कर भी मारी। और ये गुरुग्राम में बड़ी आम बात है, आए दिन लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, महिलाएं इस तरह की शिकायतें करती हैं कि वहां पर उन पर फब्तियां कसी जाती हैं और उनके लिए जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर गाड़ियों में काले शीशे लगाकर जो ये लोग घूमते हैं थार वाले और इस तरह के ये गाड़ियों वाले, इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है।
0: अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, इन कार चालकों का कोई सुराग मिला है पुलिस को अभी तक?
3: जी, अभी तक पुलिस को ये पता लग पाया है कि जो कार का ओनर है वो कार में उस समय सवार नहीं था। जो कार के ओनर है वो भारतीय आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं और वो अभी दिल्ली से बाहर है। उनका ये कहना है कि जो कार चला रहा था वो उनका एक दोस्त था जो उनसे गाड़ी की चाबी लेकर गया था और उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अब जो गुरुग्राम पुलिस है वो पूरे इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उसका मुआयना कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस डायरेक्शन में जो है ये गाड़ी को लेकर गए हैं और आखिर वो आदमी कौन था जो ये गाड़ी चला रहा था। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है काफी कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है जहां बाइक राइडर्स की जान पे इतनी बड़ी घटना हुई है। अभी कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में इसी जगह के आसपास ऐसी एक घटना हुई थी जहां एक बाइक चालक की जान चली गई थी। यदि किसी से जो
1: गाड़ी शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंशुल बताइए इसके बारे में कोई जानकारी मिली है आप, इसके कौन है ये व्यक्ति?
3: जी, जो क्यों से ये बताया जा रहा है कि उस समय ऐसा व्यतीत होता है कि गाड़ी में दो लोग थे और जो गाड़ी चालक है वो उनकी खुद की गाड़ी नहीं है, वो जिनकी गाड़ी है वो भारतीय आर्मी में है और उनके मित्र हैं जिनकी जो उनकी गाड़ी लेकर गए थे और उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी जो है वो गुरुग्राम पुलिस अभी निकालने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये आदमी किस डायरेक्शन में और कहां फरार हुआ है।
0: कई सारे सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें जाहिर तौर पर अंशुल ये जाहिर हो रहा है कि जानबूझकर इस महिला बाइकर को टक्कर मारी गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में एक पार्किंग अटेंडेंट ने कारगिल युद्ध के पूर्व अवसर पर लोहे की रॉड से हमला किया। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, हाथ की हड्डियां टूट गई हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अटेंडेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पुलिस पर मदद न करने और अस्पताल पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। अमित कुमार गुप्ता ऑपरेशन सफेद सागर का हिस्सा थे जिस पर हाल ही में वेब सीरीज बनी है। अमित गुप्ता मैग्नम ग्लोबल पार्क एक रेस्टोरेंट में परिवार के साथ डिनर करने के लिए गए थे जब उन पर यह हमला किया गया।
1: ये गुरुग्राम की दूसरी घटना, एक हमने सड़क की घटना दिखाई, एक घटना अब रेस्टोरेंट की है सामने आई है। दोनों ही बड़ी चिंताजनक है कि कैसे ये इनके हौसले इतने बढ़ गए कि किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं और हाथ तोड़ दिया। आप तस्वीर देखिए, लोहे की रॉड से हमला, यानी कि जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
4: किया था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी, फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है और पूरा ब्लीडिंग था। और उससे आगे फिर यहाँ मेदांता में हम आ गए थे, तो हॉस्पिटल ने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वुलिस के साथ मिलकर MLC जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी, तो वो भी कंप्लेंट मैंने डाली है हॉस्पिटल में।
5: जी, अब पुलिस कह रही है कि FIR दर्ज कर रहे हैं जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक तो पुलिस के रवैये पर और दूसरा आप पर अटैक किसने किया, क्या पार्किंग स्टाफ ने किया, किसने किया?
4: हाँ, पार्किंग स्टाफ ने अटैक किया था और पुलिस ने इनिशियली तो कोई हेल्प नहीं करी, बट कल रात से फिर जब ये थोड़ा मीडिया का प्रेशर आया तो अभी वो हेल्प कर रहे हैं और FIR भी करेंगे।
5: जी, अभी आप अस्पताल में हैं सर, अभी क्या आप, आपका
4: अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है।
5: अच्छा, आप कारगिल वार में भी रहे सर, मतलब?
4: हाँ जी, हाँ जी।
5: ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आप परिवार के साथ गए थे, एग्जैक्टली ये घटना कहाँ हुई थी?
4: हाँ, फैमिली के साथ गए थे, ये सेक्टर 58 में ग्लोबल मैग्नम पार्क मॉल है, वहाँ पे हम खाना खाने गए थे।
5: जी,
4: तो वहाँ मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे और भी पार्किंग अटेंडेंट्स थे, उन्होंने किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी, मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
5: अच्छा, आखिरी सवाल, ये घटना एग्जैक्टली किस तारीख को हुई और कितने बजे हुई थी सर?
4: 10 को रात को 8 बजे के आसपास।
1: तो गुरुग्राम से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर नोएडा तक हर तरफ ये जो अवैध पार्किंग वाले हैं, इनकी गुंडागर्दी चलती रहती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, लगातार आरोप लगते रहते हैं। अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोगे,
5: दो प्राइवेट यूनिट हैं जो पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, एक तलवंडी साबो, एक एनपीएल राजपुरा। ये दोनों यूनिट दो 3300 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। इसमें एक दिक्कत आई है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ये तीन यूनिट इसमें से शटडाउन हुए थे। एक यूनिट हमने बीती रात, निकली हुई रात को हमने लाइट अप करके चला दिया। दो यूनिट हम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिट हैं और हमने पूरी टास्क फोर्स बना के हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उसको 1-to-1 मॉनिटर कर रहे हैं। और हमें जो तकनीकी माहर है उन्होंने ये कहा है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों यूनिट हैं ये भी लाइट अप कर देंगे।
6: देखिए, ये भगवंत मान के नलायकी की वजह से आज पंजाब को ये कष्ट झेलना पड़ रहा है, और ये सोई हुई सरकार को खबर ही नहीं है कि उनके प्लांट बंद हो रहे हैं, उनके पास कोयले की कमी है। क्या टाइम से व्यवस्था करनी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनके थर्मल प्लांटों पे आज इम्प्लाई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनका वहां अरेंजमेंट नहीं है, तो कैसे पंजाब चलेगा भाई? तो मुझे लगता है कि ऐसी नलायक सरकार को चलता करना चाहिए, और उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार है नहीं।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता। किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार।

0: करने को भारत तैयार।
1: महिला एशिया कप में पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये के चलते शर्मसार फाइनल जीतने पर भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। बीसीसीआई बोले, पहलगाम हमले के बाद से हमारा स्टैंड साफ।
0: यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की दो टूक, बिहार बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन है।
1: पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर ताले जड़े, सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा।
0: और राजस्थान नगर निकाय चुनाव बीजेपी को शुरुआती बढ़त, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर समेत 7 नगर निगम में बीजेपी आगे, पाली, जोधपुर में कांग्रेस भारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: बात चार बड़ी सियासी खबरों की करेंगे। पहली खबर यूसीसी से जुड़ी, जिसे लेकर अमित शाह के बयान पर नई सियासत हो गई है। इसके साथ ही अब बात यूपी की भी करेंगे, जहां बीएसपी में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच दलित वोटों की नई जंग तेज है।
1: साथ ही हम बुलेटिन में बात उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारियों को लेकर भी करेंगे, जिसे लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग की अहम बैठक हो रही है। और साथ ही पंजाब की सियासत की भी चर्चा करेंगे, जहां पर बिजली कटौती के मुद्दे पर लड़ाई तेज होती जा रही है।
0: सबसे पहले बात राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों की, दो चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। नतीजों में राजस्थान ने बीजेपी को बढ़त है, 10 में से 7 नगर निगम में बीजेपी आगे है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा में बीजेपी आगे है। जोधपुर और पाली में कांग्रेस आगे है। राजस्थान के 309 नगर निकाय के 10,167 वार्ड्स के पार्षद पद पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है। कुल 38,889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 नगर निगम के साथ ही 252 नगर पालिका और 47 नगर परिषद शामिल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मतदान 9 और 11 सितम्बर को दो चरणों में हुआ था।
1: हमारे संवाददाता शरद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अब शरद, ये बताएं कि कौन किस पर भारी है अलग अलग जगहों से, इस समय की क्या रिपोर्ट है?
3: राजीव, भजन लाल शर्मा फिर से भाग्यशाली निकले, भाग्यशाली थे तभी पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। और नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि 2.5 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो छमाही परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसमें भजन लाल शर्मा पूरी तरह से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, तीनों ही जगह बीजेपी कांग्रेस पर भारी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ पर कोई नेता नहीं था कांग्रेस का, बिखरी हुई एक पार्टी के रूप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। भजन लाल शर्मा शहर शहर रोड शो कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री होकर कोई छोटे चुनाव में रोड शो करता है क्या, मगर इसका परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी बननी चाहिए थी 2.5 साल बाद, वो उन्होंने उसको निगेट किया है, खत्म किया है भजन लाल शर्मा ने। अगर इसी ये जो रुझान आ रहे हैं, यही अगर जीत में तब्दील हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से भजन लाल शर्मा अपने आप को मजबूत करेंगे। दिल्ली में भी एक संदेश दिल्ली तक भी जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि नए मुख्यमंत्री हैं, कई तरह की बातें होते रहती थी। ये चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव उनके लिए जीवन मरण का सवाल था, और उन्होंने परफॉर्म करके एक दिखाया है। ये कहने को उनको हो जाएगा कि हमारे कामकाज पर ये वोटिंग था और हमारे नाम पर आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हो। अगर देखें आप, हालांकि देखिए वसुंधरा राजे के लिए बड़ा झटका है, झालावाड़ जैसा 19-20 साल से बना हुआ गढ़ जो है वो ध्वस्त हो गया। झालरा पाटन जहां से विधायक है वहां भी संघर्ष कर रही है, तो ये कई जगहों पर थोड़ा सा झटका लगा है बीजेपी को। आदिवासी इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया है। अगर सीकर की बात करें, शेखावटी की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस अपने पॉकेट को बचाने में कामयाब हुई है। अजमेर में 36 साल बाद बीजेपी संघर्ष करती नजर आ रही है, कुछ पॉकेट्स में झटके भी लगे हैं, मगर पुष्कर में क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। जोधपुर में कभी आगे कभी पीछे हो रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रहा है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए थे, वहां पर नेक टू नेक मामला चल रहा है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। मगर भजन लाल शर्मा अपने इलाके में डीग और भरतपुर में ऐसा मैनेजमेंट किए थे कि कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी ही नहीं खड़े किए थे, निर्दलीय ही वहां पर जीते हैं, इसलिए वहां बोर्ड बन जाएगा। तो मुख्य रूप से बोर्ड कितना ज्यादा बनता है ये देखना दिलचस्प होता है और इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह यही ट्रेंड रहते हैं तो निश्चित रूप से भजन लाल शर्मा

0: के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और जिस तरह से जेएनजी का आंदोलन है या फिर यूजीसी को लेकर जो अगड़ी जातियों का आंदोलन चल रहा था, ये बड़े फैक्टर्स भी यहां पर दिखाई दे रहे थे। वो सारे फैक्टर्स के बावजूद अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस हार के लिए जिम्मेदार होगी। कांग्रेस में कोई जयपुर में नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही चुनावों में गायब दिखाई दे रहे थे। अशोक गहलोत अपने इलाके में दो दिन पहले गए, सचिन पायलट तो आए ही नहीं, यानी बड़े नेता कांग्रेस का कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बीजेपी एक यूनिट के चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ वसुंधरा राजे वोट डालने भी नहीं आई, बाकी सारे नेता यहां पर थे। तो एक तरह से संदेश, जिस तरह के एक माहौल बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भजन लाल शर्मा को बड़ा झटका लगेगा, कांग्रेस रिसर्जेंट होगी, नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा मुद्दा था, यहीं से खुलासा हुआ था। मगर उन सबके बावजूद बेहतर मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी ने यह जीत दर्ज की है। अब बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, देखिए संगठन के महामंत्री हैं बीएल संतोष, लेकिन बीएल संतोष दो दिन तक जयपुर में बैठे रहे निकाय चुनाव को लेकर। तो निकाय चुनाव को बीजेपी कितने शिद्दत के साथ लड़ती है, आप ये इस बात को देखिए। जो महासचिव बने हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो यहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं, कांग्रेस जो बीजेपी के महासचिव प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए। तो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बनकर बैठा रहे पिछले 15 दिन से निकाय चुनाव में। तो बीजेपी इन छोटे छोटे चुनावों को जीतने की कोशिश करती है और कांग्रेस का कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा था। स्थानीय स्तर पर जितने धड़े थे उतने पार्षद लड़ रहे थे।
1: शरद जी बताए कि सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए तो काफी हमें वहां मतलब रशा कैसे देखने को मिलती है, जद्दोजहद होती है, लेकिन निकाय चुनाव से इतनी दूरी क्यों? संगठन पर क्या आप किसी का भी नियंत्रण नहीं रहा कि उनका किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि जीतेंगे हारेंगे तो हम पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा?
0: देखिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को वहां पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सर्वे सर्वा बना रखा है। वो तीसरे आदमी को एंट्री देते नहीं है, इसीलिए ये दो लोग चुनाव में थे, लेकिन दोनों ही लोग अपने अपने इलाके सीकर और अलवर में चले गए और यहां पर पार्टी जो संभालने वाला कोई नहीं था। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा समय है कि संगठन को लेकर किस तरह से अपने आप को दुरुस्त करे। कागजों पर बहुत मजबूत नजर आती है, बयान तीखे जारी कर देते हैं, मगर जमीन पर संघर्ष करने वाला कोई मिलता नहीं है। भीलवाड़ा जहां पर नगर निगम इतना महत्वपूर्ण है, वहां पर 17 सिंबल ही जमा नहीं हो पाए टाइम से, इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां कांग्रेस ने की है। पूरे कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पाए कांग्रेस ने। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, सरेंडर कर दिया या फिर क्या रहा किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि अक्सर हम जयपुर शहर में घूमते हैं।
2: आपका शरद, इस बीच राजस्थान के कई महत्वपूर्ण नगर परिषद के रुझान भी सामने आ रहे हैं। झालावाड़, झुंझुनू, सीकर नगर परिषद में कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं सवाई माधोपुर, डूंगरपुर में बीजेपी आगे चल रही है।
1: वहीं दौसा की बात करें, दौसा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो अभी तो रुझानों में तो बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। 2.5 साल का कार्यकाल, उस कार्यकाल की किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी अभी तक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ कुछ सीट पर जरूर फाइट दिखाई दे रही। हमारे संवाददाता शरद भी इस बात की जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि शहरी संगठन उनका मजबूत हो, लेकिन उतनी मजबूती कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, मैं कांग्रेस तो ऑब्वियस बड़ी पार्टी है तो कुछ सीटों पर उनकी मजबूती दिखेगी, लेकिन जितने बड़े लेवल पर मजबूती दिखनी चाहिए थी संगठन की, उतनी मजबूती अब तक नहीं दिख रही है।
2: ठीक है शरद, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये कहा जाता है कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, दरअसल दिशा दशा तय करते हैं जब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो वहां पर। ऐसे में कांग्रेस का पीछे छूट जाना, कई मामलों में लापरवाही करना, ये अच्छे संकेत नहीं है पार्टी के लिए, खासतौर पर जब आपकी सत्ता वहां पर ना हो। आपको तो वहां पर वापसी के प्रयास करने चाहिए थे।
0: बिल्कुल सही कह रही नेहा, यही है, चुनाव होता है जहां पर आप कार्यकर्ताओं को बनाते हो, स्थानीय स्तर पर आपके कार्यकर्ता तैयार होते हैं, और इस चुनाव में सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर कार्यकर्ता आपके तैयार होते हैं जो मोहल्ले में संघर्ष करते हैं। भजन लाल शर्मा ने बड़ा जोखिम लिया था, बारिश के समय सारी सड़कें टूटी हुई है, उस समय ये चुनाव कराना एकदम जोखिम भरा काम नहीं था, फिर भी अपने संगठन के शक्ति के बल पर बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन जरूर होना चाहिए कि उत्तर भारत में एकमात्र राज्य राजस्थान है जहां पर कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। सबसे मजबूत उत्तर भारत के राज्य में अगर कांग्रेस किसी राज्य में पिछड़ती है चुनाव में तो कांग्रेस को बेचैनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे मजबूत कांग्रेस नजर आती है और सारे बड़े बड़े नेता भी हैं यहां पर। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस अगर यहां पर अच्छा नहीं कर रही है तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि माना जा रहा था कि भजन लाल शर्मा नए हैं, कई लोग परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि नए मुख्यमंत्री को लेकर पता नहीं कितना जनता साथ देगी कितना साथ नहीं देगी, मगर बीजेपी संगठन के बल पर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर किसी भी व्यक्ति को नेता बना सकती है और उसके परिणाम निकाल सकती है।
1: देखना होगा बिल्कुल आत्ममंथन कांग्रेस करती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह के बैन पर छिड़े संग्राम की। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा। ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ गई।
2: जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर है। ऐसे में यूसीसी पर नई जंग छिड़ती दिख रही है।
3: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
4: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
4: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी। दलील दी गई कि गृह मंत्री का दावा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए है।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है और ऐसे विषयों पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समय समय पर अपने स्टैंड को स्पष्ट किया है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान संविधान के अनुच्छेद 44 की मूल भावना को दर्शाता है, एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। उन्हें 2029 तक करने की बात कही है। हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है एनडीए की सरकार है वहां इसे लागू करेंगे।
4: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही, जिसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही साझा सहमति से यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे हैं।
7: हम लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसको तो हम लोगों ने शुरू से कहा, चाहे धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए या फिर कॉमन सिविल कोड को नहीं थोपना चाहिए।
4: यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
8: जनता दल यू के नेता लोजपा रामविलास के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस मामले पर स्पष्ट करें कि उनकी नीति क्या है, उनकी सोच क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
9: यूसीसी पर हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का स्पष्ट मानना है कि यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है और हम विपक्ष से भी मांग करेंगे कि वो भी इसका स्वागत करें और अपने अपने राज्य में लागू करवाने का प्रयास करें।
4: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
2: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, एनडीए के जो घटक दल हैं बिहार में, उनमें से कौन कौन राजी है यूसीसी के लिए और कौन नहीं है, क्या स्पष्टता है इस पर?
10: नहीं, देखिए सबसे बड़ी जो फांस है बीजेपी के लिए, या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही कि बीजेपी शासित और एनडीए शासित प्रदेशों में वो यूसीसी को एक टाइम फ्रेम में लागू करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी या अड़चन जनता दल यूनाइटेड को लेकर के है। और जेडीयू की तरफ से जो स्टैंड पहले था वही स्टैंड अभी भी है। आज भी जो जिन नेताओं के बयान आ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट तौर पे पहले ही कहा है कि जो यूसीसी है, ऐसे सवालों पे आपसी सहमति या आम सहमति जो है वो बननी चाहिए। तो एक तर्क ये भी है जेडीयू की तरफ से कि अमित शाह बीजेपी शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, बिहार में तो एनडीए की सरकार है। जेडीयू के ही सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं श्याम रजक, उनका भी बयान थोड़ी देर पहले आया है। श्याम रजक ने कहा है कि किसी भी कीमत में बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा। तो ये बात अपने आप में एक बड़ा संकेत है, और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जिसे कह लीजिए वो भी बिहार से ही होना है यूसीसी के सवाल पे। तो यहाँ आपत्ति है जेडीयू की तरफ से। रही बात दूसरे घटक दलों की, तो चिराग पासवान की पार्टी ने स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया है, उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी है, लेकिन हाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। तो एक तरफ समर्थन भी कहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से कड़ी आपत्ति भी सामने आ रही है। नया
1: जी शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और यह पहला राज्य है जहां पर इसे लागू किया गया, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो चुके हैं। तो ये वो राज्य है जहां पर यूसीसी वाला दाव शुरू किया गया, सबसे पहले उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है, फिर उसके बाद कुछ राज्यों में ये विधेयक पास हो गया है। और अब गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी अब जिन जिन राज्यों में सत्ता में है उन राज्यों में इसे 2029 तक तो कम से कम लागू करवाएगी। हाँ, लेकिन जहां पर एनडीए का शासन है, जो दूसरे गठबंधन दल है, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर बिहार से तो क्लैरिटी मिल रही है।
2: बर्बाद उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां दलित पॉलिटिक्स में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने न केवल भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया बल्कि अब उन पर गंभीर आरोप लगाए। मायावती ने कहा कि आकाश समेत पार्टी से निकाले गए कई लोग उनके बीमार होने का भ्रम फैला रहे थे।
1: बीएसपी में मचे इस पारिवारिक कलह के बीच में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आकाश आनंद को अपने साथ आने का न्योता दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां भी बीएसपी की उठापटक के बीच में दलित वोटों को साधने में जुट गए हैं।

0: क्या 2027 में यूपी की दलित राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद अपनी बुआ यानी मायावती के विरुद्ध जाकर राजनीति करेंगे? यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मायावती ने पहले अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को साइड किया, फिर छोटे भतीजे ईशान आनंद का नाम चर्चा में आया, फिर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का इस्तीफा हुआ और अब भतीजी दीपिका आनंद का नाम सबसे आगे है। मायावती तय नहीं कर पा रही हैं कि किसे बनाएं किसे हटाएं। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपना समीकरण साधने में जुटे हैं। जो आकाश आनंद चंद्रशेखर को दिन रात कोसते थे, आज वही चंद्रशेखर आकाश को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दे रहे हैं।
1: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुष विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हैं। वो आए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बहुजन समाज के जो महापुरुषों से अधूरे काम को पूरा करेंगे। मैं उनको जो है, मैंने हमेशा उन्होंने कहा, उन्होंने भले मेरी कितनी आलोचना की हो सब पहले, कि वो मैंने हमेशा उनको छोटा भाई माना है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी में हर व्यक्ति जो बहुजन समाज का अपने महापुरुषों विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते खुले कहने की बात।
0: यूपी की राजनीति में किंग मेकर बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर की बीएसपी से पुरानी अदावत है। वो बीएसपी की इस कलह का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। इधर मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि लोग पार्टी से निकाले गए वो बीएसपी अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में भ्रम फैला रहे हैं।
2: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में ना आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है, क्योंकि अभी भी ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि श्री अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है।
0: यूपी में बीएसपी के पतन के बाद दलित राजनीति में जो शून्य बना, उसे भुनाने की कोशिश बीजेपी कांग्रेस समाजवादियों ने की। 2024 में समाजवादी पार्टी को इसमें सफलता भी मिली, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया खुले तौर पर मायावती के भतीजे पर डोरे डाल रहे हैं। आकाश आनंद चुनावी राजनीति में अभी अनटेस्टेड हैं, लेकिन मायावती का भतीजा होने के नाते यूपी के दलित समाज में उनकी पहुंच है। आज तक ब्यूरो।
3: बात पंजाब की करेंगे, जहां पर जबरदस्त बिजली संकट है। पूरे पंजाब में दिनों अघोषित बिजली कटौती हो रही है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, मनमानी कटौती की जा रही है, कभी भी बिजली कट जाती है। बिजली विभाग का दावा है कि 4 से 6 घंटे की कटौती निर्धारित है, लेकिन हकीकत में 12 से 14 घंटे तक बिजली गुल रह रही है। बिजली संकट की वजह से पंजाब कृषि और उद्योगों पर जबरदस्त असर पड़ा है। कई उद्योग धंधे ठीक से नहीं चल पा रहे, फैक्ट्री मालिक जनरेटर ला रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, वर्कर आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं क्योंकि बिजली नहीं है, कामकाज ठप पड़ा है।
4: पंजाब में जो है पावर कट्स जो हैं वो लग रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे जो खेत हैं, वहां पे कई जगह पे किसान भी जो है धरना लगा के बैठे हैं कि जो पावर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री, हम इस वक्त मोहाली में हैं और इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, हालांकि सरकार कहती है कि कोल शॉर्टेज है, सरकार का बयान भी आया था, लेकिन ऑन ग्राउंड इंडस्ट्रिस्टों की क्या सिचुएशन है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? हमारे साथ हैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दिलप्रीत जी। दिलप्रीत जी, ये बताइए भी आपकी किस चीज की इंडस्ट्री है, पावर कट्स की सिचुएशन क्या है और दिक्कतें क्या आ रही हैं?
5: मेरी ना जी, मोहाली में हम स्वराज को सप्लाई करते हैं, हमारी फाउंड्री है, वहां आप जी पीछे देख सकते हैं हमारी इंडक्शन फर्नेस लगी हुई है। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत पावर की उस समय आती है जब अनशेड्यूल कट्स, जैसे कि अभी भी पावर बंद है मेरी फर्नेस में, आप देखिए मेटल मेल्ट हो चुका है 1500 डिग्री पे, लेकिन अब लाइट ना होने के कारण ये मेटल सारा मेरा खराब हो जाएगा, जब लाइट आएगी मुझे ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी।
4: आपने सुना भी किस तरह जो मोहाली की ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और उनका कैटेगोरिकली कहना है कि पावर कट से जो परेशान है, इनकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, डीजल का खर्चा बढ़ रहा है, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं है तो लेबर जो है यहां पर बैठी है, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से यूनिट चलते हैं और इस सिचुएशन में इनको यहां बैठना पड़ता है क्योंकि लाइट नहीं होती है। जब लाइट नहीं होती है तो क्या दिक्कत आती है?
6: काम नहीं हो पाता, फिर बिले बढ़ते हैं,
4: जाती रहती है लाइट लगातार।
6: हाँ जी, हाँ जी, लाइट चला जाता है तो मतलब काम का दिक्कत भी बहुत हो जाता है हमारा।
4: आपने सुना अभी किस तरह जो पावर कट्स हैं वो एक प्रॉब्लम है, और इस वक्त हम इंडस्ट्री में खड़े हैं और अभी भी जो लाइट नहीं है, यहाँ अंधेरा है, और जो मुश्किलें जो हैं इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को यहाँ पर आ रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।
7: तो ये पंजाब की रियलिटी हमने आपके सामने रखी है। एक और 11 में आप रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
11: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इम्पैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स एट 20 का संकल्प हो।
1: वो मंच जिसने दुनिया की वर्तमान चुनौतियों पर बात की है, उन चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है, समस्या के समाधान की पहल की है। सदा वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देने वाले भारत ने दुनिया को शांति वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही असर है कि इस ब्रिक्स समिट में एक दूसरे के प्रति नाराजगी रखने वाले दो देश एक दूसरे के गले मिले हैं, शिकवा शिकायत पर एक दूसरे से बात की है और अपनी कड़वाहट दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी मंच पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शनिवार को अबू धाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। खाड़ी में जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बात की। इन्होंने क्षेत्रीय शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रयासों के समर्थन पर सहमति जताई। ये वही मंच है जहां नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों में सहमति बनी, जिसमें पश्चिमी एशिया के जारी तनाव को दूर करने के लिए वार्ता की पहल की गई। भारत की इस पहल पर सभी देशों ने एक स्वर में साथ दिया। इस समिट में नील नदी के पानी को लेकर टकराने वाले इथियोपिया और मिस्र भी शामिल हुए, साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी इस मंच पर नजर आए। ये ब्रिक्स की बड़ी कामयाबी है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में दोस्ती वाले दांव से अहम भूमिका निभाई है। शिवानी शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक

आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कॉपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्यमों को नॉलेज, फाइनेंस और नए मार्केट से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे शहरों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है।

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 10 में से 6 नगर निगमों में रुझानों में बढ़त, कांग्रेस को उम्मीद फिर धराशायी, रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर अभी भारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की भी दो टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन है। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले, सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। पहले से पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर स्थिरता बढ़ी, किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर में सबसे पहले रिपोर्ट गुरुग्राम से। गुरुग्राम में कारगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक पर हमला हुआ है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, FIR करवाई गई। और FIR के मुताबिक पार्किंग स्टाफ ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया, उनसे उन पर जो है जानलेवा एक तरीके से हमला था, जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने पुलिस पर मदद ना करने का और अस्पताल पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप भी लगा है। अमित गुप्ता मैग्नम ग्लोबल पार्क के एक रेस्टोरेंट में परिवार के साथ डिनर करने के लिए गए थे और उसके बाद पार्किंग स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, जानलेवा हमला किया, रॉड से हमला किया। उनके हाथ में चोट आई है, उनका हाथ बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर भी हुआ है। पार्किंग अटेंडेंट ने उन पर लोहे की रॉड से हमला किया और उसके बाद जब वो पुलिस में गए तो पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की, ये भी उनकी तरफ से शिकायत है। और उनका कहना है कि मीडिया की तरफ से जब दबाव बना तब जाकर पुलिस ने उनकी FIR रजिस्टर करवाई।
1: करगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन अमित कुमार गुप्ता पर गुरुग्राम में जानलेवा हमला हुआ। वारदात 10 सितंबर की है जब अमित कुमार गुप्ता गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गए थे। सेक्टर 58 के रेस्टोरेंट के पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोप है कि पार्किंग स्टाफ ने लोहे के रॉड से अमित कुमार गुप्ता पर जानलेवा हमला किया, जिसमें अमित कुमार गुप्ता को गंभीर चोट आई। अमित कुमार गुप्ता ने आज तक से बातचीत में बताया कि जब उन पर हमला हो रहा था तो मॉल का स्टाफ और पार्किंग का स्टाफ शांति से सब कुछ देख रहा था, बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अमित कुमार गुप्ता ने गुरुग्राम पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सोशल मीडिया पर मामला उछलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अमित कुमार गुप्ता इंडियन एयरफोर्स के रिटायर ग्रुप कैप्टन हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था।
0: आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता से बातचीत की, उनकी जुबानी सुनिए कि उनके साथ हुआ क्या था।
2: ले जा रहे थे मॉल पे और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है और पूरा ब्लीडिंग था। और उससे आगे फिर यहाँ मेदांता में हम आ गए थे तो हॉस्पिटल ने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस के साथ मिलके MLC जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी, तो वो भी कंप्लेंट मैंने डाली है हॉस्पिटल में
3: जी। अब पुलिस कह रही है कि FIR दर्ज कर रहे हैं जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक तो पुलिस के रवैये पर और दूसरा आप पर अटैक किसने किया, क्या पार्किंग स्टाफ ने किया, किसने किया?
2: हाँ, पार्किंग स्टाफ ने अटैक किया था और पुलिस ने इनिशियली तो कोई हेल्प नहीं करी, बट कल रात से फिर जब ये थोड़ा मीडिया का प्रेशर आया तो अभी वो हेल्प कर रहे हैं और FIR भी करेंगे
3: जी। अभी आप अस्पताल में हैं सर, अभी क्या आप आपका
2: में... अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है।
3: अच्छा, आप कारगिल वार में भी रहे सर, मतलब?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आप परिवार के साथ गए थे, एग्जैक्टली ये घटना कहाँ हुई थी?
2: फैमिली के साथ गए थे, ये में ग्लोबल मैग्नम पार्क मॉल है, वहाँ पे हम खाना खाने गए थे
3: जी।
2: तो वहाँ मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें।
0: गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला भी सामने आया है, हैरान कर देने वाला विजुअल है। कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और उसके बाद भाग निकला। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया है कि कार में सवार लोग पहले उसका पीछा कर रहे थे और बाद में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। हादसे का वीडियो उनकी बाइक पर लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सिया ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सिया के मुताबिक रविवार को वो अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी। सिया के मुताबिक कार में बैठे हुए लोग नशे में लग रहे थे और शो ऑफ के लिए कट मारना चाह रहा था और उसने उसके बाद बाइकर को कैसे टक्कर मार दी ये कैद हुआ है वीडियो में।
4: गुरुग्राम में एक बार फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये मामला गुड़गांव के सेक्टर 45 का है, जब एक महिला अपने बाइकर गैंग के साथ संडे को दिल्ली से गुड़गांव की तरफ और गुड़गांव से आगे जयपुर की तरफ जा रही थी। तभी एक आदमी जिसे बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में धुत था, वो वहां आता है, महिला को रोकने की कोशिश करता है। जब महिला वहां नहीं रुकती तो वो पीछे से गाड़ी तेज रफ्तार में लेकर आता है, महिला की बाइक को टक्कर मारता है। महिला बहुत कस के जोरों से जमीन पर गिरती है और बाइक कुछ मीटर तक घिसरते हुए जाती है। इसके बाद जो बाइकर गैंग के अलग अलग लोग थे, जो उसके मित्र थे, उनके साथ जा रहे थे, वो लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं, गाड़ी को कुछ आगे जाकर रोकते हैं और जब रोकने की कोशिश करते हैं तभी वो गाड़ी वाला नहीं रुकता और वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। गुरुग्राम पुलिस को इस मामले में एक कंप्लेंट भी दे दी गई है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। आज तक ने जब गाड़ी के ओनर से बात की तो ये पता लगा कि जो गाड़ी के ओनर हैं वो भारतीय फौज में काम करते हैं और उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने दो दिन के लिए उनसे गाड़ी की चाबी मांगी थी। उन्होंने अपने एक दोस्त को गाड़ी की चाबी दी और उस दोस्त ने एक और शख्स व्यक्ति को जो है उस गाड़ी का कंट्रोल दे दिया, जिसके बाद वो शख्स वो गाड़ी लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद इस वक्त फरार है।
0: गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कब होगी, ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं 12 बजे 12 रिपोर्ट में। अगली रिपोर्ट आपको राजस्थान से देते हैं। राजस्थान में निकाय चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। 10 में से 7 नगर निगम में बीजेपी आ गए हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा में बीजेपी आ गए हैं। नगर निकाय चुनावों में 5,837 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 2,407 वार्ड पर बीजेपी जीत चुकी है। 2,200 वार्ड पर कांग्रेस जीत रही है। 1,230 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या इस समय तस्वीर है, फासला कितना बड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में?
5: देखिए, बीजेपी बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। 309 निकायों में से करीब करीब 200 के आसपास बीजेपी बढ़त बना ली है। 10 बड़े नगर निगमों में से 8 में बढ़त बना ली है। तो भजन लाल ने कमाल कर दिया है। जैसा माना जा रहा था कि पहले मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, कितना संभाल पाएंगे, संगठन कैसा है, मगर उसके बावजूद ये परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं। खासतौर से जिस तरह से पेपर लीक को लेकर राजस्थान बहुत ज्यादा बदनाम था और बड़ा मुद्दा था, इस सरकार में पेपर लीक का ना होना, युवाओं के लिए लगातार नौकरी निकलना भी एक बड़ा फैक्टर रहा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार के आने के बाद नौकरियों के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ, ज्वाइनिंग के लिए भले ही आंदोलन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर जो है ये बड़े शहरों में काम किए हैं। बहुत सारी कमियों के बावजूद भजनलाल शर्मा ने रोड शो करके उसे ढकने की कोशिश की। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा अपने छमाही परीक्षा में पास हो गए हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि कम से कम बराबर का टक्कर तो देगी ही, अगर ज्यादा नहीं निकल पाए थे। तो पिछली बार के अगर आंकड़े देखें आप राजीव, तो पिछली बार 196 में 125 में कांग्रेस थी, मात्र केवल 61 में बीजेपी थी।
0: आत्मंथन करती है कि नहीं, अपने इस प्रदर्शन पर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। 12 बजे 12 रिपोर्ट में आप अगली रिपोर्ट दिल्ली से, जहां पर रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि LAC पर चीन ने सेना की तैनाती कम कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में उत्तरी सीमा पर चीनी PLA की तैनाती में काफी कमी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी LAC सेक्टर्स में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत और मुस्तैद है और वो किसी भी अचानक पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
6: ₹25-26 की रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने अपनी सैन्य तैनाती में कटौती की है और ये बेहद अहम इसलिए है क्योंकि भारत और चीन लगातार बातचीत के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मसलों को सुलझाने में लगे हैं। 2024 से अब तक यानी ब्रिक्स सम्मेलन तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 3 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं और सीधे इसका असर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिखाई दे रहा है, जहां पर चीन अब अपनी तैनाती को कम कर रहा है। WMCC की बैठक हो या फिर कोर कमांडर लेवल बैठक, लगातार बातचीत के जरिए फ्रिक्शन पॉइंट्स पर अपने अपने डिफरेंसेस को सुलझाने की बात की जा रही है और अब इस बात का जिक्र रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने अपनी तैनाती बरकरार रखी है और भारत अपनी मजबूत पोजीशन पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे पर न सिर्फ जमीन पर है बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी लगातार बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 तक NDA शासित सभी राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि अब तक सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर UCC लागू किया जा चुका है। बीजेपी शासित राज्यों में कई राज्यों में इसकी तैयारियां हैं। अमित शाह ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है कि 2029 तक सभी बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जाएगा।
7: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है। तीन तलाक की समाप्ति कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया, ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: यूसीसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का 2029 वाला बयान आया तो बिहार तक सियासत तेज है। बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय गृहमंत्री का बयान संविधान की मूल भावना और एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, तो वही जेडीयू कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आपसी सहमति से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने अमित शाह के बयान का समर्थन कर दिया है, कहा कि देश में समानता और आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए यूसीसी जरूरी है। 12:12 रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए। वेरिफिकेशन के लिए पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है।
8: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है, खास तौर पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। राज्य सरकार ने लगभग 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया है, नोटिस भेजा गया है। साथ ही 100 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि वहां पर जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको लेकर काफी संदेह है राज्य सरकार के मन में। दरअसल एक सर्वे कराया गया था, सर्वे में 2300 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एक लिस्ट आई पूरे राज्य में, इनमें से 252 को लिस्ट जारी की है, बंद करने का नोटिस दिया गया है। राज्य सरकार का साफ कहना है कि मॉडर्न जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुरूप ही मदरसों में शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वहां पर जो करिकुलम होता है वो राज्य सरकार के मुताबिक नहीं होता है। ऐसे में ये एक्शन शुरू हो चुका है।
0: बीजेपी का कहना है कि यह एक्शन देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। आपको लॉकेट बनर्जी का बयान सुनाते हैं।
9: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मद्रासा में बम बना रहे, मद्रासा के आसपास में बहुत सारा कुछ इल्लीगल काम होते हैं, मद्रासा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था। लेकिन जो पिछले सरकार था उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, तो हमारे सरकार संकल्प लिया है जो जितना सारा इल्लीगल, जितना सारा देश विरोधी कार्यकलाप होगा उसके ऊपर इन लोग पूरा देखेंगे। इसलिए बहुत सारा मदरसा का हुआ है, फिर भी होगा। अगर मदरसा कोई बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा काम करते, अच्छा शिक्षा देते, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो मदरसा में देश विरोधी कार्यकलाप होते हैं, जो मदरसा में जो अस्त्र शस्त्र को लेके बम बंदूक गोली का कारोबार चलते हैं, वो मदरसा क्यों रखना है हमारे देश में? हमारा देश में बच्चा लोगों को खराब नहीं करना है, हमारे देश में बच्चे लोगों को शिक्षा देके विकसित भारत करने के लिए आगे बढ़ाना है।
0: अब खबर लखनऊ से। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 33 जिलों के डीएम जमा हुए। डीएम के साथ जिला निर्वाचन और अन्य अधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। ईवीएम और वीवीपैट की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की यह बैठक है।

0: उनके साथ बातचीत करके तैयारियों की जानकारी ली जा रही है और क्या नए निर्देश भी दिए जाएंगे तैयारियों के संबंध में। ईवीएम से जुड़े मामलों पर एक इम्पोर्टेंट बैठक।
1: उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी कुछ समय शेष हो, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक है। बैठक में 33 जिलों के अधिकारी यानी कि डीएम, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की कोर टीम मौजूद है। इस बैठक का एजेंडा है ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग, यानी कि संदेश साफ है, तकनीक के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की कोशिश और उसको लेकर एक बड़ी बैठक। यहां पर अधिकारियों को ट्रेन भी किया जाएगा, निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए ये बताया भी जाएगा। तो वहीं हर राजनीतिक दल से एक एक प्रतिनिधि जब मशीन की जांच हो उस वक्त मौजूद रहे, ये मैसेज भी दिया जाएगा, जिससे भले ही समय के साथ सियासी पारा प्रदेश का चढ़े, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी जमीन पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाने की बनी रहे और उसको लेकर चुनाव आयोग का चक्रव्यूह फिलहाल अभी से बैठकों के माध्यम से रचा जा रहा है।
0: अगली रिपोर्ट भी यूपी से, जहां पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद क्या आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर से हाथ मिलाएंगे, बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर ने आकाश को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया है।
2: बहुजन समाज पार्टी में उथल पथल। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने साफ कह दिया है कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के लगातार संपर्क में हैं और राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फोन कर ये तक पूछ रहे हैं कि किस तरीके के अब हालात हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नेता साफ तौर से उन्होंने पूरी तरीके से आकाश आनंद को अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। संदेश साफ है कि मिलकर जेएनजी की टीम कांशीराम के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अभियान चलाएगी और जिससे कि ये मिशन पूरा होगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं इससे भी जाहिर होता है कि कांशीराम के जिस एजेंडे को बात करती हैं बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती, अब उसको आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के जरिए आगे बढ़ाना चाहती है। और यही वजह है कि एक तरफ तो आकाश आनंद अपने ससुर के संपर्क में, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के हैं, 2027 के चुनाव में आकाश आनंद को साथ में खड़े होने का न्योता दे चुके हैं।
0: और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में जबरदस्त बिजली संकट है और पूरे पंजाब में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ताजा रिपोर्ट बता रहे हैं आज तक संवाददाता कमलजीत संधु।
3: जहां में बिजली संकट गहराता जा रहा है, यानी कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर रूरल एरिया की बात करें, अब आपको बता दें यहां पे संकट इतना गहरा चुका है कि 3000 से 4000 मेगावाट की शॉर्टेज है, यानी जो पीक डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो डिमांड उनकी भरपाई है उसमें खूब सारी डेफिसिट है। इसका मतलब क्या है कि लंबे घंटों के कट लग रहे हैं, जिसको लेके इंडस्ट्री वाले काफी नाराज हैं, किसान भी सड़कों पे उतरे हैं और उससे दिक्कतें बढ़ती आ रही हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है और सीधा केंद्र सरकार को निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल एलोकेशन है उससे पंजाब का जो डिमांड है वो कम कर दिया गया है और पीछे से ही कोयला सप्लाई कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें राज्य में बढ़ गई हैं।
0: अब बात विमेन्स टी20 एशिया कप में पाकिस्तान के गृह मंत्री की फसीहत की। एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पोडियम पर मोहसिन नकवी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर का इंतजार ही करते रहे, लेकिन हरमनप्रीत नहीं पहुंचे और पूरी खबर बता रहे संवाददाता राहुल रावत।
4: कहते हैं कि खेल और सियासत को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन ये बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को कौन समझा है। उनकी जिद और उनकी हसरत एशिया कप ट्रॉफी देने की इस बार भी अधूरी रह गई। भारतीय महिला टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जहां दोनों एशिया कप टाइटल ट्रॉफीज अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में बंद हैं, बीसीसीआई ने इस बार आश्वासन दिया है कि पिछले साल की मेंस एशिया कप ट्रॉफी के साथ ये एशिया कप ट्रॉफी भी भारत आई। दिल्ली से राहुल रावत आज तक।
0: पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता राहुल रावत ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा सुने।
5: हम लोग नहीं बोल रहे कि बीसीसीआई चैंपियन है तो बीसीसीआई का कोई करियर का टास्क का हाथ से ट्रॉफी दे दीजिए। हम लोग का यही कोशिश था कि जो डिप्टी चेयरमैन है खालिद भाई उनका हाथ से ट्रॉफी दे दे, लेकिन वो हमारा बिनती कबूल नहीं किया है वो लोग ने। तो हमारा कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रॉफी जीतता है। आप भी अभी बोल रहे हैं भारत चैंपियन हुआ, सारे विश्व ने टेलीविजन में देखा है, मेंस में भी एशिया कप में मेंस में इंडिया चैंपियन हुआ था, आज वुमेन्स में भी चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना वाला है, स्कोर बोर्ड में काफी स्कोर क्लियरली लिखा हुआ है, सबने टेलीविजन में देखा है कि इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया है 72 रन से।
0: विवादों से निकलकर अब असली खबर, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कल दुबई में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर विमेंस टी20 एशिया कप जीत लिया और यह 8वीं बार है जब भारतीय महिलाओं ने टी20 एशिया कप जीता है।
6: विमेंस एशिया कप का टाइटल एक बार फिर से भारतीय टीम जीतने में कामयाब हुई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 183 रन लगाए जो कि श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा साबित हुए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की शानदार 129 रन की पार्टनरशिप की वजह से भारतीय टीम इस टोटल तक पहुंचने में कामयाब हुई। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने फीकी साबित हुई। पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ ने श्रीलंका को झटका दिया और उसके बाद दूसरे विकेट पर ऐसा लगा कि शायद श्रीलंका कुछ पार्टनरशिप करेगी, लेकिन वो रन की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजी का जो प्रेशर था वो लगातार बढ़ते रहा और एक के बाद एक श्रीलंका के विकेट गिरते रहे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम इस मुकाबले को 72 रन से जीतने में कामयाब हुई। दीप्ति ने 3 विकेट निकाले, वहीं श्री चंडी को 4 सफलताएं मिली। भारत ने इस टाइटल को 8 बार अब जीत लिया है।
0: अब बात गणपति उत्सव के, देश भर में आज से गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई है। मुंबई के पांडालों में गजब के रंग है और रंग दिखा रहे हैं संवाददाता मुस्तफा शेख।
7: मुंबई में गणेश उत्सव के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जहां घर पर गणपति विराजमान होते हैं वहीं मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में हजारों लोग भक्ति के दर्शन के लिए यहां पर लाइन लगाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के चिंचपोकली में चिंतामणि गणपति के वहां मौजूद है, भव्य मूर्ति हमारे पीछे है। तिरुपति बालाजी का एक थीम जो है इस साल दिया गया है और ये 107 वर्ष चिंतामणि गणपति जो है वो पूरे कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गणेश भक्ति जो है वो कैसे होती है। सोने के मुकुट के साथ सजाया गया है बाप्पा की मूर्ति को, यहाँ पर आशीर्वाद मुद्रा में यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं युवा हो, बच्चे हो, उसके साथ साथ बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आते हुए आपको दिखेंगे। इस समय मुंबई की हालत कैसी है तो ये आप देख सकते हैं कि लालबाग का राजा, गणेश गली, चिंतामणि गणपति, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो कतार में हैं, लाइन में हैं बप्पा की एक झलक पाने के लिए। जब यहाँ पर चरण के पास स्पर्श के लिए पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुख उन लोगों को प्राप्त होता है।
0: पुणे में भी गणेश उत्सव से पहले दिन जबरदस्त उत्साह दिखा और ओमकार बाबले की रिपोर्ट आप देखिए।
8: मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुणे में अब चल क्या रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से भीड़ आ चुकी है, सब लोग पुणे की शोभा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। रास्ते की इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, सभी लोग अलग अलग जगहों से आज शामिल हो चुके हैं गणपति बाप्पा के आगमन के लिए। बाप्पा आएंगे, शांति लाएंगे, जिसे हम सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं, वही गणपति बाप्पा आज विराजमान होंगे पुणे में। पहले 5 जैसे मैं बोल रहा था जो गणपति होते हैं उनका आगमन अब हो रहा है, उसी के बाद ये पुणे का ट्रेडिशन रहा है कि उसके बाद ही अलग अलग घरों में हो या फिर सार्वजनिक तौर पे हो गणपति बाप्पा आएंगे पंडालों में, उसी पंडाल में आएंगे 10 दिन सब के साथ रहेंगे, मोदक खाएंगे।
0: अब रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
12: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे
13: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
14: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
15: अब मैं क्या ही बोलूं,
16: परिवार अटूट भरोसा।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: लेके
18: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

यूपी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई सीडीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर समेत कई जिलों के सीडीओ बदले गए। सुमित राजेश महाजन को यूपी स्टार्टअप मिशन का सीईओ बनाया गया। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी पूरी तरह से पारदर्शी और हर चरण में राजनीतिक दलों की सहभागिता होगी। लखनऊ में 33 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग, ईवीएम वीवीपैट की एविल सी के लिए अधिकारियों को दिए जा रहे हैं विशेष प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप त्रिणवा बोले, ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी में पारदर्शिता और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करेंगे, विपक्ष चुनावों पर विशेष फोकस रखे हुए। सीएम योगी ने 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व आउटरीच की कवायद तेज की। रामगोपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के नाम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने यूपी में अघोषित आपात

व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए। सीएम योगी ने गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी, बोले कि गणेशोत्सव सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने वाला महापर्व। मथुरा में सपा नेता पर महिला को आईएएस बनवाने का प्रलोभन देने का आरोप है, महिला से बातचीत की चैट भी आई सामने। आरएलडी नेता ने प्रलोभन देने वाले सपा नेता पर बोला हमला, कहा कि अभी सरकार आई नहीं तब ये हाल है, सरकार बन गई तो क्या करेंगे। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव का दावा, लगभग एक दर्जन कार्यकर्ता घायल, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। बाराबंकी में एक थाने में दो सिपाहियों के बीच में मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, तीन दिवसीय बैठक में शामिल हुए। राम मंदिर निर्माण कार्य और आगामी योजनाओं पर अहम चर्चा, समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा। नृपेंद्र मिश्रा ने पुराने अस्थायी मंदिर में चल रहे सौंदर्यकरण कार्य का निरीक्षण किया, ट्रस्ट सूत्रों ने जानकारी दी। बलिया में जर्जर प्राथमिक स्कूल के दो कमरों को बुलडोजर से गिराने पर सियासत, अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाए। बीएसए बोले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर दो कमरों को ध्वस्त किया गया और जल्दी नए कमरे बनकर तैयार होंगे। रायबरेली में जेंजी पर बोले राजा भैया, कहा हमारी सभ्यता संस्कृति से मेल नहीं खाता, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार लोगों को रौंदा, इसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर फिर जाम लगा दिया। यूपी के उन्नाव में यूट्यूबर का बर्थडे पार्टी देने का वीडियो वायरल, रेस्टोरेंट पर लंबी कतार, लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो वायरल। बलिया में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान की निर्मम हत्या, परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग। वाराणसी में डॉक्टर के सुसाइड की वजह का खुलासा, घरेलू कलह और एनेस्थीसिया की ओवरडोज से गई जान।

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब यूसीसी नया मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह उम्मीद जताई है कि 2029 से पहले देश के सभी एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से यूपी चुनावों के जमीनी मुद्दों से आगे एक और भावनात्मक मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही है।

0: यूपी में बीजेपी की चुनावी राजनीति का बड़ा आयोजन इस बार पीएम मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हो रहा है। 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहे इस अभियान में बीजेपी अपने कामकाज का प्रचार घर घर तक करने और वोटर्स से संपर्क बढ़ाने के लिए कर रही है। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान ने चुनाव प्रचार की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अमित शाह ने दावा किया कि जिस तरह बिना खून की एक बूंद भी बहाए जम्मू कश्मीर 370 की बेड़ियों से आजाद हो गया, जिस तरह महिला अधिकारों और बराबरी की लड़ाई लड़ रही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली, उसी तरह आने वाले 3 साल से पहले देश के एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है। 3 तलाक की समाप्ति कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया, ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड UCC को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: जिस देश में वोट की सियासत के चक्कर में राजनीतिक दलों ने 3 तलाक विरोधी कानून तक की मुखालफत की, जहां कट्टरपंथी वोट को समेटने के लालच में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 क्षण से आगे गाने सुनने तक को तैयार नहीं, वहां समान नागरिक संहिता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बड़ा चुनावी मुद्दा है।
2: तब यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपके अंदर ही एक रूपता नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के साथ में आपको हिंदू

0: अनडिवाइडेड फैमिली लॉज को भी चेंज करने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? और सबसे बड़ी बात, सारे व्यापारियों से तो पूछ लीजिए कि HUF के सक्सेशन फैमिली स्ट्रक्चर को आप बदल पाएंगे। मैं कहता हूं उससे हमारी बहनों को बहुत ज्यादा स्वायत्ता मिलेगी, लेकिन क्या जो व्यापारिक घरानों के बड़े बड़े व्यापार हैं उनको टूटने का खतरा नहीं बढ़ेगा?
1: देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है पिछले 12 सालों में जो मुसलमानों के खिलाफ है। क्या UCC से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या UCC से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या UCC से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? आप 21 स्टेट में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, का मतलब है सिविल कोड के अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। आज हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का अलहदा अलहदा पर्सनल कानून है, आप उन कानूनों को 21 जगह बना देंगे?
2: UCC मतलब समान नागरिक संहिता, यानी एक देश एक कानून, जिसमे देश के किसी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इसमें बेटे बेटियों को समान उत्तराधिकार वाले अधिकार होते हैं। विवाह विच्छेद से लेकर उत्तराधिकार और गोद लेने तक के समान कानून होते हैं। यहाँ तक कि लिव इन से उत्पन्न संतानों के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। इस कानून के लागू होने से बात विवाह, बहुविवाह, हलाला, इज्जत जैसी कुप्रथाओं से भी मुक्ति मिलती है। UCC का सबसे अधिक फायदा समाज की महिलाओं को होता है, जिन्हें बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलते हैं, कई बार विशेषाधिकार भी मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका विरोध होता रहा है। चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए UCC का विरोध अक्सर होता रहा है, लेकिन UP और देश में जब कांग्रेस के नेता संविधान की किताबें दिखाकर उसकी रक्षा के लिए जनता से वोट मांगते हैं, तो उसी संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखा गया है।
3: क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हो सकते ना है, और हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। विचारधारा किसी की कुछ भी हो जाए, लेकिन वो संविधान से तो अलग नहीं हो सकती। अभी इन्होंने जो कुछ भी किया है, जहाँ जहाँ किया है, उत्तराखंड में किया है और प्रांतों में किया है, और ये और प्रांतों में करना चाहते हैं।
2: UCC को केंद्रीय स्तर पर लागू करने के विवाद से बचते हुए केंद्र सरकार इसे राज्यों के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और अब तक देश के कई राज्यों में ये लागू भी हो चुका है, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड में UCC लागू किया जा चुका है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी UCC लागू होने की प्रक्रिया जारी है, जबकि गोवा जैसे राज्य में 1867 से ही समान सिविल कोड चला आ रहा है। अमित शाह के बयानों की माने तो आने वाले 3 साल के अंदर देश के 21 राज्यों में कानून लागू होने जा रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: बढ़ते आगे, यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी के लिए सनातन सबसे बड़ा मुद्दा है। शायद यही वजह है कि जब रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री योगी वहां जाते हैं।
2: श्रद्धालुओं पर बरसती फूल की पंखुड़ियां, सिर पर कलश उठाए हजारों की संख्या में महिलाएं, और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता ऊंचा हार का विशाल पंडाल। जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4-1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की ऊंचा हार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ था, और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
5: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
2: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का है, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
6: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
2: हालांकि इस मंच से कोई चुनावी भाषण नहीं हुआ, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति है।
0: भारतीय जनता पार्टी यही करती है, राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और जो धर्म की राजनीति करते हैं उनका अयोध्या में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका मथुरा में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका काशी में क्या होने वाला था ये भी समझ में आ गया। तो भगवान महादेव ने बताया था कि सुधर जाओ, 5 राउंड तक हराया है, ज्यादा करोगे तो अगले 15 राउंड भी हराए जाएंगे।
2: दरअसल जिस ऊंचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके।
7: ये एक महाशिव पुराण है, लेकिन भारी संख्या में उमड़ी महिलाएं, कलश यात्रा और सनातन के जरिए सियासी संदेश एक बात साफ करता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है और विपक्ष को सनातन का पाठ पढ़ाती फिलहाल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस सनातनी पाठ को लेकर पलटवार क्या होता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से इस समय देते हैं, जहां भीषण आग बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में लगी है और जो वहां से तस्वीरें सामने आ रहे हैं वो डरा देने वाली हैं। ये मुरादाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का कोना कोना आप देखिए, एक कोने से दूसरे कोने तक काफी बड़े एरिया में ये फैक्ट्री लगी हुई है और धू धू कर पूरी की पूरी फैक्ट्री जल रही है। इस फैक्ट्री में क्या काम होता है इस बारे में जानकारी भी मिलना बाकी है, लेकिन अभी इस समय की जो ये तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, सब कुछ इसमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जो ये फैक्ट्री है और मुरादाबाद चूंकि वहां पर बहुत बड़ा एरिया है जहां पर औद्योगिक गतिविधियां चलती हैं तो बहुत संवेदनशील हो जाता है क्योंकि सटी हुई और भी फैक्ट्रीज होती हैं, लेकिन इस समय ये तस्वीरें हैं, एक बड़ी फैक्ट्री है और उस पूरी फैक्ट्री में आग लगी हुई है। आग लगने का कारण क्या है, कितने लोग भीतर थे, सुरक्षित हैं या नहीं, इस बारे में जो जो अपडेट आएगा हम तत्काल आपको बताएंगे, लेकिन इस समय ये फुटेज, इस समय ये तस्वीर आई है जो इस समय दिखा रहे हैं हम आपको, इस तस्वीर में पूरी फैक्ट्री जलते हुए दिखाई दे रही है और आग की लपटें, धुएं का गुबार बता रहा है कि आग कितनी भीषण है। लपटें बाहर ये सुबह का समय आप देखेंगे कि जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी फैक्ट्री में खिड़कियों से लेकर अब छत तक हर तरफ आग लगी हुई है। जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल अलग लग रहा है, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या काम चलता है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसका बाहरी इसकी बनावट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत मजबूत स्ट्रक्चर तो इसका बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस पूरी फैक्ट्री को आप जलते हुए देखेंगे और जो लोग हैं, जो वहाँ कर्मचारी, आप देखेंगे कि भीतर का कूलर और दूसरी चीजें भीतर से जो बचा सकते थे आग के बीच में उनको बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस समय की तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, मुरादाबाद में ये भीषण आग लगी है और आग बुझाने का काम इस समय चल रहा है। मैसिव फायर, ये भीषण आग है और बताया जा रहा है कि नजदीकी जो फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, ये फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर है और प्रयास अब आग बुझाने का है, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए कई घंटे का समय लग सकता है, कई ज्यादा फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो एक ही पानी की बौछार दिखाई दे रही है लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैली और पीछे की तरफ आप देखेंगे कि पेड़ भी हैं, फिर झाड़ियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी फायर ब्रिगेड के सामने होंगी, लेकिन ये विजुअल, ये तस्वीर अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा है। कैसे आग लगी, क्या जो है, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इस समय मुरादाबाद में आग बुझाई जा रही है। लेकिन जब आप दो ही फायर ब्रिगेड आपको देखेंगे, कर्मचारी हैं और वो हाथ से ही पानी फेंक रहे हैं, मशीन अभी तक नहीं दिख रही है, बड़ी गाड़ियां इस आग को बुझाते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि खिड़की से जो भीतर का दृश्य है वो सब जलता दिख रहा है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये किस चीज की फैक्ट्री है, कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ है, क्या जानकारी है?
8: देखिए, ये मुरादाबाद में जो फैक्ट्री है, इसमें जो पहले से चल रही थी, इसमें कुछ बोल्ट का काम भी होता था, इसके साथ साथ कुछ अलग अलग पार्टिकल्स भी रखे जाते थे, उसी में अचानक ये आग लगी है, जिसके बाद वहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और लगातार जो राहत और बचाव कह सकते हैं या किस बुझाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है वो अचानक लगी, उसका कारण समझ में नहीं आया अभी तक कि किस तरीके से ये आग लगी है, और इसी को लेकर अब पूरी तरीके से प्रशासन ने कमर कस ली और वहां पर फायर टेंडर तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर पहुंच चुके हैं और वो सभी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले इस जो फैक्ट्री है जो इसकी आग को बुझाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कैंडल्स भी थी और कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें थी जो छोटी छोटी थी वो भी बन रही थी, और इसको लेकर भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस आग लगने के पीछे क्या शॉर्ट सर्किट का वजह हो सकता है या इसके पीछे कुछ और भी, तो उसके कारण के जांच भी की जा रही है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में ये है कि सबसे पहले तो आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जिस लेवल पर मैसिव ये आग आई है उससे कहीं ना कहीं ये पूरा जो इलाका है कह सकते हैं जो बुद्ध बाजार का या जो वहाँ का कह सकते हैं कि कृष्णा कॉलोनी का वो सारा एरिया पूरी तरीके से जो है डिस्टर्ब हो गया, और उसको लेकर ये पूरी तरीके से प्रयासरत है कि कैसे भी इस आग को पहले काबू किया जाए, उसके बाद से ही इस पूरे मसले पर आगे बढ़ा जाए। तो साफ तौर से अभी इसके पूरे दृश्य जो हम देख रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है साफ तौर से किस तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तो जरूर है कि इसमें जो भी फर्क लगेगा कि जिसकी वजह से ये हुआ है उस पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अभी शुरुआती में पहले बुझाने की प्रक्रिया है कि जल्दी से जल्दी फायर टेंडर के जरिए इन पर कंट्रोल किया जाए और कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आया जाए।
4: बिल्कुल, वो विजुअल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आशीष, फैक्ट्री के बारे में पता चला कि क्या काम इस फैक्ट्री में होता था?
8: जी बिल्कुल, देखिए अभी बताया जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते थे इसमें, कुछ बताया गया कि वैक्स का भी काम होता था, कुछ कहा जाएगा कि इसमें जो गत्ते हैं वो भी रखे जाते थे, इस तरीके के अभी शुरुआती जांच में आया है। लेकिन जल्द ही इसके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी कि आखिर इसमें और क्या क्या होता था।
4: आशीष, आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। मुरादाबाद में ये फैक्ट्री में आग लगी है, फिलहाल जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पूरी फैक्ट्री इस समय आग की जद में है। और अब एक और बड़ी खबर यूपी से ही आपको देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। ये एक और बहुत बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक स्तर पर फेर बदल किया गया है। विश्वभूषण मिश्रा को उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत अधिकारियों को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसी कड़ी में ये विश्वभूषण मिश्रा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उप सचिव बने, तो ये बदलाव हुआ है। उनको कार्यपालक अधिकारी जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के थे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, उस पद से हटा दिया गया है। नई जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। उत्तर प्रदेश में ये प्रशासनिक लेवल पर बड़े फेरबदल हुए, हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ है। आशीष, ये जो बदलाव हुआ है, ये उनका पद बढ़ाया गया है या कम किया गया है? लगता है उससे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर है। विश्वभूषण मिश्रा का जो पद है वो बदल दिया गया है, ये बड़ा चेंजेस जो है हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सनातन के नाम की चुनावी सियासत और सनातन की नगरी में संकट पर सियासत। यूपी में चुनावों से पहले राजनीति के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वाराणसी के चिताईपुर में महिलाएं सड़क पर उतरकर बदहाली और जल जमाव के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का होने के बावजूद सड़क नाली नाले की बदहाली की शिकायत को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर वाराणसी के मेयर आरोप लगा रहे हैं कि सीवर में बोरियां डालकर पूरे सिस्टम को जाम करने की राजनीतिक साजिश हो रही है। अब बीजेपी का आरोप है कि वाराणसी में सीवर सफाई के दौरान सीवर को चोक करने के लिए बोरियां डाली गई, वो बोरियां बरामद हुई हैं। इसे लेकर वाराणसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने जब वाराणसी में जल जमाव के बाद सीवर की जांच की पड़ताल की तो बोरियां मिली, सीवर में बोरियां डाली गई थी ताकि उसे चोक कर दिया जाए।
9: ये हमारे शिवाला पे, दुर्गा कुंड पे, ये हमारे क्या कहते हैं दुनिया पे, ये जहां जहां आप देख रहे हैं वीडियो आ रहा है वहीं पे हम लोग जब जांच कर रहे हैं यही चीजें पाई जा रही है।
10: ये कोई राजनीतिक पार्टी इस पे खेल कर रही है?
9: मैं राजनीतिक पार्टी नहीं कह, लेकिन मुझे लगा अखिलेश यादव जी अगर ट्वीट करें इतनी छोटी बातों को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई सूचना उनको दे रहा है, लेकिन जो सूचना का स्रोत है वो बहुत बिना जानकारी का है और ये अच्छी बात नहीं।
11: अगर मिलता है कोई ऐसे डालता हुआ सीसीटीवी भी तो क्या करेंगे?
9: जल निगम के जलकल के अधिकारियों ने FIR कराया है और कानून अपना काम करेगा।
4: और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा,
15: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
16: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
17: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
18: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
19: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी।
14: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
20: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
21: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 10 में से 6 नगर निगमों के रुझानों में बढ़त। कांग्रेस की उम्मीद फिर धराशायी, रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर भारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की 2 टूक, बिहार बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले, सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता, किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार। गुड़गांव में करगिल युद्ध के नायक के साथ गुंडागर्दी, कार पार्किंग में कहा सुनी पर बुरी तरह पिटाई, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, अब तक केस दर्ज नहीं।

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 10 में से 6 नगर निगम के रुझानों में बढ़त। राजस्थान निकाय चुनाव बीजेपी 2407, कांग्रेस 2200 और निर्दलीय 1230 वार्ड्स में जीते। राजस्थान के 309 नगर निकायों के 10,167 वार्ड्स के पार्षद पद पर हुए चुनाव पर मतगणना जारी है। कुल 38,889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 10 नगर निगम के साथ ही 252 नगर पालिका और 47 नगर परिषद शामिल हैं। जानकारी के लिए मतदान 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में राजस्थान में हुआ था। यूपी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई सीडीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर समेत कई जिलों के सीडीओ बदले गए। सुमित राजेश महाजन को यूपी स्टार्टअप मिशन का सीईओ बनाया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी पूरी तरह पारदर्शी, हर चरण में राजनीतिक दलों की सहभागिता। लखनऊ में 33 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग, ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी के लिए अधिकारियों को दिए जा रहे हैं विशेष प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले, ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव पर विशेष फोकस रहेगा। सीएम योगी ने की 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व आउटरीच की कवायद तेज। रामगोपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के नाम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही। रामगोपाल यादव ने यूपी में अघोषित आपातकाल का लगाया आरोप, बोले सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, ब्रिक्स, विकास, पुलिस कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर उठाए गए सवाल। सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी की दी शुभकामनाएं, बोले गणेशोत्सव सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने वाला महापर्व है। समाजवादी पार्टी ने मायावती पर कहा, अगर चार बार की मुख्यमंत्री 30 साल के लड़के से इतना घबरा जाती हैं तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत सबके सामने है। समाजवादी पार्टी ने महाशिवपुराण पर बोले सीएम योगी के बयान पर कहा, कथा में भक्ति की बात करनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं। बीजेपी का पुराना तरीका है धर्म के बीच में राजनीति ले आओ। आरजेडी नेता ने प्रलोभन देने वाले सपा नेता पर बोला हमला, कहा अभी सरकार आई नहीं है, तब यह हाल है तो सरकार बन गई तो क्या करेंगे। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव का दावा, एक दर्जन कार्यकर्ता घायल, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। रायबरेली में जेन जी पर बोले राजा भैया, कहा हमारी सभ्यता संस्कृति से मेल नहीं खाती है, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। बलिया में जर्जर प्राथमिक स्कूल के दो कमरों को बुलडोजर से गिराने पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके उठाए सवाल। बीएसए बोले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर दो कमरे ध्वस्त किए जाएंगे, जल्द नए कमरे बनकर होंगे तैयार। अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, 3 दिवसीय बैठक में होंगे शामिल। अयोध्या में राम मंदिर पर नई फिल्म की तैयारी, साउथ नेता कबीर दुहन सिंह ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, बोले हनुमान जी की कृपा है। गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला आया सामने, कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और भाग निकला, मौके का वीडियो बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया कि कार में सवार लोग उनका पीछा कर रहे थे, बाद में उनकी बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला बाइकर अस्पताल में भर्ती। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। देवरिया में मोनू हत्याकांड के हाफ एनकाउंटर पर बवाल, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, एसएचओ बोले दबाव आया तो लिखकर थाने से चला जाऊंगा। मुर्शिदाबाद में पुलिस पर उपद्रवियों ने फेंके बम, एक एएसआई घायल, आरोपियों की तलाश जारी। अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का लक्ष्य, बोले इंडिया फर्स्ट हमारी नीति का आधार है। अमित शाह बोले सर्जिकल एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश, पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाई है। भाषा विवाद पर अमित शाह बोले मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति, अवैध घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई का भी दावा।
सीएम मोहन यादव का नेहरू गांधी परिवार पतंजलि समुद्र नहीं होता तो अरब देशों तक पहुंच जाते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के जारी 125,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए। उत्तरी सीमा पर पीएलए की तैनाती में बड़ी कमी, एलएसी के सभी सेक्टर्स में भारतीय सेना मजबूत और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत में स्थिरता, राजनीतिक कूटनीतिक सैन्य स्तर पर संवाद जारी, विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता शुरू। बंगाल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य में ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस दिया गया है। करीब 100 मदरसों को शो कॉज नोटिस जारी, सरकार के मुताबिक 2132 मदरसे वैध मंजूरी के साथ चल रहे हैं, 2396 संस्थानों के पास जरूरी सरकारी अनुमति नहीं है। बंगाल के मदरसों पर दिलीप घोष का बड़ा बयान, बोले आतंकी हमलों में मदरसों के शिक्षकों की भूमिका की जांच जरूरी है, मदरसों में हर एक चीज संदिग्ध है। दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई और बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी वहां पनाह लेते थे। टीएमसी सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई, ईसीआई के नोटिस पर ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा 16 सितंबर तक अंतिम जवाब देना है, 17 को फिर हो सकती है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में डेंगू के एयर मरीजों की संख्या 5,000 के पार, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित। बेंगलुरु में नकली कैंसर दवाओं का बड़ा रैकेट बेनकाब, 90 से ज्यादा अस्पताल जांच के घेरे में, 5 करोड़ रुपए की संदिग्ध नकली दवाएं बरामद, फार्मेसी मालिक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की जांच तेज। पंजाब में बिजली संकट गहराया, उद्योगों में 12 में से 14 घंटे कटौती, बिजली की मांग 16,519 मेगावाट पहुंची। पंजाब बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पटियाला में पीएसपीसीएल दफ्तर के बाहर राजा वड़िंग के नेतृत्व में होगा विरोध। किसानों का आप सरकार के खिलाफ 5 दिन का प्रदर्शन आज से, मंत्री और विधानसभा स्पीकर के घर के बाहर होगा आंदोलन। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले एसएडी की तैयारी तेज, सुखबीर बादल ने 19 सदस्य घोषणा पत्र समिति बनाई। पंजाब के बिजली संकट पर केंद्र का दावा, कोयले की कमी नहीं है, राज्य को पर्याप्त कोयला दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे घने बादल, कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम, सैलानियों के लिए सौगात। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है मेडिकल टीमें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम सुहावना, डल झील के शिकारे का मजा ले रहे हैं सैलानी। राजौरी में इस बार अखरोट की शानदार खेती, किसानों को अच्छी आमदनी की है उम्मीद। अमेरिका के कनेक्टिकट में भारी बारिश का कहर, वेस्ट पोर्ट की सड़कों पर डूबी कारें। अमेरिका में फ्लैश फ्लड की चेतावनी के बीच कई सड़कें जलमग्न, रेस्क्यू टीम ने फंसे वाहन चालकों को बाहर निकाला। लातेहार में गहरे पानी में 2 साल की बच्चियों की डूबने से मौत, हादसे से गांव में पसरा मातम। महबूबाबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर भर गया पानी, कई जगह ट्रैफिक ठप। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश। जयपुर में पिता ने पत्नी संग 3 बेटियों के लिए जान, आरोपी की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के उन्नाव के यूट्यूबर का बर्थडे पार्टी देने का वीडियो आया सामने, रेस्टोरेंट पर लगी लंबी कतार, लैम्बर्गिनी के साथ फोटो हो रहा है वायरल। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। कोटपुतली में 11,000 किलोवाट बिजली लाइन की चपेट में आया डंपर, दू दू कर जला, चालक ने कूदकर बचाई जान। गुजरात के वलसाड में कार में आग, बाल बाल बचा दंपत्ति। बलिया में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान की निर्मम हत्या, परिजनों से अंतिम संस्कार से किया इनकार, एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में डॉक्टर के सुसाइड की वजह का खुलासा, घरेलू कला और एनेस्थीसिया के ओवरडोज से गई जान। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 लोगों को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में भीषण आग, प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक, 2 से 3 घंटे में पाया गया काबू।
बाराबंकी थाने में दो सिपाहियों में मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, दोनों किए गए लाइन हाजिर। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन, मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम शहरों सहित पूरे देश में गणेश उत्सव का शुभारंभ। आज से घर घर में और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पंडाल में विराजे बप्पा, अगले 10 दिन तक धूमधाम से जारी रहेगी विनायक की पूजा। मुंबई में मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल में आज सुबह से शुरू हुए दर्शन, उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 11 सितंबर को दिखाई गई थी लालबाग चौराहा की पहली झलक, आज से अगले 10 दिन तक होंगे दिव्य दर्शन। लालबाग के पंडाल में साल बापा नारंगी रंग की धोती पहनकर विराजमान है, दर्शन के लिए कोने कोने से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना रिलीज, एआर रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के सुरों का जादू। राम नाम की भक्ति में रंगेगा रामायण का पहला गाना, जय जय राम के जरिए फिल्म की भव्यता की झलक मिलने की उम्मीद। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की बंपर कमाई, रविवार को 22.5 करोड़ का नेट कलेक्शन। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बना रही कमाई के नए रिकॉर्ड, मिर्जापुर द मूवी और ऐवान को भी कमाई में दी मात। 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी का जलवा, संडे को 15 करोड़ रुपए कमाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 215 करोड़ के पार। महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर किया कब्जा। टीम इंडिया की रही शानदार शुरुआत, शेफाली वर्मा ने 68 रन की तूफानी पारी के लिए, स्मृति मंदाना ने 59 रन का दिया अहम योगदान। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रन का दिया था विशाल लक्ष्य, श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स ने भी बरपाया कहर, श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 की हार का लिया बदला, एशिया कप में सभी 5 मैचेस जीतकर अजय और विजेता बना भारत। महिला एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को दी बधाई। भारत अफगानिस्तान T20 से पहले दिल्ली स्टेडियम में पहली बार गूंजा वंदे मातरम, 6 अंतरों के बाद बजा राष्ट्रगान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद BCCI ने शेयर की तस्वीरें। जीत के बाद भारतीय टीम का बड़ा फैसला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से टीम ने किया इनकार। ट्रॉफी विवाद पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा, ACC डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को तैयार थी टीम इंडिया, प्रस्ताव ठुकराया तो सेरेमनी का क्या बहिष्कार। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार 3री बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम की ने फाइनल मेजबान चीन को 1-0 से हराया। हॉकी इंडिया ने विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रूपये कैश अवार्ड की घोषणा की, सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रूपये नकद पुरस्कार देने का ऐलान। जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में एक और कामयाबी, भारत लगातार 4थी बार बना चैंपियन। साउथ कोरिया का राकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, FIAH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की।

इस बीच बड़ी खबर राजस्थान के निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर वोटों की गिनती अब भी जारी है। नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है, 10 नगर निगम में बीजेपी 5 में आगे है, जबकि कांग्रेस को 3 नगर निगम सीटों पर बढ़त है। जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला है, वहीं भरतपुर में निर्दलीय आगे हैं। जिन पर नगर निगम में बीजेपी आगे उनमें शामिल हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, जबकि कांग्रेस अजमेर, पाली और बीकानेर में आगे। तो 5 नगर निगम में बीजेपी आगे है, कुल 10 की गिनती जारी है, 3 में कांग्रेस आगे है और 2 पर निर्दलीय। वहीं राजस्थान नगर निकाय के 7,712 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं। 3,181 वार्ड्स पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 2,875 वार्ड्स पर कांग्रेस विजयी रही है, 1,656 वार्ड्स पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं।

0: इस निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं गिनती को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिलाधिकारी से शिकायत की है उन्होंने।
1: 101 नंबर वार्ड से 101 नंबर वार्ड से इन्होंने जीता हुआ घोषित कर दिया था दुर्गेश शर्मा को, और 81 वोटों से दुर्गेश शर्मा को जीता हुआ घोषित करके यहाँ काट पीट कर रखी है। वो बेचारा निकल गया, उनके कैंडिडेट एजेंट निकल गए, उसके बाद उसको हरा हुआ घोषित कर दिया। मैंने कहा दोबारा आपकी पेटियां उनको दोबारा दिखा दो, क्लियर हो जाए सारी पोजीशन, तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। 101 नंबर जो इन्होंने बाद में डिक्लेयर किया बीजेपी को, ये गलत बात है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आए, हम मिलकर आए, अधिकारियों का नहीं, हम दोबारा दिखा देंगे। कहीं पे यदि 100 वोटों के अंतर से दिक्कत आ रही है तो आप उसको दिखा दो। 101 नंबर में दुर्गेश शर्मा को जिता दिया इलेक्शन डिपार्टमेंट ने, इन्होंने सबने सब, और वो बाहर निकल गए बेचारे। उसके बाद बीजेपी को डिक्लेयर कर दिया 71 वोटों से कि साहब वापस हो गई काउंटिंग। ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं होता है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। रिकाउंट, वो रिकाउंटिंग क्या, तो डिक्लेयर करके बदल दिया रिजल्ट 101 नंबर में दुर्गेश शर्मा का, तो ये फेयर थोड़ा घोषित होता है। तो इसमें तो इनके अधिकारियों के ऊपर बात उठेगी, सरकार पर उठेगी। चीफ मिनिस्टर जयपुर का होने का मतलब ये नहीं कि कोई बेईमानी हो, ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए इलेक्शन में।
2: देखिए, हम कलेक्टर साहब से इस बात पे मिलने आए हैं कि जो हमारे प्रत्याशियों को इन्होंने जीत घोषित कर दिया था उनको रिकाउंटिंग में लेके उनको हरा रहे हैं। एक इसी तरीके से वार्ड 52 है हमारा सांगानेर में, वो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्लियर कट हम जीत रहे थे, उसको रिकाउंटिंग में डाल दिया, उसकी रिकाउंटिंग करा रहे हैं, और जो हमने, जो हम जीते हुए थे, हम जीत रहे थे, उनको ये हारा हुआ दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे चलने नहीं देंगे। रिकाउंटिंग में जो है ना वो न्याय करे। हम कलेक्टर साहब से ये कहने आए हैं, कलेक्टर साहब ऐसे पार्शलिटी नहीं करने देंगे।
0: शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये काउंटिंग रिकाउंटिंग का क्या सिलसिला है? जो जहां से हार रहा है वो बेईमानी का आरोप लगा रहा है, सच क्या है दरअसल?
3: अब देखिए, सच तो क्या है अंदर हम बता नहीं सकते हैं कि अंदर अलाउड नहीं है जहां पर काउंटिंग हो रही है, मगर जो कांग्रेस के नेता हैं वो जगह जगह आरोप लगा रहे हैं, चाहे करौली है, जयपुर है, या फिर अलवर है, जोधपुर है, कई जगह इस तरह की घटना सामने आई है जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि फेयर काउंटिंग नहीं हो रही है। मगर इसके बावजूद देखिए तो परिणामों में अगर देखेंगे तो 309 में से करीब करीब 153 पर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है, और ये आंकड़ा 175 के आसपास जा सकता है। तो इस लिहाज से देखें तो बीजेपी एक बड़ी तस्वीर में जीतती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पार्षदों की संख्या जो आपने बताया उसमें भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द जो बड़े शहर हैं, देखिए बीकानेर में कांग्रेस जीत गई है करीब करीब, अजमेर में बहुत ही कांटे का मुकाबला है, 37 और 36 पर है, जोधपुर में 45-44 पर है मुकाबला, तो ये अलवर में भी इसी तरह से करीब करीब 36-37 पर चल रहा है। तो ये अलवर हो, अजमेर हो, या फिर बीकानेर हो, या जोधपुर हो, ये बड़े शहरों में जो अटक रही है बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है कि जो इनका बिल्कुल बड़ा जनाधार का केंद्र हुआ करता था वहां पर बीजेपी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है, मगर जिला परिषदों में बीजेपी ने बेहतरीन काम किया है, जो बड़े शहरों के से थोड़ा छोटे शहर होते हैं। नगर पालिका में भी कांग्रेस बीजेपी दोनों करीब करीब बराबर है, थोड़ा सा बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। नगर पालिका में ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से सटा हुआ आता है, नगर परिषद में बीजेपी ज्यादा अच्छा कर रही है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें चुनाव परिणाम के हिसाब से तो 5 में क्लियर कट, नगर 10 में से 5 में क्लियर कट बीजेपी आ गई है। उस लिहाज से देखें तो बीजेपी आगे है। भरतपुर में एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने निर्दलीय खड़ा किया था, वहां पर कांग्रेस है ही नहीं, वहां निर्दलीय है और बीजेपी है, तो आप वहां कांग्रेस को मान नहीं सकते, वो निर्दलीय और बीजेपी मिलकर ही सरकार बनाएंगे। भरतपुर में शुरू से परंपरा रहा है कि लोग निर्दलीय खड़े होते हैं कि जो जिसको वोट बनाने होगा वो हमें पैसे देगा और हमें खरीदेगा,
0: ठीक है,
3: तो पुरानी परंपरा है वहां की, तो वहां पर निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। तो इस तरह से कहें तो भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी तस्वीर है, लेकिन बड़े शहर उनके लिए चिंता का विषय है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे समान नागरिक कानून की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 तक एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। बीजेपी शासित अब अन्य राज्य इसकी तैयारी में है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि 2029 तक सभी बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
4: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है। तीन तलाक की समाप्ति करकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया, ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: वहीं यूसीसी पर गृहमंत्री के बयान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही एक समिति गठित कर चुकी है, रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर अमल करेंगे।
5: देखिए, यूसीसी बनाने के लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी तैयार कर दी है, कमेटी काम कर रही है और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर अमल करेंगे।
0: यूसीसी पर अमित शाह के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इससे सकारात्मक कुछ और नहीं हो सकता है।
6: ये इससे बड़ा सुखद समाचार देश के लोगों के लिए नहीं हो सकता। जो कॉमन सिविल कोड ये लागू करना, ये तो जब हम तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ। हमने अपना शादी विवाह करने के सारे कानून को उसमें मान लिया भारत सरकार के कानून के साथ, लेकिन इनका दूसरे धर्म पर वोट बैंक नजर आ रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक देश एक कानून यही लोग हैं जो 370 का विरोध कर रहे थे, यही लोग हैं जो कहते थे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक ही कहा गृह मंत्री जी ने, एक खून का बूंद भी नहीं गिरा। आज भारत माता की जय, तिरंगा लेके लाल चौक पे लोग जाते हैं।
0: उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, यह पहला राज्य है जहां इसे लागू किया गया, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो चुका है।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान संविधान के अनुच्छेद 44 की मूल भावना को दर्शाता है, एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। उन्हें 2029 तक करने की बात कही है। हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे। महिलाओं को अधिकार देने की बात विशेष रूप से इसमें है, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। इससे जो बहुत सारी कुरीतियां समाज में थी खत्म भी हुई हैं, जैसे तीन तलाक ये सब खत्म हुआ है और महिलाओं को संपत्ति में अन्य चीजों में अधिकार मिलेगा। तो महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए एनडीए सरकार शुरू से काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी और इस क्रम में इसे भी लागू करना आवश्यक है।
0: ब्रेक के लिए फोन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: और वही कहां गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: एयू,
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

10 में से 6 नगर निगमों में रुझान में बढ़त, कांग्रेस की उम्मीद फिर धराशायी, रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर भारी। यूसीसी पर बिहार, एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की दो टूक, बिहार बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में वैध मदरसों पर सरकार कड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले, सरकार के सर्वे बिना मंजूरी, 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता, किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार। गुरुग्राम में करगिल युद्ध के नायक के साथ गुंडागर्दी, कार पार्किंग में कहा सुनी पर बुरी तरह पिटाई, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, अभी तक केस दर्ज नहीं।

एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां सड़क से लेकर पार्किंग तक गुंडागर्दी के दो मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला सामने आया, एक कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और भाग निकला। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया कि कार में सवार लोग पहले उसका पीछा कर रहे थे और बाद में उसकी मोटरसाइकिल टक्कर मारकर मौके से ही फरार हो गए। हादसे का वीडियो उनकी बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सिया ने घटना का वीडियो जारी किया। गुरुग्राम के ही मैग्नम ग्लोबल पार्क की एक और घटना है, जहां पर पार्किंग अटेंडेंट ने करगिल युद्ध के एक पूर्व अवसर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सर पर गंभीर चोटें आई हैं और हाथ की हड्डी टूट गई। और साथ ही इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर हिट एंड रन के मामले में एक कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी, जो हम आपको बता रहे थे, और फरार हो गया। बाइकर ने हादसे का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो का ही संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश तेज है। महिला बाइकर सिया ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और उसके मुताबिक रविवार को अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी। सिया के मुताबिक कार में बैठे लोग नशे में लग रहे थे।
1: Hey guys, see other side and please watch this video till end.
2: दिल्ली NCR में जो हुआ है उसकी ये हैरान करने वाली तस्वीर देख लीजिए।
1: Hey guys, see other side and please watch this video till end.
2: एक महिला बाइकर को कार सवार पहले धमकाता है, फिर टक्कर मारता है और सड़क पर गिरकर महिला बाइकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है।
1: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया।
2: ये तस्वीर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हादसे की।
1: वो आज वहाँ से भाग गया।
2: रविवार को ये वारदात हुई। उस वक्त पीड़ित महिला बाइकर अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर निकली थी, तभी कार सवार मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वो महिला बाइकर को चेज करने की कोशिश कर रहा था।
1: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। एंड आज संडे राइड था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से। सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए। सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए।
2: ये सभी वीडियो बाइकर्स के हेलमेट और अन्य गियर्स में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार बेकाबू रफ्तार से महिला बाइकर की तरफ जाता है और उसे टक्कर मार देता है। हादसे के बाद पीड़िता का दोस्त कार वाले का पीछा करता है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताते हुए मौके से भाग जाता है।
1: कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ऊपर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
2: रविवार को ये घटना घटी। उसके बाद महिला बाइकर ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की और आरोपी को बेनकाब करने की कोशिश की।
1: मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे इजीली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
2: पीड़िता की तरफ से इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर खुद संज्ञान लिया है और सेक्टर 56 थाने में आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो वायरल वीडियो और घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन और चालक की पहचान की जा रही है।
3: इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
4: सर क्या कुछ

0: पहचान
1: अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पहचान है वह की जाएगी और उसके अंदर जो कंसर्न्ड सेक्शंस हैं उसके अंदर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं इस संबंध में स्ट्रिक्टली यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो रैश ड्राइविंग की और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की और घटनाएं हैं और जो इस प्रकार के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस और गुरुग्राम पुलिस जो है उनकी जो है पैनी नज़र रहती है और इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार जो सख्त धाराएं हैं उनके अंदर FIR रजिस्टर करके लीगल एक्शन से प्रोसीड किया जाएगा।
2: खुलासा हुआ है कि कार चला रहे आरोपी ने अपने दोस्त से कार ली थी, उसके दोस्त ने किसी अपने दोस्त से कार मांगी थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: जानकारी के मुताबिक जिस कार से टक्कर हुई वो कार एक मनीष नाम के शख्स के नाम रजिस्टर्ड है। मनीष सिंह ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने अपनी कार अपने दोस्त को दी थी, उनके दोस्त ने किसी तीसरे शख्स को दी और तब ये हादसा हुआ। इस मामले में कार के मालिक मनीष सिंह से बात की आज तक संवाददाता अंशुल सिंह ने।
4: आपका एक ये नंबर मुझे मिला था, बेसिकली कल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के नंबर।
5: हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था, बट वो सर उसमें बात ये है, जो गाड़ी है ना।
4: जी जी
5: मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर, आर्मी में हूँ। वो
4: अच्छा।
5: बंदा मतलब जो हाँ, जो मेरा एक क्लास फेलो जो मेरा फ्रेंड था, उसके वो भुआ का लड़का था, उसने मेरे से वो लड़का मेरे से 2 दिन के लिए गाड़ी मांग के ले जाना सर। तो मैंने
4: अच्छा।
5: जो वीडियो देखी तो मैंने कॉल किया, मैंने भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ है। अब मेरे पे हर मिनट में कितने कॉल आ रहे, कोई गाली दे रहा, कोई क्या कर रहा, कोई
4: हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि उन लोगों ने वो आपका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया गाड़ी का।
5: हाँ हाँ तो मेरे पे सर दुनिया भर के तो कॉल आ रहे हैं।
4: जी
5: कोई
4: जी
5: गाली
4: जी
5: दे।
4: तो आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था घटना, कुछ
5: बताया? बात मैंने फोन नहीं उठाया सर, मैं अब उसे ट्राई कर रहा हूँ, कई बार कर रहा हूँ।
4: अच्छा, तो आपको भी नहीं पता है वो कहाँ पर है अभी?
5: नहीं, अपने गांव में है सर। वो
4: कहाँ पर है सर उनका गांव?
5: पलवल में है सर, टीकरी गांव है उनका।
4: अच्छा, पलवल में टीकरी गांव है उनका। सर तो आपको उन्होंने कुछ बताने की कोशिश, या गाड़ी आपकी अभी वापस की है उन्होंने?
5: अभी गाड़ी नहीं आई सर मेरी, मैंने बोल दिया, मैंने भाई जितनी मेरी गाड़ी ठोकी है ये सर मेरी सही करके दे, और जो ये केस हुआ है इसे अपना भाई निमटा, अपना तू वीडियो में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कॉल तो मेरे पे आ रही है, मेरे पे दुनिया भर की कॉल आ रही है सर, हर मिनट में 50 कॉल आ रही है।
4: जी जी सर, आपको पुलिस ने कांटेक्ट किया क्या सर, गुड़गांव पुलिस ने?
5: नहीं, गुड़गांव पुलिस का तो फोन नहीं आया सर, न्यूज वाले सर का कॉल आया था, तो मैं उनपे ऑनलाइन, उन्होंने मेरा नंबर मतलब बातचीत करवाई थी न्यूज पे, तो मैंने सर सब कुछ बता दिया उनको।
4: ठीक है सर, आपके पास आप अगर इतनी मदद कर दें तो हम उनको दिखा पाएंगे ढंग से, क्योंकि आप तो देश के लिए सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। तो जो
5: मैं
4: ये
5: आपका उनका एक मतलब आप मेरे पे हाय मतलब वो आपको एक व्हाट्सएप मैं नंबर देता हूँ अपना सर।
4: जी सर,
5: उस पे आप हाय सर, वो नंबर मेरा प्लीज शेयर मत करना, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी का नंबर है, ये नंबर मेरा चल रहा है,
4: ठीक है
5: मेरा व्हाट्सएप है, उससे मैं आपको उसका फोटो भेज सकता हूँ, गाँव की डिटेल भेज सकता हूँ सर, जो आप मांगोगे मैं आपको वो दे सकता हूँ।
4: ठीक है सर, आप कितने दिनों से जानते थे इसको सर?
5: सर मैं उसको मतलब वर्बली जानता हूँ, मतलब कि वो जिम वगैरह करता था, जैसे इंस्टा वगैरह पर रील डालता था, जैसे आज की वीडियो नहीं आ जाती ऐसे जानता था, पर जो बंदा जो मेरा खास दोस्त था जिसका वो भुआ का लड़का है उसको मैं प्रॉपर जानता हूँ, हम साथ पढ़े थे।
4: तो 2 लोग थे उस समय गाड़ी में, और
5: गाड़ी में वो अकेला था, गाड़ी में वो वही था जो बंदा वीडियो में आ रहा है, उसके साथ नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी परेशान है, वो भी उससे कॉल कर रहा है, वो भी उससे मतलब कि झूठ बोल के कहाँ चला गया गाड़ी लेके, वो खुद परेशान है, उसका भी कॉल पे कॉल कर रहा है वो उससे।
3: तो कार मालिक मनीष सिंह का यह कहना है कि कार उनके नाम भले ही हो लेकिन उनसे कोई कार मांग के ले गया था, उसके बाद किसी तीसरे शख्स ने वो कार चलाई जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कार सवार की तलाश की जा रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो कार मालिक कह रहे हैं क्या दरअसल वही सच है?
6: बिल्कुल, देखिए उनका ये दावा भी है और अभी तक की जांच में ही सामने आया। बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो विक्टिम महिला महिला बाइकर, उसने अपनी तरफ से अभी तक गुरुग्राम पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है। गुरुग्राम पुलिस ने उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, जो वीडियो, उसके आधार पर खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 56 में FIR दर्ज की है और मामले की जाँच की जा रही है। एक्चुअल घटना क्या हुई, कैसे हुई, वो जब एक्चुअल फुटेज गुरुग्राम पुलिस के पास आएगा तभी पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी, किसने किसको टक्कर मारी और किस तरह से बाइक चली थी। हालांकि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो महिला बाइकर है वो चली जा रही है और अचानक से कार आती है और टक्कर मार के और फिर वहां से जो आरोपी है वो फरार हो जाता है। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है, जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है, जब आरोपी गिरफ्त में आएगा और जो प्रॉपर पूरी फुटेज है गुरुग्राम पुलिस को मिलेगी उसके बाद ही एक्चुअल तस्वीर सामने आ पाएगी।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वही गुरुग्राम से एक और घटना सामने आई है। गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में एक पार्किंग अटेंडेंट ने कारगिल युद्ध के पूर्व अवसर पर लोहे के रॉड से हमला किया। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, हाथ की हड्डी टूट गई है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अटेंडेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने पुलिस पर मदद न करने और अस्पताल पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप भी लगाया है। अमित कुमार गुप्ता ऑपरेशन सफेद सागर का भी हिस्सा थे, जिस पर हाल ही में एक फिल्म बनी है। अमित गुप्ता मैग्नम ग्लोबल पार्क एक रेस्टोरेंट में परिवार के साथ डिनर करने के लिए गए थे, जिसके बाद यह घटना हुई।
0: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला। पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक। पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
7: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे
8: जी।
7: और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है।
0: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
7: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे और भी पार्किंग अटेंडेंट्स से, किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
0: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
7: उन्होंने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर MLC जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
0: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है।
1: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर FIR रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार FIR में हमने लॉन्च कर दी गई है और उस FIR के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वह लिया जा रहा है।
0: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, गुरुग्राम के ACP कह रहे हैं अब FIR दर्ज हो गई है, लेकिन पहले क्यों नहीं दर्ज हुई थी FIR, इस बारे में कुछ बता पाए वो?
9: जी, गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि वो सारे साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे जिसके
8: से की जाए, कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, इसी को लेकर के समय लगा क्योंकि जो पूरा मामला हुआ ये 11 और 12 की रात को हुआ और जो कंप्लेंट ऑफिशियली दी गई वो 13 की रात को ही दी गई। तो उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई है और उसके बाद FIR दर्ज कराए गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊं तो मैं इस वक्त उसी मॉल के सामने खड़ा हूं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। यही मैग्नम ग्लोबल पार्क मॉल है जहां पर जो आर्मी वेटरन है वो अपने परिवार के साथ यहां पर आए थे और रेस्टोरेंट के सामने अपने परिवार को उतार के वो गाड़ी पार्क करने आगे जाते हैं, तब जाकर के उनकी जो ये है ये पूरी झड़प जो है ये होती है। बेसमेंट पार्किंग को लेकर के जो झड़प हुई और उसके बाद उन्हें बहुत बेरहमी से वहां पर जो पार्किंग गार्ड मौजूद था उसने बहुत बेरहमी से मारा। गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने जो अक्यूज्ड है उसे इस वक्त आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये एक्शन कई देर पहले ही हो जाना चाहिए था। जिस दिन PCR कॉल हुई थी उसी दिन ये एक्शन तुरंत हो जाना चाहिए था, लेकिन काफी समय गुरुग्राम पुलिस को लगा इस पूरे मामले में ऑफिशियली कंप्लेंट लेकर के FIR दर्ज करने में, जिसके वजह से करीब 48 से 72 घंटे बाद जो है अभियुक्त की पहचान हो पाई है और अब गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि वो उसे जल्दी से जल्दी हिरासत में ले लेंगे।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ शुभेंदु सरकार का एक बड़ा एक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 252 मदरसों को बंद किया है जबकि अन्य करीब 100 मदरसों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार के एक्शन को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने बंद किए गए मदरसों का आतंकी कनेक्शन जोड़ दिया है।
2: क्या बंगाल के कुछ मदरसों से आतंकी साजिश रची जा रही है? क्या आतंक के अड्डे बन गए हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे? बंगाल सरकार ने सख्त एक्शन उठा लिया है। जिन मदरसों पर सवाल उठे हैं उनमें से 250 से ज्यादा को बंद कर दिया गया है जबकि वैसे करीब 100 मदरसों को नोटिस भी थमा दिया गया है। सरकार ने नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। बंगाल में सैकड़ों मदरसों पर सवाल ऐसे ही नहीं उठे। सरकार की दलील है कि इस कठोर फैसले से कई कसौटी पर उन मदरसों को परखा गया, फिर 252 मदरसों को बंद कर दिया गया
9: एवं संग्रहित तथ्य सठीक जाचाइर जन्य राज्य स्तर थेके विशेष परिदर्शक दल पाठानो होयेछिलो। जाचाइर फलाफलेर भित्तिते प्रथम पर्याये मद्रासा शिक्षा अधिदप्तर एवं 252 मद्रासाके তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
2: जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी मदरसों में एक व्यापक जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया है। इसी के तहत करीब 100 अन्य मदरसों को नोटिस थमाया गया है, उनमें से ज्यादातर खारिजी मदरसे हैं। शुभेंदु सरकार ने कोलकाता और 22 जिलों के सभी मदरसों से दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। सरकार का कहना है कि जिनके पास वैध मान्यता है वे चलते रहेंगे।
9: এছাড়া গুরুতর অসঙ্গতি পাওয়া গেছে আরও এমন 100 মাদ্রাসাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বৈধ অনুমোদনহীন কর্তৃত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
2: বিজেপি সরকারকে অ্যাকশন পর সওয়াল উঠে তো শুভেন্দুকে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ নে চৌঁকানে বালা বয়ান দিয়া আর উসকা আতঙ্কি কানেকশন বতায়া।
10: मद्रासा में हर बात डाउट में है, पहली बार नहीं है। पिछले 20 साल से देखिए बंगाल में कितने बार इस प्रकार घटना घटी है। जो यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें कोई ना कोई मद्रासा टीचर रहा है और आज भी हैं, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है। बुद्ध बाबू से लेकर कई नेता बार बार चिंता प्रकट की है लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया है, उसका हम लोग समाधान करेंगे।
2: राज्य सरकार चेतावनी भी दे रही है कि स्क्रूटनी में कुछ भी अवैध पाया गया तो सरकार के एक्शन का सामना करना होगा।
10: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहां सरकार की अनुमति नहीं वहां नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति लें और चलाएं, जिनके पास अनुमति है उनका चलेगा।
2: बंगाल में अभी सरकारी मान्यता या अनुमोदन के साथ 2132 मदरसे चल रहे हैं जबकि किसी भी सरकारी बोर्ड या संस्था की जरूरी मंजूरी के बगैर राज्य में 2396 मदरसे संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार उन मदरसों का सत्यापन करा रही है। विशेष निरीक्षण दल वैसे मदरसों को वेरीफाई करने में जुटे हैं। इसी दौरान उनमें से कई मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं।
11: बीजेपी सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस सत्यापन यानी सर्वे के बाद बहुत सारे ऐसे मदरसों का नाम सामने आया जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और करिकुलम नहीं माना जा रहा है, तो ऐसे में इन्हीं सब मदरसों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं।
3: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिसमें शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की गई। उन्होंने एक एक्टर, एक नेता और अन्य लोगों का नाम संदिग्ध आरोपियों के तौर पर लिया है। इस एफआईआर में जिन लोगों की भूमिका की जांच प्रमुख तौर पर अपराध, आपराधिक साजिश और बाद में आत्महत्या की झूठी कहानी बनाने और फैलाने की है, और सबूतों को छिपाने, नष्ट करने या फिर मनगढ़ंत बनाने के सिलसिले में की जानी है, उनमें शामिल हैं आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे की बॉडीगार्ड रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, एपीआई अशोक देवदे, पीआई जगदेव कलापत, पीआई शैलेंद्र नगरकर, पीआई चीमाजी अधव, पीआई अर्जुन रज ने मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी, पोस्टमार्टम में देरी के लिए जिम्मेदार डॉक्टर और कर्मचारी डॉक्टर संजय जाधव, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कलीना से संबंधित अधिकारी जिनमें एनपी भले, असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर उस समय के संबंधित पीआई और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। रीजन गैलेक्सी बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड जिनमें सुशील कुमार यादव और शिवमराज गौतम उर्फ मुन्ना शामिल हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, एफआईआर में बहुत बड़े नाम शामिल हैं।
12: बिल्कुल, देखिए, और नाम जरूर आए हैं एफआईआर में, लेकिन अभी कोई आरोपी नहीं है। जो दिशा सालियान के पिता हैं, उन्होंने जिस तरह से जो सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दी है, वही उसी को आधार में एफआईआर में तब्दील किया गया है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को एफआईआर रजिस्ट्रेट करने के लिए कहा गया था, उसके बाद सबसे पहले सीबीआई की टीम ने दिशा सालियान के पिता को बुलाया और उसके बाद उनका स्टेटमेंट लिया गया और उसके बाद फिर वो एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें दिशा सालियान के पिता ने जिनका भी नाम लिया, उन सभी के नाम इस एफआईआर में है, लेकिन कोई इसमें अभी आरोपी के तौर पर नहीं है सामने, लेकिन नाम बड़े बड़े हैं, ये बात सही है। अलग अलग धाराओं में हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश, सबूत मिटाना, इन झूठी जानकारी देना, इन तमाम धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। जी,
3: इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
17: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
18: EU, सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
3: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहां सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: भारत एशिया का चैंपियन बना, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी, लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई, लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही, लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने BCCI के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला BCCI ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिशा सालियान केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पंचोली समेत कई बड़े चेहरों के नाम। कई पुलिस अफसरों की भी भूमिका पर सवाल। राजस्थान के नगर निगम निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी। 10 में से 6 नगर निगमों में रुझानों में बढ़त। कांग्रेस की उम्मीद पर फिर धराशाही। रुझानों में सिर्फ 3 सीटों पर भारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत। कल अमित शाह के ऐलान के बाद 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी। जेडीयू की दो टूक। बिहार में बीजेपी का नहीं, एनडीए का है शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन। 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलाने का खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई अपनी सेना की तैनाती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बड़ी स्थिरता। किसी भी हालत में निपटने के लिए तैयार है भारत।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे सियासी गलियारों से आ रही चार बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के नगर निकाय चुनावों को लेकर, नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिली। इसके बाद बात करेंगे यूसीसी को लेकर, जिसमें कल गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद अब एनडीए गुट में ही या फिर एनडीए कुनबे में ही कलह के संकेत मिलने लग गए। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल सरकार ने 252 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसको लेकर भी सियासी टेंशन हाई हो गई है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि जैसे जैसे यूपी में विधानसभा के नतीजे या फिर उसके चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगातार सियासी घमासान मच रहा है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने सनातन मंत्र को लेकर भी बड़ी बातें कही। लेकिन इन चारों बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खबर की जो इस समय मुंबई से आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस समय मुंबई से आ रही है, जहां पर दीशा सालियान केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बताएं, कुछ ही दिनों पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था, जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात को कोर्ट ने मान लिया था। और अब सीबीआई ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। हालांकि देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और 6 लोगों को इसमें, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके नाम इंक्लूड किए गए, इसके अलावा कई अफसरों के भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस एफआईआर के अंदर कई महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें ना सिर्फ आदित्य ठाकरे, एक्टर दीनू मौर्य, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सोवित चक्रवर्ती और रोहन रॉय का नाम भी इसमें शामिल है। दिवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश का रुख कर लेते हैं। दिवेश, इस समय एफआईआर के अंदर ना सिर्फ इन 6 लोगों के बल्कि कई अफसरों के नाम की इन्वॉल्वमेंट, उनके लगातार काम करने के तरीकों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं क्या?
1: जी, आपको बता दें, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर की कॉपी के अंदर जो आरोपी का नाम होता है, ये वो सेक्शन नहीं है। ये मतलब ये वो पार्ट है जहां पर जो कंप्लेनेंट है, यानी सतीश सालियान, जो दीशा सालियान के पिता है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किन लोगों के नाम बतौर आरोपी बताए हैं वो लिखा गया है। तो आरोपी के मतलब कंप्लेनेंट का जो स्टेटमेंट है, वो शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट जरूर मेंशन किया जाता है, पर अब आगे इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है कि ये लोग को अक्यूज यानी आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। ये आरोप जरूर है कि सतीश सालियान द्वारा कि आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्य, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय और अन्य, सूरज पंचोली, अन्य लोगों के नाम जरूर मेंशन किए गए हैं। उस समय के पुलिस कमिश्नर, उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उस समय के डीसीपी, उस समय के पीआई, थाना इंचार्ज, हर किसी का नाम मेंशन कर दिया है उन्होंने, किसी का नाम नहीं छोड़ा है। पर अब सीबीआई ये प्रोब करेगी, सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि इस आरोप में कितना तथ्य है, बिल्कुल ना सत्य है, कितना सच है।
0: बिल्कुल दिवेश, अपने दर्शकों को एक बार पहले से थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि आप भी जो बात कर रहे हैं वो समझाना बहुत जरूरी है। दरअसल जब भी कोई केस कोई भी एजेंसी लेती है, उससे पहले जो लगातार आरोप लगाने वाले शख्स, यानी जैसे दिशा सालियान के पिता हैं सतीश सालियान, वो अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, वो एक एप्लीकेशन या फिर एक पूरा रिटर्न चीजें देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आखिरकार उनके इस पूरे केस को की जांच क्यों की जाए, इसमें कौन कौन है जिनके ऊपर उनको शक है, लगातार उन्हीं बेसिस के ऊपर फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन अभी इसमें किसी भी आरोपी का नाम दर्ज नहीं किया गया, जैसा हमारे सहयोगी दिवेश भी बता रहे हैं। और अभी सिर्फ जो सतीश सालियान है, उनकी कंप्लेंट रिसीव कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और आके देखेगी कि जिन जिन लोगों के नाम है, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी भी या नहीं थी, या उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में सीबीआई काम करेगी। और उसी के बाद आप कह सकते हैं एक बड़ा प्रूफ या फिर एक फिर से आप कह सकते हैं कि एक फाइनल रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दर्ज की जाएगी, जिसके बाद फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ये बिल्कुल ठीक है दिवेश?
1: जी, आपको बता दें कि अभी भी जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में एक सेक्शन है जो मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा गया है सस्पेक्टेड ऑफेंस, यानी शक है कि ऐसा जुर्म हुआ है, शक है। ये एफआईआर कॉपी में लिखा गया है और उसमें गैंगरेप का सेक्शन है, उसमें मर्डर का सेक्शन है, उसमें क्रिमिनल कॉर्पोरेसी के सेक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के सेक्शन है। तो सीबीआई खुद भी अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सस्पेक्टेड ऑफेंस बोलकर ये लिख रही है। आपको बता दें कि सीबीआई का प्रोब हमेशा कैसे होता है, सीबीआई इज नॉट अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एजेंसी. जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एजेंसी होती है वो लोकल थाना होता है, लोकल पुलिस स्टेशन होता है. सीबीआई को बाद में प्रूफ दिया जाता है, या तो सरकार सीबीआई की तरफ केस ट्रांसफर करती है या तो कोर्ट सीबीआई को कहती है कि आप इस मामले की जांच करें. इस मामले में भी 6 साल बीत चुके हैं और 6 साल बाद सतीश सालियन के पिटीशन पर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया है. अब आपको बताएंगे कि जो साक्ष्य या जो कंप्लेंट, जो स्टेटमेंट सतीश सालियन ने दिया है, उस कंप्लेंट में ये सारे नाम जरूर मेंशन्ड है. पर सीबीआई से भी हमने अभी भी सीबीआई से ये पूछा है, क्योंकि सीबीआई ने जो पूरी एफआईआर कॉपी है उसे अभी तक अपलोड नहीं किया है, और पूरी एफआईआर कॉपी अगर अपलोड होती है तो नेम ऑफ अक्यूज्ड ऐसा अगर मेंशन होता है उसके अंदर, तो ये पता चलेगा कि इन सारे जिन पर आरोप सतीश सालियन लगा रहे हैं उन्हें सीबीआई ने भी अपने एफआईआर में आरोपी कहा है या नहीं. अभी तक सीबीआई से वो जवाब नहीं आया है, सीबीआई से कोई अधिकृत स्टेटमेंट नहीं आया है. सीबीआई का सिर्फ यही कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, बस
0: बिल्कुल इतना. दिवेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश. लेकिन बात यही है जो दिवेश भी बता रहे थे कि देखिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी जो सतीश सालियान है उनके उनके जो दिशा सालियान के पिता है उन्होंने की तरफ से जो एप्लीकेशन या फिर जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें इन नामों का जिक्र किया गया. लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही. दरअसल राजस्थान की खबर आपको बताते हैं. राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में 10 नगर निकाय चुनावों में से करीबन 5 में बीजेपी आगे चल रही है, और आपको बता दें कि 5 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 3 पर आगे. आपको ये अपडेट बता रहे हैं कि बीजेपी के नगर निकाय चुनावों को लेकर जो रुझान है, जो चीजें हैं वो आगे आनी शुरू हो गई. हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी हैं. शरद, अभी क्या कुछ ये रुझान है या कुछ नतीजों में भी तब्दील हुए हैं चीजें?
2: देखिए सुमित, ये करीब करीब नतीजों में तब्दील हो गया है. स्पष्ट रूप से 5 में बीजेपी की सरकार बन गई है और 1 में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बन गई है बीकानेर में. बाकी जगह अजमेर, पाली और जोधपुर, ये तीनों बराबरी के टक्कर में है. यहाँ निर्दलीय तय करेंगी कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की शहरी सरकार बनेगी. यहाँ पर किसी की भी सरकार बन सकती है क्योंकि निर्दलीय फैक्टर है. बाकी में 5ों में स्पष्ट रूप से बीजेपी जीत चुकी है और 1 में कांग्रेस को सफलता मिली है. एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि पहली बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने भी 12 में अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है. जिला परिषद 12 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है 31 सीटों के साथ. इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी आए थे यहाँ पर रैली करने के लिए जयपुर में भट्टा बस्ती में, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी एक जीत दर्ज की है यहाँ पर. तो ये छोटे चुनाव रहे लेकिन यहाँ कार्यकर्ता तैयार करने के चुनाव होते हैं और 309 निकायों में से करीब करीब 175 में अभी बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है. तो बीजेपी यहाँ एक बड़ी लीड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है. जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा था कि भजनलाल सरकार के खिलाफ है या भजनलाल सरकार को अलोकप्रिय सरकार मान के चल रही थी कांग्रेस, वैसा परिणाम नहीं मिला है कांग्रेस को. कांग्रेस के अंदर के झगड़े, संगठन की कमी, प्रदेश अध्यक्ष को लीड ना करना फ्रंट से, ये सारी वजहें रही और बीजेपी की मशीनरी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है. देखिए मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर भारत में सबसे अधिक मजबूत कोई राज्य है सुमित तो राजस्थान है कांग्रेस के लिए, और वहां पर भी कांग्रेस इस तरह से खराब प्रदर्शन कर पाती है तो पूरे उत्तर भारत में जगह बचती कहाँ है कांग्रेस के लिए. ये बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के यहाँ पर, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं,
0: लेकिन शरद एक बात बताइए,
2: भंवर जितेंद्र सिंह हैं यहीं से.
0: बिल्कुल शरद एक बात बताइए, क्योंकि आप तो राजस्थान की राजनीति से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं, आखिरकार इस हार का या फिर आप इस कह सकते हैं इस हताशा का सबसे बड़ा वजह क्या है? क्या लगातार आपने बताया अंदरूनी कलह कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा थी, ये बड़ी वजह है, या फिर आम आदमी पार्टी का सक्रिय होना, ओबीसी का सक्रिय होना, ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है?
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. जब विपक्ष का वोट बड़ी संख्या में निर्दलीय लेकर चले जाएं, आपको जानकर आश्चर्य होगा सुमित कि 309 में से करीब करीब 65-70 के बीच निर्दलियों के हाथ में चाबी है.
0: शरद आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 9527 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं राजस्थान में. हम लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि करीबन राजस्थान के 3923 वार्डों में बीजेपी की जीत दर्ज की जा चुकी है. ये लगातार हम आंकड़े आपको बता रहे हैं. राजस्थान के 3344 वार्डों में कांग्रेस की जीत दर्ज की गई है. देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी शरद भी बता रहे थे, और राजस्थान के 2260 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं. देखिए ये तमाम अपडेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार शरद कई नतीजे जीत में तब्दील होते हुए भी दिख रहे हैं जैसा आप बता रहे थे. प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए.
2: देखिए कई नतीजे जीत में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई जीत भी गए हैं। जिसे आप कह सकते हैं कि उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, यहां पर बीजेपी ने अपना बोर्ड बना लिया है बड़े शहरों में। जोधपुर में नेक टू नेक फाइट है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की चाबी निर्दलियों के पास है। अजमेर में नेक टू नेक फाइट है, वहां पर निर्दलियों के पास चाबी है। भरतपुर में कांग्रेस है नहीं, जो निर्दलीय बीजेपी है, कांग्रेस बिल्कुल ही साफ है, पूरे पूरे जिले से साफ है। जिले से जिले आप देखिएगा, बाड़मेर बालोतरा देख लीजिए, भरतपुर देख लीजिए, कई जिलों में, भिलवाड़ा में देख लीजिए, कई जिलों में कांग्रेस उदयपुर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में है ही नहीं। यानी कि एक राष्ट्रीय पार्टी राजस्थान के कई जिलों से उसका सुपड़ा साफ हो जाए, ये अपने आप में चौंकाता है। शेखावटी के जो कुछ इलाके हैं जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड है, या फिर पूर्वी राजस्थान जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव है, उन इलाकों में मजबूत दिखाई दे रही है कांग्रेस। बाकी बहुत सारी जगहों से बिल्कुल आउट हो गई है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सोचने का विषय है।
0: बिल्कुल। और देखिए शरद कुमार हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि अब कांग्रेस के लिए सरकार बनाना या फिर सरकार में आना तो दूर, बल्कि विपक्ष की अपनी पोजीशन को बनाना ही बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि आम आदमी पार्टी और निर्दलीयों के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस के अपने अंदरूनी कलह पर ही सवाल खड़े होने लग गए हैं। लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी खबर का, यूसीसी को लेकर। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब यूसीसी को लेकर एनडीए कुनबे में ही कलह नजर आनी शुरू होगी। और इसका सबसे पहला संकेत मिला बिहार से, जहां पर जेडीयू की तरफ से कहा गया कि बात बीजेपी की हो रही थी, एनडीए की नहीं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
4: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
4: यूसीसी पर गृहमंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी। दलील दी गई कि गृहमंत्री का दावा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए है।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है, और ऐसे विषयों पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समय समय पर अपने स्टैंड को स्पष्ट किया है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान संविधान के अनुच्छेद 44 की मूल भावना को दर्शाता है, एनडीए के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। उन्हें 2029 तक करने की बात कही है। हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
4: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही, जिसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही साझा सहमति से यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे हैं।
7: हम लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसको तो हम लोगों ने शुरू से कहा, चाहे धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए या फिर कॉमन सिविल कोड को नहीं थोपना चाहिए।
4: यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
8: जनता दल यू के नेता, लोजपा रामविलास के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस मामले पर स्पष्ट करें कि उनकी नीति क्या है, उनकी सोच क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
9: यूसीसी पर हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का स्पष्ट मानना है कि यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है, और हम विपक्ष से भी मांग करेंगे कि वो भी इसका स्वागत करें और अपने अपने राज्य में लागू करवाने का प्रयास करें।
4: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए यूसीसी को लेकर बयान आया तो सबसे पहले रिएक्शन जेडीयू की तरफ से है, जेडीयू उसमें सेफगार्ड करती नजर आई, लेकिन उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी आक्रामक रुख अपनाए गए। आइए आपको उसको लेकर भी खबर दिखाते हैं।
10: करना ये तो जब हम तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ। हमने अपना शादी विवाह करने के सारे कानून को उसमें मान लिया भारत सरकार के कानून के साथ, लेकिन इनका दूसरे धर्म पर वोट बैंक नजर आ रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक देश एक कानून यही लोग हैं।
11: क्या यूसीसी से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या यूसीसी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या यूसीसी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? आप 21 स्टेट में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, का मतलब है सिविल कोड के अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। आज हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का अलहदा अलहदा पर्सनल कानून है, आप उन कानूनों को 21 जगह बना देंगे।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण भी जुड़ गए हैं। शशि, एक बात बताइए, क्या ये सच में कोई अंदरूनी ऐसे मतभेद है बीजेपी में और जेडीयू में जो अब खुलकर सामने आने लग गए इस बयान के बाद, या सच में, या फिर एक कोई प्रयोग है कि टेस्टिंग दी वाटर, जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट किया जा रहा है आपसी कलह को, आपसी मतभेदों को?
12: देखिए सुमित, अगर जेडीयू और बीजेपी के संबंधों की बात करें तो यूसीसी समेत तमाम ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहे और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक गतिरोध कह सकते हैं या फिर सहमति नहीं भी रही जेडीयू के साथ लंबे काल से अलायंस के बावजूद, उसमें यूसीसी भी शामिल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भी रहा था, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर जेडीयू का बहुत स्पष्ट लाइन था कि अगर न्यायालय से फैसला होता है तो उस मामले पर कोई आपत्ति जेडीयू की तरफ से नहीं होगा, वो हुआ भी। लेकिन आप देखिए, यूसीसी का एक ऐसा सवाल है जिस पर नीतीश कुमार जो है वो विधि आयोग को लेटर तक लिख चुके हैं। नीतीश कुमार बार बार अपना स्टैंड क्लियर करते रहे हैं कि आम सहमति से ही इस मसले पर आगे बढ़ना चाहिए, और शायद यही वजह है कि अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी शासित और एनडीए शासित प्रदेशों में इसको एक टाइम फ्रेम में लागू करने की बात कही है, तो एक डिबेट शुरू हुआ है बिहार के अंदर जिसमें जेडीयू ये कह रही है या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री भले हो लेकिन सरकार एनडीए की है। ये एक दर्शाता है कि जेडीयू ने अभी तक यूसीसी के सवाल पर जो पुराना स्टैंड रहा है
0: उसको
12: अभी तक किनारा नहीं किया है या उस स्टैंड से बदली नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि भूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं जो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले फेज के वेरिफिकेशन में 252 से ज्यादा मदरसों पर ताले लगा दिए। आपको बता दें कि अमान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर पश्चिम बंगाल में मुहिम जारी है और इसी के बीच लगातार पश्चिम बंगाल सरकार ने 252 से ज्यादा मदरसों पर ताले लगा दिए या फिर उन्हें बंद कर दिया है, और इसके अलावा 100 मदरसों को नोटिस बताओ या फिर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और आपको बताया कि अभी ये पहला फेज है जिसमें ना सिर्फ मदरसों के अंदर मैनेजमेंट को लेकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और तमाम अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई इन मदरसों के खिलाफ की गई है, लेकिन अब सरकार के आपके कदमों के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है।
13: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहां सरकार की अनुमति नहीं वहां नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलाना है तो सरकार से अनुमति लें और चलाएं, जिनके पास अनुमति है उनका चलेगा। नहीं, मद्रासा में हर बात डाउट में है, पहली बार नहीं है। पिछले 20 साल से देखिए बंगाल में कितने बार इस प्रकार घटना घटी है। जो यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें कोई ना कोई मद्रासा टीचर रहा है और आज भी हैं, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है। बुद्ध बाबू से लेकर कई नेता बार बार चिंता प्रकट की है, लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया है, उसका हम लोग समाधान करेंगे।
14: कोई स्कूल बंद करने का कारण किसी कारण पर तो सरकार इसको स्वीकृति दिया, तो किसी कारण पर बंद किया जाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सब कुछ समझ बूझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
0: और देखिए, अब अगर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कदम उठाए गए तो उसके ऊपर सियासी घमासान मचना तय था। अब इसी को लेकर फुरफुरा जो आप कह सकते हैं दरगाह या फिर उसके प्रमुख की तरफ से क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं।
15: সরকার তা না করে এই মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে, যে চক্রান্ত করছে এটা কিনা মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোটগুলো দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না? আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব সবশেষে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বাংলার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎটা না শেষ হয়ে যায়।
0: और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सीमा से जुड़ी एक खबर। दरअसल भारत और चीन के बीच में विश्वास बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच एक रिपोर्ट आई है वो डिफेंस मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, जिसमें कहा गया है कि 2025-26 के अंदर चीन ने अपनी संख्या बल लगातार LAC के आसपास कम कर दिए। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, आपको ये रिपोर्ट के साथ साथ ये बड़ी बात ही बताए, ट्रेनिंग इलाकों में करीब 10 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स की कमी की गई है। सैन्य स्तर पर बातचीत में ताज़ा हालातों को लेकर स्थिरता आई है। ये तमाम सारी चीज़ें पिछले कई 2024 के बाद से ही चल रही थी, लेकिन 2025 में चीन ने LAC के इलाकों में अपनी सेना की आपकी कमी की है, और इसी को लेकर अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट भी सामने आई है। न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
4: Shaadi ka kitchen mehke jahan, Goldie Kitchen King masale ho wahan.
5: Goldie laaye hain fresh lock technology, jo rakhe masalon ko har samay fresh.
6: Senco se mera nata saalon purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai,
7: ye hai ek legacy. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
9: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
10: अब मैं क्या ही बोलूं?
11: परिवार अटूट भरोसा।
12: और वही कहां गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.

0: सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। पिता के आरोपों पर आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सूरज पंचोली समेत कई बड़े चेहरों की भूमिका की होगी जांच। शक के घेरे में कई पुलिस के अफसर भी। राजस्थान में नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 10 से 6 नगर निगमों में रुझान में बढ़त। कांग्रेस की उम्मीद फिर धराशाही, रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर भारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी। जेडीयू की दो टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं, एनडीए का है शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलाने का हुआ खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बड़ी स्थिरता, किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है भारत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।

0: और अब बात एशिया कप की करते हैं। दरअसल एशिया कप के अंदर जीत की हासिल हुई भारत की बेटियों को, लेकिन फजीहत पाकिस्तान की हो रही। दरअसल आपको बता दें कि एशिया कप में एक बार फिर से भारत ने एशिया कप जीतने के साथ ही जो एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान से लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना चाहता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: दीप्ति शर्मा टेक्स आउट द फाइनल विकेट, इंडिया असेंड द एशियन थ्रोन वंस अगेन।
2: और इसी के साथ भारत की महिला ब्रिगेड ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। भारत जीत का जश्न मनाने में जुटा रहा और उधर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवा कर ही मस्त है। पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने में ही मजा आ रहा है। पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। एशिया कप जीता हिंदुस्तान की बेटियों ने, लेकिन फजीहत हुई पाकिस्तान की। 28 सितंबर 2025 तक कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और अब महिला टीम की कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर। तब सूर्य कुमार ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, अब हरमनप्रीत ने पाकिस्तान के

0: खेल शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया कि हम मोहसिन के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे।
1: हम लोग का कोशिश था कि डिप्टी चेयरमैन, हम लोग नहीं बोल रहे कि बीसीसीआई चैंपियन है तो बीसीसीआई का कोई करियर का टास्क का हाथ से ट्रॉफी दे दीजिए। हम लोग का यही कोशिश था कि जो डिप्टी चेयरमैन है खालिद भाई, उनका हाथ से ट्रॉफी दे दे, लेकिन वो हमारा विनती कबूल नहीं किया है वो लोग ने। तो हमारा कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रॉफी जीतता है। आप भी अभी बोल रहे हैं भारत चैंपियन हुआ, सारे विश्व ने टेलीविजन में देखा है, मेंस में भी एशिया कप में मेंस में इंडिया चैंपियन हुआ था, आज वुमेन्स में भी चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना वाला है, स्कोर बोर्ड में काफी स्कोर क्लियरली लिखा हुआ है, सबने टेलीविजन में देखा है कि इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया है 72 रन से। सो इससे बड़ा खुशियां का मौका हमारा नहीं हो सकता है।
0: शानदार खेल की वजह से भारतीय टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दे दी, अब बारी थी पुरस्कार वितरण की। जैसा कि भारत ने पहले ही कह दिया था कि मोहसिन के हाथ से तो ट्रॉफी नहीं लेंगे, हालांकि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक विकल्प दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के उपाध्यक्ष के खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी को अपनी सार्वजनिक बेइज्जती कराने का शौक है, इसलिए मना करने के बाद भी पुरस्कार वितरण के लिए स्टेज पर आ गए। और जब भारतीय टीम ने ये देखा कि मोहसिन स्टेज पर है तो हरमनप्रीत कौर स्टेज पर नहीं गए। भारत ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार पहले ही कर दिया था, बावजूद इसके बेशर्मी के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए नकवी मंच पर खड़े हैं और श्रीलंका की टीम को रनर अप का पुरस्कार दिया। कुछ देर तक वो मंच पर रुके भी रहे कि शायद भारतीय टीम आ जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी मंच छोड़कर भाग गए। गनीमत रही कि इस बार वो ट्रॉफी लेकर नहीं भागे। 2025 में जब मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भागे थे तो सूर्य कुमार यादव की टीम ने सांकेतिक तौर पर मैदान में ही जश्न मनाया था। उसी प्रकार इस बार भी महिला ब्रिगेड ने सांकेतिक जश्न मनाया, लेकिन अपने फैसले से समझौता नहीं किया। मैच के बाद सूर्य कुमार ने आज तक से बात की तो उन्होंने पूरी कहानी बयान कर दी।
2: पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है?
3: ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी।
2: अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चला था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नजर आ रहे थे।
3: प्लेयर्स रिलैक्स ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली, पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करा, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए।
0: दरअसल सूर्य कुमार यादव ने 2025 में पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। भारतीय टीम का ये रुख आज भी कायम है, पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने का शौक है तो कराए, हमारी टीम अच्छा खेलेगी और जीत से हर असभ्यता का उत्तर देगी। आज तक ब्यूरो।
4: दरअसल मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान में मंत्री हैं और साथ ही इसके अलावा एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी, लेकिन जब भारतीय टीम ने वही किया जो पिछले साल किया था तो उसके बाद अब पाकिस्तान की मीडिया क्रिकेट स्प्रिट का रोना रोने लग गई है।

0: जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पर उतारू हो तो भारत क्या क्या करे। भारत ने तो पहले कहा था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर नकवी क्यों मंच पर गए? लगातार दूसरी बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई तो पाकिस्तानी मीडिया अनर्गल प्रलाप करने लगा।
1: मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको याद है कि बीच में जब ये इवेंट हुआ था एक, तो मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और जो खवातीन क्रिकेट टीम थी उन्होंने हैंडशेक कर दिया था, उस पर काफी इंडिया वालों ने, इंडिया की खवातीन टीम ने, इंडिया वालों ने काफी गुस्से का इजहार किया था। तो अब वो खवातीन, उन्होंने वही तारीख दोहराई जो मैन क्रिकेट टीम ने किया था, मोहसिन नकवी के हाथों उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।
2: अच्छा, बहुत मतलब बहुत छोटी हरकत, अब मैं इस पे क्या ही और आप तबसरा कर सकते हैं कि इतनी छोटी हरकत। खेल होता है दूरियां खत्म करने के लिए, रंजिशें कम करने के लिए, खेल का मैदान ये छोटी हरकतें करने के लिए, सियासत करने के लिए नहीं होता।

0: पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत क्रिकेट में राजनीति कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि राजनीतिक व्यक्ति को क्रिकेट का चीफ बना रखा है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं और पीसीबी के चीफ भी।
1: जब फाइनल में पाकिस्तानी एम्पायर थी, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी एम्पायर से हाथ तो मिला लिया, फिर मोहसिन नकवी साहब से क्यों नहीं मिलाया, ये क्या मंतक है?
2: उनका ख्याल ये कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखला भी हैं, इसलिए हम सियासी ओहदा उनके पास इसलिए हम नहीं रखेंगे, ये उनका मौकिफ है।
0: पाकिस्तानी मीडिया का रोना गाना जारी है कि भारत ट्रॉफी नहीं ले रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को मोहसिन नकवी की बेशर्मी नहीं दिख रही कि बार बार रिजेक्ट किए जाने के बाद भी क्यों मुंह उठाकर चले जाते हैं पुरस्कार देने।
3: कौन अपनी इनकल्केट करता है कि आप अपनी ही रिकॉग्निशन लेने से इनकार कर रहे हैं?
4: अच्छा, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सही है, हम लोग खुले दिल से तस्लीम करते हैं, यहाँ पर बैठकर भी, स्क्रीन पर बैठ के भी, वैसे भी हम लोग अब जब अपने डाइनिंग हॉल में भी बैठे होते हैं तो अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि नो डाउट आपकी टीम बहुत अच्छी खेल, बहुत अच्छा खेल पेश करती है। भारतीय टीम एक बहुत अच्छी टीम्स में उसका शुमार होता है, बहुत अच्छी टीम है, खेल अच्छा पेश करती है, लेकिन जहां पर आप लोग खेल अच्छा पेश करते हैं वहां पर थोड़े से खुले दिल का मुजाहरा कर लें, तो अखलाक का मुजाहरा कर लें, थोड़ा सा आप ये सोचें कि वहां पर आप भारतीय नहीं है, वहां पर आप एक
3: स्पोर्ट्स मैन है,
4: आप एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पर आप आए ना। मोहसिन नकवी की अगर बात कर ली जाए तो शीरी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, जो फाइनल के मेहमान खसूसी थे। हाँ, एग्जैक्टली, तो मतलब मोहसिन नकवी इख्तितामी तकरीब में स्टेज पर मौजूद थे और भारतीय टीम ट्रॉफी वसूल करने स्टेज पर नहीं आई, मतलब वो दिखाना क्या चाहती है, मतलब वो आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे?
0: भारत ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेना स्वीकार नहीं किया तो इस बार भी नकवी ट्रॉफी लेकर चला गया। पाकिस्तानी टीम खेल में तो भारत से जीत नहीं सकती, तो इसी तरह से बेशर्मी करके ट्रॉफी इकट्ठा करने में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: और देखिए, एशिया कप की ट्रॉफी जीत नहीं पाए तब वहां की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग सदमे में, और लगातार अब ये बात कह रहे हैं कि हम जीत ना सके लेकिन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जरूर आ गए। आइए आपको रिपोर्ट करते हैं।
6: था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो तमाम जो है वो स्टेडियम छोड़कर अंदर अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी, लेकिन अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट टीम दोबारा से नमूदार हुई है और ये तकरीबन डेढ़ से दो घंटे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और तमाम स्टेडियम को खाली करा लिया गया, बाउंड्री लाइन्स जो थी वो ख़त्म कर ली गई, वो रिमूव कर दिए गए, और ये तमाम सिचुएशन जो आप देख सकते हैं इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम दोबारा से आई है और मोहसिन नकवी का ग्राउंड छोड़ना था और भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा से ग्राउंड में दाखिल हुई है, तो अब भारतीय क्रिकेट टीम शायद फोटो सेशन के लिए दोबारा आई होगी और ये फोटो सेशन करने के बाद दोबारा वापस जाएंगे, लेकिन कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मौके अख्तियार किया कि ये बोर्ड का फैसला था, ये किसी खिलाड़ी या किसी फर्द का फैसला नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था कि वो इस जो विनिंग ट्रॉफी है वो मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी मौकफ की बात की जाए तो मोहसिन नकवी अपने उसी मौकफ पर आज भी कायम है जो वुमेन वंस जो मेंस एशिया कप में था, उनका कहना बिल्कुल वाजिया उनका मौकफ है कि वो सिर्फ अगर किसी भी विनिंग टीम को ट्रॉफी चाहिए तो वो मोहसिन नकवी के हाथ से मिलेगी। हमने देखा कि श्रीलंकन तमाम खिलाड़ियों ने, श्रीलंकन कैप्टन ने रन अप ट्रॉफी ली, रनर अप चेक लिया और उसके साथ साथ उनको मेडल्स दिए गए, और हमने ये भी देखा कि जो भारतीय क्रिकेट के मेडल्स थे वो भी स्टेडियम में मौजूद थे, और इस दफा हमने एक नई चीज ये देखी कि इस बार जो मेन ट्रॉफी है वो मैच शुरू होने के वक्त तो मौजूद थी लेकिन जब जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद से वो ट्रॉफी जो है वो गायब हो गई, हमने उसके बाद से वो ट्रॉफी स्टेडियम में नहीं देखी।
5: चाहे रणभूमि हो या फिर क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान का ये रोना धोना हमेशा जारी रहता है, लेकिन आपको बता दें एशिया महिला क्रिकेट टीम की इस टीम ने 72 रन से श्रीलंका को हराकर ये कप अपने नाम किया। 8वीं बार है जब टीम ने ये कप अपने नाम किया।
7: पहले T20 विश्व कप जीता और अब एशिया कप में भी भारत की महिला ब्रिगेड ने परचम फहरा दिया। 13 सितंबर 2026 का दिन महिला क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उसी दिन भारतीय महिला क्रिकेट ने 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। फाइनल में टॉस भारत के नाम रहा और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत से ही भारतीय सलामी जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। शैफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 68 रन की शानदार पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 59 रन बनाए। दोनों ने भारत को तेज शुरुआत दी और बड़े स्कोर की नींव रखी।
8: शेफाली की बल्ले से रनों की बौछार हो रही थी। दूसरे छोर पर स्मृति मंधाना का क्लास भी देखने को मिला। भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। श्रीलंका के सामने 184 रन का विशाल लक्ष्य रखा। 184 रन का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम भारत की सदी हुई गेंदबाजी के आगे लड़खड़ा गई। श्री चरण जी ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 111 रन बना सकी और इसी के साथ भारतीय टीम ने 72 रनों से श्रीलंका को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनी। भारतीय टीम की जीत पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। टीम इंडिया के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के दबदबे की एक और कहानी है। महिला एशिया कप में भारत का ये 8वां खिताब है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016 और 2022 में ट्रॉफी जीती थी। यानी एशिया कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। इस टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना ने भी इतिहास रचा। टूर्नामेंट में हांगकांग के खिलाफ 124 रन की पारी खेलकर वो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी। साथ ही उनके नाम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया था, जो कि पाकिस्तान का सबसे कम टी20 स्कोर रहा। शानदार बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एशिया में उसकी बादशाहत बरकरार है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। दरअसल गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश भर में उत्साह धूम है। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर बड़े पंडालों में गणेश के आगमन के लिए, बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां की जा चुकी है। लेकिन सबसे खास बात है महाराष्ट्र की। माना जाता है कि मुंबई में खासतौर पे इस पूरे उत्सव को लोक उत्सव बनाने में बहुत मदद दी और इसको लोक उत्सव भी बनाया। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

और कहा जाता है कि भगवान गणेश के अलग अलग नाम है, अनेकों नाम है, उनके स्मरण हर शख्स अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में करता है। और कुछ ऐसी झलकियां नजर आई हैदराबाद में, जहां पे रोबोटिक गणेश नजर आए। इसके अलावा कोलकाता में भी गणेश उत्सव की अलग ही रंग, अलग ही धूम नजर आई है।

0: गणेश चतुर्थी की पावन घड़ी आई। और बप्पा का दरबार लग गया। ये उत्सव, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये उत्साह इसलिए है क्योंकि पूरे एक बरस बाद महागणेश का आगमन हुआ है। वक्रतुंड, सिद्धि विनायक और गजानन, भगवान गणेश के ऐसे हर रूप में दिव्य प्रकाश बसता है। उनकी ही कृपा से भक्ति शांति का आशीर्वाद बरसता है। हर बार की तरह इस बार भी पंडालों में स्थापित किए गए बप्पा के ऐसे कई रूप आपने देखे हैं, जिनका मात्र दर्शन पूजन ही मन की हर अभिलाषा दूर करने वाला है। लेकिन अब क्योंकि इस जमाना AI का है, तो अपने गणपति भी रोबोटिक हो गए हैं। ऐसे ही बप्पा स्थापित किए गए हैं हैदराबाद के उप्पुगुड़ा स्थित ललिता बाग में। दरअसल गणेश उत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर पर विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये एक अनोखी रोबोटिक गणेश प्रतिमा है, जिसे यहाँ की मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी चौथी पीढ़ी ने तैयार किया है। यानी 2047 का भारत कैसा होगा, कितना आगे जाएगा, इसको देखते हुए न केवल पंडाल और गणेश जी की मूर्ति को रोबोटिक रूप दिया गया, बल्कि पंडाल में बैलगाड़ी के साथ बुलेट ट्रेन का भी सैंपल बनाया गया है। जहां पिछले साल इसी पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की मूर्ति और पंडाल को सजाया था, तो इस बार देशभक्ति और गणेश भक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की गई है।
1: इस बार 2047 का विकसित भारत, भारत 2047 तक कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में रहता, अपना भारत कितना आगे जाके कितना स्मार्ट सिटी बनता, कितना स्मार्ट इंडिया बनता, वो हम दिखाने का प्रयत्न ही ये विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करने का वजह है। वही थीम में सिलेक्शन के वजह से इच गणेश जी को भी जी आर्मर के रूप में हम लोग कलाकार से तैयार कराए हुए हैं। बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्केचेस करके उनको रेडी करके दिए कलाकार रविंद्राचार्य बोल के विश्वकर्मा डिजाइन्स।
0: जाहिर है इस अनोखी थीम के तहत आर्मर के रूप में दर्शन दे रहे भगवान गणपति के माध्यम से केवल ईश्वर भक्ति ही नहीं, बल्कि देशभक्ति के प्रति भी देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल तो एसोसिएशन द्वारा आयोजित 50वें वर्ष के गणेश चतुर्थी समारोह में रोबोटिक बप्पा की ये प्रतिमा और आसपास की झांकी श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण बनी है, जो देश के विकास और भविष्य की कल्पना संजो रही है। वही कोलकाता में भी गणेशोत्सव को लेकर एक ऐसी अनूठी झांकी तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा वक्त में विकसित बंगाल में परिवर्तन को दर्शाया गया है। एक तरफ जहां पंडाल में बप्पा की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, तो सफेद कुर्ता और नारंगी पगड़ी पहने विघ्नहर्ता का ये रूप बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। इसमें भगवान के हाथ दूरदर्शी नेतृत्व, जिम्मेदारी और सुशासन जैसे पहलुओं को दर्शा रहे हैं, तो विकास के विजन के साथ ही कुछ सामाजिक चुनौतियां भी इस पंडाल के मुख्य आकर्षण हैं। यकीनन ये भव्य गणेश उत्सव पंडाल किसी भी रूप में स्थापित किए गए हैं, मगर इनसे निकला संदेश भारतीय बढ़ते विकास, मजबूत भक्ति और विश्वास की मिसाल ही पेश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब के पटियाला में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की तरफ से मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार मान सरकार की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पटियाला में मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से। बिजली कटौती को लेकर लोग सड़कों पर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और मान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के पटियाला से।
3: लेकिन पैसे तो है नहीं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड़ का लोन पहली बार अप्लाई करता, वो 10,000 करोड़ का आज तक लोन नहीं लिया। सरकार जिम्मेदारी दिंदी होंगी, हुण सरकार ने भी कहा भी 10,000 करोड़ की गरंटी असी नहीं दिंदे, पहला गरंटी सरकार दे। फिर प्राइवेट बंदे ने, सरकार की एक एजेंसी है फाइनांस, वो दिंदी होंगी, उन्हें मना करता। फिर प्राइवेट बंदे तो 10,000 करोड़ रुपया लिया, 150 करोड़ रुपया और दलाली देती 10,000 करोड़ रुपया जो बसंत गर्ग ने कट लिया।
2: चले न्यूज रूम लाइव में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
9: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
10: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
11: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
12: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
13: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
8: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
14: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
15: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहां सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: तीसरे सालियान केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें कई लोगों के नाम शामिल है। हालांकि तीसरा सालियान केस में तीसरा के पिता सतीश सालियान ने अपनी कंप्लेंट के अंदर कई लोगों के नाम शामिल किए थे और कई अफसरों के नाम भी शामिल किए थे जिसमें सूरज पंचोली और कई लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए थे। ये दरअसल मामला पूरा तब बढ़ा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिशा सलियम केस में सीबीआई ने दर्ज किए एफआईआर। पिता के आरोपों पर आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या, सूरज पंचोली समेत कई बड़े चेहरों की भूमिका की होगी जांच। शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी भी। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी। 10 में से 5 नगर निगमों में रुझानों में बढ़त। कांग्रेस की उम्मीदें फिर धराशायी। रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर बारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत। कल अमित शाह ने किया ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी। जेडीयू की 2 टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन। 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना मंजूरी 2300 से ज्यादा मदरसे चलाने का खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता। किसी भी हालात से निपटने को भारत तैयार।

0: انداز میں آپ کے شہر کی خبر آپ کو بتانے کا سو شہر سو خبر
1: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ.
0: یوپی کے مراد آباد میں بھیشن آگ, فیکٹری میں لگی آگ سے آسمان میں دھوئے کا کالا غبار اٹھتا دکھائی دیا. فیکٹری میں آگ سے مچا ہڑکا, موقع پر دمکل وبھاگ کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے میں جٹی. ہاتھرس میں نگر پالیکا کے جے سی بی کے نیچے دب کر 11 سال کی بچے کی موت, پریجنوں نے جے سی بی چالک کے خلاف قانونی کاروائی کی مانگ کی. سون بھد میں جویلرز کی دکان سے لاکھوں کے گہنے چوری, گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید, آروپی مہیلا دکھائی دی. جموں کشمیر کی ریاسی میں منی بس درگھٹنا گرست, حادثے میں 2 لوگوں کی موت, 5 گھائل. جے پور میں پتا نے پتنی کے ساتھ 3 بیٹیوں کی جان لے لیا, آروپی کی گرفتاری کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا. یوپی کے اناؤ میں یوٹیوبر کا برتھ ڈے پارٹی دینے کے لیے کا ایک ویڈیو آیا سامنے, ریسٹوراں پر لمبی قطار, لمبورگینی کے ساتھ فوٹو وائرل. پوروی دلی کے دلو پورا علاقے میں پلائی ووڈ فیکٹری میں بھیشن آگ, گھنٹوں کی مشقت کے بعد بجھائی گئی آگ. کوٹ پتلی میں 11,000 کلو واٹ بجلی لائن کی چپیٹ میں آیا ڈمپر, دھو دھو کر جلا, چالک نے کود کر بچائی جان. گجرات کے والساڈ میں کار میں اچانک لگی آگ, بال بال بچا دمپتی. راجستھان میں نگر نکائے چناؤ میں بی جے پی کی بڑی کامیابی, 10 میں سے 5 نگر نگموں میں رجحانوں میں ابھی بڑھا. راجستھان نکائے چناؤ میں بی جے پی 2,407 تو کانگریس 2,200 اور نردلیہ 1,230 واٹ میں جیت گئے. راجستھان کے 300 نگر نکایوں کے 10,167 واڈوں کے پارشد پد پر ہوئے چناؤ پر مت گڑنا جاری, کل 38,889 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے. ان میں سے در نگم کے ساتھ ہی 252 نگر پالیکا, 47 نگر پریشد شامل ہیں. جانکاری کے لیے آپ بتا دیں 9 اور 11 ستمبر کو 2 چرن میں اب ووٹنگ ہوئی تھی. یوپی سرکار کا بڑا پرشاسنک پھیر بدل, 14 IAS اور 34 PCS ادھیکاریوں کے تبادلے, کئی CDO اور ورشٹھ ادھیکاریوں کی ذمہ داری بھی بدلی گئی. سہارنپور, لکھیم پور کھیری اور امبیڈکر نگر سمیت کئی ضلعوں میں CDO بدلے گئے. سمیت راجیش مہاجن کو یوپی اسٹارٹ اپ مشن کا CEO بنایا گیا. یوپی ودھان سبھا چناؤں کی تیاریاں تیز, EVM وی وی پیٹ کی فرسٹ لیول چیکنگ ہوگی پوری طرح سے پاردرشی, ہر چرن میں راجنیتک دلوں کی سہبھاگیتا. لکھنؤ میں 33 ضلعوں کے نرواچن ادھیکاریوں کی ٹریننگ, EVM وی وی پیٹ کی FLC کے لیے ادھیکاریوں کو وشیش پرشکشن دیا جا رہا ہے. مکھیہ نرواچن ادھیکاری نودیپ تریڑوا بولے, EVM وی وی پیٹ کے FLC میں پاردرشتا اور گنوتا سے کوئی سمجھوتا نہیں. سی ایم یوگی نے کی 2027 چناؤں سے پہلے بی جے پی کے ہندوتو آؤٹ ریچ کی قواعد تیز. رام گوپال یادو کا یوگی سرکار پر حملہ, بولے کہ گنڈا اور گینگسٹر ایکٹ کے نام پر لوگوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے. رام گوپال یادو نے یوپی میں اگھوشت آپات کال کا لگایا آروپ, بولے کہ سرکار کسی کو بولنے نہیں دے رہی ہے. اکھلیش یادو کا بی جے پی سرکار پر نشانہ, برکس وکاس پولیس یا کاروائی اور سواستھ ویوستھا سمیت کئی مدوں پر سوال اٹھائے. سی ایم یوگی نے گنیش چترتھی کی شبھ کامنائیں دی, بولے گنیش اتسو ساماجک ایکتا اور راشٹر نرماڑ کے سنکلپ کو مضبوط کرنے والا مہا پرو ہے. سماجوادی پارٹی نے مایاوتی پر کہا کہ اگلے 4 بار کے مکھیہ منتری, بھائی 30 سال کے لڑکے سے اتنا گھبرا جاتے ہیں تو بہوجن سماج پارٹی کی طاقت سب کے سامنے ہے. سماجوادی پارٹی نے مہا شیو پران پر مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان پر کہا, کتھا میں بھکتی کی بات کرنی چاہیے, راجنیتی کی بات نہیں. آرایلڈی نیتا نے پرلوبھن دینے والے سپا نیتا پر بولا حملہ, کہا کہ ابھی سرکار آئی نہیں ہے تب یہ حال ہے, سرکار بن گئی تو کیا کرو گے. بارہ بنکی میں چندر شیکھر آزاد کے قافلے پر پتھراو کا دعویٰ, 1 درجن سے زیادہ کاریکرتاؤں کے گھائل ہونے کا دعویٰ ہے, کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کا آروپ. پولیس ادھیکشک کیرلے پہنچے چندر شیکھر آزاد, بھیم آرمی کے کاریکرتاؤں نے کیا گھیراؤ. رائے بریلی میں جین زی پر بولے راجا بھیا, کہا ہماری سبھیتا سنسکرتی سے میل نہیں کھاتا, راشٹر اور سنسکرتی کی رکشا کے لیے سجگ رہنا ہوگا. بلیا میں جرجر پراتھمک اسکول کے 2 کمروں کو بلڈوزر سے گرائے جانے کے بعد راجنیتی اکھلیش یادو نے ویڈیو کر کے شیئر کر کے سوال اٹھائے. ڈی ایس اے بولے کہ بچوں کی سرکشا کو دیکھتے ہوئے جرجر 2 کمرے کیے گئے دھوست اور جلدی نئے کمرے بن کر تیار ہوں گے. ایودھیا پہنچے رام مندر نرمان سمیتی کے ادھیکش نپیندر مشرا 3 دیوسیہ بیٹھک میں شامل ہوئے. ایودھیا میں رام مندر پر نئی فلم کی تیاری, ساؤتھ ابھینیتا کبیر دوہن سنگھ رام مندر اور ہنومان گڑھی میں درشن کے, بولے کہ ہنومان جی کی کرپا ہے. گروگرام میں ہٹ اینڈ رن کا معاملہ سامنے, کار سوار شخص نے بائک چلا رہی ایک مہیلا کو ٹکر ماری اور اس کے بعد بھاگ نکلا. مہیلا بائکر سے نے آروپ لگایا کہ ایک کار میں سوار لوگ پہلے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی بائک کو ٹکر مار کر فرار ہو گئے. गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती, हादसे का वीडियो सामने, FIR भी दर्ज। देवरिया में मनु हत्याकांड के हाफ एनकाउंटर पर बवाल, ग्रामीणों ने थाने का किया घेरा, वैसे अच्छे बोले दबाव आया तो लिखकर थाने से चला जाऊंगा। मुरादाबाद में पुलिस पर उपद्रवियों ने बम फेंक दिए, बम से एक ASI घायल भी है, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तरी सीमा पर PLA ने तैनाती में की अपकमी, LAC के सभी सेक्टर्स में भारतीय सेना मजबूत, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत से स्थिरता, राजनीतिक कूटनीतिक सैन्य स्तर पर संवाद जारी और विशेष प्रतिनिधियों की भी वार्ता शुरू। बंगाल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य में ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस दिया गया। लगभग 100 मदरसों को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, सरकार के मुताबिक 2132 मदरसे वैध मंजूरी के साथ चल रहे हैं तो 2396 संस्थानों के पास जरूरी सरकारी अनुमति नहीं। बंगाल के मदरसों पर दिलीप घोष का बयान, बोले आतंकी हमलों में मदरसों के शिक्षकों की भूमिका की जांच जरूरी है, मदरसों में हर एक चीज संदिग्ध। दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहां पनाह लेते थे। TMCC बल विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई, इलेक्शन कमीशन के नोटिस के पर ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि 16 सितंबर तक अंतिम जवाब, 17 को फिर सुनवाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 5000 के पार, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा। बेंगलुरु में नकली कैंसर की दवाइयों का एक रैकेट बेनकाब हुआ, 90 से ज्यादा अस्पताल अब जांच के घेरे में, 5 करोड़ रुपए की संदिग्ध नकली दवाइयां बरामद, फार्मेसी मालिक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क। दिल्ली NCR में फिर से बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा मौसम, सैलानियों के लिए सौगात। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाए जा रहे हैं मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है मेडिकल टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम सुहाना, डल झील के शिकारे की सवारी कर रहे हैं। राजौरी में इस बार अखरोट की शानदार पैदावार हुई है, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। अमेरिका में कनेक्टिकट में भारी बारिश का कहर और वेस्टपोर्ट की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया, गाड़ी डूबी। अमेरिका में फ्लैश फ्लड की चेतावनी के बीच कई सड़कें जलमग्न, रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए वाहन चालकों को निकाला बाहर। लातेहार में गहरे पानी में 2 8 साल के बच्चियों की डूबने से हुई मौत, हादसे से गांव में मार गए। महबूबाबाद में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर ट्रैफिक ठप। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश शुरू, डांग में हुई बारिश के बाद लोग खुश। बलिया में सेवा निवृत्त CRPF जवान की निर्मम हत्या, परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग। वाराणसी में डॉक्टर के सुसाइड की वजह का खुलासा, घरेलू कलह और एनेस्थीसिया के ओवरडोज से गई जान। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजकोट में पॉलीमर्स कंपनी में भीषण आग, प्लास्टिक का बड़ा जखीरा जलकर खाक, 2 से 3 घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू। बाराबंकी थाने में 2 सिपाहियों में मारपीट, एक ने दूसरे को जमीन पर पटक कर पीटा है और दोनों लाइन हाजिर। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, मुंबई महाराष्ट्र के तमाम शहरों में गणेशोत्सव की धूम, आज से घर घर और तमाम जगहों पर बनाए गए भव्य पांडालों में विराजे बापा, अगले 10 दिनों तक धूमधाम से विनायक की पूजा। मुंबई में मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल में सुबह से दर्शनों की शुरुआत और उमड़ रही है भारी भीड़। 11 सितंबर को दिखाई गई थी लालबाग चा राजा की पहली झलक और आज से अगले 10 दिन तक दिव्य दर्शन होंगे। लालबाग के पंडाल में इस साल बप्पा नारंगी रंग की धोती पहनकर विराजमान है और दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से विदेशों से भी भक्त आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज, AR रहमान के संगीत पर दिखेगा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरों का जादू। राम नाम की भक्ति में रंगेगा रामायण का पहला गाना जय जय राम के जरिए फिल्म की भव्यता की झलक मिलने की उम्मीद। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की बंपर कमाई, रविवार को 22.5 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ, 38 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन 253.55 करोड़। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बना रहे हैं कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स, मिर्जापुर दी मूवी और हैवान को भी कमाई में मात दी। दसवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी का जलवा, संडे को 15 करोड़ रुपए कमाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 215 करोड़। महिला एशिया कप में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर किया कब्जा। टीम इंडिया की श्रेय शानदार शुरुआत और शिफाली वर्मा ने 68 रनों की तूफानी पारी खेली, स्मृति ने 59 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया ने जीत के लिए 184 रनों का लक्ष्य दिया था और श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर महज 111 रन बना सकी। बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर्स का कहर दिखा, श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट तो दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ 2024 की हार का भी लिया बदला, एशिया कप में सभी 5 मैच जीतकर अजेय और विजेता भी बने भारत। इंडोनेशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चैंपियंस को बधाई दी। भारत अफगानिस्तान टी20 के पहले मैच में स्टेडियम में वंदे मातरम गूंजा और 6 अंतरों के बाद राष्ट्रगान भी बजा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप अभियान रहा शानदार, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर। जीत के बाद भारतीय टीम का हौसला भी बढ़ा और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से सीधा इनकार किया। ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा, कहा ईसीसी डिप्टी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने को टीम इंडिया तैयार थी लेकिन उसके बाद नकवी का बहिष्कार। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर है, लगातार तीसरी बार खिताब जीत लिया गया। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराया, सनिका चंद्रकांत ने 17वें मिनट पर मैच में एकमात्र गोल दाग। हॉकी इंडिया ने विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए के कैश रिवॉर्ड का ऐलान किया और सपोर्ट स्टाफ के लिए 1.5 लाख रुपए की नकद। जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में एक और कामयाबी, भारत लगातार 4थी बार चैंपियन बना। साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड और FIA जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह भी पक्की कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ ट्रेड डील करना सबसे मुश्किल, ओटावा डील के लिए बेताब भी और हाल ही में अमेरिका कनाडा के बीच में ट्रेड डील को लेकर बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस महीने के आखिर में वो वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगीज के साथ मिल सकते हैं। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में मिलेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो शी जिनपिंग के साथ व्यापार और ऑटोमोबाइल पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से रूस के डीजल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद करने को कहा और इन हमलों से ईंधन की कमी हो रही जिससे दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। पोलैंड की सीमा से महज 800 मीटर दूर यूक्रेन में एक ट्रक पर रूस ने किया मिसाइलों से हमला। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने गृह और रक्षा मंत्री के साथ आपात बैठक की। हुर्मुज़ स्ट्रेट पर संभावित समझौतों पर चर्चा के लिए खाड़ी देशों और ईरान के बीच में आज होने वाली बैठक, टली ओमान ने बताया, संयुक्त रूप से फैसला लिया गया। यमन की सरकार के सूत्रों ने बताया कि हुती विद्रोही रणनीतिक रूप से द्वीप पर पहुंचे लाल सागर में एक अहम शिपिंग रूट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेकाबू होने का सताने लगा डर और यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि AI को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय जरूरी। अमेरिका के वेस्टपोर्ट में मूसलाधार बारिश के बाद तूफान ने दी दस्तक, सड़कों पर पानी भरा, दर्जनों गाड़ियां डूबी। टॉप सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता यूएस ओपन का खिताब, मेन सिंगल्स के फाइनल में बेन शेल्टन को दी मात, जर्मनी के ज़वेरेव का यह पहला यूएस ओपन खिताब है। और अब बात गुरुग्राम की करते हैं जहां पर सड़क से लेकर पार्किंग तक गुंडागर्दी के दो मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला सामने आया, एक कार सवार ने महिला बाइकर को टक्कर मारी और फिर उसके बाद वहां से भाग निकला। यह लगातार महिला बाइकर को छेड़ रहा था। महिला बाइकर का यह आरोप है, सिया का आरोप है कि यह कार में सवार लोग पहले तो पीछा कर रहे थे और उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर ये फरार हो गए। हादसे का वीडियो उनकी बाइक में लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सिया ने घटना का वीडियो बना, अब सोशल मीडिया पर हर तरफ है। उधर गुरुग्राम के ही मैग्नम ग्लोबल पार्किंग अटेंडेंट ने कारगिल युद्ध के एक पूर्व ऑफिसर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सिर में गंभीर चोट आई है, हाथ की हड्डी टूट गई है। गुरुग्राम की हम बात करें जहां पर हिट एंड रन का यह मामला सामने आया और उसके बाद हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, जहां पर एक कार सवार महिला बाइकर को टक्कर मारता है और फरार हो जाता है। पीड़ित महिला बाइकर ने हादसे का पूरा वीडियो डाला है जो आपने सुबह से लगातार देखा होगा। हम वो वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं। अब उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की तीन टीमें तलाश में जुटी है। महिला बाइकर सिया ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और सिया के मुताबिक रविवार को वो अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक चला रहे थे। सिया के मुताबिक कार में बैठे हुए लोग नशे में लग रहे थे और वो पहले भी गाड़ी का शीशा खोलकर अलग अलग बातें कर रहे थे। उसके बाद से ये अपनी लेन में चल रही थी सिया और उस लेन में आता है बीच वाली लेन से और तेजी से टक्कर मारते हुए भाग जाता है।
2: दिल्ली NCR में जो हुआ है उसकी ये हैरान करने वाली तस्वीर देख लीजिए।
3: Hey guys, see other side and please watch this video till end.
2: एक महिला बाइकर को कार सवार पहले धमकाता है, फिर टक्कर मारता है और सड़क पर गिरकर महिला बाइकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है।
3: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया।
2: ये तस्वीर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हादसे की।
3: वो आज वहाँ से भाग गया।
2: रविवार को ये वारदात हुई। उस वक्त पीड़ित महिला बाइकर अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर निकली थी, तभी कार सवार मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वो महिला बाइकर को चेज करने की कोशिश कर रहा था।
3: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहां से भाग गया। एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से। सो वहीं उस रोड पर ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए। सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए।
2: ये सभी वीडियो बाइकर्स के हेलमेट और अन्य गियर्स में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार बेकाबू रफ्तार से महिला बाइकर की तरफ जाता है और उसे टक्कर मार देता है। हादसे के बाद पीड़िता का दोस्त कार वाले का पीछा करता है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताते हुए मौके से भाग जाता है।
3: कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ऊपर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
2: रविवार को ये घटना घटी। उसके बाद महिला बाइकर ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की और आरोपी को बेनकाब करने की कोशिश की।
3: मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम इन सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे इजीली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
2: पीड़िता की तरफ से इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर खुद संज्ञान लिया है और सेक्टर 56 थाने में आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन और चालक की पहचान की जा रही है।
4: इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
5: सर क्या कुछ पहचान हो पाई है
4: अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर? जो पहचान है वह की जाएगी और उसके अंदर जो कंसर्न्ड सेक्शंस हैं उसके अंदर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं इस संबंध में स्ट्रिक्टली यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो रैश ड्राइविंग की और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की और घटनाएँ हैं और जो इस प्रकार के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस और गुरुग्राम पुलिस जो है उनकी जो है पैनी नजर रहती है और इस प्रकार की घटनाओं को कति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार जो सख्त धाराएं हैं उनके अंदर FIR रजिस्टर करके लीगल एक्शन से प्रोसीड किया जाएगा।
2: खुलासा हुआ है कि कार चला रहे आरोपी ने अपने दोस्त से कार ली थी, उसके दोस्त ने किसी अपने दोस्त से कार मांगी थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई
3: है। गुरुग्राम
2: से नीरज वशिष्ठ के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: गुरुग्राम में यही एक घटना नहीं हुई, गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर है। गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में एक पार्किंग अटेंडेंट ने कारगिल युद्ध के पूर्व सेना के अधिकारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सिर में गंभीर चोट आई है, उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें अटेंडेंट ने जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कर ली है, आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी का नाम दीपक है, उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने भी बहुत मदद नहीं की, ये पुलिस पर भी गुरुग्राम के आरोप है।
6: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला, पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक, पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
7: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के शीशा तोड़ने की कोशिश करी, फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी।
6: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहाँ खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
7: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे और भी पार्किंग अटेंडेंट्स से किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी, मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
6: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
7: तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस के साथ मिलके एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
6: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
4: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार एफआईआर में हमने लॉज कर दी गई है और उस एफआईआर के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वो लिया जा रहा है।
6: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिशा सालयान केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। पिता के आरोप पर आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पंचोली समेत कई बड़े चेहरों की भूमिका की होगी जांच। शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता, 10 में से 5 नगर निगमों के रुझानों में बढ़त। कांग्रेस की उम्मीद फिर धराशायी, रुझानों में सिर्फ 3 सीट पर भारी। यूसीसी पर बिहार एनडीए में कलह के संकेत, कल अमित शाह का ऐलान, 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी, जेडीयू की दो टूक, बिहार में बीजेपी का नहीं एनडीए का शासन। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना स्वीकृति 2300 से ज्यादा मदरसे चलने का खुलासा। एलएसी पर चीन ने घटाई सेना की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। कूटनीतिक सैन्य बातचीत से सीमा पर बढ़ी स्थिरता, किसी भी स्थिति से निपटने को भारत तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएट।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का खबरें असरदार में। और आज हम आपके लिए अनजान पार्टियों को मिलने वाले अरबों के चंदों से जुड़ी बड़ी पड़ताल लेकर आए हैं। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह पार्टियों का जंजाल फैला है। हम उन पार्टियों के ऑफिसेस दफ्तर में गए जिन्हें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का चंदा मिला है, लेकिन इनमें से कई पार्टियां चुनाव लड़ती ही नहीं है और न ही इनका कोई ऑफिस है। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें पैसे कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और ये लोग पैसे कहां लगा रहे हैं।
2: गांधीनगर का मेघ मल्हार कॉम्प्लेक्स, पहली नजर में ये भले ही आपको किसी दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह लगे, लेकिन इसे भारतीय नेशनल जनता दल का दफ्तर बेहद खास बनाता है। भले आपने आज से पहले इस पार्टी का नाम ना सुना हो, इसके संस्थापक बीएम गजेरा को ना जानते हो, भले ही ये किसी राजनीतिक दल से ज्यादा कोई आम ऑफिस लगे, लेकिन फिर भी ये खास है। आखिर कैसे?
3: भारतीय नेशनल जनता दल, जिसका रजिस्ट्रेशन साल 2009 में हुआ और इसकी आधिकारिक जो ऑफिस है वो गुजरात के गांधीनगर में मौजूद है, और फिलहाल गांधीनगर के उसी बिल्डिंग में हम मौजूद है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस यहां पे मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं भारतीय नेशनल जनता दल की सेंट्रल ऑफिस के साथ ही शक्ति एंटरप्राइज का भी बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, जिसके संस्थापक एसवी गजेरा के तौर पे बताया जा रहा है। साथ ही में हम जब इस ऑफिस पर भी पहुंचे तो इस ऑफिस की अगर हम बात करूं तो ऑफिस के अंदर एक रूम है और इस रूम के अंदर एक से दो लोग फिलहाल यहां पे बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं।
2: भारतीय नेशनल जनता दल के पास ना कोई विधायक ना कोई सांसद, इसके बावजूद इस पार्टी ने इतना चंदा जुटा लिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीय नेशनल जनता पार्टी का दफ्तर भले ही सामान्य हो, लेकिन इसे मिले चंदे के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साल 2023-24 में से 191 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदे में मिले, जबकि इस पार्टी ने साल 2019-20 से साल 2023-24 के बीच 957 करोड़ 44 लाख रुपए की आय दिखाई है। ये जानकारी ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है।
3: जो मुख्य फिलहाल इस ऑफिस को चला रहे हैं, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तब उनका कहना था कि आप हमारा जो भी रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन से पूछिए। जब हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि आपको 957 करोड़ का चंदा साल 2009 से लेकर अब तक मिला है, तो उन्होंने एक ऊंची आवाज में बात करते हुए हमसे कहा कि ये हमें इसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं, अब तक आप हमसे क्यों पूछने नहीं आए, चुनाव के वक्त आप हमसे क्यों बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि कोई भी जानकारी दिए बगैर उन्होंने कहा आपको कोई भी हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन से जाके पूछिए।
2: भारतीय नेशनल जनता दल अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जिसे इतना पैसा चंदा में मिला हो। दावा है कि आम जनता पार्टी को 620 करोड़ रुपए, सत्यवादी रक्षक पार्टी को 330 करोड़ रुपए, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को 219 करोड़ रुपए, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 200 करोड़, गरीब कल्याण पार्टी को 138 करोड़ रुपए शामिल है। देश में ऐसी कागजी पार्टियों को कैसे इतना ज्यादा चुनावी चंदा मिल रहा है, इन पार्टियों की असलियत क्या है, इसकी पड़ताल के लिए आज तक के रिपोर्टर बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश तक गए, ताकि गुमनाम पार्टियों की हकीकत से देश को खबरदार किया जा सके। इसी सिलसिले में आज तक संवाददाता गुजरात के आनंद शहर पहुंची, जहां सत्यवादी रक्षक पार्टी का दफ्तर है। योगी पूजन नाम की सोसाइटी में बताए जा रहे इसके ऑफिस में जब हम पहुंचे तो हमें

0: अभी मेरी मौजूदगी है गुजरात के आणंद जिले के सत्यवादी रक्षक पार्टी का जो कार्यालय है, जो ऑफिशियल कार्यालय दर्ज किया गया है वहां पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये बंद फ्लैट पर न कोई नेम प्लेट है, न कोई बैनर है, न ही कोई झंडा है और न ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला है।
1: आप ही सोचिए, जिस पार्टी को 330 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका हो, उसके बताए गए दफ्तर पर ताला लटकने का मतलब पूरी दाल ही काली है वाला मामला है। क्योंकि इतना बड़ा चंदा मिलने के बावजूद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन हमारी पड़ताल यही नहीं रुकी और आज तक संवाददाता ने सत्यवादी रक्षक पार्टी के अध्यक्ष का घर ढूंढ निकाला और बात की।
0: हमारे साथ सत्यवादी रक्षक पार्टी है जो उनके प्रेसिडेंट थे स्वाति बेन, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। स्वाति बेन, आपकी जो पार्टी थी 2023-24 में 330 करोड़ का चंदा मिला था और आपकी पार्टी से एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरा था। अभी पार्टी का क्या स्टेटस है और क्या कार्य?
2: मैडम बंद कर दिया हो,
0: पार्टी बंद हो गई।
2: पार्टी बंद कर,
0: कब से बंद है पार्टी?
2: 25 में से बंद है, 24 के लास्ट में से बंद है शायद।
0: अच्छा, और ये जो पूरा जो चंदा वगैरह सब कुछ पार्टी का आया था, क्या उसका क्या कुछ कोई ऑडिट वगैरह कुछ हुआ था या क्या कुछ?
2: नहीं, और तो सब कर दिया जिसने करना था, वो तो बता दिया।
1: आपने देखा कि जैसे आज तक संवाददाता ने चुनावी चंदे से जुड़ा सवाल किया, सत्यवादी रक्षक पार्टी की अध्यक्ष रही इस महिला का मिजाज ही बदल गया।
0: कौन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कोई आपकी कोई टीम होगी, उसमें से कोई मेंबर अभी और कोई एक्टिव हो या ऐसा कुछ है?
2: नहीं होता सब, मुझे नहीं पता मैम, प्रेसिडेंट इतनी पता मुझे पता नहीं।
0: अच्छा, तो मतलब आपके साथ कोई था नहीं, आप सिर्फ अकेली ही थी?
2: नहीं, मेरे साथ है सब, पर मैंने नहीं किया। मेरे नाम से मैं प्रेसिडेंट थी, मेरे नाम से ही पार्टी थी, पर मैं नहीं थी अंदर से। मैं हत्या बदे सब लोग, पर मैं नहीं थी इसमें। अब आप लोग बंद कर दो, ऐसे क्यों इंटरव्यू क्यों लेना है आप लोगों
0: का? नहीं, दरअसल क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियां,
2: मैडम सब सब पता है मुझे, ये सब कर रहे हो मुझे नहीं पता है, पर ये सब अच्छा नहीं है आप लोगों का। आप किसी के घर आके ऐसे मीडिया वगैरह सब अच्छा नहीं, बंद कर दो आप लोग, मुझे पसंद नहीं है सब। मेरे दरवाजा ही नहीं खोलने वाली थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पैसा कहाँ से है, क्या क्या वो सब जान के आपको क्या पता, क्या करना है? आप तो इतने ऊपर के लेवल के थे, है नहीं कि हम लोग पैसा क्या करेंगे। जो आया वो चंदा आया, वो किसी को टाइम पे हमने दिया होगा, दान दिया होगा, हम खा थोड़ी गए पैसा। ऐसा नहीं चलता मैडम, आप लोग ऐसे वीडियो वीडियो नहीं करते, बंद कर दे सब।
0: देखिए, ये स्वाति बहन है जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो चंदा आया था, अभी जो पार्टी है वो अभी नहीं चल रही, वो पार्टी अभी बंद कर दी गई है।
1: सोचिए, जिस सत्यवादी रक्षक पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपए का भारी भरकम चंदा मिला, वहीं इस पार्टी की तरफ से जो आय दिखाई है वो 416 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। फिर भी इस पार्टी की अध्यक्ष रही महिला चुनावी चंदे को लेकर कुछ नहीं जानती, चंदा दान में देने का दावा करती है, लेकिन किसे कब कुछ नहीं पता। देश में भले ही जनता अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही हो, लेकिन उसी देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें कहा जाता है वो दीन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पार्टियों का नेटवर्क सारे देश में फैला है।
3: सत्यवादी रक्षक पार्टी के अध्यक्ष रही महिला को आपने सुन लिया, इस महिला के गुस्से को भी आपने देख लिया, और जैसे ही चंदे पर सवाल हुआ मैडम के तेवर बदल गए। लेकिन गुजरात में ऐसी पार्टियों की कमी नहीं है। हम आज जनमत पार्टी से लेकर न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के दफ्तर तक गए ताकि इस खेल में लगी हर पार्टी का पर्दाफाश कर सके।
1: क्या आपने आम जनमत पार्टी के बारे में सुना है? ये उसी का ऑफिस है। आप कहेंगे कौन सी आम जनमत पार्टी, तो जवाब आपको हैरान करने वाला है। साल 2023-24 में इस पार्टी के पास 620 करोड़ डोनेशन के रूप में आए, जो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। अहमदाबाद के रघुवीर अपार्टमेंट में इसी आम जनमत पार्टी का दफ्तर है।

0: आज तक की टीम जब यहाँ पहुँची तो हमें बताए गए पते पर ताला लटका मिला। आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि कई महीनों से यह शटर बंद है। इस पार्टी का दफ्तर भले ही बंद लेकिन इसकी वेबसाइट चल रही है, जिसमें गौरव मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है। गौरव मिश्रा के बारे में जो लाइनें लिखी हैं, उससे पता चलता है कि 10 साल सामाजिक कार्यों में लगने के बाद उन्होंने आम जनमत पार्टी बनाई, जिसका दफ्तर हमें बंद मिला।
1: शटर पे फिलहाल देख पा रहे हैं, उनका कहना है यहाँ पे आम जनमत पार्टी का नाम का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन बीते एक साल पहले इस दुकान को खाली करके आम जनमत पार्टी के जो प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं वेबसाइट पर, गौरव मिश्रा, वो तो यहाँ से फिलहाल जा चुके हैं। गौरव मिश्रा को लेकर भी हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की लेकिन सीधे तौर पर कोई पता तो नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जो कि AGP नाम से वेबसाइट भी अभी भी मौजूद है। इनकमिंग कॉल इस नंबर पर बंद होने की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ रही है।
0: तो पार्टी की वेबसाइट चल रही है लेकिन नेताओं का आता पता नहीं है, फोन पर बात भी नहीं हो रही। फिर हमें हितेश भाई मिले जिनकी इसी मार्केट में दुकान है। हितेश भाई ने बताया कि 1.25 साल से 620 करोड़ रुपए चंदा पाने वाली पार्टी का दफ्तर बंद है।
2: ये लास्ट 1.25 साल से ऑफिस यहाँ तो है ही नहीं उसकी, वो लोग यहाँ से चले गए बंद करके, और अभी दुकान भी बिक गई है, अभी किसने ली वो तो मालूम नहीं है, और वो लोग तो यहाँ से सब सामान वामान भर के चले गए। पहले यहाँ चालू था उनका आम जनमत पार्टी के नाम से।
1: अच्छा, कौन कौन आम जनमत पार्टी के नाम से यहाँ आते थे, जैसे गौरव मिश्रा नाम बताया जा रहा है?
2: तो वो नाम था गौरव मिश्रा और एक धर्मेंद्र भाई करके कोई है, बस और को मेरे को मालूम नहीं है नाम, और थे 3-4 आदमी साथ में थे।
1: वेबसाइट पे जैसे हम जब देख रहे हैं अमित व्यास और बाकी विजय सिंह परमार, इन सब का भी नाम है, क्या इन लोग ये भी कोई आते थे?
2: हाँ, वो नाम से तो नहीं पता लेकिन वो लोग आते थे, यहाँ 4-5 आदमी बैठते थे ऐसा मेरे को मालूम है।
1: यहाँ पे भी कोई रेड वेड पड़ी थी पुलिस की?
2: हाँ, एक बार आई थी, कुछ रेड तो पड़ी थी, ईडी की गाड़िया इनोवा विनोवा सब आई थी, पुलिस भी साथ में थी, और 2-3 दिन तक वो चला था सब, और तो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, मेरी ऑफिस तो नीचे है।
1: अच्छा, कुछ बोर्ड वोर्ड उस वक्त यहाँ पे मारा था राजनीतिक पार्टी का?
2: हाँ, आम जनमत पार्टी का बोर्ड था शायद।
0: सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका दफ्तर बंद पड़ा, अध्यक्ष से संपर्क ना हो पा रहा, उसकी वेबसाइट खुलेआम डोनेशन मांग रही, पैसे भेजने के लिए 3-3 बैंक खातों की जानकारी दी गई। दिलचस्प बात यह है कि आम जनमत पार्टी को बिहार में साल 2020 में रजिस्टर किया गया। पार्टी को अगले 2 साल सिर्फ 20,000 तक ही चंदा मिला, फिर अचानक से 2022-23 में आम जनमत पार्टी ने 216 करोड़ का चंदा जमा कर लिया। बड़ी बात यह है कि रजिस्टर होने के बाद पार्टी अहमदाबाद शिफ्ट हो गई और उसे मिलने वाले चंदे में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। लेकिन ऐसी पार्टियों के अहमदाबाद में कमी नहीं है। अब आपके सामने न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का दफ्तर है, जिसे साल 2023-24 में 200 करोड़ का चंदा मिला, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिस का पता अहमदाबाद के नरोड़ा का उर्वी कॉम्प्लेक्स दर्ज है। जब हम इस पार्टी की पड़ताल करने उर्वी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो यहां भी हमें ताला लटका हुआ मिला। कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का ऑफिस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का कोई बोर्ड तक नहीं लगा था।
1: जब हम इस ऑफिस के दफ्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा है, इसी दरवाजे पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा ताला यहाँ पे लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसी ऑफिस के अंदर पिछले कई समय से जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के दुकानदार हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की ऑफिस यहाँ पे चल रही थी। जो वेबसाइट भी है वो वेबसाइट भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, क्योंकि न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की वेबसाइट और उसके ऊपर जो इस पार्टी को चलाने वाले सभी लोग हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। लीडरशिप की जानकारी देते हुए बताया गया है कि अमित चतुर्वेदी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के, साथ ही में शैलेंद्र राजपूत जो कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दया भाई मोदी का नाम यहाँ पे दर्ज।
0: न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कमाई के आंकड़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक साल 2019 से 2024 तक 608 करोड़ रुपए इनकम हुई, फिर भी उसकी पार्टी के दफ्तर का हाल बेहाल दिखा। कागजी पार्टियों को लेकर हमारी पड़ताल हमें अहमदाबाद से 145 किलोमीटर दूर सुरेंद्र नगर लेकर गई, जहां पर हमें सौराष्ट्र जनता पार्टी के दफ्तर पर ताला लटका मिला।
3: सौराष्ट्र जनता पार्टी के नाम से जो पक्ष की स्थापना की थी, और ये पक्ष है जो 2021-22 में धारासभ्य के लिए यहाँ उम्मीदवार भी खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद 23-24 के अंदर ये पार्टी को 200 करोड़ से ऊपर का जो चंदा मिला था, और ये चंदा मिला और ये पार्टी है जो अभी यहाँ कार्यरत नहीं है। सुरेंद्रनगर की बात करने में आए तो सुरेंद्रनगर में वो पार्टी का अभी कोई नामो निशान नहीं है।
0: सौराष्ट्र जनता पार्टी की तरफ से जारी आय के आंकड़े बताते हैं कि इस पार्टी को 2019 से 2024 तक 200 करोड़ रुपए की आय हुई, लेकिन इतना पैसा किसने दिया ये बताने वाला हमें कोई नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से पहले के वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली इन सभी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पड़ताल के दौरान जो एक बात निकल कर आई वो थी फंड को लेकर पारदर्शिता की कमी। अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
4: गुजरात के बाद हमारी पड़ताल दिल्ली हरियाणा होते हुए बिहार पहुंची, और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के जबलपुर भी गए। इस तरह की पार्टियों की जानकारी जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर भी इन पार्टियों पर किसी जांच एजेंसी की नजर क्यों नहीं पड़ती? और नजर नहीं पड़ती तो हो सकता है कि कुछ दलों पर छापेमारी भी की गई हो, लेकिन जिस तरह खुलकर ये सब कुछ हो रहा है ये वाकई हैरान कर देता है।
0: साल 2015-16 में 4 करोड़ 37 लाख रुपए के मुकाबले 2022 से 2024 के बीच 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चुनावी चंदा दिया गया। भारत में कई अनजान राजनीतिक दलों की ऑडिट और चंदे की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें मिलने वाला चंदा देश की राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे से भी ज्यादा हो गया है। ये खेल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, राजधानी दिल्ली की भारतीय जन क्रांति दल की कहानी भी अलग नहीं है। दक्षिणी दिल्ली में जो पता दिया गया, जब हम वहाँ पड़ताल के लिए पहुँचे तो पार्टी को मिले चंदे को लेकर जवाब देने वाला कोई नहीं मिला।
5: जो राजनीतिक पार्टी है उसने दिल्ली में जो अपना पता है यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसकी सत्यता जांचने के लिए जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये एक मंजिल मकान नीचे है, एक मंजिल ऊपर है। यहाँ पे दो परिवार किराए पे रहता है, कई महीने से रहता है। उन्होंने कैमरे पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कैमरे के बजाय उन्होंने बताया कि वो यहाँ कई महीने से रहते हैं और किसी भी तरह का कोई दफ्तर यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। पॉलिटिकल दफ्तर जो जिसकी बात कही जा रही है, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, वो दफ्तर यहाँ पे कभी नहीं था। दोनों ही फ्लोर पे फैमिली रहती है, कई महीने से रहती है, और आसपास के लोगों को किसी को पता नहीं है इसके बारे में।
0: ये जो पता है वो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, जिनमें ये घर गली के कोने में है। ऐसी जगह पर पार्टी दफ्तर का होना भी अपने आप में संदेहास्पद है। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले पुलिस के लोग भी आए थे और नोटिस भी लगाया था।
6: नहीं नहीं कभी है ही नहीं यहाँ कोई ऑफिस ऑफिस रहता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है यहाँ पर, तो हम तो बहुत दिन से रहते हैं यहाँ, कोई नहीं रहता, कोई ऑफिस का नाम ही नहीं है यहाँ पर।
0: दिल्ली की तरफ फरीदाबाद में भी छोटी पार्टियों को मोटे चंदे का ये खेल चल रहा है। फरीदाबाद में इस पते पर राष्ट्रीय विकास पार्टी का दफ्तर बताया गया। जब हम यहाँ पड़ताल करने पहुँचे तो इस घर के मालिक शलभ अग्रवाल ने किसी भी सियासी दल के दफ्तर से इनकार किया।
7: मैं तो यहाँ बहुत साल से हूँ।
8: अच्छा, कितने साल से? मतलब
7: हो गए 15 साल।
8: 15 साल तो इस एड्रेस पर कोई किसी पार्टी का, राष्ट्रीय विकास पार्टी का दफ्तर नहीं था, कुछ था यहाँ पे? नहीं था।
7: नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई दफ्तर था कि नहीं था राष्ट्रीय विकास पार्टी का। किसी ने यहाँ पे रेंट पे, लोग आते रहते हैं, किसी ने कुछ बनाया हो तो आई डोंट नो।
8: अच्छा, आप ओनर हैं यहाँ पे रेंट
7: पे? मैं ओनर हूँ।
8: ओनर है, मतलब आपको नहीं पता कि इससे पहले कोई रेंट पर आया हो, किसी ने इस्तेमाल किया हो, यहाँ पर पार्टी का दफ्तर बनाया हो?
7: ऐसा मेरी याददाश्त में तो नहीं है भाई, क्योंकि मान लो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो ये कोई पार्टी बना रहा है या क्या काम कर रहा है, कैसे पता लग सकता है ये वाली बात?
8: अच्छा,
7: है ना, ठीक है बाबूजी।
8: कोई मतलब पार्टी का दफ्तर नहीं था यहाँ?
7: नहीं नहीं नहीं,
8: कभी भी नहीं 2019 से 24 तक?
7: नहीं, आई डोंट नो।
9: ऐसा यहाँ कुछ नहीं देखा सर, ये चर्च वाली गली बोलते हैं वो, ऐसा यहाँ ना कभी बोर्ड लगा हुआ मिला, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला सर।
8: अच्छा, कोई पार्टी का दफ्तर?
9: नो नो सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला सर।
0: चुनाव आयोग में राष्ट्रीय विकास पार्टी एक पंजीकृत अमान्य दल के रूप में रजिस्टर है, जिसके अध्यक्ष महेश प्रताप शर्मा है। फरीदाबाद में उनकी तरफ से पार्टी का कार्यालय बताया गया है, हम यहाँ भी गए।
10: उनके परिवार के सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो पार्टी है, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये पिछले 15 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ रजिस्टर्ड है और महेश प्रताप शर्मा यहाँ दो बार 2019 में और 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं इसी राष्ट्रीय विकास पार्टी के नाम पर, राष्ट्रीय विकास पार्टी के टिकट पर फरीदाबाद से। इससे पहले जो है क्योंकि ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं तो वहाँ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, जैसा कि उनकी पत्नी ने हमें बताया। इस बारे में जब हमने महेश प्रताप शर्मा जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जो उनका एसोसिएट है या जो भी उनके सहायक हैं उनके माध्यम से जो बात की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो मामला है विचाराधीन है, अदालत में विचाराधीन है।
0: पिछले साल चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा RUPP को सूची से हटा दिया था। आयोग की प्रेस रिलीज में वजह ये बताई गई थी कि इन पार्टियों ने पिछले 6 सालों में किसी भी चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। बिहार के सीतामढ़ी में भी भारत प्रबल पार्टी को रजिस्टर दिखा दिया। इस पार्टी ने साल 2019 से 2024 के बीच 103 करोड़ रुपए की आय दिखाई, लेकिन हमारी पड़ताल में पार्टी का कोई भी कार्यालय नहीं मिला। सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड के इजहार गांव में प्रबल भारत पार्टी का नामो निशान नहीं मिला। आसपास के लोगों ने भी इस सवाल पर चुप्पी साध ली। तो चुनावी चंदे के लिए देश में राजनीतिक दलों को रजिस्टर तो करवाया जाता है, लेकिन इनका जन कल्याण से कोई वास्ता नहीं होता। आज तक की पड़ताल में जबलपुर में भी यही बात सामने आई, जहाँ भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक का यहाँ कोई दफ्तर नहीं मिला, जबकि दस्तावेजों में बकायदा इस पार्टी का ऑफिस जबलपुर के शक्तिनगर सैनिक सोसाइटी में दिखाया गया।
11: भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक, जिसका पता है सैनिक सोसाइटी जबलपुर। हम आज तक की टीम जब इधर आके पूरा पता करा कि कहाँ ऑफिस है क्या है, तो जमीनी हकीकत में पाया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं है, और लोगों से भी चर्चा की तो लोगों को भी पता नहीं है जबलपुर से धीरज शाह आज तक।
4: गुजरात के सिर्फ 5 ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, फिर भी साल 2019 और 2024 के बीच 2316 करोड़ रुपए की आय इनकी तरफ से बताई जाती है। इन अनजान पार्टियों को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज या RUPP कहा जाता है। इनमें से कई दल बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों से ज्यादा चंदा जुटाने में सफल रह जाते हैं। सवाल फिर से यह है कि कैसे और क्यों।
0: आज तक की पड़ताल में आपने देखा कि कैसे कागजों पर चल रही पार्टियों के दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। जहां ताला नहीं है वहां चंदे का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि इन पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है और उसी से क्या फायदा होगा। इसके अलावा सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी कि अगर ऐसी पार्टियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रही, तो फिर ऐसे दलों की मान्यता खत्म क्यों नहीं की जा रही। सबसे पहले बात इन दलों को बनाकर होने वाले फायदे की। दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह कागजों पर बनने वाली इन पार्टियों को भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और यही असली खेल होता है।
12: जो कॉरपोरेट डोनेशन है, जो डोनेशन है, ब्लैक मनी को वाइट करने का कोई साधन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सोचा गया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को अपनी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, अपनी वर्किंग जारी रखने के लिए पैसे चाहिए और इनकम चाहिए। एक पहला तरीका है कि पैसे कैश में आएंगे, अनरिकॉग्नाइज सोर्स से आएंगे। इसको रोकने के लिए ये इनकम टैक्स में एक प्रोविजन लाया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा उसको हम उसकी इनकम में उतनी छूट दे देंगे। तो ये एक तरह से इनकम टैक्स में पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियल कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। लेकिन जो कॉरपोरेट इसीलिए जो पैसा देती हैं और जो इंडिविजुअल पैसा जेनरली देते हैं उनको टैक्स में छूट मिलती है और पॉलिटिकल पार्टी का काम चलता है। अब उसी प्रोविजन को मिसयूज को बेनिफिट करने के लिए कुछ लोगों ने मिसयूज करने के लिए उन पॉलिटिकल पार्ट उन कॉरपोरेट पे इंडिविजुअल पे पहुंच गए कि आप हमें चंदा दो और हम पैसे वापस कर देंगे। तो ये एक अलग तरह की वर्किंग की गई जिसको कि प्रोविजन को मिसयूज किया गया।
0: ये अनजान पार्टियां अक्सर अपने रिटर्न फाइल नहीं करती। ADR की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019-20 में 219 RUPP ने 608 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का दावा किया था, लेकिन उनमें से 66 ने जरूरी रिपोर्ट जमा नहीं की। इसमें यह भी दावा किया गया कि ECI के डेटा के अनुसार 2013 और 2016 के बीच केवल 5% RUPP ने ही दान की रिपोर्ट जमा की।
12: जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा इसमें आता है, लोग इनक्रेज करे जाते हैं, देते हैं। लेकिन जो इस प्रोविजन को मिसयूज करने के लिए कुछ लोगों ने अपने ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा ली और फिर वो टैक्स पेयर को इधर उधर, पर्टिकुलरली जो अनइन्फॉर्म और एक साधारण टैक्स पेयर होता है उसको रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि आप 1,00,000 रुपये का हमें चेक दो, 2,00,000 रुपये का चेक दो पॉलिटिकल पार्टी के नाम में, हम आपको 5, 10 या 15% काट के पैसे वापस कर देंगे और आपको 30% का जो टैक्स का स्लैब लगता है उसमें छूट मिलेगी। तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में आ गए और इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसे, अगर आप इन सब पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट देखेंगे और इनके बैलेंस शीटें देखेंगे तो पता लगेगा कि जितने पैसे चेक से आए हैं कुछ दिनों बाद पैसे वही कैश में निकाल लिए गए और वो पैसे वापस जिसने कंट्रीब्यूट किए थे उन्हीं को वापस कर दिए गए हैं और कुछ 5-10% की कमीशन इन्होंने अपने पास रख ली है।
4: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथी गौरव सावंत होंगे आपके साथ। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नई काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए, यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इम्पैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स @20 का संकल्प हो।
4: वो मंच जिसने दुनिया की वर्तमान चुनौतियों पर बात की है, उन चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है, समस्या के समाधान की पहल की है। सदा वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देने वाले भारत ने दुनिया को शांति वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही असर है कि इस ब्रिक्स समिट में एक दूसरे के प्रति नाराजगी रखने वाले दो देश एक दूसरे के गले मिले हैं, शिकवा शिकायत पर एक दूसरे से बात की है और अपनी कड़वाहट दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी मंच पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को अबूधाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। खाड़ी में जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बात की। इन्होंने क्षेत्रीय शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रयासों के समर्थन पर सहमति जताई। ये वही मंच है जहां नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों में सहमति बनी, जिसमें पश्चिमी एशिया के जारी तनाव को दूर करने के लिए वार्ता की पहल की गई। भारत की इस पहल पर सभी देशों ने एक स्वर में साथ दिया। इस समिट में नील नदी के पानी को लेकर टकराने वाले इथियोपिया और मिस्र भी शामिल हुए, साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी इस मंच पर नजर आए। ये ब्रिक्स की बड़ी कामयाबी है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में दोस्ती वाले दांव से अहम भूमिका निभाई है। शिवानी शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक

कितना बेशर्म है पाकिस्तान, बार बार अपनी बेइज्जती करा रहा पाकिस्तान, अब खेल भावना का रोना रो रहा पाकिस्तान, हर मोर्चे पर मात खा रहा आतंकिस्तान, मोहसिन नकवी की हर गलतफहमी को दूर कर रहा हिंदुस्तान, मैदान के बाहर मैदान के अंदर हर इम्तिहान में फेल हो रहा पाकिस्तान, एशिया कप में सख्त संदेश, सुधर जाओ पाकिस्तान, कूटनीति और सैन्य नीति के बाद अब खेल नीति में भी हारा पाकिस्तान, बेशर्मी जिसका शौक है और बेइज्जती जिसकी नियति, उस देश का नाम है पाकिस्तान, एक हारा हुआ मुल्क।

0: भूमि आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। कहते हैं शौक बड़ी चीज है और इसके लिए लोग क्या क्या नहीं कर जाते, आप भारत के खिलाड़ियों को ही देख लीजिए। जीतने का शौक है, जीतने के लिए जान लड़ा देते हैं, आखिरी दम तक जूझते हैं, लड़ते हैं, जज्बा दिखाते हैं और फिर चैंपियन बनकर दुनिया को दिखाते हैं। जीतना दरअसल भारतीय खिलाड़ियों की आदत है, जीतना हमारा शौक है। यह मैं भारत देश के लिए भी कह रहा हूं और हमारी क्रिकेट टीम के लिए भी। ठीक इसके उलट पाकिस्तानियों का एक ही शौक है, अपनी नाक कटवाना, अपनी बेइज्जती कराना, बार बार बार बार कराते रहना और कराते ही रहना। जी हां, पाकिस्तान के गृह मंत्री, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है, मोहसिन नकवी। वैसे ख्वाब बहुत बड़े देखते हैं मोहसिन नकवी, ख्वाब देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हाथों लगातार दूसरे साल बेइज्जती कराने का उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। कल रात एशिया कप का फाइनल था, एशिया कप को जीतकर धूमधड़ा के साथ भारत की बेटियों ने खिताब अपने नाम किया। उसके बाद मोहसिन नकवी बेचारगी और बेबसी के साथ मंच पर खड़े रहे और खड़े रह गए। शायद भारतीय टीम उनके हाथों से ट्रॉफी ले जाए ये वो भूल गए। ये नामुमकिन है, ये भारत है, ये नया भारत है, नए तेवर के साथ ये जो खिलाड़ी जो खेलते हैं। जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना सरहदों पर करती है, उसका खामियाजा उसी तरह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देश की लड़ाई केवल फौज नहीं, हर भारतवासी लड़ता है। हर भारतवासी का खून खौलता है जब पाकिस्तानी आतंकवादी आकर पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करते हैं और फिर कहते हैं जाओ मोदी को बताओ वो आतंकवादी। एक एक भारतवासी पाकिस्तान और पाकिस्तान की असलियत से वाकिफ है और आखिरकार कैसे उस पाकिस्तान की सेना के मुलाजिम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी ले ले, नहीं ली और बेइज्जती कराकर मोहसिन नकवी एक बार फिर लौट गए। अब पाकिस्तान के नेता, उनका मीडिया, उनके चाहने वाले खेल भावना की बात कर रहे हैं, खेल भावना का रोना रो रहा है पाकिस्तान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये असलियत है पाकिस्तान की। दरअसल बीती रात क्या हुआ, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जो हुआ वो भारत कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तान को भूलने नहीं देगा। भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता, पाकिस्तान की टीम ये खिताब कभी नहीं जीत पाई है। उसके बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की शर्मनाक बेइज्जती सालों तक पाकिस्तान को याद आती रहेगी। आइए हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि पाकिस्तान की दरअसल ये जो बेइज्जती हुई है उसकी बेइज्जती कथा का जो नया अध्याय है उस पर ये रिपोर्ट देखिए।
1: ताकत में भी तकनीक में भी तेवरों में भी हर मोर्चे पर आगे है हिंदुस्तान और ऐसे ही मुंह लटकाकर बार बार भागता रहेगा पाकिस्तान। एशिया कप ना हो गया, पाकिस्तान की बेइज्जती का वार्षिक उत्सव हो गया है। इसमें पाकिस्तान को हर बार तिहरा झटका लगता है। पहला उनकी टीम ट्रॉफी जीत नहीं पाती, दूसरा भारत की टीम चैंपियन बन जाती है, तीसरा भारत को ट्रॉफी देने का उनका शौक कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन सवाल ये है कि बार बार फजीहत कराने ये पहुंच क्यों जाते हैं, जब एक बार ये तय हो चुका है कि बीसीसीआई की कोई भी टीम पहलगाम हमले के बाद किसी पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी तो नहीं लेगी। इस बार मौका था एशिया कप का, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मंच सजा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे। पहले उन्होंने उपविजेता रही श्रीलंका की टीम को सम्मानित किया, फिर जब टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की बारी आई तो पहले ही चैंपियन टीम की खिलाड़ी एक एक करके मैदान से बाहर जा चुकी थी। इन तस्वीरों में देखिए कैसे वो बेबसी के साथ भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को बाहर जाते हुए देख रहे हैं। काफी देर तक इस पर सस्पेंस बना रहा कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेगी या नहीं, या फिर किसी और के हाथों चैंपियन टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। लेकिन नकवी खुद ही ट्रॉफी देने पर अड़े रहे। आखिरकार काफी देर तक इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी को मैदान छोड़ना पड़ा और मुंह लटकाकर वो बिना ट्रॉफी दिए ही लौट गए। टीम मैनेजमेंट का साफ कहना है कि इस मामले में BCCI के निर्देशों का पालन किया गया है। उनके लिए यही सम्मान की बात है कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है।
2: Look, that stand has been taken by BCCI, and we stand by it. Look, for us, this tournament is over. We are the champions. That's good enough. It was on the big board that India champions of Asia Cup 2026. This tournament is over, officially over for us. We're happy that we've turned out to be champions. Now we look forward for the Asian Games.
1: दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था आतंकिस्तान की हरकतों की वजह से, जिसे समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं करीब एक साल पहले। यही एशिया कप था, यही चैंपियन देश था और यही चीफ गेस्ट थे। लेकिन टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था।
3: पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है?
4: ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी।
3: अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज बताएं, जब वो सब चीजें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नजर आ रहे थे।
4: प्लेयर्स रिलैक्स ही थे क्योंकि देखो, हम क्रिकेट खेलने आए थे। बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली। पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करा।
3: Correct.
4: सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए।
1: मोहसिन नकवी को ये समझना होगा कि वो एक क्रिकेट प्रशासक ही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। उनसे टीम इंडिया किसी भी सूरत में ट्रॉफी नहीं लेगी, लेकिन हर बार ट्रॉफी देने की जिद लेकर वो मंच पर चढ़े आते आते हैं और बेइज्जती करवाकर लौट आते हैं। दिल्ली से राहुल रावत और नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अच्छा, इस बीच क्रिकेट के हलकों में एक प्रश्न और भी पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कि इस हफ्ते एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जापान में एशियन गेम्स होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुखिया हैं, तो हो सकता है एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी वहां पहुंचे। अगर वहां पहुंचे तो क्या ऐसा हो सकता है कि एशियन गेम्स में इन्हें कहा जाए कि आप भी मेडल दीजिए? क्या मोहसिन नकवी चैंपियन टीमों को मेडल देने के लिए आमंत्रित वहां किए जा सकते हैं? और क्या भारत एशियन गेम्स में, अगर भारत को कोई स्वर्ण पदक या पदक तालिका में अगर भारत आता है, तो क्या भारत और मान लीजिए देने वालों में, यहाँ कई अटकलें हैं यहाँ पर, अगर नकवी वहां हुआ तो क्या भारत वहां भी मेडल लेने से इनकार कर सकता है? ऐसे कई प्रश्न हैं क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में भारत की जो पुरुष और महिला टीम है दोनों ने गोल्ड मेडल वहां पर जीते थे और एशियन गेम्स में भारत की भूमिका बहुत बढ़िया रही है। क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुखिया को मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है? ये एक प्रश्न है ऐसी परिस्थिति में। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो मेडल लेने के लिए जब भारतीय टीम पहुंचे तो मेडल देने के लिए ये वहां पर मौजूद हो? विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, स्पोर्ट्स के हलकों में इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं या इस तरह की बात हो रही है, कितना दम इस बात में और क्या ये एक जेन्युइन स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है?
5: सॉरी गौरव, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया था। बोर्ड के हलकों में किस चीज पर फिकर है?
0: कि अगर मोहसिन नकवी जापान पहुंचे एशियन गेम्स में, उनको क्या बुलाया जा सकता है कि वो मेडल दें?
5: नहीं गौरव, बेसिकली जो कन्वेंशन होती है वो ऐसा नहीं है कि एशियन गेम्स हैं तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ है उसको कहा जाएगा कि आप मेडल लें. आमतौर पर क्या होता है ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में कभी कभी जो गोल्ड मेडल जीतता है
0: जी
5: उस मुल्क के किसी अधिकारी को भी रिक्वेस्ट कर दिया जाता है ना. और दूसरी बात यही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया डिसाइड करेगी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया डिसाइड करेगी कि अगर क्रिकेट की मेडल सेरेमनी होती है तो वो कौन करेगा. होने को मोहसिन नकवी भी हो सकते हैं. और आई थिंक ये सवाल एक एक एक एक्सपेक्टर की तरह जो है वो भारत की क्रिकेट के सामने खड़ा है
0: जी.
5: हो सकता है कि आईसीसी चीफ जय शाह अगर जापान जाते हैं तो उनको भी इन्वाइट किया जा सकता है. अब दिक्कत क्या आएगी, हाइपोथेटिकली मैं दोनों सिचुएशंस आपको कहता हूं कि मोहसिन नकवी दे रहे हैं मेडल, भाई इंडिया को और पाकिस्तान को कोई ना कोई मेडल तो मिलेगा
0: जी.
5: अब आप कह दें कि जी मोहसिन नकवी से हम मेडल नहीं लेना चाहते, वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एशियन गेम्स में ना इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे. दूसरी तरफ मैं कहता हूं जय शाह अगर जाते हैं वो मेडल देते हैं, इंडिया गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिल जाता है तो क्या वो देंगे. सो ये सारी चीजें ना बड़ी पेचीदा मामला है. लेकिन मेरा ये मानना है कि एशियन गेम्स में ना जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है वो फैसला लेता है. यहां पर फैसला कौन ले रहा था, यहां पर फैसला ले रहे थे मोहसिन नकवी. ही वांटेड कि आपकी और उनकी कन्फ्रंटेशन रहे. क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं पिछले साल से लेके अब तक, मोहसिन नकवी एक पॉलिटिशियन है, वहां पर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं. तो कभी कभी ना आपकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है. एक एक जो अधिकारी होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ना अपनी बदनामी नहीं चाहता. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं
0: जी.
5: ये कन्वेंशन है कि अगर आप आईसीसी चीफ है या एसीसी चीफ है तो आप ट्रॉफी देंगे. जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे. 2022 में दुबई में ही एशिया कप हुआ था, मैं गया था वहां पे और भारत की टीम फाइनल में भी नहीं गई. श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ जी फाइनल, तो जय शाह नहीं गए थे वहां पे ट्रॉफी देने. उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो हेड थे वो वहां पर थे, आप दे दीजिए क्योंकि आपकी टीम जीती है. सो जय शाह गए नहीं थे. सो यहां पर क्या होता है कि भाई कल आपको मालूम है क्लैश होने वाला, एक है इंडिया की टीम जो नहीं लेगी, दूसरा वो इंसान भी तो है ना जो कहेगा यार मेरी एक बार बेइज्जती हो चुकी है, मेरे से एक बार इन्होंने कहा कि जा तेरे हाथ से नहीं लेते, आज भी मेरी बेइज्जती होगी. बट ही वांटेड दैट.
0: तो ये बार बार अपनी बेइज्जती मोहसिन नकवी क्यों करा रहा है, कि उसको ऐसा ये लग रहा है कि पाकिस्तान में इज्जत बढ़ जाएगी तो प्रधानमंत्री बन पाएगा, आसिम मुनीर के और करीब आ पाएगा, कि भारत से बेइज्जती कराई तो पाकिस्तान में नाम हो गया.
5: गौरव मेरे से बेहतर आप जानते हैं, बट आई थिंक जिस दिन मोहसिन नकवी चाहेंगे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. आसिम मुनीर की इतनी क्लोज है, वहां पर वो अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं स्पेयर कर रहे, अपनी गवर्नमेंट को स्पेयर नहीं कर रहे हैं, इवन दो वो उस गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर हैं. बट ये ना सारी ऑप्टिक्स वो खेलते हैं. आपको याद होगा इससे पहले भी जब आईसीसी में इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन होती थी वहां पर भी वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते थे, जाओ इंडिया के बिना वर्ल्ड कप खेलेंगे, जाओ तुम्हारे बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, वो सब हुआ नहीं. सो मच सो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया. क्योंकि जब इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस थोड़े खराब चल रहे थे, इफ यू रिमेंबर एज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थ्रू द गुड सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट पे दबाव बनाया था
0: जी.
5: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को बुलाया और कहा जाओ तुम कुर्बानी दे दो, वर्ल्ड कप मत खेलो. आज वो रो रहे हैं,
0: बिल्कुल रो रहे हैं,
5: बिकॉज तो उनकी टीम का नुकसान हुआ, दूसरा उनके क्रिकेट का नुकसान हुआ. बिकॉज द मोमेंट आप बीसीसीआई के आपने मतलब इतना अगेंस्ट चले गए, अभी देखो ना आप दो साल से इंडिया का दौरा वहां पे पेंडिंग है बांग्लादेश का.
0: अब यही अगर पाकिस्तान जैसे दोस्त रखोगे तो पाकिस्तान जैसा ही हाल होगा. विक्रांत आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. इस बीच बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित के ऊपर कुछ नहीं होता, और एक बार राष्ट्र का हित आ गया तो किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा. आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ साफ कहा कि इस मामले में भारत का रुख और बीसीसीआई का रुख बिल्कुल साफ है. पहले ही तय हो चुका था कि टीम इंडिया अगर चैंपियन बनती है तो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दिशा निर्देश साफ दिए जा चुके हैं कि एक आतंकी देश के इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ से या वहां के क्रिकेट काउंसिल के अधिकारी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी. सुनिए.
6: एक जो खुशी का पल था, जो मेंस टीम जो थी इंडिया की एशिया कप फाइनल पिछले साल जब जीती थी तब भी ट्रॉफी नहीं ले पाई थी, मना कर दिया. और इस साल हमने देखा, इस बार दोबारा इंडिया की विमेंस टीम ने एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से, वजह बता सकते हैं सर?
7: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहां मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूं, हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है, उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया, और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा, वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा। वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई, वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था। सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है। सो वो लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है, उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है, उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है हमारा।
0: दरअसल पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, बहुत ही बेगैरत है, क्योंकि एक बार जब उनके हाथ से नहीं ली ट्रॉफी, अगली बार उन्हें खुद ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती कराने चले आए। लेकिन जो बात बीसीसीआई के सचिव ने बिल्कुल अभी आज तक से की, हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक 2025 की, एक 2026 की। पिछले वर्ष भी भारत की जो पुरुष टीम थी, एशिया कप हम ही ने जीता, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था। और मोहसिन नकवी, मतलब आप सोचिए, ट्रॉफी चोर अपने साथ ट्रॉफी ले गए। बीती रात महिला टीम भी चैंपियन बनी, तो फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, लेकिन मोहसिन नकवी अड़े रहे, टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, फिर ट्रॉफी लेकर चले गए। आप सोचिए कि जीत तो सकते नहीं है, ऐसे ही चुरा के ले जाते हैं। अच्छा, ये वही मोहसिन नकवी हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन टीम इंडिया दो साल से ट्रॉफी देने पर अड़े रहे उस जिद पर। हम कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं, और ये आंकड़े आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। भारत एशिया कप चैंपियन 8 बार बना है, 8 बार, 1, 2, 3 नहीं, 8 बार। पाकिस्तान 0-0, नेवर, ये एक सच्चाई है। भारत के हाथ खिताब कब कब आया? 2004, 5, 6, 6, 8, 12, 16, 22, 26। देखिए, मोहसिन नकवी को ये देखना चाहिए, अगर वो क्रिकेट के हेड हैं पाकिस्तान के, तो कर क्या रहे अपने देश के लिए? अरे क्रिकेट को ऊपर करें ना, अपने आप को ऊपर करने में लगे हैं, और पाकिस्तान का क्रिकेट इसीलिए वो गिरता जा रहा है, गर्त में गिर रहा है। फाइनल में भारत 10 बार पहुंचा है, फाइनल में पाकिस्तान सिर्फ 2 बार पहुंचा है। एक समय था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा माना जाता था, अब मिनोज भी नहीं कहना लेना एक रह गए हैं। T20 नेशनल की बात करें, 18 मैच जो खेले भारत और पाकिस्तान में, 15 भारत जीता, महज 3 मैच पाकिस्तान जीता है इसके T20 इंटरनेशनल के। आंकड़ों की अगर आप बात करें, तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। एक चीज है, ये फर्क देख ले मोहसिन नकवी, और शर्म करें, उनको शर्म करने की जरूरत है, क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को सवारे, पाकिस्तान के क्रिकेट को सुधारे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी किस्मत संवारने में, खुद प्रधानमंत्री बनने में लगे हुए हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान को खेल भावना याद आ रही है, वो आतंकी देश जो आतंक का खेल खेल रहा है पूरे दुनिया में, अब उसे खेल भावना याद आ रही है। चलिए, जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अच्छी तस्वीरों से, किसकी? जीत की, जोश की, जुनून की, जज्बे की, और उन लम्हों की जो भारत की बेटियों ने कल दुबई में जिए, और उनके साथ साथ वो तस्वीरें देखकर पूरे देश से विश्व भर में जिए। चैंपियन बनने के फौरन बाद ये तस्वीरें पाकिस्तान की टीमों को एक लंबे समय तक चुभती रहेंगी। देखिए,

0: मैंने उस दिन बोला था ना हम जीतेंगे और हम जीत गए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
3: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: और वही कहां गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: In association with
14: Signature Finest Cardamom Seeds,
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
1: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
2: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
3: है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
4: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
5: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
0: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
6: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
7: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहां सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लग रही है?
8: देखिए, मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि पंजाब इस समय जो हमारे पास जो डिमांड है वो है 17,000 मेगावाट की। हमारे पास जो इस समय बिजली है वो है 14,000 मेगावाट के करीब। जो 3,000 मेगावाट की हमारे यहाँ शॉर्टेज है, उसके तीन प्रमुख कारण निकल के सामने आए। नंबर एक के 1,000 मेगावाट बिजली जो हमें केंद्र सरकार से मिलती है, जो हमारा पंजाब का हक बनता है, मतलब कि जो हमारे पंजाब का शेयर है, वो बेसिकली पूल में से शेयर है। हमें इस बार 1,000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के पूल से मिल नहीं रही।
9: मैं पंजाब की जनता को दस देना चाहना, केंद्र वालों कोले की सप्लाई की कोई कमी नहीं गी, और इतने तक भी कि पंजाब सरकार दे पावर प्लांटा से भी कोले की कोई कमी नहीं हैगी। 4-9 जो पावर मंत्री सोन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ने, उदन जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होंगी है 100 की, तो उदन 117 स्टॉक इन्होंने पावर प्लांट्स विच सीधा।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में आगे, सिर्फ 3 पर सिमटी कांग्रेस।

0: पूरी तरह तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे।
2: अमेरिका पाकिस्तान ने दिया धोखा, भूती से अकेले ही सऊदी की जंग, पोलैंड के पास रूस का बड़ा हमला, बाल बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर ब्रिटेन।
0: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब बनाम हूथी युद्ध की, जहां सऊदी अरब का न प्लान ए काम आया, न प्लान बी, और न ही सऊदी अरब की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान काम आया। जी हां, अमेरिका ने भी मदद नहीं की और खैरात खाने वाले पाकिस्तान ने भी नहीं। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को अब अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है। बड़ी खबर समय आ रही है, अपनी सुरक्षा और अपनी जंग खुद लड़ रहे सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने एक 62 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अमेरिका में बने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सैनिक साजो सामान और सैन्य तैयारियां दिखाई जा रही है। इस फुटेज में सैनिकों को ऑपरेशन की तैयारी करते, फाइटर जेट्स को फॉर्मेशन में उड़ान भरते और हेलीकॉप्टर से सैनिकों की तैनाती और हवा से टारगेट को अक्वायर करते, यानी टारगेट पर निशाना साधते के कई दृश्य दिखाए गए हैं। इस वीडियो को देखिए, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस वीडियो का मकसद सऊदी अरब की सैन्य तैयारी और हवाई ताकत को दिखाना है। यह वीडियो दरअसल ऐसे समय जारी किया गया है जब हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के इलाके में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। इस बीच खबर यह है कि सऊदी समर्थित जो यमन की सरकार है और सरकारी सेना उनको

है जिनका मकसद यमन में हुथी खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है और इसी खतरे से निपटने में उनकी मदद ना अमेरिका कर रहा है और ना ही सऊदी अरब के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लड़ाकू विमान, ये सऊदी अरब के पायलट हैं, उनके लड़ाकू विमान हैं और वो अब उड़ान भर रहे हैं हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना साधने के लिए। इसमें आप उनके आई इन द स्काई को देख रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं और उनके पायलट्स को। ये देखिए, ये लेजर गाइडेड म्यूनिशन, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से वो हूथियों के गढ़ को किस तरह से वो ताबड़तोड़ हमलों में ध्वस्त करेंगे, ये दिखाने का प्रयास है। एक तरह से अपने ही देश में अपने ही लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये 62 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है। दरअसल सऊदी अरब ने वैसे तो मक्का अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और ये जो मक्का समझौता है इसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। कहने को तो एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा और इसीलिए तीनों एक साथ लड़ेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ तुर्की बगले झांकने लगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कन्नी काटने लगा। मदद करने के नाम पर पाकिस्तान आ ही नहीं रहा है सामने। और आइए अब हम आपको पश्चिम एशिया में जो खुले जंग के दो दो मोर्चे हैं और वहां पर जो हालात हैं उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग को अब 6 महीने से ज्यादा हो गया है। 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी। अब इस रणभूमि का दूसरा मोर्चा, बेहद खतरनाक दौर से दूसरा मोर्चा गुजर रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से यमन में जो हूथी विद्रोही है, जो ईरान के समर्थित माने जाते हैं, ईरान के बेहद करीबी है, उन्होंने सऊदी अरब पर चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने न केवल हॉर्मूज के अलावा जो तेल एक्सपोर्ट के लिए बनी सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और यह अरबों डॉलर की लागत से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनी थी, उस पर हमला किया, बल्कि अब दूसरे समुद्री मार्ग, यानी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, दूसरा बाबल मंदब है, बाबल मंदब पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यानी अब लाल सागर भी सऊदी अरब के लिए तेल निर्यात करने का लगभग नामुमकिन इलाका हो गया है। यमन में सऊदी अरब ने नेशनल रेजिस्टेंस सेना को समर्थन दिया हुआ है, लेकिन बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए हूथी विद्रोहियों ने यमन के मोका शहर और मोका बंदरगाह के आसपास के इलाके और जो उसके आसपास के तटीय इलाके हैं उस पर अपना कब्जा पूरी तरह से कर लिया। बाबल मंदब के मुहाने पर बेहद अहम जो पेरिम द्वीप है, अब पेरिम द्वीप पर भी हूथी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। यानी तेल का कारोबार पूरी तरह से ठप होता देख सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पहले अमेरिका से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को हूथी विद्रोहियों पर हमला करने के लिए कहें और अमेरिका की सेना बड़ी संख्या में उस पूरे क्षेत्र में मौजूद भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हूथी विद्रोही अमेरिका से नहीं लड़ना चाहते। अमेरिका सऊदी अरब को खुफिया जानकारी देगा, इंटेलिजेंस असिस्टेंस देगा, ISR इसे कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस, इसमें वो मदद करेगा, लेकिन अपने सैनिकों को वहां तैनात नहीं करेगा, अपने विमानों को और मिसाइलों को हूतियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। दरअसल ईरान के खिलाफ जंग में फंसा अमेरिका एक दूसरा मोर्चा नहीं खोलना चाहता, वहां से लड़ने में बच रहा है। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया, उन्होंने पाकिस्तान फोन घुमाया। पाकिस्तान ने भी यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि रक्षा समझौते के तहत अगर कोई देश और किसी देश की सेना अगर सऊदी अरब पर हमला करेगी तभी पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है, जबकि हूथी एक देश की सेना नहीं, वो तो एक विद्रोही गुट है, वो देश नहीं है। इस वजह से सऊदी अरब को अब अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है और अकेले लड़नी पड़ रही है और यह संभवतः सऊदी अरब को भी दिखाएगा कि पाकिस्तान हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और पाकिस्तान घबरा रहा है। वो सऊदी अरब से पैसा तो लेना चाहता है लेकिन अपने सैनिकों को इस युद्ध में झोंकना नहीं चाहता। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सऊदी अरब कितनी बड़ी मुश्किल में लगातार फंसता जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि सऊदी अरब के लिए तेल निर्यात, उसके दो बड़े रास्ते हैं, एक
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ईरान ने डोमिनेट किया हुआ है। यहां पर अमेरिका भी ज्यादा कुछ

0: नहीं कर पा रहा है। तो एक ये रास्ता सऊदी अरब के लिए बंद हो गया है, और जो दूसरा रास्ता है जहां से ईस्ट वेस्ट उसकी पाइपलाइन आती है, यहां ये हूथियों का गढ़ है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये स्वेज के लाल सागर है, ये स्वेज कनाल का रास्ता जाता है, और यहां पर हूथी विद्रोही जो है बाबल मंदब जलडमरू मध्य, ये प्रमुख द्वीप अब इस पर, यहां पर भी हूथियों का कब्जा है। ये तो फिर भी अगर 33 किलोमीटर है, ये महज 19 किलोमीटर का इलाका है। ये है वो परिम द्वीप पर जब हूथियों का कब्जा हो गया, अब ये जो रास्ता है ये महज 12.5 मील का बच जाता है। और जब ये इतना सकरा रास्ता है तो हूथियों का यहां कब्जा है, तो यहां से सऊदी अरब का तेल निकल ही नहीं सकता। अब आप देखिए ये दोनों रास्ते कैसे बंद हुए। एक उसकी ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, बहुत पैसा खर्च करके सऊदी अरब ने ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई थी। क्या सोचा था उस समय कि एक बार ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन आ गई तो मान लीजिए हॉर्मूज का यह रास्ता बंद हुआ, यहां से तेल निर्यात, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, अगर फारस की खाड़ी से ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये अरब सागर है, अगर यहां पर तेल इस रास्ते से नहीं आ पाएगा तो यहां से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से लाल सागर में चला जाएगा, स्वेज कैनाल वो इजिप्ट के वहां से होते हुए यूरोप की तरफ चली जाएगी, और यहां से आते हुए बाबल मंदब के रास्ते से आके अरब सागर में यहां पर, और फिर यहां पर भारत की तरफ आ जाएगी, भारत की तरफ, और फिर यहीं से चीन की तरफ निकल जाएगी मलाका स्ट्रेट होते हुए। लेकिन अब ये दोनों रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं, ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये दोनों रास्ते एक बार अगर बंद हो गए तब सऊदी अरब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब को भी दबा दिया है और पाकिस्तान मदद करने से घबरा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यमन के हूथी विद्रोहियों ने भीषण हमलों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बेहद हाई लेवल वॉर रूम मीटिंग यहां पर हो रही है। इस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के चीफ है जनरल माइक केरला और मोहम्मद बिन सलमान, इनके बीच एक इमरजेंसी बैठक हुई है, और इस बैठक से इस पूरे क्षेत्र में खलबली है। 10 सितंबर 2026 को सऊदी की मुख्य ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन पर हुए भीषण ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से सुरक्षा और इंटेलिजेंस दोनों की मदद मांगी है, और यह अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हूथियों ने यमन के तटीय इलाकों पर कब्जा कर सऊदी अरब के जहाजों का रास्ता रोक दिया है, जिसे खोलने के लिए अमेरिका की नौसेना की मदद किस तरह ली जाएगी, अमेरिका की नौसेना की क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा हुई। यमन और इराक से हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से सीधे एयर स्ट्राइक और एयर डिफेंस सपोर्ट दोनों मांगा है। यह बैठक ईरान और हूथी विद्रोहियों को एक सीधा और कड़ा संदेश है कि अगर हमले नहीं रुके तो अमेरिका की सेना अब सीधे इस जंग में सऊदी अरब के साथ उतर सकती है। और आइए अब हम रुख करते हैं दूसरी बड़ी रणभूमि की ओर। यह यूरोप और रूस के बीच की रणभूमि है, यानी कहने को तो ये रूस और यूक्रेन के बीच जंग है, लेकिन पोलैंड की सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर यूक्रेन के यहोदिन में एक यात्री ट्रेन पर हुए रूस के ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बड़ी खबर यह कि इन हमलों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस ट्रेन पर हमला हुआ, जिस ट्रैक पर हमला हुआ, ठीक 15 मिनट पहले उसी ट्रैक से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस, वो और कई और बड़े पश्चिमी राजनयिक एक डिप्लोमेटिक ट्रेन से गुजरे थे। यानी हमले में ट्रेन का जो इंजन है वो तबाह हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि ये ट्रेन में 206 जो यात्री हैं वो सुरक्षित बच गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जानबूझकर एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के रेलवे ऑपरेटर का दावा यह है कि रूस का दरअसल असली निशाना ये वाली सिविलियन ट्रेन नहीं बल्कि राजनयिकों वाली ट्रेन थी। पूर्व CIA चीफ डेविड पेट्रियस ने इस धमाके को बेहद खौफनाक बताया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने पोलैंड से आ रही पश्चिमी हथियारों से के सप्लाई रूट को दरअसल निशाना बनाया, लेकिन पोलैंड सीमा के इतने करीब हुए इस हमले के बाद नेटो के देश इस समय हाई अलर्ट पर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वॉर्सो में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाकर चेतावनी दी कि रूस युद्ध को और ज्यादा भड़का रहा है और तनाव किसी भी समय पोलैंड तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा यूक्रेन पर अब फोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के डीजल ठिकानों पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले ने तेल कीमतों में आग लगा दी है।
1: Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: एक और बड़ी खबर समय यूरोप से आ रही है। 319 साल बाद सोचिए ब्रिटेन इंग्लैंड इस समय टूटने की कगार पर है। दरअसल वेल्स स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड वहां पर एक रेफरेंडम की तैयारी है। आज तीनों देशों के नेता ब्रिटेन से अलग होने पर एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। सोचिए जिस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कभी कहा जाता था कि उस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता, आज वो खुद टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन चार देशों को जोड़कर बना है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इनमें अगर इंग्लैंड को छोड़ दें तो बाकी सब पहली बार राष्ट्रवादी दलों के नेता यहां सत्ता में हैं, जो दरअसल ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। और उनका इतिहास देखिए, अपने इतिहास भर वो इंग्लैंड से लड़ते आए हैं। चाहे स्कॉटलैंड की बात करें, चाहे वेल्स की बात करें, चाहे आयरलैंड की बात करें, इसीलिए तीनों देशों के नेता, तीनों नेता आज वेल्स के कार्डिफ में मिल रहे हैं। तीनों कार्डिफ में मिलकर एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम से रेफरेंडम की मांग की जाएगी। बैठक में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी, वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर रुआन एवोवर्थ और उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओनील शामिल हैं। वो शामिल होंगी इसमें। तीनों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है एंडी बर्नम, वो तीनों देशों की मांग को मानने से पहले साफ इनकार कर चुके हैं। दरअसल इतिहास की किताबों को अगर आप खंगाले तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हुआ था और तब ब्रिटेन बना था, लेकिन अब स्कॉटलैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। अब ये मैं आपको जरा इंग्लैंड का नक्शा दिखाता हूं। वो इंग्लैंड जिसने एक समय जहां कहा जाता था उस इंग्लैंड का राज पूरी दुनिया पर चलता था, वहां कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अब ये देखिए, ये वो इंग्लैंड है। वैसे बहुत छोटा सा देश है और वेल्स उसके दक्षिण में है। उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। जी हाँ, यहां इंग्लैंड में जो अंग्रेजी बोल दी जाती है और जो वेल्स में जो उनकी वेल्श भाषा है वो बोली जाती है, वो बिल्कुल अलग है। फिर अगर आप ऊपर जाए तो स्कॉटलैंड, वो एक अलग देश है, वहां की भी भाषा अलग है। और उत्तरी आयरलैंड भी एक अलग देश के रूप में अपने आप को मानता है। तो सोचिए वेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड जब मिल जाते हैं तब ये बनते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इस कहने के तौर पर अगर देखें तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ये चारों अलग है। चार देश एक साथ हुए तलवार के बल पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पासपोर्ट की बात करें, सेना की बात करें, विदेश नीति की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता की बात करें, तब एक ही नाम चलता है और वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन सोचिए अगर स्कॉटलैंड अलग हो जाता है, अगर वेल्स अलग हो जाता है, उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन से अलग हो जाता है तो क्या होगा? ब्रिटेन एक झटके में अपना 46% भूभाग खो देगा और केवल इंग्लैंड बचेगा। लगभग 1,06,00,000 लोग यूके के बाहर हो जाएंगे, यानी आबादी का 15.5% वो अलग हो जाएगी। वो आबादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग 66.55 लाख करोड़ यानी 13.2% का झटका लगेगा। आप ये सोचिए अर्थव्यवस्था 13% घट जाएगी। इतना ही नहीं, उत्तरी सागर के तेल, गैस, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, इसका अगर बंटवारा हुआ तो ब्रिटेन को स्कॉटलैंड स्थित अपने परमाणु पनडुब्बी का जो अड्डा है उससे भी हटना होगा। तो आप ये सोचिए इंग्लैंड की पार कितनी घट जाएगी। और अगर आप, अगर ऐसा असल में हुआ तो आप सोचिए तीनों राज्यों का अलग अलग होना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि ब्रिटेन के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह है इस समय की स्थिति। एक बात यहां साफ है, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान उठा है। क्यों? अब मैं ये आपको दिखाता हूं। रुएनो योरवर्थ जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर है वेल्स के, ये कहते हैं कि वेल्स को उचित फंड्स नहीं मिलते। अच्छा, वेल्स की अगर बात की जाए, बहुत खूबसूरत है वेल्स, बहुत बहुत खूबसूरत इलाका। मिशेल ओनील की बात करें, फर्स्ट मिनिस्टर है उत्तरी आयरलैंड की, 1998 की डील में रेफरेंडम का अधिकार दिया गया था, अब वो रेफरेंडम का अधिकार वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ब्रिटेन की नीतियों से खासा नाराज भी है। फिर जो जॉन स्वीनी है फर्स्ट मिनिस्टर है स्कॉटलैंड के, ये कह रहे हैं कि हम और स्कॉटिश लोग ना बहुत ही स्वावलंबी होते हैं, बहुत ही आत्मसम्मान होता है उनमें, वो कभी ब्रिटेन के आगे झुकना नहीं चाहते, लगातार लड़ते रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम अपने बड़े फैसले खुद करेंगे, हम क्यों ब्रिटेन के नीचे झुककर काम करें, लगातार कहते आए हैं। और अब इनकी आवाज मिल गई है। तीन अलग अलग देश, हमने रुएन योरवर्थ फर्स्ट मिनिस्टर की आपने बात बताई। आप यह सोचिए कि कर्मा करके भी एक चीज होती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत का विभाजन किया, यानी पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, या उस समय पूर्वी पाकिस्तान अलग, इतिहास देखिए, अब वही ब्रिटेन टुकड़े टुकड़े हो सकता है अगर ऐसा रेफरेंडम हुआ। उस खबर पर रहेगी नजर, लगातार रहेगी नजर। अब एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: एक फोन जिसकी कीमत सुनकर आप रुक जाएंगे, एक लॉन्च जिसमें आईफोन के साथ वॉच और ईयरपॉड्स भी नए अवतार में आए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारत में कितने का पड़ेगा एप्पल का ये नया प्रो फोन। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रो मॉडल्स की नहीं है। एप्पल ने पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन डुओ भी पेश किया है, जिसकी 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन खुलते ही फोन को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देती है। यानी एप्पल अब उस फोल्डेबल रेस में उतर चुका है जिसमें सैमसंग जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद है। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल 256 गीगाबाइट से लेकर 2 टेराबाइट तक के स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किए हैं। कलर भी 4 बरगंडी, ग्लेशियर, सिल्वर और ब्लैक। भारत समेत 65 से ज्यादा देशों में 12 सितंबर से प्री ऑर्डर, जबकि 18 सितंबर से ओपन सेल शुरू होगी। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमत 2,99,900 रुपए से शुरू होती है। लेकिन एप्पल का सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं। ओपन ईयर डिजाइन के साथ इनमें बेहतर ऑडियो और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। इसके साथ एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 भी लॉन्च हुई है। इनमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड हार्ट रेट को अब हर 5 सेकंड में मॉनिटर करता है। यानी एप्पल का नया लॉन्च सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं। सवाल अब ये है, क्या 1,65,000 रुपए से शुरू होने वाला आईफोन 18 प्रो भारतीय बाजार में नया प्रीमियम बेंचमार्क बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य डिनू मोरिया और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में आगे, सिर्फ 3 पर सिमटी कांग्रेस। अमित शाह के यूसीसी वाले ऐलान पर जेडीयू के तीखे तेवर, कहा बिहार में बीजेपी नहीं एनडीए का शासन। गृहमंत्री से जल्द बात करेंगे संजय झा। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 252 मदरसों पर जड़े ताले। सरकार के सर्वे में बिना स्वीकृति 2300 से अधिक मदरसे चलने का हुआ खुलासा। और चीन ने एलएसी पर घटाई सैनिकों की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, भारतीय सेना भी किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज का दंगल उत्तर प्रदेश के चुनाव में आधी आबादी को लेकर बनाई जा रही सियासी रणनीति को लेकर, जिसपे खबर है कि बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। यूपी में महिला उद्यमी क्रेडिट योजना लागू होने वाली है। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 1 करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने या बढ़ाने के लिए 1-1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। 3 किश्तों में मिलने वाली इस रकम की पहली किश्त 20,000 रुपए की होगी, जिसे चुकाए जाने के बाद 30,000 और 50,000 रुपए की दूसरी और तीसरी किश्त भी दी जाएगी। इस योजना का फायदा लेने वाली महिलाओं को क्रेडिट कार्ड मिलेगा और 3 साल तक ब्याज नहीं देना होगा। तब तक यूपी आजीविका मिशन ब्याज का भुगतान करेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस योजना के जरिए महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, उन्हें कृषि मित्र, ड्रोन सखी या छोटे मोटे व्यवसाय के जरिए सशक्त बनाना है। दिसंबर तक इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन विपक्षी दल सियासी सवाल उठाते हैं कि चुनाव से ठीक पहले महिला सशक्तिकरण की ऐसी योजनाएं क्यों एक्टिव हो जाती है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ऐसी ही एक योजना बिहार में भी चुनाव से पहले आई थी, जिसमें 1,81,00,000 महिलाओं को 10-10,000 रुपए मुफ्त मिले थे। ये महिलाएं उद्यमी बन चुकी है। वो सिलाई कढ़ाई बुटीक से लेकर जनरल स्टोर, सिंगार स्टोर, अचार पापड़, अगरबत्ती निर्माण से लेकर मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी जैसे उद्यम भी कर रही है। इनमें सरकार ने 20,00,000 से अधिक महिलाओं का वेरिफिकेशन करके 2,00,000 और पूंजी देने की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या बिहार की तर्ज पर बिहार की तरह नारी सशक्तिकरण का कार्ड यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति का ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है क्या? इसी सवाल पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: पिछले 2 महीनों में सीएम योगी ने यूं तो प्रदेश भर में 4 दर्जन से ज्यादा रैलियां, कार्यक्रम, उद्घाटन, शिलान्यास की, लेकिन इन्हीं 2 महीनों में प्रदेश की आधी आबादी के वोट को साधने के लिए यूपी सरकार ने ताबड़तोड़ योजनाएं और घोषणाएं की। चाहे वो 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का तोहफा हो, करीब 3,00,000 आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी हो, या फिर सूबे की 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख के ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना। योगी सरकार की चुनावी सियासत के केंद्र में प्रदेश की आधी आबादी बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। यूपी सरकार बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी योजना लाने वाली है। इस महिला उद्यमी क्रेडिट योजना में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 1 करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने या बढ़ाने के लिए 1-1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। 3 किस्तों में मिलने वाली इस रकम की पहली किस्त 20,000 रुपए की होगी, जिसे चुकाए जाने के बाद 30,000 और 50,000 रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त दी जाएगी। इस योजना का फायदा लेने वाली महिलाओं को क्रेडिट कार्ड मिलेगा और 3 साल तक ब्याज नहीं देना होगा। 3 साल तक यूपी सरकार के आजीविका मिशन की ओर से ब्याज का भुगतान होगा।
2: सरकार ने 1,00,000 रुपए ब्याज मुक्त लोन महिला उद्यमियों को, जो
3: महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पूरे प्रदेश के अंदर प्राथमिकता में है, उसी के दृष्टिकोण से इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष गरीब विरोधी है, विपक्ष गरीब किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, इसलिए इस प्रकार की चीजें कहते हैं।
1: यूपी सरकार पहले भी यूपी में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के अलावा बीसी सखी और ड्रोन दीदी महिलाओं को तकनीक और बैंकिंग की सुविधाएं दे रही है। कुल आंकड़े देखे जाएं तो यूपी में 9,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों में करीब 1,06,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें 18,55,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें 58,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी सखियां ग्रामीण बैंकिंग लेनदेन में हजारों करोड़ रुपए का प्रबंधन कर रही हैं और करीब 2,700 राशन दुकानें महिलाएं चला रही हैं।
4: हमने देखा अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे उन सक्सेस योजनाओं को, चायवाज माफिया से हटा करके टेक होम राशन के प्लांट महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 204 स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, उसके कार्यक्रम को हम लोगों ने देखा है।
1: दरअसल यूपी में बीजेपी को मिलने वाले महिलाओं के वोट में हुई कमी को देखते हुए योगी सरकार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2022 में यूपी में कुल 4,23,00,000 महिलाओं ने वोट दिया और इनमें से 2 करोड़ से अधिक यानी करीब 48% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में करीब 4,38,00,000 महिलाओं ने वोट डाला था, जिसमें से 1,80,00,000 के करीब यानी सिर्फ 41% महिलाओं ने ही बीजेपी गठबंधन को वोट दिया।
5: ये इलेक्शन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चुनाव की तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो हार गए। ये पहला चुनाव ऐसा है कि चुनाव की तारीख के बाद ही जनता अपना रिजल्ट बता देगी। ये लाख बेईमानी कर लें, लाख तरीके से पैसा खर्च कर लें।
1: माना गया कि चुनाव से पहले राहुल अखिलेश के गठबंधन ने महिलाओं के खाते में 3,000 खटाखट डालने का जो चुनावी वादा किया और फॉर्म भरवाए, उसके प्रभाव से करीब 7% महिला वोट बीजेपी से छिटक कर इंडिया गठबंधन के खाते में चले गए थे। इस बार सीएम योगी ऐसे किसी चुनावी चाल के लिए कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज तक ब्यूरो।
0: तो महिलाओं को लेकर इस तरीके की आर्थिक योजनाएं एक तरीके से चुनाव जीतने का मंत्र बन चुका है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा, उसके बाद महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यह साबित हुआ कि यह काफी कारगर साबित हो सकती है और बिहार ने इस बात को और भी आगे बढ़ाया हुआ। लेकिन क्या इसी तरीके से चुनाव जीते जा सकते हैं या सचमुच में महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना का फायदा होगा? चर्चा करेंगे। हमारे साथ चारु प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चर्चा में आ रही है, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रही है। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या यूपी में महिला उद्यमी क्रेडिट योजना बीजेपी का चुनावी ट्रम्प कार्ड है? दूसरा सवाल, बिहार में महिलाओं को मुफ्त 10,000 रुपए तो यूपी में 1,00,000 का ब्याज मुक्त कर्ज क्यों दे रही है सरकार? तीसरा सवाल, क्या यूपी में महिलाओं के लिए सरकार के चुनावी घोषणाओं का मुकाबला विपक्षी दल क्या कर पाएंगे? चर्चा की शुरुआत करते हैं। चारु प्रज्ञा जी, ये एक अच्छा टूलकिट बन चुका है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर चुनाव जीतना है तो महिलाओं के लिए योजना लेके आइए, उसके जरिए जीत जाइए।
6: साहिल जी नमस्ते। देखिए, विपक्ष किसी बात को टूलकिट कहे या चुनाव की बातें कहे, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में अगर सबसे बड़ा कोई बदलाव हुआ है तो वो महिलाओं की स्थिति में हुआ है। और हर एक स्थिति में, चाहे आप उनके सम्मान की बात करें, चाहे आप उनकी सुरक्षा की बात करें, चाहे आप उनकी एजेंसी की बात करें, 2017 में विमेन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्कफोर्स केवल 13% थी और आज 10 साल बाद जब 2025 में हम उसी आंकड़े को देखते हैं, वो बढ़के 36% हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो देश की तीसरी प्रदेश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोई रातों रात लाई गई स्कीम नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 18,00,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम महिलाओं को एजेंसी देना चाहते हैं, हाथ में पैसा नहीं, सच्चाई में उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं। क्योंकि इस पैसे के साथ, देखिए ये क्रेडिट लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट लाइन है, इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू कर सकती हैं, अपने छोटे छोटे काम कर सकती हैं, कहीं दुकान लगा सकती हैं, कोई सिलाई का काम कर सकती हैं, मछली पालन कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डेयरी का काम कर सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकती हैं। उनके लिए दुनिया भर के लाखों दरवाजे खुल जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में ये इंडिपेंडेंट पैसा आ जाता है। और आप पूरा लिंक देखिए, अकाउंट से, एक जनधन अकाउंट से इस बात की शुरुआत हुई थी और आज स्थिति ये आ गई है कि अगर 18,00,000 लखपति दीदी हमारे प्रदेश में है तो कितनी ज्यादा कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ने की। और केवल यही बात है और इसीलिए तिलमिला जाता है विपक्ष, उनको मालूम है ना उनके पास विजन है, ना उनके पास इस तरीके की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोई भी विल पावर है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो इसी बात में फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं कि वो अपनी छोटी सी पारिवारिक राजनीति में फंसे रह गए और देश इतना आगे निकल गया।
0: नाहिद लारी खान, कोई तोड़ नहीं है आपके पास, इसीलिए आपको सियासत नजर आ रही है, महिलाओं को फायदा हो रहा है तो क्या बुरी बात है?
7: नहीं नहीं, दरअसल ये तो आपने एक सीरियस डिबेट महिलाओं के मुद्दे पे कर शुरू की है आज, लेकिन मैं देख रही हूँ कि भाजपा प्रवक्ता जो है हंसी ठिठोली के मूड में हैं, लबबाजी की बातें, गप्पा लंबी लंबी छोड़ना, चंडूल खाने की बातें उड़ाना। बहरहाल देखिए, जो ये योजना की आप बात करें, हालांकि इस योजना के बारे में तो मैं बताऊं कि मुझे भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम है इस योजना के बारे में, क्योंकि ये तो हवा हवाई बातें करती है बीजेपी। अब महिलाएं इनको सीरियसली लेती नहीं, जनमानस इनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं। जो 1 लाख की योजना ला रहे हैं, दरअसल ये योजना 1 लाख रुपए, अब देखिए बीच में इंटरप्ट ना करिए, बाद में बोलिएगा। देखिए ये योजना 1 लाख रुपए देने की योजना नहीं है महिलाओं को, दरअसल ये योजना जो है,
6: अपनी पार्टी पे बात करिए ना आपने अपनी।
7: अरे साहिल जी देखिए, इस तरह से देखिए मत डिबेट कराइए इनको, चुप कराएं जब बात इनकी आएगी।
8: ठीक है चारू जी, उनकी बात खत्म होने दीजिए, चलिए।
7: देखिए ये जो योजना लेकर आई है ना भाजपा की, ये दरअसल 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की योजना नहीं, दरअसल महिलाओं के खिलाफ साजिश रच रही ताकि महिलाओं को जेल में डाला जा सके, ये योजना है, महिलाओं को जेल में डालने की योजना है। पहले उनको कर्ज देंगे, लोन देंगे, और फिर जब वो महिलाएं जो है 20,000 का ही, पहले 20,000 से फिसली किश्त दे रहे हैं, लोन की किश्ती पहले 20,000 दे रहे हैं। जब 20,000 रुपए लोन की अदायगी नहीं कर पाएंगी महिलाएं, तो उनके ऊपर रिकवरी करेंगे और फिर उनको जेल में डालने की, जेल में डालेंगे महिलाओं को। इनको महिलाओं से सख्त नफरत है, सख्त चिढ़ है बीजेपी को, ये तो जग जाहिर है। तभी तो आप देखिए विश्व के सबसे बड़े जो रेपिस्ट हैं, हजारों हजार महिलाओं का जिन्होंने रेप किया, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे आसाराम बापू, इनके गुरु हैं। तो महिलाओं से इतनी नफरत और इनकी चिढ़ और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में जनमानस सहित नौजवान, किसान, बुजुर्गों सहित के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया और बीजेपी को करारी हार दी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो गई छोटी पार्टी और समाजवादी पार्टी बन गई सबसे बड़ी पार्टी। इसलिए इस तरह की साजिश रच रहे महिलाओं के खिलाफ। अरे अगर कुछ महिलाओं को आपको भला करना था तो अभी 9.5 साल हो रहे, अब कुछ दिन बाकी, केवल कुछ दिन बाकी है इनको सत्ता से बहुत दूर जाने के लिए, और महिलाएं बेकरार है, बेताब है कि कैसे वोटों के माध्यम से बीजेपी से।
6: मुझे
7: देखिए इस तरह से बीच में इंटरप्ट ना करिए। आपका टाइम आ गया था,
8: मैं आपको जवाब देने दूंगा चारू जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। उनकी बात खत्म हो जाएगी।
7: महिलाओं को बोलने ना दें, ये बीजेपी गिरोह का फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा है जहां पर आप
8: बात
7: महिलाओं
8: खत्म हो
7: को बोलने ना दें। अरे अगर महिलाओं को
8: लाभान्वित
7: करना था, अब कुछ दिन बाकी है सत्ता से जाने में, बहुत दूर जाने में, तो आप चला चली की बेला में इस तरह से चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे। अरे अरे महिलाओं को जो है अब आपसे कोई उम्मीद नहीं, यहां महिलाएं तो परेशान है। 1 लाख रुपए की बात करें, अरे महिलाओं का 1 FIR नहीं हो रहा है, FIR करवाने के लिए माने न्यायालयों को इंटरव्यू।
8: चारू प्रज्ञा जी इस बात का जवाब देंगी, लेकिन एक सवाल नाहिद
7: जी, नहीं 1 सेकंड नहीं, अरे
8: नाहिद जी ये आपकी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना, ये आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, नहीं नहीं आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं भी आपको सवाल ही नहीं पूछूं ये तो नहीं हो सकता ना, मैं आपको सवाल ही नहीं पूछूं ये भी नहीं हो सकता। अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है तो आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।
7: आपने सवाल पूछा
8: नहीं तो आपका जवाब हो गया बीच में, मैं आपको सवाल नहीं पूछूं। आपने 3 मुद्दे खड़े किए हैं इस पूरी चर्चा में, आपके जवाब में 2 मुद्दे खड़े हो रहे हैं। पहला मुद्दा ये खड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, एक तो आप कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल चाल है कि अचानक 6 महीने पहले इस तरीके की योजना लेकर आ रही है, उसका जवाब चारू प्रज्ञा दे देंगी टाइमिंग को लेकर। लेकिन मुझे आपसे सवाल इस बात को लेकर पूछना है कि महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में है आज की स्थिति में, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार के तरफ से कई बार कर्जा दिया जाता है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी राज्यों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस तरीके से कर्जा दिया जाता है, और कई बार बिना इंटरेस्ट का भी कर्जा दिया जाता है, यह बात भी सही है। और यह एक प्रैक्टिस है कि आप पहले एक किश्त चुकाएंगी, उसके आधार पर आपको बड़ी किश्त उसके बाद में दी जाएगी। आपको इस योजना में क्या खामी नजर आ रही है,
7: देखिए इसका जवाब दीजिए। देखिए इनकी नियत नहीं है, इनकी नियत नहीं है महिलाओं को हेल्प करने की। अगर इनकी नियत साफ होती तो पहली किश्त जो है इस तरह से कर्ज वर्ष की बात ना करते, डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसा डालते, जैसे 2004 में कन्या विद्याधन योजना समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लागू की 2004 में माननीय नेताजी ने, डायरेक्ट महिलाओं के खाते में, लड़कियों के खाते में। अरे भाई मैं एक चीज बोलती हूँ, या तो आप बोलते हैं या ये बोलती है, कैसा डिबेट हो रहा है, इनको चुप कराइए। आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए, ये कौन सा तरीका है।
8: जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पेशेंस पेशेंस थोड़ा सा पेशेंस रखिए चारू जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। बोलिए,
7: सबसे पहले पूरे देश में महिलाओं को लाभान्वित करने की कोई अगर योजना लेकर आया था तो वो समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी ने। 12वीं पास लड़कियों के खाते में डायरेक्ट 20,000 रुपए जाता था, डायरेक्ट खाते में जाता था, लेकिन अब उसी के नकल में ये लेकर आए कि हम कर्ज देंगे। तो नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए, पढ़े लिखों की तो सरकार है नहीं, ऊपर दिमाग तो खाली है इनका। अरे भाई, महिलाओं को डायरेक्ट आप लाभान्वित
8: करिए ना, समाजवादी
7: पेंशन योजना था,
8: लाड़ी बहन या लाड़ी बहना जैसी योजना लेकर आई है, तब समाजवादी पार्टी कहती कि उसमें कोई राजनीति नहीं। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर करती महिलाओं को तो अच्छा लगता उन्हें। चारू जी
6: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मैंने ना इनकी सारी बातें सुन ली, और साहिल जी एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं वहां से अपनी बात शुरू करूंगी। बहन जी रुक जाइए, शांति
8: बोलिए। चारू जी बोलिए।
6: अंग्रेजी में कहावत है, टीच अ मैन टू फिश वर्सेस, बहन जी थम जाइए, रुक जाइए, आपकी बहुत नॉनसेंसिकल बातें
8: हैं। आपका कहना हो चुका, आप बीच में अभी बोल रही
6: हैं,
8: आपको रोका जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चारू जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए ना, आप ही के मुद्दे पर सवाल पूछा गया है, बोलने तो दीजिए उनको। चारू जी बोलिए।
6: जी मैं दो बातें कहना चाहती हूँ साहिल जी, और मैं आंकड़े दूंगी आपको, थोड़ा इनको शांत कराइए। मतलब ये उत्तेजित इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है हाथ से अभी से चुनाव इनका निकल गया है। शांत हो जाइए, ठीक है। पहली बात साहिल जी, अंग्रेजी में कहते हैं गिव अ मैन अ फिश वर्सेस टीच अ मैन टू फिश। या तो आप इंसान के हाथ में वो मच्छी रख दीजिए या उसको मच्छी पकड़ना सिखा दीजिए, यही फर्क है समाजवादी की सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में। हाथ में पैसे दे देना बहुत आसान है, लेकिन एक महिला को इतना सशक्त बनाना, उसको एक ऐसे लेवल पे जीवन पे लाना कि जब आप उसके हाथ में पैसे देते हो, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना खुद का उद्योग खड़ा कर सकती है, अपना काम खड़ा कर सकती है, अपने आप को और ज्यादा सशक्त कर सकती है, इसको ट्रू एम्पावरमेंट कहते हैं। बट मुझे लगता है शायद ये बेसिक बातें समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आती, मोदी योगी को ही समझ में आती। ये कह रही है अरे भाई, ये महिलाओं को जेल भेजने की साजिश हो रही है, ऐसे लोन का आप वापस किश्तें मांगेंगे। तो आपको थोड़े आंकड़े में मुद्रा लोन की दे देती हूं, आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से। मुद्रा लोन में आज की तारीख में 40 लाख करोड़ हमारी सरकार ने दिया है, 40 लाख करोड़ उन लोगों को जिनको अपने अपने काम या तो शुरू करने थे या आगे बढ़ाने थे। आपको मालूम है इसमें से कितने पैसे वापस आ गए हैं? 40 लाख करोड़ में से 98% पैसे वापस आ चुके हैं, 98% ऑफ द मनी हैज कम बैक। इसका मतलब क्या है? जब आपकी सरकार आपके ऊपर भरोसा करती है, और हम ये 2014 से देख रहे हैं, जब आपकी सरकार आपके ऊपर भरोसा करती है तो देश के नागरिक उस भरोसे पर खड़े उतरते हैं और वो अपने काम धंधे इस प्रकार से खड़े करते हैं, वो ना ही अपने घर को सशक्त करते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी नौकरी देते हैं, जो बोलते हैं ना बिकम अ जॉब गिवर। तो यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूं आज उत्तर प्रदेश की महिला जिस राह पर चल रही है, और ये 1 लाख रुपए जब उनको मिल जाएंगे वो और ज्यादा सशक्त होगी ना। इतने दुनिया भर की सारी बातें कर दी, हर झूठ सच फैला दिया, इन आंकड़ों का उनके पास जवाब नहीं है। और मैं उनसे फिर से पूछना चाहूंगी, क्या बेहतर है भाई, आप महिला के हाथ में केवल पैसे पकड़ा दीजिए या उस महिला को इतना सशक्त कर दीजिए, उसे ऐसा इकोसिस्टम दीजिए, ऐसा एनवायरमेंट दीजिए कि उसके हाथ में भी जो पैसे हैं वो उसको बढ़ा के दुगना चौगुना कर दे। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती हैं, और वो भी चीख चिल्लाकर। अब मैं आगे के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा शांति से रहिए आप इस डिबेट पर।
7: अरे ये आपका कार्यालय नहीं है
8: चारू जी, एक सवाल मुझे इस बात को लेकर
7: बात करने की और अपनी बातें रखने की थोड़ी तहजीब सीखिए। या बीजेपी का कार्यालय
8: रिक्वेस्ट आप दोनों से सिर्फ यही है, मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से यही है कि व्यक्तिगत होकर एक दूसरे से बात मत करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। चारू जी आपसे मुझे एक सवाल पूछना है यहाँ पर। कुछ ही महीने पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे तब तो आपकी योजना कुछ अलग थी, तब आपने 10,000 रुपए की योजना बनाई, डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए 10,000 रुपए आपने उनके खाते में डाल दिए, हर महिला के खाते में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई है, और करीब 1,84,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में लाडली बहना की योजना आती है, 1,500 रुपए आपके तरफ से ट्रांसफर किए गए, सरकार के तरफ से उसमें गए चले गए। आप कह रही हैं कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों हम करें, हम तो उनको एम्पावर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के ही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के आधार पर उनका यह कहना है कि इन योजनाओं की वजह से कंजम्पशन बढ़ा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो योजना आप बिहार में लगाती हैं, जो योजना आप दिल्ली में प्रॉमिस करती है, जो योजना महाराष्ट्र में आपके लिए कारगर साबित होती है, वही योजना उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? अगर कोई सवाल उठाए कि वही योजना हमारे यहां भी लगा देते हैं। और दूसरा सवाल टाइमिंग को लेकर,
6: जी देखिए साहिल जी, पहली बात तो हर एक योजना का लक्ष्य अलग अलग होता है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो केवल इनकम सपोर्ट नहीं है। इस योजना का लक्ष्य ये नहीं है कि महिला के हाथ में थोड़ा सा पैसे आ जाए। ये लक्ष्य महिलाओं को अपने काम में आगे बढ़ाने में सहायता दे रहा है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक पॉलिसी है। आप इसको सेम नजरिए से मत देखिए। देखिए ये जिस प्रकार से इस्तेमाल होगा, जैसा मैंने कहा, अगर आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन अगर इसका किसी से करना है, आप मुद्रा योजना से कर सकते हैं। जब आपको इंटरेस्ट फ्री लोन 3 साल के लिए मिल रहा है, आप अपना काम धंधा बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट द सेम एज अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्कीम। प्लीज
7: साहिल जी,
8: ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मुझे टाइमिंग पर आना, लेकिन उससे पहले नाहिद जी कुछ कहना चाह रही है।
7: साहिल जी, दरअसल बात यह है कि अभी आपने इनसे सवाल किया कि ये अचानक आप ऐसा कैसे ले आए, कौन सा नया योजना ले आए। तो अभी आप बिहार में कोई और योजना चला रहे हैं महिलाओं के लिए, अब यहाँ कोई और, तो इसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। दरअसल जब से अभी कुछ दिन पहले, जब से पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने और डिंपल यादव जी ने जिस प्रकार से स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का अनाउंस किया और जिस प्रकार से बताया कि कैसे प्रतिवर्ष 40,000 रुपए महीना साल महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा और ये हर साल इसकी वृद्धि होगी, इससे जो है भाजपा गिरोह को दिन में भी तारे नजर आने लगे, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो स्कीम लेकर और महिलाओं इस पर विश्वास कर रही है, महिलाएं बहुत खुश हैं। ये मैं दिल्ली के एसी ऑफिस से, हम लोग नहीं बात करते कि दिल्ली में बैठे एसी ऑफिस से बात करें और यूपी में के बारे में चंडूल खाने की बातें उड़ाते रहे। अरे हम यूपी वासी हैं, महिलाओं के बीच जाते रहते हैं। महिलाएं, सब महिलाएं कह रही हैं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 40,000 रुपए डायरेक्ट सबके खाते में आएंगे, तो वो महिलाएं इससे बहुत खुश है, क्योंकि ये आजमाया हुआ उनका पहले भी समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से 55 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया था। और इसकी तारीफ तो माने सुप्रीम
8: कोर्ट ने की आती है, चारू जी,
7: पेंशन योजना ने कहा ये सबसे सुंदर योजना। एक सेकंड,
8: विपक्ष की घोषणा होती है। हाँ जी जी जी जी, खत्म कर।
7: एक सेकंड और देते
6: आ जाती है।
7: अरे ये कैसी, ये क्या अपने घर में बैठी सास बहू का खेल खेल रही है क्या? ये घर में टीवी सीरियल के देख रही है, इनको तमीज नहीं है बात करने की, इनको
8: क्या बोल रही है नाहिद जी आप?
6: What is wrong with her? ये इनका स्तर है क्या?
8: अरे क्या बोल रही है आप, व्यक्तिगत क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
7: नहीं, बीच में नाहिद जी
6: थोड़ा थम जाइए,
8: कौन बीच में बोल रहा है?
6: करना चाहे तो कर लीजिए, पता नहीं शुरुआत ही ऐसे
8: किस तरीके से बात कर रही है नाहिद जी। क्यों, कौन आप पर अन्याय कर रहा है और किसकी हिम्मत है कि महिलाओं पर अन्याय कर सके? आप क्यों ऐसे
7: महिलाओं पर अन्याय?
8: मैं आपको तो मैं तो उनसे ही सवाल पूछ रहा हूँ इसी बात को लेकर।
7: नहीं, आप
8: तो आपकी बात खत्म, बोलिए आपकी बात खत्म करिए। चलिए,
7: देखिए अन्याय की तो आप
8: दिया ना, और क्या बोलना है आपको, बोलिए।
7: महिलाओं के ऊपर अन्याय की सारी हदें पार हो गई हैं, भाजपा के रोने पार कर दी है सारी हदें। आप देखिए ना, ये कहां महिलाओं को लाभान्वित और महिलाओं को 1 लाख देने की बात करें। उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि महिलाओं की FIR नहीं दर्ज होती है, थानों में सुनवाई नहीं, मान्य न्यायालयों को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अभी कहा है कि पुलिस जो है पुलिस थाने जो है व्यवसाय अड्डे बन गए हैं। कहा पुलिस जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए नहीं, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था दुरुस्त करना।
6: तो
7: जो पुलिस
8: चारू प्रज्ञा जी, मिलाकर उनका ये कहना है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से 40,000 रुपया सालाना डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना की घोषणा हुई, तुरंत आपकी सरकार शिरकत में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, उससे पहले हम कुछ योजना जारी कर देते हैं। यह एक अलग तरीके का युद्ध है, पॉलिटिकल युद्ध हम कह सकते हैं।
6: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं साहिल जी, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपटीशन समाजवादी पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता तक वो हर एक फैसिलिटी पहुंचाएं जहां से ये महिलाएं नहीं केवल युवा भी, पुरुष भी, सब लोग जीवन में आगे बढ़ पाए। और आप ये देख रहे हैं, जिस प्रदेश को पिछड़े प्रदेशों का बिल्कुल राजा माना जाता था ना, बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी देश में बन चुका है और इसी कार्यकाल में हमारे देखते देखते बन चुका है। आप किसी भी प्रकार की वहां पर बात करिए, नाहिद जी को चीख चीख कर बहुत इरेलीवेंट बातें बोलने का शौक है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश में बढ़ता है, उसका रिजल्ट हमको दिखाई देता है एट द बॉटम लाइन ऑफ द स्टेट। एक बात और है, आज हम लखपति दीदी की बात करें, हम ड्रोन दीदी की बात करें, हम बैंकिंग सखी की बात करें, हम मिशन शक्ति की बात करें, हम कन्या सुमंगला योजना की बात करें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछले 10 सालों से बहुत सशक्त तरीके से चल रही हैं। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की महिला इस स्तर तक आ चुकी है कि अगर हम उनको एक लोन ऑफर करेंगे वो इस लोन का फायदा उठाकर अपने जीवन को और आगे तक ले जाएंगी। देखिए एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की बातों में फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, वो मुझे देखकर कहती है एसी चल रहा है। ये मैं अपनी बात खत्म कर लेती हूँ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गांव गांव के अंदर भी एसी केवल इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो सरकार बदल गई है। व्यक्तिगत बात कभी
8: एक दूसरे पर, मैं दोनों से आप, मैं आप दोनों से विनती करता हूं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो इस चर्चा को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बहुत जरूरी चर्चा है, ये जरूरी चर्चा है, इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की भी जहां जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहां भी इसी तरीके की योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले लाने की कोशिश की थी। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश में यही इसी तरीके की योजना आती है तो उसमें बीजेपी की रणनीति में आपको क्या खोट नजर आएगी?
9: देखिए साहिल जी, धन्यवाद आपका कि 25-30 मिनट बाद आपने तीन देवियों के बीच मुझे मौका दिया। मैं तो सोच रहा था मुझे लेफ्ट ही कर देना चाहिए क्योंकि इनका ही खत्म नहीं हो रहा था। देखिए सवाल साहिल जी फ्री बीज का है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री जब कोई दूसरे लोग बांटते तो कहते हैं फ्री बीज, रेबड़ी बांट रहे हैं। हमारी सरकार ने अगर घोषणा करी तो वेरी फर्स्ट ईयर से उसे देना शुरू कर दिया। जब ये 2022 में सरकार बनी थी योगी जी की, तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 22 में इन्होंने क्यों नहीं घोषणा दी, 22 में इन्होंने शुरुआत क्यों नहीं कराई, 22 में इन्होंने डाला क्यों नहीं। 22 में तो इन्होंने कहा पकौड़ी तलिए, पान की दुकान खोलिए, खोखे खोलिए, ठेले लगाइए, ये रोजगार थे इनके, मुद्रा रोजगार जिसे बोलते हैं, जिन्हें नौकरी बताते हैं प्राथमिकता। और महिलाओं के प्रति कितने जागरूक है आपको ये बता दूं मैं अभी कि प्रयागराज के चीफ दो जस्टिस, एक तो जस्टिस आकृति चौधरी एक इनकी महिला थी, बेटी थी, लॉ की छात्रा थी और वो महिलाओं के इतर मजदूरों की बात नोएडा में उठा रही थी। उनके लिए जब उन्होंने कहा, उनका राशुका लगा दी और राशुका लगाने पर जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अचल सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के अफसर इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि आर्बोलियन डिस्टोपिया जिसे, यानी सरकार लोगों की आजादी पर सरकार का अफसरों का अधिकार हो जाता है और उनकी सरकार की लोगों की आजादी को छीनने का काम सरकार के अफसर सरकार के कहने पर करते हैं। मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट के जस्टिसों ने कहा है और 5 लाख रुपए डीएम नोएडा से कहा है कि सैलरी से आप उनको दीजिए जो आपने गलत राशु का लगाई है। फिर दूसरा, 17 वर्ष की एक बेटी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा परिचौक से बैठती और एक झंडा लगी बस, वो किस झंडे की गाड़ी थी उसमें उसके साथ दिल्ली तक बलात्कार होता है, मानवता शर्मसार हो जाती है। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार में गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस, यूपी योगी जी ने कहा बच्चा चिड़िया कपर नहीं मार सकता, बेटियां 1:30 बजे घूमती है, मानवता शर्मसार हो जाती है। इनसे लगता है कि कितनी महिलाओं की सहयोगियां कितने महिलाओं का सम्मान करती है। फिर मैंने 2 पेपरों में पढ़ा, 2.5 साल की एक बच्ची से बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है, 1.5 माह की बच्ची से बलात्कार हुआ, शर्मसार और निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूं, रेवड़ी बांटें, फ्री बीज दें, सरकार का कोई एजेंडा नहीं था। जितने इन्होंने कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, ये बताइए जमीन पर कितने काम उतरे हैं, जो आपने योजनाएं लाए थे, पैसा लाए थे, जमीन पर कहीं नहीं उतरा है। अब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था अभी 2025 में, 26 का आएगा तो जब हम आपको बताएंगे। आप आ जाइए एससी एंड एसटी पर महिलाओं के लिए। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने नौकरी दी है तो साहिल जी आप भी पूछ लीजिए कि 2022 से लेकर 2027 आने वाला महिलाओं को कितने को नौकरी दी है, या 2026 में कितनी महिलाओं को नौकरी देंगे? कोई नौकरी नहीं देंगे, सिवाय इसके कि आधी आबादी को भ्रमित कर बात झूठ बोलते हैं और केवल एजेंडा चलाते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस उत्तर निशा चौधरी के 14-15 करोड़ वोटरों को
8: ये सवाल बार बार उठ रहा है, 5 साल का इंतजार क्यों आखिरकार? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में तो मुफ्त, लेकिन उत्तर प्रदेश में कर से सशक्तिकरण क्यों हो रहा है? क्या आपकी मांग रहेगी कि बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कर्ज की जगह पर मुफ्त की योजना लागू की जाए?
10: साहिल जी, विपक्ष को एक तो हर बात को चुनाव से जोड़ देने की आदत हो गई है। अगर चुनाव से जोड़ने की बात थी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जो 18 लाख लखपति दीदी बनी है, क्या वो चुनाव की वजह से अब बनी है? उनको पीछे योजनाएं बनाई थी, कर्ज दिया था उन्होंने, उनके सशक्तिकरण पे कोई सवाल है क्या? आज 18 लाख लखपति दीदियां 1 करोड़ में से, ठीक है, अब हमारी सरकार का टारगेट है कि हम 1 करोड़ तक इनको पहुंचाएं। जहां तक कभी विपक्ष की बहन ने बात की कि महिलाओं से कर्ज लेकर के उनको जेल में ठोकने का काम है, क्या आपको महिलाओं की योग्यताओं पर कोई शक है? महिलाओं की योग्यता पर शक करना, मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि महिला ही शक करे उनके उनके उनके काम पे, उनके पैसा संभालने पे, उनकी कार्यशैली पर कभी शक नहीं कर सकते। आज एक महिला अगर 20,000 रुपए से शुरुआत करती है, वो 10 महिलाओं को इकट्ठा करेगी और कोई ना कोई ऐसा काम करेगी कि 2 लाख में इस काम की हमने शुरुआत कर दी, उस 2 से फिर वो 3 पे लेके जाएगी, 3 से 4 पे लेके जाएगी और बहुत ईमानदारी के साथ उस पैसे को जमा करा कर अगली किस्त का इंतजार करेंगे। ना कि महिलाएं उस पैसे को
8: रैशनल बताइए ना निशा जी, मुझे इस बात का रैशनल बताइएगा कि क्या टाइमिंग का रैशनल भी बता दीजिएगा। 5 साल से आपकी सरकार है, ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम अभी 1 साल के पहले से कर रहे हैं। क्या कारण है कि 6 महीने पहले ये योजना आ रही है? और दूसरा, बिहार में आप मुफ्त योजना लागू करते हैं, यहाँ पर आप कर्जे पर दे रहे हैं।
10: साहिल जी एक तो ये कहो आपके सीधा 5 साल के बाद हम चुनाव के समय पैसा कर रहे हैं, समय समय पर सारी योजनाएं। देखो सबसे पहला होता है सुरक्षा का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के जो महिलाओं का हाल था, आज वो सुरक्षा को लेकर के इतनी सुरक्षित महिलाएं वहां महसूस करती हैं कि पहली बात वो काम के लिए तभी निकलेंगी जब सुरक्षित माहौल मिलेगा। इसीलिए आज बाहर का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुआ है। आज लगभग 44,000 प्लस पुलिसकर्मी महिलाएं हो गई है, थानों में आप देखें कि महिला कर्मी कैसे है। दूसरा, 12-20% लगभग कि महिलाएं ही होंगी पुलिसकर्मी, यानी कि लगभग 60,000 अभी भर्ती निकली थी तो उसमें से 12,000 महिलाएं ली गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ फाइनेंस पे नहीं, उनकी सुरक्षा पे, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके कौशल के ऊपर, उनको आप देखो ड्रोन योजना, अगर हम ड्रोन योजना की बात करें तो महिलाओं को सिखाया जाता है क्योंकि वहां पर ग्रामीण में अधिकतर हमारी किसानों से जुड़ी महिलाएं होती हैं, चाहे वो पशुपालन का काम करें, मछली पालन का काम करें, ड्रोन से वो खेती बाड़ी से
8: कंटिन्यूस प्रोसेस है। मिलाकर वो कहने की कोशिश कर रही है चुनाव से इसे मत जोड़िएगा, इससे पहले भी कई योजनाएं इस बारे में लागू की गई है, आपको चुनाव के वक्त क्यों नजर आ रहा है? और जो सवाल मैंने आपको भी पूछा था, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही अकेला राज्य है, कर्नाटक में भी इस तरीके की योजनाओं की घोषणा की गई, तेलंगाना के भीतर भी इसी तरीके की योजनाएं की गई, तो अगर कोई और पार्टी इस तरीके से करती है तो कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है।
10: साहिल जी अभी
9: तो हमने तो साहिल जी वेरी फर्स्ट मंथ में ही, जब सरकार बनते ही हमने वेरी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में ही उनके कोटे में डाल दिया था, हमने 22 के चुनाव का 27 का इंतजार नहीं किया था, क्योंकि सरकार की हालात चंदा चोरी की वजह से सारे लोग नाराज हैं, इनसे राम भक्त नाराज हैं, हनुमान भक्त नाराज हैं, और महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं के बलात्कारी में सारे देश के बीजेपी के सरकार प्रमुख के सारे बलात्कारी कोई भी उठा लीजिए, चाहे प्रज्वल देवन्ना हो, आशाराम बापू हो, चिन्मयानंद स्वामी हो, वो पहलवान बेटियों का मामला हो, काशी को बंद कलंकित करने वाले आईटी सेल के, और वो चाहे अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला हो, बात इसकी नहीं है, बात सरकार जो जो दिखता है वो होना चाहिए। महिलाओं के हितों में इन्होंने ना तो उन्हें महिलाओं को कोई नौकरी दी, ना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको बिजनेस, ये झूठे आंकड़े बैंकों के, अगर मैं आंकड़े आपको भेजूं तो बैंकों ने डेप्थ अपना कर्ज में डाल के अब वो लोन देने बंद कर दिए, जो प्रधानमंत्री की योजना है। मैं 4-5 बैंकों के नाम आपको बताता हूँ, आईओबी, केनरा बैंक, आईओबी, एसबीआई और इलाहाबाद बैंक। आप एनसीआर में एक सर्वे करा लीजिए, अगर मेरी बात गलत मिले तो मैं यही दोबारा माफी मांग लूंगा। मैं फाइनल कर दूं, चारू जी थोड़ी देर बाद बोल
8: दीजिए,
9: 2 मिनट में फाइनल कर दूं। फाइनली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब 2024 में हमने 37 और 43 सीट जीती तो 43 को गुणा करिए 6 से, 258 और 42 जेएनजीओ की वजह से, जेएनजीओ पे इन्होंने लाठी पेल दी, पैलेट गेम चलवा दी, तो हम 300 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अखिलेश जी, राहुल जी और अपोजिशन के सारे नेताओं के नेतृत्व में, और महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, बेरोजगारों के सम्मान में। इनकी तरह नहीं है कि तानाशाही करें, चंदा चुरवाएं, इनकी तरह नहीं है पैलेट गन चलवाएं, इनकी तरह नहीं है नौकरी
8: तो छीन ले, तो 40,000 पे कायम है ना, नहीं आप भी तो, राजनीति में वही बांध चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, 40,000 देंगे।
9: अरे हम 40 देखिए,
8: सरकार होशियार है, सरकार समझ गई,
9: परिवर्तन
8: आपकी योजना चल जाएगी, इससे पहले उन्होंने योजना घोषणा कर दी,
9: सरकार ने कोई काम
8: नहीं,
9: रिविजन ही नहीं थी, ये रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती उन्हें, रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ा रेवड़ा मोटी मोटी रेवड़ा 1 लाख रुपए का, और फिर इनके घर पुलिस भेजेंगे।
8: आप राजनीति में कहां बैठे हैं उसके आधार पे तय होता है कि किसी योजना को रेवड़ी कहें या योजना कहें। अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो वो योजना हो जाती है, और अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो रेवड़ी हो जाती है। इतनी आसान परिभाषा मत बनाइए।
6: ऐसा नहीं है साहिल जी। मैं आपको वापस आंकड़े देती हूँ, मैं प्लीज बोल सकती हूँ
8: जी। जी जी बोलिए चारू जी।
6: साहिल जी मेरी बारी
8: जी, बोलिए चारू जी, आवाज आ रही है मेरी।
6: रेवड़ी की बात नहीं है, वेलफेयर स्कीम तो वेलफेयर स्कीम है, लेकिन वेलफेयर स्कीम इस प्रकार की तो होनी चाहिए ना कि आप जनता तक पहुंचा पाओ। मैं बार बार ये कह रही हूं, जो 1 लाख रुपए पर आज इतनी ज्यादा नेगेटिव टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूं। आप मुद्रा योजना की सक्सेस के बारे में नेगेटिव चीजें मुझे बताओ, आंकड़ों के साथ आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि देशों के GDP इतने बड़े नहीं होते जितनी बड़ी संख्या हमारी सरकार ने इस योजना के तहत बांट दी, और वो करीब करीब सारा का सारा पैसा वापस आ गया। और बहुत आसान है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को अपनी बड़ी बड़ा चढ़ा के बातें करना और पुरानी बातों में जाना, लेकिन मैं उनको कर्नाटक का एक उदाहरण देना चाहती हूँ, कर्नाटक का उदाहरण देना चाहती हूँ। एक सेकेंड मेरे भाई, मैं आपके बीच में बोली नहीं, साहिल जी को मालूम है मैं दूसरों के बीच में बोलती नहीं, और जब मैं बोल रही हूँ मैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बातें बोल रही हूँ। हमें देखने वाले सारे दर्शक अपने हाथ में अपना स्मार्टफोन ले और इसको चेक करके देख ले मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब एक मिनट,

0: जवाब दे दूं?
1: बोलिए।
0: और देखिए साहिल जी, बहुत सारे डिबेट्स करते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे कर चुके हैं। मैं ना दूसरों के बीच में बोलती, लेकिन अपनी बातें मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बोल रही हूँ। तो आप जो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अजय जी, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा ज्ञान आपने जाके अपनी कर्नाटक की सरकार को क्यों नहीं दिया? एक तरफ महिलाओं की बातें करते हैं, नहीं नहीं वहां पे वापस से रिशफल करके कैबिनेट बनाइए, एक महिला मंत्री नहीं बनाई आपने। मोर ओवर कर्नाटक में भी तो आपने गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत करी थी, 2000 रुपए हर महिला को देने वाले थे, याद है आपको? 7,500 करोड़ पेंडिंग है, क्योंकि जनवरी से आपने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। इनफैक्ट वहां पर आप ही की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने असेंबली में माफी मांगी है और ये कहा है हम सॉरी, हमारे पास पैसे नहीं, हम ये पैसे नहीं दे पाएंगे आपको। सिमिलर टाइप की बातें मैं तेलंगाना की बता देती हूँ, वहां पर भी 2500 रुपए प्रॉमिस किए थे कांग्रेस की सरकार ने, इन्हीं की सरकार है ना वहां पर, अजय जी वहां पर भी जाकर थोड़ा ज्ञान बांट दीजिए। आज तक उन्होंने अपने एक भी बजट के अंदर इस 2500 रुपए का प्रोविजन तक नहीं करा। हिमाचल की कहानी बता देती हूँ, 1500 रुपए उन्होंने वहां भी प्रॉमिस किए थे। देखिए मैं साहिल जी वापस इसी बात पर आती हूँ, बात ये नहीं है अब किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, रेवड़ी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अरे लेकिन अगर वेलफेयर है तो जनता तक पहुंच क्यों नहीं है? आपकी बातें बातें क्यों रह जाती हैं? हम एक एक योजना की सक्सेस के साथ रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके जनता के बीच में जाते हैं, और इसीलिए 10 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को आशीर्वाद दिया है और 12 साल से
1: अजय वर्मा जी वही सवाल आपके पास
0: को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि रिकॉर्ड
1: वही सवाल आपके पास। आप सत्ता में होते हैं तो योजना महिलाओं का सशक्तिकरण, आप विपक्ष में होते हैं तो रेवड़ी, वही सवाल आपके पास।
2: जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव साहिल जी
0: प्रॉमिस करते हो तो दिया करो ना, देते क्यों नहीं हो?
2: कर्नाटक में चुनाव हो चुके, हमारी सरकार बन गई 2/3 से, तेलंगाना में हो चुके, सरकार बन गई, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ने, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, और चीन वाले भोज छोड़ के चले गए, गाला भोज भी रात को चले गए, वो न्याय? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है ट्रैक रोकर, तो आप और जगह से देखिए ना, हमारा झारखंड से देखिए, राजस्थान से देखिए, हरियाणा से देखिए, जब हमारी सरकार थी आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और
0: राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है, हरियाणा में आपकी सरकार
2: अभी नहीं है, अभी नहीं है ना, वो तो
0: झारखंड में भी आपकी सरकार नहीं है, जेएनएम अपनी बात करिए ना, आप कर्नाटक हिमाचल और तेलंगाना की बात करिए।
2: चारू जी वो चोरी की सरकार है आपकी सारी,
0: तीन प्रदेशों का हमको अच्छा आंकड़ा दे दीजिए। नहीं कुछ भी आपने नहीं सुनिए ना, आप आपकी तीन जगह बिना चोरी की सरकार है ना, इन तीन प्रदेशों के आंकड़े दे दीजिए, तीन जगह आपकी सरकार है, इन तीन जगह की बात करिए।
2: नहीं नहीं हम चौथी जगह भी दे देंगे, केरला का भी दे देंगे, हम ऐसा नहीं है, हम झारखंड का भी दे देंगे, हम तमिलनाडु का भी दे देंगे, हम कश्मीर का भी दे देंगे।
0: आपकी मंत्री माफी क्यों मांग रही है कर्नाटक असेंबली में?
2: किस चीज की?
0: आपके मंत्री माफी क्यों मांग रहे हैं कर्नाटक असेंबली में? ये क्यों कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे पाए, 7,500 करोड़ पेंडिंग है?
2: हाँ मैं बता रहा हूँ, माफी
0: मांग रहे हैं, बताइए।
2: पेपर चोरी में जब जे एन जी दिल्ली की सड़कों पर लाठी पड़वाते हैं तो हमारे इस्तीफे की कार्यवाही के लिए दबाव नहीं पड़ता, हम पहले ही अपनी स्थिति साफ कर देते हैं कि जो चीजें साफ सुथरी है।
1: ये बात उस हर राज्य के लिए लागू होती है, जैसे दिल्ली में
0: लंदन
1: चुनाव के पहले आपकी योजना थी, वो योजना लागू करने के लिए, अजय जी एक मिनट चारू जी, यही योजना दिल्ली में आपने घोषणा की थी लागू करने के लिए 1.5 साल का वक्त निकालना पड़ा, महाराष्ट्र में अभी 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो प्रॉमिस किए हुए 2100 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं, कहा था कि देंगे, कब देंगे ये नहीं कहा था, तारीख नहीं बताएंगे ये भी कहा जा रहा है। देखिए ये सारी योजनाएं आखिरकार सरकार के बजट पर हावी हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल कोई और है, और मैं इसमें निशा जी को भी लाना चाहूंगा, नाहिद जी को भी उसमें लाना चाहूंगा। सवाल निशा जी ये है, जो बार बार ये पूछा जा रहा है, मुझे 2017 का चुनाव याद है, 2000 अच्छा चलिए नाहिद जी आपकी बात बोलिए, उसके बाद ये सवाल रखेंगे।
3: साहिल जी मैं बहुत
1: दे दिया आपको,
3: देखिए योजनाओं की बात कर रही भाजपा प्रवक्ता, अरे उत्तर प्रदेश में जब सरकार में आई है इन्होंने अपना घोषणा पत्र जो, अब ये देखिए फिर बीच में कोई बोला, घोषणा पत्र जो लाए उन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, अब इन सारी योजनाओं की बात ही नहीं करते क्योंकि कुछ नहीं दिया महिलाओं को, लड़कियों को कुछ योजना का धरती पर नहीं उतरी, कुछ नहीं दिया लड़कियों को और महिलाओं को, तो ये जो है हवा हवाई बातें हैं, और ये केवल जो एक सोच रहे हैं कि महिलाएं, ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो बहुत जागरूक है, ये चीन की महिलाएं नहीं है कि आप उनको जो है छलने का काम कर लेंगे और वो आप उनको छलने में कामयाब हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है और जान रही है कि भाजपा गिरोह जो है महिलाओं के सख्त विरोधी है। अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, चलिए हम विपक्ष में हम राजनीति कर रहे हैं, हम गलत बात करते तो, लेकिन जो गवर्नर साहिबा हैं वो तो इनकी अपनी है, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में महिलाओं उत्तर

0: प्रदेश महिलाओं के लिए अभी भी 100% सुरक्षित नहीं है। ये वाराणसी में, ये राजभवन में कहा, गोरखपुर गई तो गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में गई तो कहा कि अभी भी बहुत सी कमियां हैं और वहां छात्राएं भी हैं, कहा हॉस्टल में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, टिफिन में भर भर कर ड्रग्स आते हैं, तो वहां छात्र छात्राएं हैं, लड़कियां भी रहती हैं, मतलब लड़कियों के लिए जो व्यवस्था यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो हाल है, उनको हॉस्टल में सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, उनको ड्रग्स भी मिल रहा है टिफिन में भर भर के। ये मैं नहीं कह रही, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर कह रही जो बीजेपी की है। दूसरा, बेबी रानी मौर्य जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने वाराणसी में जाकर क्या कहा, कहा कि लड़कियां महिलाएं जो है 5 बजे के बाद थाने ना जाया करें, स्पष्ट कहा थाने ना जाया करें। तो स्पष्ट है ना कि बीजेपी के महिलाएं भी मान रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। तीसरा आपको बता रही हूँ, चंद्रमुखी देवी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, बदायूं में गैंगरेप हुआ था तो क्या बोली, अगर ये महिला अकेले शाम को बाहर नहीं निकलती तो इस महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ होता। ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूं, ये सब बातें खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो उच्च पदों पर है वो कह रही है। एनसीआरबी का
1: जिक्र यहाँ पर लाहिरी खान कर रही है।
0: एक सेकेंड,
1: 5 योजनाएं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की योजनाएं, 5 फ्री योजनाएं पिछली बार की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में की गई थी। पहली योजना थी फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्मर्स, जो इंप्लीमेंट विद क्राइटेरिया उसको इंप्लीमेंटेशन किया गया। दूसरी योजना थी फ्री एलपीजी सिलेंडर्स की, जो योजना थी वो उज्ज्वला योजना के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तीसरी योजना थी फ्री स्कूटर्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये हाल ही में अप्रूव की गई है, अभी तक उस लागू करने की बात नहीं की गई है। विद अ मेरिट कैप ऑफकोर्स वो लागू की गई है, करने की कोशिश हो रही है। फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग जो एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके वो चल रही है मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना के नाम से, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सीनियर वुमन, ये भी मैनिफेस्टो में कहा गया था, वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। निशा चौधरी जी, बात यहां पर ये निकलती है और उसके बाद इसका जवाब चारू जी आपसे भी मैं चाहूंगा। 2017 के चुनाव के पहले जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य थे या एनडीए शासित राज्य थे, वहां पर यह कहा जा रहा था कि किसानों की कर्ज माफी से, कर्ज मुक्ति से या लोन वेवर से हल नहीं होने वाला, उससे कोई समस्या सुलझती नहीं है। लेकिन 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा होती है कि लोन वेवर हम देंगे और उसके चलते 11,000 करोड़ का लोन वेवर दिया गया था और उसी के चलते बाकी राज्यों में भी इसकी घोषणा करनी पड़ी। क्या महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के साथ भी इसी तरीके से होता नजर आ रहा है? अब नए चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी ये योजना आपको देनी पड़ रही है, जबकि पिछला मैनिफेस्टो मैंने अभी आपके सामने रखा है। उसके बाद चारू जी जवाब दीजिए, अजय वर्मा उसके बाद बात करेंगे। निशा जी,
2: साहिल जी अभी अभी हमारी बहन ने कहा विपक्ष की कि समाजवादी पार्टी की कि अभी तक भी हमारी गवर्नर साहिबा ने कहा कि 100% सेफ नहीं है। हमने कब कहा कि 100%? लेकिन आपके आंकड़े और आज के आंकड़े, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी आज के आंकड़े, उसका उसकी तुलना कर दीजिए, उसकी तुलना करेंगे तो आपको इतना फर्क नजर आएगा। पहले तो आप अपना टेंट खोलिए, पहले तो चुप रहना सीखिए। आप हर एक के बीच मत बोलिए, नहीं जी आप हर एक के बीच में मत बोलिए, दूसरे को मौका दीजिए, पहले सुन लो कि सीखिए। आपने अपने समय पे बोला नहीं है, कोई आपके बीच में बोला था क्या? कोई आपके बीच में बोला था क्या? मैं एनसीआरबी के आंकड़ों के ऊपर आ रही हूँ। दूसरी बात साहिल जी, पहले आप सुनना सीखे। आपका टाइम था, आपने बोल दिया, मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने मुझसे सवाल किया है, आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप अपने टाइम पे बताइएगा। साहिल जी, सबसे बड़ी बात महिलाओं को लेकर के सरकार जितनी ज्यादा सेंसिटिव है, जितनी ज्यादा महिलाओं को लेकर के संवेदनशील है, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर के इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो लागू हो जाए, और विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कैसे हम महिलाओं का अधिकार दे दें। अगर महिलाओं का अधिकार चले गए,
1: करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में इस बार जयंत चौधरी 33% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन महिलाओं के साथ करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। महिला आरक्षण को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी बात नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा, और एक टिकट आपको भी मिल जाए। निशा जी, आमतौर पर हमने देखा है कि महिलाओं को जब टिकट देने की बात होती है, उम्मीदवारी देने की बात होती है, तब राजनीतिक पार्टियां हाथ खड़ी कर देती है, ये बात अलग है। लेकिन चारू जी, जो सवाल मैंने उठाया था, 30 सेकंड आपके पास है आखिरी में।
3: जी जी बताइए साहिल जी।
1: जी, जो सवाल मैंने उठाया था कि 2017 का चुनाव और उसके बाद अभी का चुनाव।
3: जी बिल्कुल, नहीं साहिल जी देखिए,
4: हर प्रदेश में लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है, और मैं वापस उसी बात पर जाऊंगी क्योंकि हम महिलाओं को डिस्कस कर रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। मेरी साथी जो चैन जी की पार्टी से आती है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली, महिला घर के बाहर निकले उससे पहले उनको हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करें, घर के बाहर जाने के लिए उनके पास कम से कम सड़क तो बनी हो कि कहीं जाकर वो काम कर पाए। उससे भी ज्यादा उनके घर की क्या स्थिति है, क्या उनके बुजुर्गों के इलाज के लिए उनके पास पैसा है या आयुष्मान योजना की फैसिलिटी है, क्या उनके घर में नल से पानी तक आता है कि नहीं आता। हमने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, जमीनी स्तर से शुरुआत करी है, और जमीनी स्तर से शुरुआत करके हम इस प्रदेश को यहां तक ले आए हैं कि अगर आज हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, हम हाईवेज की बात करें, हम एयरपोर्ट बढ़ने की बात करें, चार हुआ करते थे आज 16
1: है। तो माननी पड़ेगी, देखिए मेरा समय खत्म हो गया है, एक बात तो माननी पड़ेगी, घोषणाओं की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की, कहा कि 40,000 रुपए सालाना डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं को पहुंचाए जाएंगे। अगला दांव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार की तरफ से खेला गया है। अब इसका तोड़ क्या विपक्ष के पास होता है, क्योंकि महिला मतदार कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चुनाव दर चुनाव हर बार साबित होता रहा, तो उस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिएगा।

जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: यूपी में बीजेपी की चुनावी राजनीति का बड़ा आयोजन इस बार पीएम मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हो रहा है। 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहे इस अभियान में बीजेपी अपने कामकाज का प्रचार घर घर तक करने और वोटर्स से संपर्क बढ़ाने के लिए कर रही है। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान ने चुनाव प्रचार की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अमित शाह ने दावा किया कि जिस तरह बिना खून की एक बूंद भी बहाए जम्मू कश्मीर 370 की बेड़ियों से आजाद हो गया, जिस तरह महिला अधिकारों और बराबरी की लड़ाई लड़ रही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली, उसी तरह आने वाले 3 साल से पहले देश के एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी। जिस देश में वोट की सियासत के चक्कर में राजनीतिक दलों ने 3 तलाक विरोधी कानून तक की मुखालफत की, जहां कट्टरपंथी वोट को समेटने के लालच में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 छंद से आगे गाने सुनने तक को तैयार नहीं, वहां समान नागरिक संहिता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बड़ा चुनावी मुद्दा है। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, यानी एक देश एक कानून, जिसमें देश के किसी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इसमें बेटे बेटियों को समान उत्तराधिकार वाले अधिकार होते हैं। विवाह विच्छेद से लेकर उत्तराधिकार और गोद लेने तक के समान कानून होते हैं। यहाँ तक कि लिव इन से उत्पन्न संतानों के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। इस कानून के लागू होने से बात विवाह, बहुविवाह, हलाला, इज्जत जैसी कुप्रथाओं से भी मुक्ति मिलती है। यूसीसी का सबसे अधिक फायदा समाज की महिलाओं को होता है, जिन्हें बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलते हैं, कई बार विशेषाधिकार भी मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका विरोध होता रहा है। चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए यूसीसी का विरोध अक्सर होता रहा है, लेकिन यूपी और देश में जब कांग्रेस के नेता संविधान की किताबें दिखाकर उसकी रक्षा के लिए जनता से वोट मांगते हैं, तो उसी संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखा गया है। यूसीसी को केंद्रीय स्तर पर लागू करने के विवाद से बचते हुए केंद्र सरकार इसे राज्यों के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और अब तक देश के कई राज्यों में ये लागू भी हो चुका है, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा चुका है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू होने की प्रक्रिया जारी है, जबकि गोवा जैसे राज्य में 1867 से ही समान सिविल कोड चला आ रहा है। अमित शाह के बयानों की माने तो आने वाले 3 साल के अंदर देश के 21 राज्यों में कानून लागू होने जा रहा है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी भी। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में आगे, केवल 3 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। अमित शाह के यूसीसी वाले ऐलान पर जेडीयू के तीखे तेवर, कहा बिहार में बीजेपी नहीं एनडीए का शासन, गृहमंत्री से जल्द बात करेंगे संजय झा। गुजरात विधानसभा और सीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एक्शन, 4 दिन बाद 2 गिरफ्तार। जांच में बांग्लादेश से जुड़े ईमेल सिंडिकेट का खुलासा। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सनातन ऐसा महासागर है जिसमें कोई आस्थावान हिंदू डुबकी लगाएगा तो डूबेगा नहीं, पार लगेगा। लेकिन जब बात सियासत की हो तो क्या यही सनातन राजनीतिक दलों की नैया पार लगा देगा? 2027 के यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर सनातन पर चर्चा शुरू हो गई है। वैसे तो यूपी के रायबरेली में योगी आदित्यनाथ ने शिव महापुराण कथा आयोजन में सनातन के धर्म ध्वजा की बात की और कहा कि जब सनातन है भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन यह कथा यूपी सरकार के ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे ने आयोजित कराई थी और जिस रायबरेली में यह आयोजन हुआ वहां 2022 में समाजवादी पार्टी से बीजेपी पिछड़ गई थी। सवाल है कि क्या कथा की आस्था से वोटों की व्यवस्था हुई? अखिलेश यादव अब की बार हिंदू वोटों पर नजर रखते हुए देखे जा सकते हैं। खासकर राम मंदिर चढ़ावा मामले को उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के सामने सनातन पर विपक्ष का नैरेटिव टिक सकेगा? सनातन की पताका 2027 का चुनावी धमाका, यही है आज का हल्ला बोल। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट।
1: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
2: सनातन भारत का सत्य है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर कोई बहस ही नहीं है। लेकिन ये बयान जिस जगह से आया, जिस अंदाज में आया और जिस तरह से आया, उसके सियासी अर्थ तलाशे जा रहे हैं।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी।
2: समाजवादी पार्टी से आकर बीजेपी का दामन थामने वाले और योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का अहम ब्राह्मण चेहरा बन चुके मनोज पांडे ने रायबरेली के ऊंचा हार में शिव पुराण महाकथा का आयोजन किया था। उसी कथा में योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे।
1: सनातन धर्म की परंपरा में शिव की भक्ति भी हम सब के लिए वही है। जब हम भारत की बात करते हैं, शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनके पवित्र ज्योतिर्लिंग हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, रामेश्वरम तक, इस सांस्कृतिक एकता उन पावन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत की राजनीतिक सीमाओं को भी तय करती है। शिव की भक्ति जो तमिलनाडु के नागरिकों में है, वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी श्रद्धालु जनों के मन में है।
2: 2027 के यूपी चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव भी राम आस्था, हनुमान भक्ति और इटावा के केदारेश्वर शिव की बात कर रहे हैं, पीडीए में पी का एक मतलब पंडित बता चुके हैं, तब रायबरेली में सनातन की हुंकार में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को बड़ा चुनावी दांव मान चुके विपक्ष के सामने योगी हिंदुत्व का तेवर दिखा रहे हैं।
3: सनातन संस्कृति का फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से है सनातन संस्कृति का एक हिस्सा।
2: शिव महापुराण कथा के मंच से कोई चुनावी भाषण नहीं हुआ, लेकिन कथा में लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है।
4: भारतीय जनता पार्टी यही करती है, राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो धर्म की राजनीति करते हैं उनका अयोध्या में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका मथुरा में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका काशी में क्या होने वाला था ये भी समझ में आ गया। तो भगवान महादेव ने बताया था कि सुधर जाओ, 5 राउंड तक हराया है, ज्यादा करोगे तो अगले 15 राउंड भी हराए जाए।
2: सनातन कई बार बीजेपी का चुनावी रामबाण साबित हो चुका है, जबकि विपक्ष के कैंप से सनातन पर कई बार विवादित बयान भी सामने आए हैं। रायबरेली की कथा में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने फिर मानो विपक्ष को संदेश दिया है कि उसकी हिंदुत्व की पिच पर मुकाबला करना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। मलूक नागर महासचिव आरएलडी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रोहित सिंह हमारे साथ हैं। अनुराग सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये दरअसल जब एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए में पी से पंडित हो जाते हैं, जिस जगह पर यह आयोजन हो रहा है वहां पर पिछले चुनावों का हमने आंकड़ा देखा है, इसीलिए मन में यह सवाल आता है कि आखिर इस आयोजन और इसमें दिए जा रहे स्टेटमेंट के पीछे का जो सियासी और चुनावी विश्लेषण है वो क्यों ना किया जाए।
5: श्वेता जी नमस्कार, सभी दर्शकों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी संविधान की जो मूल भावना है उसको आगे बढ़ाते, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है हमें उसे गर्व है और हमें गर्व रहेगा भी। और इसी वजह से आपको मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया, यही विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तंज करती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, इनको न्योता दिया तो दर्शन के लिए भी नहीं आ पाए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और देखिए एक बात हमें समझनी होगी, जब हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब हमारे हैं, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, ये केवल वोट बैंक की ओछी घटिया राजनीति करते हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इनसे सवाल करिएगा, अभी कल की खबर है गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अनुच्छेद 44 संविधान का कहता है कि लागू हो, क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? उसकी वजह श्वेता जी ये है, ये नहीं चाहते जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं बहु विवाह ना हो, उनको सम्मान की जिंदगी मिले, ये उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। दूसरा ट्रिपल तलाक, याद करिए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और नरेंद्र मोदी जी ने उसको कानून बना के एक अपराध बना दिया, क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया? विरोध किया और आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, ये दूसरा सवाल है इनसे पूछिएगा। तीसरा समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल समाजवादी की बात कर लेते हैं, आप मुझे बताइए अगर हम बात करते हैं कि सनातन गारंटी है कि हम लोग मजबूती से भारत को आगे लेके जाएंगे, क्यों करते हैं? हिंदू जो है वो बहुसंख्यक होके भी कहता है पंथ निरपेक्ष होगा देश और सहिष्णु है, और दूसरी तरफ ये लोग वोट बैंक की राजनीति करके जो अलगाववादी ताकतें हैं जो कि तुष्टिकरण करती हैं उनको बढ़ावा देते हैं। उदाहरण दो देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, क्या किसी पार्टी को कहना चाहिए कि ये मुस्लिम इलाका है और हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलेगा त्योहार के दौरान? ये कहा है समाजवादी पार्टी ने, और इनका ट्वीट मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा कि ये मुस्लिम इलाके से हिंदुओं का जुलूस क्यों जा रहा है। तो एक प्रश्न आएगा, क्या संविधान ये नहीं कहता कि हर इंच पे हर भारतीय का हक है कहीं से भी जा सकते हैं? दूसरा, मरिया आलम इनकी नेत्री है, उन्होंने कहा वोट जिहाद करो, ये वोट जिहाद क्या होता है? क्या अखिलेश यादव इस पे एक सवाल कर पाए? नहीं कर पाए। और मैं अंत करूंगा इसी तरह से, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, देखिए आज मुद्दा है चर्चा का सनातन, खड़गे जी कह रहे हैं अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो सनातन का राज आ जाएगा। भैया सनातन से इतनी नफरत क्यों है? और खुद को कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं। तो ये सवाल आते रहेंगे कि जिस संविधान की शपथ योगी आदित्यनाथ जी ले, चाहे अखिलेश यादव ले, चाहे खड़गे जी ले, चाहे राहुल गांधी ले, सबने एक ही प्रतिज्ञा करी है कि संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाएंगे, जिसको ये छिन्न भिन्न कर देते हैं तुष्टिकरण करने के लिए।
0: ठीक है,
5: धन्यवाद।
0: ये वारिस पठान जी भी जुड़ गए हमारे साथ एआईएमआईएम की तरफ से। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पहले ये बताइए कि अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए अलग अलग परिभाषाओं के साथ उसकी बात करती है, अगर चर्चा समूचे सनातन पर जाता है तो आप लोग नुकसान होता देखते हैं?
6: देखिए, सवाल यह है कि अभी मंदिर की बात हुई तो वहीं से शुरू करते हैं। ये बताइए, देश संविधान और न्यायपालिका चलता है, ये हम लोग मानते हैं। जो संविधान सम्मत होता है, जो न्यायपालिका कहती है, उसका हम आदर करते हैं, पालन करते हैं। अब

0: न्यायपालिका के आदेश के से भव्य मंदिर बना और वहां पे चढ़ावा चोरी हुई। चढ़ावा चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मुद्दा उसकी बात तो की नहीं, हमने चढ़ावा चोरी की जो बात हुई है उसको उठाया, उजागर किया और जनता के सामने लेके आए और पूरी जोर से उस बात को उठाया। इनके सहयोगी दल वहां पे, इनके सहयोगी लोग हैं जो वहां पे सब कारोबार देख रहे हैं, उनके नाक के नीचे अगर चढ़ावा चोरी हो गया तो आस्था पे डकैती किसने डाली और आस्था पे चोट किसके देख रेख में पहुंची, इसका जवाब आप दे दीजिएगा, इनसे ले लीजिएगा। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि हम सनातन की बात नहीं करते। अगर हम सनातन ही की तो बात करते हैं तभी तो हम कहते हैं समाजवादी लोग हमेशा सनातन की बात करते हैं, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना, प्रेम की भाषा बोलना। अब इनकी भाषा कैसी होती है वो आपने अभी सुनी ली थी दूसरों के बारे में, हम फिर भी वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम सनातनी हैं। जो सनातनी नहीं होते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तीसरी बात, हमने विकास की राजनीति है, समाज
1: नमस्कार
0: को क्या
1: वीरू
0: चाहिए
1: जरा
0: विकास,
1: बताइए।
0: तो हम विकास की बात करते हैं। हम हमेशा पूछते हैं कि आप 10 साल के काम गिनाइए कि आपने कितने विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, आपने जो एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जो रोडें आपने बनाई हैं, आपके उद्घाटन के पहले उसमें गड्ढे हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार आपके यहाँ देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह का माहौल है, अंकित बालियान का सरेआम हत्या हो जाती है, इस पर जवाब ही लोग दे नहीं पाते। तीसरी बात, आपने देखा सवाल, पत्रकारों के सवाल के जवाब देना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, सवाल सुनकर ही भागने लगता है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है इतिहास में। दूसरी बात, इनके साथ दिक्कत क्या होगी पता है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं क्योंकि जनता इनके, युवा इनके विरोध में है, छात्र इनके विरोध में है, महिलाएं इनके विरोध में है और आम जनता इनके विरोध में है। अब ये परेशान है, किसान इनके साथ है, नहीं कि किसान किसान के साथ तो ये इन्होंने क्या किया, आपने देखा ही था उनके लिए काला कानून लेके आए तो समाजवादी लड़ी, समाजवादी डट के खड़ी किसानों के साथ हुई, तब जाके इन्होंने काला कानून अपना वापस किया, वरना तो किसानों को तो इन्होंने जान ले ही ली थी। अब बताइए समाज के अंदर
1: उत्तर
0: कौन
1: दे
0: सा
1: दो
0: ऐसा वर्ग है
1: जी।
0: जिसके लिए काम कर, छात्र इनके खिलाफ है, देखिए स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए कैसा है, स्कूल में या तो सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तालाब बन जाता है क्लासरूम, बच्चे परेशान है, कह रहे मेरे पैर टूट जाते हैं, हम फिसल जाके गिर जाते हैं, हमारे स्कूल की व्यवस्था नहीं। जिस आप सरकार में स्कूल की व्यवस्था प्रॉपर ना हो, जो
1: ठीक,
0: सरकार पढ़ाई लिखाई की बात ना करता हो, जो सरकार सिर्फ कागजी बातें करता
1: मैं
0: हो,
1: उत्तर
0: कागज पर
1: देना
0: तो आप
1: चाहता
0: देखिए
1: हूं
0: अभी
1: स्पीकर जी।
0: इन्वेस्टमेंट
1: जी जी
0: अभी बता देंगे इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बता देंगे उन्होंने लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन धरातल पे क्या है, शून्य, जीरो बटा सन्नाटा।
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: अगर आपने इतना ही विकास किया तो फिर आप धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हैं, हमारी तरह विकास के नाम पे करो ना, धर्म मेरा आस्था का विषय है, जहां जहां प्रभु के नाम पे चोरी होगी हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम लोग धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति हम करेंगे विकास के नाम के और टंके की चोट पे करेंगे, कहां कहां
1: घुमा
0: भागोगे,
1: फिरा के,
0: इस पर
1: घुमा
0: जनता
1: फिरा
0: आपको
1: के ना धर्म या
0: दौड़ाएगी।
1: जाति सबकी राजनीति में आ ही जाती है।
2: मैं उत्तर दे
1: जी गौरव भाटिया जी, या तो आप उत्तर दें या मुझे लगता है अभय दुबे जी को भी शामिल कर लें, एक बड़ा पैनल है सब, वो दोनों अपनी बात कर लें, आप एक साथ जवाब दे दें।
2: उत्तर दे देता हूँ फिर उनकी बात का भी उत्तर,
1: ठीक है,
2: दे
1: शॉर्ट में,
2: दोनों अलग अलग है ना श्वेता
1: जी
2: जी,
1: नहीं नहीं लेकिन
2: सपा का तो वजूद है, कांग्रेस का तो वजूद भी नहीं है। धन्यवाद। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ
3: श्वेता।
2: देखिये सबसे पहले तो मैंने पूछा था, ये जब कहते वोट जिहाद होना चाहिए इनके नेता, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया, और मुस्लिम इलाका है, हिंदुओं का हक नहीं है वहां से गुजरे, उस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। इतनी नमाजवादी पार्टी है और इन्हीं की बातों का उत्तर कुछ तस्वीरों से भी दे देते हैं। सबसे पहले कह रहे धर्म आस्था का विषय राजनीति का नहीं, तो ये पांच कालिदास मार्ग में जब मुख्यमंत्री थे आधे अखिलेश यादव, ये जालीदार टोपी लगा के 5,000 रुपए की इफ्तार पार्टी सरकारी खजाने से क्यों करते थे, सवाल नंबर वन। आस्था का विषय है ना, नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, अब देखिए राम मंदिर की बात कौन कर रहा है, राम मंदिर की बात देखिए मुलायम सिंह यादव जी 27 साल बाद क्या बोले,
0: यही
2: जब
0: तो सनातन है,
2: जो विवादित ढांचा गिरा था जन्मदिन पर, बोले मुलायम अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता, ये इतना हिंदुओं से प्यार करते हैं, कार सेवकों को और भी मार देता कह रहे हैं, और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि देखिए हम सनातन जो है समर्थन करते हैं। तीसरी बात, इन्हीं का मैनिफेस्टो है, सारे दर्शक देखें, अरे कपटी पार्टी, देखिए श्वेता जी चुप कराइए ना श्वेता जी, ये तरीका
1: नहीं, पर गौरव जी, गौरव जी आप तो नए आरोप लगा रहे हैं, फिर वो जवाब देंगे, फिर उनके लगाए आरोपों पर आप जवाब देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले पूरे पूरे गौरव भाटिया जी, हम पूरे पैनल में सबसे बात कर लेते हैं, पहले एक पहली प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद एक एक करके हम काउंटर करेंगे। अभय दुबे जी आप अपनी बात रखिए, और कांग्रेस की तरफ से ये बात भी, जो गौरव भाटिया ने जो तस्वीर दिखाई मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी राय

0: बताई, उन सारी चीजों को लेकर क्या आपको लगता है कभी कभी पार्टी मिक्स सिग्नल तो नहीं देने लगती है कि मतलब आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे लगता है अभय दुबे को हमारी आवाज इस समय जा नहीं रही है। हम उनसे एक बार फिर उनको फोन लगाएं प्लीज। मलूक नागर जी, आप बताएं, आरएलडी का कोर वोट बैंक किसानों को माना जाता है, इमेज आप
1: जी, आप
0: जी
1: श्वेता जी, मैं जवाब दे दूं, आपने जितना भी अब तक बात हुई है आपने ठीक कहा कि बिल्कुल बीच में ये लगते हैं कांग्रेस के, और बिल्कुल सीधा कांग्रेस कन्फ्यूजन में लगती है। जब जिस दिन तीन साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना तो कन्फ्यूजन था, इनका नेता महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बोलता था कन्फ्यूजन था, और जिस दिन इनके अध्यक्ष बने खड़गे साहब उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ हो गए कि अगर मोदी जी जीत गए तो सनातन धर्म का राज आ जाएगा। अगर सनातन धर्म से इतने चिढ़ते हैं तो ये चुनाव के समय में मंदिरों में क्यों जाते हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी? फिर वहां जाके यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं? और पिछले दिनों जो भी घटना घटी, हम उसके पक्षधर नहीं है, हम उसके खिलाफ थे। जिन्होंने भी चढ़ावा चोरी में चोरी करी वो दुष्ट और पापी मानते हैं, फिर भी उस समय सनातन धर्म के लिए खड़े हो गए। तो ये इतने कन्फ्यूज हैं कि ये सनातन के फेवर में है या कांग्रेस खिलाफ में है। अब समाजवादी पार्टी की बात आती है, अभी ये कहा सनातन ही अच्छे होते हैं, हम सनातनी हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो अच्छी बात बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो फिर ये भी बोल दो ना कि योगी जी ने जो कल कहा या आज कहा सनातन धर्म के बारे में, और जहां पे जो कथा हुई, जो पौराणिक एक विचारधारा है देश की संस्कृति के साथ साथ कि कथा करते हैं और उनमें सनातन धर्म की पूजा करते हैं, तो ये कह दो कि योगी जी ठीक बोल रहे हैं या योगी जी ठीक कर रहे हैं। तो अगर उनकी बात को खराब मान रहे हैं और सनातन धर्म की तारीफ कर रहे हैं तो वो तो सनातन धर्म के बारे में ही तो बोल रहे हैं योगी जी। तो आप समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस का अर्थ लेके, कांग्रेस के साथ रह के समाजवादी पार्टी भी कंफ्यूजन में पहुंच गई है पूरी की पूरी। ये तय कर लें सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां के सनातन धर्म के खिलाफ है या सनातन धर्म के फेवर में है। अभय दुबे जी नेशनल टेलीविजन पे दोनों स्पष्ट कर दें
0: जी। अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं जी। अभय दुबे जी
2: जी, श्वेता जी जी, श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नकली राम दुलारे हैं, ये चंदा चुराने वाले हैं, आग लगा दी देश में भाजपा के भेष में। ये कहते थे आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी की हमारे हिंदू खतरे में है, हमारा सनातन धर्म खतरे में है। मैं विचार करता था कि ये ऐसा कह क्यों रहे, लेकिन जब लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के बच्चे ने किसानों को जीप से कुचल कर मारने का आरोप लगा, तब मुझे आभास हुआ कि हां हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। जब अंसारी और तिवारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा खाने के लिए भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लिए एक हो गए, कुसुम पाठक से जमीन खरीदी, जब तिवारी और अंसारी ने 18 मार्च 2021 को 10 बजे और 10:10 में 825% का मुनाफाखोरी करके चंपत राय को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर बेच दी, तब मुझे आभास हो गया कि हां सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में है। श्वेता जी, जब हमारे शंकराचार्य महाराज को अभद्र टिप्पणियां की स्वयं आदित्यनाथ जी ने की, और बटुकों को जब शिखा पकड़ पकड़ के खींच खींच के रोंद कर मारा, तब इस बात का आभास हो गया हमें आदित्यनाथ जी कि हां सनातन धर्म उत्तर प्रदेश और समूचे देश में खतरे में है। याद रखिएगा, बटुकों की शिखा में सृजन और प्रलय दोनों पलते पलते हैं। आपने कहा ब्राह्मण सम्मेलन, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सचिन पांडे, राजेश दुबे, अमर दुबे, कार्तिकेय मिश्रा, विकास दुबे, राकेश पांडे, वकील पांडे, विनोद कुमार उपाध्याय, विनय श्रोत्री, एक के बाद है इनकाउंटर सारे ब्राह्मणों के, और अब ब्राह्मणों का राग लाप रहे हो। हां मुझे इस बात का आभास हो गया क्यों कहते थे ये कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में है। 8,41,00,000 लोगों ने इनकी सत्ता की सरपरस्ती में पलायन कर लिया श्वेता जी, तब मुझे इस बात का पक्का आभास हो गया कि हां हिंदू धर्म खतरे में है और सनातन धर्म खतरे में है। जब छात्रों की परीक्षा और पेपर लीक नियोजित रूप से कराए और जो एजुसेट कंपनी का विनीत आर्य था वो नियोजित रूप से उसको अमेरिका भगा दिया। 48 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी पुलिस कांस्टेबल की, तब मुझे आभास हो गया कि हाँ ये हिंदू धर्म खतरे में, असली में इनकी सत्ता खतरे में है।
0: अबे जी एक छोटा सा बीच में सवाल अगर आपसे पूछ सकूं
2: को कटका ये एक मिनट
0: विनोद सानी आप ही से जुड़ी हुई बातों पर मैं सिर्फ क्योंकि आपको लगता है जब आवाज नहीं जा रही थी तब दो चीजें इस बात को लेकर हो गई कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर वो ये कि जब सनातन को नष्ट करने की बात आती है तब कांग्रेस पार्टी उसका इतना मुखर विरोध नहीं करती है। आपको लगता है मिक्स सिग्नल जाते हैं लोगों के सामने?
2: सनातन धर्म को नष्ट किसने किया ये देश इस बात का मूल्यांकन की करे, और हमारे सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दंडित किसको किया ये देश उसका मूल्यांकन करे। अयोध्या से हराया समाजवादी पार्टी जीती, रामेश्वरम से इनको हरा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जहां भगवान शंकर वास करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भगवान, वहां कांग्रेस पार्टी जीती। चित्रकूट में हराया, खाटू श्याम में हराया, सारे जितने धार्मिक स्थल है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने परास्त करके, क्योंकि उनको पता था कि ये देव द्रव्य की चोरी कर रहे हैं। सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो देव द्रव्य की चोरी है। स्वयं दत्ता परम दत्ता वायो हरे वसुंधराम षष्ठ वर्षी शरस्तानी विष्ठायाम जायते क्रमी, इतना बड़ा दंड है इनके लिए वो कि ये 60,000 वर्ष तक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अग्नि पुराण में लिखा है चंदा चोरों के लिए। इन चंदा चोरों ने आप सोचिए कि अयोध्या के मेयर के हस्ताक्षर है उस काले कारनामे में, अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर है उस काले कारनामे में, और इतना ही नहीं थोड़े दिन बाद इनके जो उनका भांजा है मेयर का उसने भी चंदा चोरी में एक बड़ी भूमिका निभाई, उसने भी रजिस्ट्री कर रख के माल कमाया। मुझे बताइए उच्च न्यायालय क्या कहता है इलाहाबाद का, वो कहता है अस्पताल चला रहे हो आदित्यनाथ जी या मुर्दा घर चला रहे हो, क्योंकि हेल्थ इंडेक्स में बता रहे हैं मोदी जी की सबसे वर्स्ट कंडीशन उत्तर प्रदेश की है। अरे 26,000 स्कूल बंद हो गए
0: जी, ये बताइए देखिए
2: 26,000 स्कूल बंद हो गए।
0: सीधे रूप से ये आरोप लग जाता है जो चाहे अनुराग भदौरिया हो या अभय दुबे हो, बात दोनों यही कर रहे हैं कि स्कूल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था जो रोजगार की समस्या ये सारी चीजों को दरकिनार करने के लिए उन्हें लोगों के मन से हटाने के लिए लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उठता है सनातन का मुद्दा।
3: तो सबसे पहले सकारात्मक बात पे ही जवाब दे देता हूं। कानून व्यवस्था, आपको मालूम है किसी समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगे हुए 2013 में, 200 दंगे साल में होते थे, मौलाना नजीर इनके खिलाफ एफआईआर हुई, इनको चार्टर प्लेन भेजा अखिलेश यादव ने कि सीएम हाउस आ जाओ, और आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, माफिया थर थर कांपते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नाम से। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी दोनों के लिए जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा कि मिट्टी में मिलाएंगे माफियाओं को, तो अखिलेश यादव की आंखें नम हो गई थी, ये भी सच्चाई है। क्या आप नहीं मानते जेवर को नया एयरपोर्ट मिला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस होती थी समाजवादी पार्टी के टाइम में, सरकार थी बच्चे मरते थे, खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या कुंभ मेले का सफल आयोजन कराया, 67 करोड़ हिंदू और बाकी नागरिक वहां गए, और दर्द किसको हुआ, नमाजवादी पार्टी को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनके समय में होता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन कट्टा वन बॉम्ब, जो कि गुंडे चलाते थे और अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री बन के चुप रहते थे।
4: मैं जवाब
3: और कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी,
0: श्वेता
3: जी आंकड़े देता हूं, 37 साल से उत्तर प्रदेश में 37 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई है। 403 सीटों की विधानसभा है, 403 सीटों में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं, 2। आप ये बताइए भगवान राम काल्पनिक हैं, किसने कहा कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा देके, मैंने ये तस्वीर दिखाई पुनः दिखाता हूं, मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा, ये किसने कहा, कांग्रेस पार्टी खड़गे जी ने। और सबसे बड़ी बात है, चाहे नमाजवादी पार्टी हो चाहे मुस्लिम कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां मिलके हिंदुओं को दबाना चाहती हैं,
4: प्रताड़ित करना चाहती हैं।
3: आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है।
0: जीत
3: में ना बोले, देखिए काव काव करेंगे तो वापस इनके समय में भी मैं बोलूंगा, जीत में ना बोले, ये तरीका ठीक नहीं है। ये प्रवक्ता को बुलाया करिए, जनरेटर को नहीं जो लगातार बोलता रहता है। और मैं ये कहूंगा, आपने देखा किस तरह से गंगा एक्सप्रेस
0: वे, पूर्वांचल
3: एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट आया। अरे क्यों भाई, क्यों ना दे, क्यों नहीं? अरे भैया ये कौन बोल रहा है?
0: ये वो पर्सनल अटैक्स में आप लोग अपनी मुद्दों से भटक जा रहे हैं।
5: जवाब दे,
0: पर्सनल अटैक्स न करें, आप कंप्लीट कीजिए गौरव जी, उसके बाद हम जवाब लेते हैं।
3: 22 प्रदेशों, हाँ धन्यवाद श्वेता जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी 22 प्रदेशों में आज सरकार है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आई हो, यह कीर्तिमान योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। और मैं इसीलिए कहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जनता को इन पर विश्वास नहीं है। केवल गुंडे मवाली जितने लोग गलत करते हैं वो चाहते हैं कि टूटी साइकिल की सरकार आए और ये हरा दिए जाएंगे।
0: ठीक है अनुराग जी छोटे में दीजिएगा, फिर वारिस जी के पास जाएं ताकि उसके बाद आप तफसील से उस पर बात करें।
5: देखिए सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बता रहे थे कि हमने एक्सप्रेस वे बनाए, साथ में लगे हाथ ये भी बता देते कि एक्सप्रेस वे बनाए थे, तो एक्सप्रेस वे उद्घाटन जैसे उद्घाटन होता है वैसे ही टप से उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। और सारे एक्सप्रेसवे, जितने एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, और या तो उसमें आप झूलते झूलते जाते हैं, जैसे लहराते जाते हैं ना, वैसे आपको जाना पड़ता है, या गड्ढे में आपका आप परेशान होते हैं। दूसरी बात, जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं सारे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को बेस बना के बने हुए हैं, उन्हीं पे आके सब खत्म होते हैं, क्योंकि वही कनेक्ट करता है। और फिर ये जो बात कर रहे थे, ये जो इनसे हमने पूछा कि बताइए कि विकास की बात कुछ बता पाए, अभी तक नहीं बता पाए, पुरानी बातें, 2-4 लाइनें हैं, कोई भी इनकी डिबेट उठा के देखो वही बातें वही रट रहे हैं, कब से 2017 से वही बातें रटे जा रहे हैं, कोई नई डिबेट में बात बोला करो, कुछ ज्ञान की बात बोला करो, पुरानी बातें बोल के क्या।
0: वारिस पठान जी तमाम बातें आप सुन रहे हैं, वारिस पठान जी पूरी बातें आप सुन रहे हैं। सनातन का मुद्दा लगातार अल्पसंख्यकों को दरकिनार करता है, ये आपकी पार्टी से तरह तरह से ये बात कही गई है। हालांकि इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें बात तो सभी सनातन की कर रहे हैं, क्या लग रहा है?
6: देखिए मेरी तो ये हालत है श्वेता जी के, रजिया गुंडों में फंस गई। एक तरफ देखिए बीजेपी वाले हैं, तो दूसरी तरफ तथाकथित सेक्युलर पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तमाम ने सबकी बात कर ली, एक होड़ सी लगा दी लोगों ने कि हिंदुओं का असली चैंपियन कौन है, कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन हिंदुत्व का चैंपियन, उसके वोट बैंक के पीछे सब भागम दौड़ी कर रहे हैं। मगर किसी ने मुसलमान के बारे में बात की कि अभय दुबे साहब बैठे हैं, मेरे मित्र अच्छे इंसान है, मैं उसको पूछना चाहूंगा।
0: अभय दुबे तो लड़ाई चलती है कि मुसलमानों का असली चैंपियन कौन है।
6: श्वेता जी आप किसी के बीच में नहीं बोले, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे बीच में भी मत बोलिए।
0: आप बोलिए, बोलिए अपनी पूरी बात।
6: यूसीसी लगाना है तो सबसे पहले तो चैनल वालों को लगाना पड़ेगा कि जितना वक्त आप बीजेपी वाले को देते हो सेम यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी दूसरे भी प्रवक्ताओं को दी जाए, ये पहले यूसीसी का कानून लागू होना चाहिए। बात नंबर 2, लाइटर मूवमेंट पे बोल रहा है श्वेता जी, लाइटर मूवमेंट पे बोल रहा हूँ।
3: अंडा अंडा
6: हाँ अंडा रोज आप खाते हो, अभी उसको मैं आमलेट बना के खाता
0: हूँ। अच्छा, मुद्दे पर बात कीजिए वारिस जी, बोलिए।
6: मैं बोल रहा था अभी यहाँ पे इतना बड़ा इशू हो गया सहारनपुर के अंदर, रात के अंधेरे में जाकर हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अबे दुबे साहब बैठे, मुझे बताइए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े नेता है, एक भी ट्वीट किया क्या उन्होंने? क्यों नहीं करते? आप हिंदुओं की तो यहाँ बात कर रहे हो, सनातन के मुद्दे पे आपने बात करी, चलिए अच्छी करिए आप, लेकिन हमारी भी तो सुनिए ना, हमारा क्या वोट देंगे? क्या खाली दरी बिछाएगा मुसलमान? इतनी बड़ी चीजों के बुलडोजर वहां पे मस्जिद पे नहीं चला, हमारे दिलों पे चल गया।
5: आप सुनते ही नहीं है तो हम क्या,
6: बुलडोजर हमारे दिलों पे चल गया, मस्जिद पे नहीं, ये तो इतने बड़ा हो गया। आपने तो संविधान की धज्जियां उड़ गई, डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया, कायदे कानून की धज्जियां उड़ गई। बात नंबर 2 ये है कि यूपी का चुनाव आ गया, सबको वोट चाहिए इनके। एक अभी पूछ रहा हूँ अनुराग बदुरे, इतना हंस रहे हो आप, चलो 18% वाला सीएम बन सकता है क्या, बनाएंगे आप मुसलमान?
5: नहीं आप सारे
6: 8% वाला यादव सीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, 18% वाले मुसलमान को बनाएंगे क्या आप मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री? चले बताइए। अरे यार मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, ये क्या है यार अनुराग भाई, ये क्या, फिर मैं बोलूंगा, हम बोलेगा तो बोलोगे क्या बोलता है, फिर खामोश नहीं रहूंगा। फिर
0: अनुराग जी आप पर भी यूसीसी लगेगा, अभी रुकिए, आप पर भी यूसीसी, सभी पार्टियों पर भी अभी रुकिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर बोलिएगा अपनी बात।
6: हाँ अभी देखो इस तरह की बदतमीजी करेंगे फिर हम कहे गए तो शरीफों का क्या होगा। सुनिए बात मेरी, मुझे मालूम है आपको तकलीफ है अनुराग भाई, हाँ 8% वाला यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप, लेकिन 18% वाला मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए आपको, उसके हक इंसाफ की बात करने के तो मुंह में फेविकोल लगा के आप बैठ जाएंगे, नहीं बोलते आप। देखिए बीजेपी तो हमारी दुश्मन है, सबको पता ही है, वो उनको तो हमारे खाने पीने से नफरत है, हमारे हर चीज से, हमारी मस्जिद से नफरत, मदरसे से नफरत, सबसे नफरत है। लेकिन आप लोग तो कुछ करो ना, इतने सालों से आप वोट लड़ रहे, आपने बोला 1 MP तुम्हारा है क्या कर लेगा, अरे आपके तो 37 MP है, 111 के करीब MLA, फिर हमारी मस्जिद शहीद कैसे हो गई, क्यों सहारनपुर की मस्जिद को नोटिस दिया, क्या करेंगे अभी आप? आपके वहां पे सांसद थे बाजू के अंदर, क्यों नहीं पहुंचे? आपके वहां पे बाजू में कांग्रेस का सांसद था मौजूद, क्यों नहीं बचा सका हमारी मस्जिद को? सोचिए अगर किसी के मंदिर पे बात आ जाती तो सबके सब रस्ते पे उतर गए होते, बुलडोजर के पास सामने सो जाते। ये चुनाव आ रहा यूपी का, अभी शुरू हो जाएगा सब। देखिए योगी तो टोटल फेल हो चुके हैं मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये कर दी है कि यहाँ पे प्रवक्ता आके कितना भी झूठ परोस दे, जनता सब समझदार हो गई है, जनता को पता है कि कायदा कानून की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, जीरो शून्य।
2: श्वेता जी,
6: जनता को पता है संविधान का क्या कर दिया आपने, पूरी तरह धज्जियां उड़ा के रख दी। आज वहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए क्या वहां के वीडियो भेज रहे लोग हमारे को, स्कूल की हालत देखिए क्या हो रही है, कितनी सारी आपने स्कूलों को बंद कर दिया, बताइए आप मुझे क्या जवाब है इसका? एजुकेशन के खिलाफ आप लोग, मुसलमानों के खिलाफ आप लोग, मस्जिदों के खिलाफ आप लोग, मंदिरों के खिलाफ आप लोग, तो फिर आप किस तरह से सबका साथ सबका विकास करो, सबके विश्वास की बात कर रहे हो? यहाँ आपने यूसीसी कानून लगाने की बात करी, अभी कैसे लगाएंगे यूसीसी कानून? ये तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आपको मसलत करना, हिंदू लॉ आपने 44 की बात करी तो पूरे टेरिटरी के ऊपर लगता है, पूरे भारत देश पे लगता है, वो क्या करेगा? ट्राइबल को आपने अलग कर दिया उसमें से, कितने राज्यों के अंदर तो गाइस मम्मी, कितने राज्यों के अंदर गाइस जम्मी, कानून लगा के क्या करेंगे? किरण रिजिजू बोलता मैं तो खाता हूँ, इसके खिलाफ अलग कानून लगेगा क्या? चलिए बताइए मेरे को ये वाली भी बात।
5: श्वेता जी,
6: कितने राज्यों की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पे गाय जगह गाय जमी, क्या करेंगे उसका आप मुझे बताओ ना।
0: ठीक है,
6: हाँ, मैरिज एज मुस्लिम इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इन हिंदू जन्म जन्म का साथ, मैरिज इन क्रिश्चियन इज आई डू, कौन से कानून के तहत डाल देंगे सबको एक ही बताओ मेरे को? आप करना कुछ नहीं है, आपको यूपी का चुनाव आ रहा है, बैकफुट पे हो आप, चंदा चोर हो आप लोग, हिंदुओं की आस्था का कत्ले आम कर दिया, हमारे हिंदू भाइयों का पैसे तो चंदे के नाम पे देते, खा के बैठ गए आप लोग। मेरे हिंदू भाई रोज फोन करके मेरे को बोल रहे बीजेपी वाले खा गए हमारा पैसा, वारिस भाई क्या करेंगे?
0: फोन कर रहे हैं,
6: कैंपस कहां चला गया? SIT ने कमेटी का गठन किया जिसके अंदर 72 से क्लिप है जिसमें बता रहे
0: हैं
6: चोरी हुआ, क्या किया आपने उन लोगों का? चंदा चोरी कर दिया हमारे हिंदू भाइयों का आप लोगों ने, रास्ता का कत्ल आम कर दिया। अभी समानता की बात करते, एक मिनट, गौरव भाटिया अभी समानता की बात करते, वसई विरार मुंबई के अंदर गणपति का फेस्टिवल चालू है, वहां इन्होंने क्या बोला कि मुसलमानों को पंडाल लगाने वाले को भी नहीं रखेंगे,
0: ठीक है,
6: कुर्सी लगाने वाले को भी नहीं रखेंगे, अरे टेबल वेबल किसी को, यानी आर्थिक बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, देश में एकता की बात कर रहे हैं, यूसीसी की आर्थिक बहिष्कार हो रहा है जो असंवैधानिक है, उसको तो पहले रोको।
0: बताए जी, जी गौरव भाटिया जी बताए,
6: बोलने
3: का बाकी है। धन्यवाद। देखिए वारिस पठान पहले ऐसे अधिवक्ता हैं, वकील हैं, जो खुद को वकील बुलाते तो हैं लेकिन संविधान से इनका कोई वास्ता नहीं है। श्वेता, मैं संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लिए हूं, अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, कैसे आप इसका विरोध कर सकते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं आप, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने यह संविधान दिया है और ये कह रहे थे मुसलमान दरी थोड़ी ना बिछाएगा, नहीं तो क्या मुसलमान जो कुछ आप जिनका
6: संविधान में आर्टिकल
3: करते हैं हलाला करेंगे?
6: संविधान में आर्टिकल 26-28 है, मुझे फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत
3: देता है। श्वेता जी आप इनको चुप कराइए, अभी अभी ये ज्ञान दे रहे थे, ये ऐसे वकील
6: नहीं, नहीं, मेरे
3: ऐसे बहस करते हैं कोर्ट में,
6: शराफत से पेश आए,
3: पहले अपनी बहस करते फिर कमजोर पड़ते फिर चिल्लाने लगते हैं,
6: अब बोलेंगे
3: चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने की क्या जरूरत है?
6: जरूरत
3: मुझे नहीं लगता चिल्लाने की कोई आवश्यकता,
6: बिल्कुल जरूरत है, हक इंसाफ की लड़ाई से भी चर्चा की
3: जा सकती है। अभी अभी आपकी बारी आएगी, आप उत्तर दीजिएगा, सारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि आप किस तरह की दलील देते हैं। सुनिए श्वेता जी, देखिए हमें एक बात समझनी होगी, ये कहते हैं मुसलमान दरी थोड़ी ना बिछाएगा, तो क्या हलाला करेगा? क्या बहुविवाह करेगा? क्या नान पे जूस में थूक डालेगा? यही क्या आप चाहते
6: तो
3: हो?
6: माफीनामे भी नहीं लिखेगा।
3: अरे योगी आदित्यनाथ जी सुनिश्चित कर रहे हैं सरकार की, अब देखिए बीच में ना बोलो भाई, नान पे थूक लगा के वापस आ जाओ भाई, पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें। योगी आदित्यनाथ जी हो, मोदी जी हो, कोई भी सरकारी अगर स्कीम आती है सबकी भागीदारी होती है, और ये वो वाली AIMIM है कि इनके नाम में मुस्लिम ही आता है, जो कि संविधान विरोधी है। ये वो वारिस पठान बैठे हैं जो कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, और आज तो गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा मोरिया बोल के पार्टी के लीडर से फटकार पड़ी तो एक साल तक चर्चा में नहीं आए थे, जो कहते हैं हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग चाहते हैं दंगे हों, ये चाहते हैं लड़ाइयां हों, और हम चाहते हैं संविधान के तहत सबको एक जिम्मेदारी से कुछ ना कुछ मिले, सशक्तिकरण, मुसलमान भी आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। और मैं केवल श्वेता जी एक कहूंगा, देखिए कानून व्यवस्था की बात पे आपके कार्यक्रम में एक बात कही गई, केवल ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, तो मेरे पास ये आंकड़े मैं पढ़ दूं दर्शकों के लाभ के लिए, एनकाउंटर में जो मारे गए वो केवल अपराधी थे, लेकिन क्योंकि कहा गया ब्राह्मण के ही एनकाउंटर होता है, मुस्लिम थे 67, ब्राह्मण थे

0: 67, ब्राह्मण थे 20, ठाकुर 18, यादव 16, जाट और गुज्जर 17, दलित 14, अनुसूचित जाति के 3, सिख 2, अन्य ओबीसी 8, अन्य 42। इसका मतलब क्या है? अपराधी अपराधी होता है, किसी धर्म के या जात के चश्मे से किसी अपराधी को नहीं देखा जा सकता है। ये बात इन आंकड़ों से स्पष्ट है।
1: अभय दुबे जी, क्या क्या विकास की बात हर राज्य में हम चुनावों में देखते हैं, विकास की बात से शुरू होता है और पहुंच जाता है उन्हीं या तो धर्म या फिर जाति के मुद्दे पर, क्या ये राजनीति का शॉर्टकट होता है जो अल्टीमेटली सूट कर जाता है सबको, चाहे कोई भी पार्टी रहेगी?
2: आज तक ने बहुत प्रामाणिक सर्वे में बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। अगर आज चुनाव होते हैं, ये मेरा नहीं है, आपका सर्वे है। इन्होंने कहा कि जाति देखकर नहीं, तो साहब ये बताइए फिर उत्तर प्रदेश को, ब्रजेश सिंह 106 अपराध है सलाखों के पीछे, बादशाह सिंह 88 अपराध है, 84 अपराध है, उदय भान सिंह 83 अपराध है, संग्राम सिंह 58 अपराध है, सोनू सिंह 57 अपराध है, चुलबुल सिंह 53 अपराध है, धनंजय सिंह 46 अपराध है, चुन्नू सिंह 42 अपराध है। कहा ये एक के बाद एक, ऐसी सैकड़ों लोगों की, एक ही जात के लोग की, आदित्यनाथ जी क्यों सलाखों के पीछे नहीं है और क्यों जाति देख देख कर एनकाउंटर कर रहे हो, ये बताइए। मैं पूछता हूं, रात के अंधियार में हाथरस में बिटिया पर पेट्रोल डालकर जलाया कि नहीं जलाया? विनोद सानी का की हत्या कर दी सरे रा, एनकाउंटर हुआ नहीं हुआ? उनके घर नहीं जाओगे? अभी आप कह रहे थे बड़े एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 2021 में उद्घाटित किया, बंद हो गया। अलीगढ़ एयरपोर्ट बंद हो गया, आजमगढ़ एयरपोर्ट बंद हो गया, चित्रकूट एयरपोर्ट बंद हो गया, मुरादाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, श्रावस्ती एयरपोर्ट बंद हो गया, अभी कह रहे थे बड़े बड़े हाईवे बनाए। बताओ ना किसको दिए ठेके? एक पैसा खर्च किया तुमने? अडानी जी को तुमने दिया कि नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट बताओ? दिलीप बिल्ड कॉन को दिया कि नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट बताओ? वो जनता भुगत रही है, जनता को टोल के पैसे लगा लगा कर उनकी जेब पर डाका डाल रहे हो और इतने स्तरहीन बनाए कि वो पहली बारिश में सारे धुल गए। क्या बात करते हो? कहते हो अपराध मुक्त कर दिया। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हत्या के प्रयास उत्तर प्रदेश में, जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रांत है जहां बेटियों पर एसिड अटैक हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए देश को? अरे जितनी रिपोर्ट मोदी जी देते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, हेल्थ इंडेक्स सबसे बदतर उत्तर प्रदेश की स्थिति, 8,23,000 करोड़ रुपए आदित्यनाथ की सरकार ने 5 साल में सेविंग बचत सरेंडर तक नहीं किए, खर्ची नहीं किए बजट में अनाउंस करके, क्योंकि विजन ही नहीं है, कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। एक ही काम है इनका, सिर्फ सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान करके इस प्रदेश को, इस देश को गुमराह करना। इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आएंगे तो शमशान कब्रिस्तान करेंगे, आते आते चुनाव देखिएगा, ये चरम सीमा पर जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों, गौर से सुनिएगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिएगा। इस प्रदेश में ना दलित सुरक्षित है, इस प्रदेश में ना ब्राह्मण सुरक्षित है, इस प्रदेश में ना पिछड़े सुरक्षित है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण तक खा गए, शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3.27% आरक्षण ओबीसी का दिया, 27% आरक्षण देना था उनको, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण ये लोग खा गए, ओबीसी आयोग तक ने इनकी आलोचना की। तो ये सिर्फ एक जात के लिए इस सत्ता का भोग करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश इसका माकूल जवाब देगा, याद रखिएगा। लोकसभा के चुनाव में तुमको हाफ किया था, विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश तुम लोगों को साफ कर देगा, उत्तर प्रदेश तुमको क्षमा करने वाला नहीं है।
1: ठीक है, अभय दुबे जी, एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, सिर्फ जो जो हमारा मूड ऑफ द नेशन सर्वे होता है उसमें हम स्टेट स्पेसिफिक नहीं करते हैं विधानसभा चुनावों के लिए, बल्कि अगर आज चुनाव हो तो अलग अलग राज्यों का डेटा जरूर वो हो सकता है, तो वो एक चीज मैं बता दूं। और साथ में रोहित जी हमारे साथ चुकी है, रोहित जी ये बताइए कि जब विकास की पिच पर अगर जो चुनावी चर्चा रहे तो किसको फायदा, और सनातन आस्था के नाम पर अगर चर्चा चले चुनावी तो फायदा किसको?
3: देखिए श्वेता जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी त्रेता काल में अवतरित हुए और उस समय भी उनके पास पुष्पक विमान था, इसकी चर्चा मानस में रामायण में अंकित है, विश्व को पता है इस बात का, और राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन कब दिया यह भी दुनिया को पता है। मतलब त्रेता काल में भी भारत ने हवाई जहाज देने का काम किया था। विकास एक सतत प्रयत्नशील

0: चकड़िया है। सरकार में जो लोग आते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली पहुंचाते हैं, टेलीफोन कनेक्शन जाता है, मोबाइल क्रांति आती है, टेलीविजन क्रांति होता है, परंतु पिछले 550 सालों में देश जब गुलामी के दंश को झेल रहा था और देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, बाद में पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा देश को संविधान प्राप्त हुआ, हमारे आराध्य और भारतीय संस्कृति सभ्यता के संवर्धन पुरुष, भारतीयता के राजदूत मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी टेंट में रहने को बाध्य थे, मजबूर थे, और तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक कहा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी। मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई राम गोपाल यादव ने राम जी को इलीगल ऑक्युपेंट कहा। अखिलेश यादव जी आज तक राम जी का दर्शन करने नहीं गए। राम जी का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल को आदरणीय अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा। अरे रुकिए कांग्रेस के लोग, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोलूंगा तो कोई नहीं बोल पाएगा, चुप रहिए। सनातन विरोधी विपक्ष का चेहरा एक्सपोज हो गया है। भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रखती, और सरकार अगर मजबूती से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष नहीं रखती तो राम जी के मंदिर के निर्माण का।
1: ठीक है रोहित जी बस इतना ही। हम आखिरी 2 मिनट बाकी हैं, हम एक एक करके सबसे आपसे क्लोजिंग कमेंट्स चाहेंगे और ये टाइम के डिवीजन के साथ। तो अनुराग जी आप शुरू करें।
2: टाइम डिवीजन नहीं, सबने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, तो सबने तो रैली की।
1: दो से ऊपर थोड़ी बोल दीजिएगा आप, बोलिए।
2: नहीं सुनिए, सवाल ये उठता है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी लंबी लंबी फेंक रहे थे, कह रहे थे कि हमने एयरपोर्ट बनवा दिए, 7 एयरपोर्ट इन्होंने बड़े तगड़े उद्घाटन किए थे, 6 बंद हो गए, और हालत ये जो एक चल रहा है वो किस तरह से लंगड़ा के चल रहा है, उसमें पानी भी भरा हुआ आपने देखा गया था। तीसरी बात, इन्होंने बोला था हम लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर में ले आए हैं। जब उत्तर प्रदेश में आप लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, कागज पे है, इसमें कोई दुराय नहीं है, धरातल पे कहीं देखने को आपको मिला नहीं, क्योंकि कहीं भी रोजगार बढ़ा नहीं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश की बात करती है तो हम लोग को हमेशा से एक ही चीज याद आती है कि इनके पास ना तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटीज बनाई, कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दे जो विश्व स्तरीय लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई हो, या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज बना दे। समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया था जो आज इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, इन्होंने तो कहा था कि हम बनाएंगे, पता नहीं कहाँ है किधर है, अभी तक 10 साल में सोचो कि स्टेडियम नहीं बना पाए।
3: देखिये श्वेता जी, ये कन्फ्यूजन ज्यों का त्यों रह गया। काम की बात जितने प्रश्न इनसे पूछे किसी ने बोला नहीं है। ये सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहे और आपने जो कहा चुप्पी खींचते रहे। स्टालिन हमेशा जो साउथ से सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, कभी कांग्रेस ने उससे कुछ पूछा नहीं, और पिछले 6-8 महीने से इन्होंने पिच बदली, खड़गे साहब का विरोध करा और खड़गे साहब को गलत सिद्ध करा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और उसके बाद ये सनातन धर्म के लगातार फेवर में बोलने की कोशिश करी। तो आज अगर योगी जी सनातन धर्म के फेवर में बोल रहे हैं तो या तो ये कहें कि सनातन धर्म के फेवर में हम भी बोल रहे थे और हमसे ज्यादा योगी जी बोले तो योगी जी अच्छे हैं, या ये कहें कि हम सीखतड़ हैं, शुरुआत कर रहे हैं सनातन धर्म की, या हम चुप खींचते हैं, या सनातन धर्म की जो बेइज्जती करते हैं स्टालिन साउथ से और बहुत सारे इनके साथी।
4: देखिए श्वेता जी, मेरा तो साफ बोलना है कि सबको एक दूसरे के आस्था का सम्मान करना चाहिए, मगर ये आस्था का सम्मान नहीं करते। आरएसएस प्रमुख अमेरिका के अंदर जाके बोलते हैं कि जो भी भारतीय हिंदू किसी मुसलमान के बारे में अगर गलत बात बोलेगा तो वो हिंदू ही नहीं है, लेकिन यहीं पर आप देखो कि किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उनका आर्थिक बहिष्कार करने की बात की जा रही है, किस तरह से असंवैधानिक कार्य उनके साथ किया जा रहा है। तो यही तो है ना, ये बोलने का कुछ है, कथनी और करनी में इनके जमीन आसमान का फर्क, और यहाँ के बड़ी बड़ी आंकड़े भाजपा के प्रवक्ता।
1: ठीक है,
5: देखिए जब संजय निषाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतनी बड़ी गाली दी कि मैं कह भी नहीं सकता हूं, उनके पिता पर, उनकी मां के संबंधों पर उसने सवाल खड़ा किया, मोदी जी ने गले लगा दिया। जब माझी जी बिहार में बोलते हैं, मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। जो भगवान राम, भगवान विष्णु को गाली दे सदन में, नरेश अग्रवाल उसको गाली लगा दे, इनको सनातन से मतलब नहीं।
1: गौरव भाटिया जी,
5: ये दलितों के।
6: देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी भगवान राम का नाम भी अपने मुंह से ना निकाले, क्योंकि उनका मुंह जो है हमेशा भगवान राम के लिए गलत बोलने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। भगवान राम काल्पनिक है, किसने कहा था? और बदला क्या है मैं बता दूं, अब कोई बुंदेलखंड में घास की रोटी नहीं खाता जैसे सपा के समय में किसानों।
1: समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको हम दिखाएंगे क्या हूती के हमलों के आगे सऊदी अरब की सेना लाचार हो चुकी है, ब्रिक्स का मजाक उड़ाने वाला पश्चिमी देश क्या भारत की सफलता से बौखलाते हैं, और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि क्या भारत विभाजन कराने वाले ब्रिटेन का विभाजन होने वाला है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
10: Shabam! Ek to ek. Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
9: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
10: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
9: असली शहद असली स्वाद।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: देखे जन्म पहला पहला कदम।
15: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
16: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
3: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
4: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
5: है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
6: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
7: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी।
2: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
8: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
9: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वही चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग हैं?

2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है। यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी। दलील दी गई कि गृह मंत्री का दावा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही, जिसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही साझा सहमति से यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है। यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना लागू हो। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में जीत, सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। पार्टी दफ्तर में सीएम भजन लाल ने मनाया जश्न। दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किए आंकड़े, जुलाई में 4.4% दर्ज हुई थी। और शो की शुरुआत यूपी के चुनावी बिसात के साथ करते हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा सबसे बड़ा है। शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां पहुंचते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
1: सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुन।

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: तो सनातन के नाम की चुनावी सियासत और सनातन की नगरी में संकट पर सियासत। यूपी में चुनाव से पहले राजनीति के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। एक रंग आरोपों वाला है जो वाराणसी में दिख रहा है। यहां मेयर ने आरोप लगाया कि सीवर में सीमेंट की बोरियां डालकर सीवर को चोक करने की साजिश हुई और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है।
4: एक तरफ वाराणसी के चितईपुर में महिलाएं सड़क पर उतरकर बदहाली और जल जमाव के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पार्षद से प्रधानमंत्री तक बीजेपी का होने के बावजूद सड़क नाली नाले की बदहाली की शिकायत को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी ओर वाराणसी के मेयर आरोप लगा रहे हैं कि सीवर में बोरियां डालकर पूरे सिस्टम को जाम करने की राजनीतिक साजिश हो रही है।
5: यादव जी अगर ट्वीट करें इतनी छोटी बातों को, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से कोई सूचना उनको दे रहा है, लेकिन जो सूचना का स्रोत है वो बहुत बिना जानकारी का है और ये अच्छी बात नहीं।
6: अगर मिलता है कोई ऐसे डालता हुआ सीसीटीवी में तो क्या करेंगे?
5: जल निगम के जलकल के अधिकारियों ने FIR कराया है और कानून अपना काम करेगा।
4: बीजेपी का आरोप है कि वाराणसी में सीवर सफाई के दौरान सीवर को चोक करने के लिए डाली गई बोरियां बरामद हुई हैं। इसे लेकर वाराणसी में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने जब वाराणसी में जल जमाव के बाद सीवर की जांच पड़ताल की थी तो सीवर में बोरियां मिली थी।
7: किसी भी तरीके से किसी मैनहोल के अंदर जाने का कोई साधन नहीं है। एक ही तरीके के रंग के अंदर बोरी के अंदर मलबा, निर्माण सामग्री, गिट्टी, बालू सब डालकर मैनहोल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि चोक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मैनहोल से ये सामग्री निकाली गई है, पीछे के क्षेत्र में जहां भी सीवेज की समस्या थी सब क्लियर हो गया है।
4: मामले की जांच जारी है। वहीं मेयर के बयान से सियासत भी तेज होने के आसार हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।
3: बात यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर छिड़े सियासी संग्राम की करेंगे। एक दिन पहले ही अमित शाह ने दावा किया कि 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा। ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ गई। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई और ऐसे में यूसीसी पर नई सियासत छिड़ती दिखाई दे रही।
8: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
9: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
8: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
9: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
10: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
11: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां से लागू करेंगे।
9: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
12: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
13: यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत छिड़ गई।
4: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
14: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है। जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
4: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
14: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
4: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
15: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बम बना रहे, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
4: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
16: इसे होना नहीं चाहिए। सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
4: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
17: सरकार ता ना करे मदरसा गुरु के বন্ধ করে দিয়ে যে চক্রান্ত করছে, এটা কি না মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোটগুলো দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না।
4: আব মাদারসো পর বঙ্গাল মে জবরদস্ত জং ছিড়ি হুই হ্যায়। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और बात गुरुग्राम की, जहां पर मैग्नम ग्लोबल पार्क में एक पार्किंग अटेंडेंट ने कारगिल युद्ध के पूर्व अवसर पर लोहे की रॉड से हमला किया था। इस हमले में सेना के पूर्व जवान के सिर पर गंभीर चोटें आई थी और हाथ की हड्डी टूट गई थी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अटेंडेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।
18: ये तस्वीरें कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की हैं, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। मामला गुरुवार रात करीब 8 बजे का है, जब अमित अपने परिवार के साथ मैग्नम ग्लोबल पार्क के गोंडो रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे थे, जहां कार पार्क करने को लेकर उनका पार्किंग अटेंडेंट से विवाद हो गया। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे के रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
19: पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे।
18: सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
19: तो मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे। और भी पार्किंग अटेंडेंट्स से उन्होंने किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
18: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी हॉस्पिटल ले जाया गया। अमित गुप्ता ने अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
19: हॉस्पिटल ने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
18: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोक कर मारपीट करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
20: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर FIR रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है।
18: लेकिन सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
3: और वहीं गणेश उत्सव का रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, जयपुर और कोलकाता तक शहर बप्पा की भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं, तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
21: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है, तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
22: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
21: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
23: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
21: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
0: भगत से कोई शरणागत आवे संपत्ति सब ही भरपूर।

0: और कल रात दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो ना तो भारत कभी भूल सकेगा और ना ही पाकिस्तान। भारतीय महिला टीम ने आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान की टीम जो कभी खिताब जीत ही नहीं पाई है उसके बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की शर्मनाक बेइज्जती सालों तक उन्हें याद रहेगी।
1: ताकत में भी तकनीक में भी तेवरों में भी हर मोर्चे पर आगे है हिंदुस्तान और ऐसे ही मुंह लटकाकर बार बार भागता रहेगा पाकिस्तान। एशिया कप ना हो गया पाकिस्तान की बेइज्जती का वार्षिक उत्सव हो गया है। इसमें पाकिस्तान को हर बार तेहरा झटका लगता है। पहला उसकी टीम ट्रॉफी जीत नहीं पाती, दूसरा भारत की टीम चैंपियन बन जाती है, तीसरा भारत को ट्रॉफी देने का उनका शौक कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि बार बार फजीहत कराने ये पहुंच क्यों जाते हैं, जब एक बार ये तय हो चुका है कि बीसीसीआई की कोई भी टीम पहलगाम हमले के बाद किसी पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी तो नहीं लेगी। इस बार मौका था एशिया कप का, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मंच सजा था। जब टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की बारी आई तो पहले ही चैंपियन टीम के खिलाड़ी एक एक करके मैदान से बाहर जा चुकी थी। काफी देर तक इस पर सस्पेंस बना रहा कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी देगी या नहीं। आखिरकार काफी देर तक इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी को मैदान छोड़ना पड़ा और मुंह लटकाकर वो बिना ट्रॉफी दिए ही लौट गए। बीसीसीआई का साफ कहना है कि इस मामले में दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। उनके लिए यही सम्मान की बात है कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था आतंकिस्तान की हरकतों की वजह से, जिसे समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं करीब एक साल पहले। यही एशिया कप था, यही चैंपियन देश था और यही चीफ गेस्ट थे, लेकिन टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली से राहुल रावत और नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद असली स्वाद।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: एक तो एक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: देखे जन्म पहला पहला कदम।
7: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
3: क्या गांधी किताबों के मुखपृष्ठ ही बनकर रहेंगे भविष्य के लिए? मेरी जनरेशन अभी भी आदर्श मानती है गांधी को, पर मेरे बाद वाली जनरेशन क्या गांधी में अपना आदर्श पुरुष देखेगी भी क्या?
4: गांधी के सिद्धांत अपराधियों के सामने कभी सफल नहीं होंगे। गांधी ने कोई नए काम तो किया नहीं, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत वहीं चलेगा जहाँ सरकार संवैधानिक चीजों को समझती है। और क्या लोग

0: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला। पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक। पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
1: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है।
0: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
1: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे, और भी पार्किंग अटेंडेंट से किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
0: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
1: उन्होंने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वालों से साथ मिलके एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
0: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोक कर मारपीट करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है।
2: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर FIR रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है, और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार FIR में हमने लॉज कर दी गई है, और उस FIR के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वो लिया जा रहा है।
0: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चर्चा के ना हो लागू, चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में जीत, सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। पार्टी दफ्तर में सीएम भजन लाल ने मनाया जश्न। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। गुरुग्राम में फोर्स रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट, मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं और उससे पहले दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी पिच तय कर दी है। बीजेपी सनातन के सहारे तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष को लगता है कि अगर वोट जातियों में बढ़ गया तो उनके लिए ज्यादा मुनाफे वाला होगा। जाति वर्सेस सनातन, वोटर क्या चुनेगा, हमारी पहली रिपोर्ट में देखिए।

0: सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: यूपी में 2027 के लिए बीजेपी का फॉर्मूला हिट, सनातन पूरी तरह फिट। बीजेपी के लिए चुनावों में हिंदुत्व ही चलेगा, विपक्ष जाति पर खेलेगा। 2027 में यूपी की चुनावी बिसात बहुत कुछ तय करेगी। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिनकी पूरी कोशिश है कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर यूपी में नया रिकॉर्ड बनाया जाए, और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, और उनकी भी कोशिश है कि तीसरी बार सत्ता से बाहर नहीं रहना है। इसीलिए दोनों अपने अपने मजबूत आजमाए हुए फॉर्मूले अपना रहे हैं। यूपी में बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है हिंदुत्व और सनातन। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने इसी सनातन के दम पर जीता। दूसरी तरफ विपक्ष ने पहले लगातार 4 चुनाव हारे और फिर 2024 में जातियों का सहारा लिया, और 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जातियों के इसी समीकरण से बीजेपी को यूपी में हराने में सफल रहा। लेकिन सवाल है कि 27 में क्या होगा? क्या अखिलेश यादव 10 साल के बाद वापसी कर पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? चुनावों में बस कुछ ही महीनों का वक्त है, ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने आजमाए हुए फॉर्मूलों पर चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सनातन की टोन पकड़ ली है, क्योंकि इसी सनातन और हिंदू वोट ने बीजेपी को अब तक सफल बनाया है।
0: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
1: योगी जानते हैं कि अगर इन सनातनी वोटों को बिखरने से बचा लिया तो 27 की बाजी पार लग जाएगी। यूपी में बीजेपी के लिए हिंदू वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोकनीति सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2017 में 47% हिंदू मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2022 में बढ़कर 54% हो गया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 3-4 दशकों से जाति और धर्म दो प्रमुख आधार रहे हैं। 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक करने का काम किया, जिसमें वो सफल भी रही और उसे इसका लाभ भी मिला। इसीलिए विपक्ष की पूरी कोशिश ये रहती है कि चुनाव धर्म से हटकर जाति पर चला जाए, और यही बीजेपी नहीं चाहती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हिंदुत्व की तोड़ के लिए ही पीडीए का नारा दिया है। हालांकि मौके के हिसाब से अखिलेश यादव इसे बदलते रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली पीडीए में पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़ा वोट है। बताया जाता है कि करीब 52% पिछड़ा वोट है, और अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें यादवों का तो पूरा वोट मिलता ही है, और पिछड़ों की बाकी जातियों के वोट में भी वो सेंध लगाते हैं। लेकिन अखिलेश की असली कोशिश है दलित वोट लेने की, जो मायावती की गैर सक्रियता से थोड़ा कंफ्यूज भी है और नाराज भी। 2024 के चुनावों में यह दिखा भी। लोकनीति सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला कि इंडिया गठबंधन को 25%, एनडीए को 24% और बीएसपी को 44% जाटव वोट मिला, जबकि नॉन जाटव वोट इंडिया गठबंधन को 56%, एनडीए को 29 और बीएसपी को सिर्फ 15% मिला। यानी जाटव वोट तो मायावती के पास अभी भी है, लेकिन बाकी दलित वोट उनके हाथ से खिसक कर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट है। अब अखिलेश यादव की कोशिश है मायावती के पास मौजूद जाटव वोट को भी अपनी तरफ करने की।
2: इसीलिए अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को अपने पाले में करना चाहते हैं। नतीजा 15 नवंबर को समाजवादी पार्टी आगरा में एक दलितों का महासम्मेलन करने जा रही है। अखिलेश यादव खुद उस सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। यानी कि सियासी संदेश साफ है कि 2024 में मायावती को जो बचा कुचा दलित वोट मिला था, अखिलेश यादव उस वोट को भी समाजवादी पार्टी के पाले में करना चाहते हैं, और उसी रणनीति का हिस्सा है और उसी रणनीति का नाम है पीडीए। इसको लेकर अखिलेश यादव सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं।
1: अगर यूपी का दलित वोट मायावती से खिसक कर अखिलेश यादव के पास आ जाएगा तो उनके लिए यूपी जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि करीब 20% मुस्लिम वोट तो उनके पाले में पहले से ही है। 2022 में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, जो 2017 में सिर्फ 46% था। समाजवादी पार्टी ने यह मुस्लिम वोट बीएसपी और कांग्रेस से लिया है। बीएसपी का मुस्लिम वोट घटा है 2017

0: 2017 में 19% मिला था, जो 2022 में सिर्फ 6% रह गया। कांग्रेस को भी 2017 में 19% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2022 में 3% रह गया। यूपी में 34 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 31 अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। इसीलिए अखिलेश बार बार पीडीए की बात करते हैं और अखिलेश के इसी पीडीए का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले से ही हिट फॉर्मूले हिंदुत्व और सनातन पर आ गए हैं।
1: सनातन धर्म की परंपरा में शिव की भक्ति भी हम सब के लिए वही है। जब हम भारत की बात करते हैं, शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनके पवित्र ज्योतिर्लिंग हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, रामेश्वरम तक, इस सांस्कृतिक एकता उन पावन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत की राजनीतिक सीमाओं को भी तय करती है। शिव की भक्ति जो तमिलनाडु के नागरिकों में है, वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी श्रद्धालु जनों के मन में है।
0: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: सनातन का एक महाकुंभ इस वक्त रायबरेली जिले में चल रहा है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे महाशिवपुराण हो रहा है और इसी शिवपुराण में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भले ये शिवपुराण कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में हो रहा हो, लेकिन इससे अवध बेल्ट की कम से कम 45 सीटों को साधने की पूरी योजना है।
0: कांग्रेस के गढ़ में समाजवादी पार्टी से आए नेता मनोज पांडे बीजेपी के लिए सनातन के वोट बटोर रहे हैं। ये रायबरेली है, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का महाशिवपुराण चल रहा है, यानी कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है। यहीं से योगी ने सनातन का महत्व प्रदेश और देश को बताया।
1: हमने धर्म को केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रखा, हमने उसे समाज की जीवन शक्ति के रूप में माना है, हमने उसको अपने कर्तव्य के साथ जोड़ा है, राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में उसको जोड़ा है। और यही कारण है कि राजनीतिक कमजोरियों के कारण मध्यकाल में भले ही देश विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए मजबूर हुआ हो, उस कालखंड में भी जब विदेशी आक्रांता भारत के धर्मस्थलों को, भारत की आस्था को रौंदने का कार्य करते थे, इन पावन कथा के माध्यम से, हमारे व्यासपीठ से सदैव जो धारा प्रस्फुटित होती थी, वह सामाजिक एकता के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकता को और आध्यात्मिक उन्नयन को आगे बढ़ाती रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही काम किया मध्यकाल में रामकथा के माध्यम से। उनको भी बहुत सारे प्रस्ताव आए कि अकबर के दरबार में आप भी चलिए, आपको भी नौ रत्नों में से सम्मान मिल जाएगा। जब उनके सामने प्रस्ताव आए, उन्होंने कहा अकबर कौन है? लोगों ने कहा है दिल्ली का बादशाह है, भारत का बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होता है? तो उन्हें समझाया कि बादशाह का मतलब राजा होता है। उन्होंने कहा भाई देखो, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे तो मान्यता है कि भारत का एक ही बादशाह है। उस समय भी उन्होंने कहा था मेरा तो एक ही राजा है, वह राम है।
0: रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के लिए यह आयोजन अपनी जमीनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। रायबरेली और आसपास के अवध के क्षेत्र में ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति हमेशा से सत्ता की दिशा तय करती रही है। ब्राह्मण चेहरे के बुलावे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कथा पंडाल में पहुंचना न केवल मंत्री के कद पर मोहर लगाता है, बल्कि सवर्ण और कोर हिंदू मतदाताओं के बीच एकजुटता का भी सीधा संदेश देता है।
3: और इसलिए मैं आपसे करवद आज कुछ नहीं कहूंगा, आप आ गए, इससे बड़ा कुछ हमें नहीं मिल सकता। ऊंचाहार को इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता, सनातन को इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता, एक एक हिंदू प्रेमियों को कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन आपने तो पूरे प्रदेश

0: देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है, थोड़ा से ऊंचा हार के ऊपर और आशीर्वाद हो जाएगा, इसका करंट अपने आप बढ़ जाएगा। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं और इस पीठ से और भगवान प्रभु से ये कामना करता हूं, जिस विकास की एक लंबी लकीर आपने खींच करके पूरे देश में बता दिया है कि कानून व्यवस्था देखना है तो उत्तर प्रदेश में जाइए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विकास का अनुसरण आज देश के अन्य राज्य कर रहे हों, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी कैबिनेट में मनोज कुमार पांडे की एंट्री सीधे दिल्ली से करवाई गई, लेकिन चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ का उनके मंच पर जाकर सनातन और हिंदू एकता का संदेश देना बताता है कि बीजेपी अंदर खाने के सारे मतभेद भुलाकर चुनाव लड़ना चाहती है।
2: गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? रायबरेली के ऊंचा हार में आस्था और सियासत का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे महाशिव पुराण करा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सियासी संदेश दिए जा रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो विपक्ष की जातीय गोलबंदी को भेदने की कवायद भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व आउटरीच के जरिए करने की कोशिश कर रही है। यूं तो ये एक महाशिव पुराण है, लेकिन भारी संख्या में उमड़ी महिलाएं, कलश यात्रा और सनातन के जरिए सियासी संदेश एक बात साफ करता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है और विपक्ष को सनातन का पाठ पढ़ाती फिलहाल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस सनातनी पाठ को लेकर पलटवार क्या होता है।
1: लेकिन विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि ये बीजेपी की वो पिच है जिस पर उतरकर वो अपना फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान जरूर करवा देंगे। समाजवादी पार्टी की दिक्कत ये है कि जो नेता ये आयोजन कर रहा है वो कभी उनके थे, अब वो धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कर रहे हैं।
3: नहीं देखिए, कहीं भी कथा होती है, मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहां भक्तों की बात करनी चाहिए, भक्ति की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर उस मंच को भी वो राजनीति का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि धर्म को राजनीति में लाना भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। भगवान के मंदिर पे पिच नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी यही करती है। राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो धर्म की राजनीति करते हैं उनका अयोध्या में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका मथुरा में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका काशी में क्या होने वाला था ये भी समझ में आ गया। तो भगवान महादेव ने बताया था कि सुधर जाओ, 5 राउंड तक हराया है, ज्यादा करोगे तो अगले 15 राउंड भी हराए जाएंगे।
1: मंच से कोई चुनावी भाषण तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रही है।
4: सनातन संस्कृति का फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा।
1: भले ही मौका शिवपुराण का हो, लेकिन बीजेपी इस बहाने से सनातन की लहर उठाना चाहती है। इस शिवपुराण के बहाने कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर, उन्नाव और बारामकी के हिंदू वोटों को एक करने की कोशिश है। गौर करने वाली बात यह है कि इन जिलों में कुल 45 विधानसभा सीटें हैं।
0: सनातन पर टिप्पणी करते हैं और कभी कभी नकली सनातनी बन जाने का काम करते हैं। सनातन क्या होता है, आस्था क्या होती है, धर्म क्या होती है, अगर इसे देखना है आए इस महाशिव पुराण कथा में जहां राकेश पासी भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं।
5: विशेष में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
5: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: मिनट से चार्ज हुआ यार।
7: ओला बैट किसका है?
8: टाटा एआईजी है तो भरोसा है।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: श्रद्धालुओं पर बरसती फूल की पंखुड़ियां, सिर पर कलश उठाए हजारों की संख्या में महिलाएं और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता ऊंचा हार का विशाल पंडाल, जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ था। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है। ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का है, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस मंच से कोई चुनावी भाषण नहीं हुआ, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति है। दरअसल जिस ऊंचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके।
1: ये एक महाशिव पुराण है, लेकिन भारी संख्या में उमड़ी महिलाएं, कलश यात्रा और सनातन के जरिए सियासी संदेश एक बात साफ करता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है और विपक्ष को सनातन का पाठ पढ़ाती फिलहाल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस सनातनी पाठ को लेकर पलटवार क्या होता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: एक जो खुशी का पल था, जो मेंस टीम जो थी इंडिया की एशिया कप फाइनल पिछले साल जब जीती थी तब भी ट्रॉफी नहीं ले पाई थी, मना कर दिया, और इस साल हमने देखा इस बार दोबारा इंडिया की विमेंस टीम ने एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, एक बार फिर इंडिया ने मना कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने से। वजह बता सकते हैं सर?
5: अब जब वजह के लिए कुछ दूसरा नहीं है, यहाँ मैं कोई बड़ा चीज नहीं बोलने जा रहा हूँ, हमारा एक ही ये है कि जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उसका बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका बाद हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अपना परदेसी का साथ, जो हमारा साथ का देश है उनका साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया, तो उसके लिए हमारा देश में यही था कि हम लोग उस देश का साथ कोई गेम नहीं खेले। उसका बावजूद बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फॉलो किया, और एसीसी का एक पुराना पॉलिसी है, जब जैसा एसीसी का चेयरमैन था उस टाइम में भी हम लोग का यही नियम था कि जो टीम एशिया कप का चैंपियन होगा या रनर्स अप होगा वो देश का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी ट्रॉफी देगा, वो एक अनरिटन नॉर्म्स था। ये सारे जैसा जब प्रेसिडेंट था एसीसीआई वो ट्रॉफी नहीं दिया था जब बांग्लादेश जीता था या श्रीलंका जीता था, सो वो एक अनरिटन ट्रेडिशन है, अनरिटन नॉर्म्स है, सो वो, लेकिन उसको एक डेढ़ साल पहले जब एशिया कप में भारत चैंपियन हुआ मेंस में, उस टाइम पे वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्य है या प्रेसिडेंट है उन्होंने देने के लिए गया था, लेकिन हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिजर्वेशन है उनसे हमको ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि हमारा भारत का हर खिलाड़ी और हर देश का वासियों का एक ही है कि देश एक नंबर पे आता है हमारा,

भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगम में जीत, केवल एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। पार्टी दफ्तर में सीएम भजन लाल ने मनाया जश्न। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: से आपको खबरदार करने का। आज 2029 के चुनाव से लेकर राजस्थान में हुए निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 2029 के चुनाव से पहले दो यूसीसी लागू करने की अमित शाह ने समय सीमा तय कर दी है। उस मिशन को विपक्ष से पहले साथी दल ही खबरदार करते दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां निकाय चुनावों की परीक्षा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पास हो गए हैं। बीजेपी के लिए इस जीत के क्या मायने हैं आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आज हमारी हिंदी दिवस से जुड़ी है। एमपी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े प्रयोग की पड़ताल से जुड़ी रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये कहा कि साल 2029 तक देश के 21 एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अमित शाह के इस बयान के बाद अब सबकी नजरें एनडीए के दो बड़े नेताओं पर टिक गई हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। क्या यूसीसी पर सरकार को समर्थन देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही नेता यूसीसी को लागू करने के खिलाफ रहे हैं। दोनों नेताओं ने अब तक खुलकर अपनी राय भी जाहिर की है। इसी वजह से खबरदार करता सवाल यह है कि क्या बीजेपी जिस मुद्दे को 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है उसमें उसे दोस्तों का साथ मिलेगा?
1: क्या देश में यूसीसी लागू करने का टाइम आ गया है?
2: मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता?
1: धारा 370, राम मंदिर और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बीजेपी के इन तीन कोर मुद्दों में से मोदी सरकार दो को पूरा कर चुकी है। अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की है।
3: भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?
1: भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। सबके अपने अपने धर्म के मुताबिक कानून है, तो धर्म निरपेक्षता समाहित संविधान में समानता के अधिकार आज भी जख्मी होते हैं। ऐसा आरोप लगाकर बीजेपी इसे संविधान का उल्लंघन बताती रही है
3: कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
1: बीजेपी यूसीसी को लागू करना चाहती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन वो ऐसा कब तक करेगी इसका जवाब भी अब आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि साल 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: अमित शाह के इस बयान में सबसे अहम बात ये कहना है कि सभी एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मौजूदा राजनीतिक हालात में ये संभव है, जब बीजेपी संसद में 2014 के बाद सबसे कमजोर नंबरों के साथ सरकार चला रही है।
3: कानून बनाकर तीन तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है और हमारा मिशन अभी भी जारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है।
1: पीएम मोदी कह चुके हैं कि 2014 के बाद से वो लगातार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और गुलामी की मानसिकता पर प्रहार कर रहे हैं ताकि 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसमें यूसीसी काफी अहम है।
3: धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं।
1: पीएम कह चुके हैं कि वो यूसीसी को लेकर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। अमित शाह ने उसकी समय सीमा बता दी है, लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर मोदी सरकार ऐसा करेगी कैसे? विपक्ष से भी उसे जोरदार विरोध का सामना करना पड़ेगा।
5: But there is no documentation about what this civil code is, about what they are proposing. So until something is on the table, it is very difficult for me to comment on something that is in the air. But I will tell you that I am firmly committed to the idea that we are going to protect your right, your culture, your religion, your tradition. There is no compromise on that.
1: राहुल कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के हक की रक्षा करेंगे। वहीं सरकार कह रही है कि अब यूसीसी का वक्त आ गया है। इससे ये तय हो गया है कि 2029 के चुनाव से पहले ही इस पर जोरदार घमासान होना तय है। बीजेपी की तरफ से ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
6: यूसीसी कोई इक्वालिटी के लिए बीजेपी नहीं कर रही है, सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वो यूसीसी को अपने अपने जहां प्रदेशों में वो सरकार में वो यूसीसी लाए हैं।
0: अमित शाह के ऐलान के बाद एनडीए में यूसीसी पर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा अमित शाह से बात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूसीसी को लेकर जेडीयू की आपत्तियों और एनडीए सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।
7: यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय झा जी ने स्वयं ये जानकारी भी दी है।
0: यूसीसी को लेकर नीतीश कुमार पहले ही विधि आयोग को पत्र लिखकर कह चुके हैं कि यूसीसी को जल्दबाजी या जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जेडीयू चाहती है कि जो भी हो सोच समझ कर हो, सबसे पूछ कर हो। यूसीसी पर अमित शाह के बयान पर टीडीपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूसीसी पर टीडीपी का पुराना रुख भी सावधानी भरा रहा है।
1: दो महीने पहले मध्य प्रदेश यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पास करने बिल पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया। लेकिन रविवार को मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उससे तय हो गया कि 2029 में होने वाले चुनावों में यूसीसी बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिससे इस पर सियासी घमासान तय है।
8: उस विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हो सकते ना हैं, और हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है।
9: भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है पिछले 12 सालों में जो मुसलमानों के खिलाफ है। क्या यूसीसी से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी?
10: आप चुनाव के लिए राजनीति मत करिए, और ये करने के बावजूद भी अमित शाह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने।
1: लेकिन विपक्ष से पहले सरकार को अपने सहयोगियों को साथ में लेना होगा, क्योंकि जेडीयू के साथ उसकी बिहार में सरकार है, जिससे यूसीसी को लेकर शाह का प्लान मंजूर होगा, ये बड़ा सवाल है।
11: हम लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसको तो हम लोगों ने शुरू से कहा, चाहे धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए या फिर कॉमन सिविल कोड को नहीं थोपना चाहिए।
1: जेडीयू की ये पुरानी राय है, इसीलिए समान नागरिक संहिता पर अमित शाह के बयान ने उसे पसोपेश में डाल दिया है। शाह के बयान के बाद बिहार में जेडीयू की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया भी आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू बिहार में इसे किसी भी सूरत में लागू होने नहीं देगी।
12: हम लोग लगातार इसके विरोध में हमने पहले भी जब ये संसद में पास हो रहा था, हमने उसी समय कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हम उसका समर्थन किए थे उस बिल का, लेकिन बिल के समर्थन के साथ साथ हमने कहा था कि बिहार राज्य में लागू नहीं होगा, और आज तक हम उसी पर कायम।
1: जेडीयू की तरह टीडीपी भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है, ये राय इनकी बहुत पुरानी है। यही कारण है कि वाजपेयी सरकार के समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया था और राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद विषयों को उससे बाहर रखा गया था। साल 2023 में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी रहेगी। 9 जून 2024 को नायडू के बेटे लोकेश नायडू भी कह चुके हैं कि तेलुगु देशम पार्टी ये पक्का करेगी कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता जैसे विवादित मुद्दों पर एक तरफा फैसले ना लिए जाएं। लेकिन ये साल 2024 से पहले के बयान है, इसके बाद हालात काफी बदल गए हैं। बिहार में बीजेपी का अपना सीएम है, राज्य में बीजेपी जेडीयू के बिना भी सरकार चला सकती है। वहीं टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के आने से एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, इससे टीडीपी और जेडीयू पर बीजेपी की निर्भरता कम हुई है।
13: इससे बड़ा सुखद समाचार देश के लोगों के लिए नहीं हो सकता। जो कॉमन सिविल कोड ये लागू करना, ये तो जब हम तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ।
14: यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना। यूसीसी का मतलब है कि एजेंडे की राजनीति को आगे बढ़ाना। यूसीसी का मतलब है कहीं ना कहीं देश के अंदर वैसी व्यवस्था कायम करना जिससे सभी धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होना होगा। देश के अंदर उस तरह की व्यवस्था कायम करना जो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के लोगों के लिए उचित नहीं है।
1: लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने सभी एनडीए राज्यों में यूसीसी लागू करने को लेकर भरोसा जताया, उससे संकेत मिलता है कि बीजेपी समान नागरिक संहिता पर इन दोनों दलों को विश्वास में लेकर ही कदम आगे बढ़ाएगी। दोनों दलों को उत्तराखंड का हवाला दिया जाएगा, जहां लंबे विचार विमर्श के बाद समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले हक से भी बीजेपी अपनी बात मजबूत करेगी।
3: आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या
1: जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों ही दल कई विवादास्पद मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन कर चुके हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन बिल पर टीडीपी ने संसद में पूरा समर्थन दिया था। जेडीयू ने शुरुआत में राज्यसभा से वॉकआउट किया था, लेकिन बाद में सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराने के दौरान जेडीयू और टीडीपी दोनों ने बीजेपी के समर्थन में मतदान किया था। तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक पर टीडीपी ने बीजेपी का समर्थन किया था। वहीं जेडीयू के बहिष्कार से परोक्ष रूप से बिल पारित होने में मदद मिली थी। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाए गए संशोधन विधेयक पर जेडीयू और टीडीपी दोनों ने संसद में केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन किया। वहीं टीडीपी ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों ही दल कई विवादास्पद मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़े होते रहे हैं। क्या इसीलिए अमित शाह ने पूरे भरोसे के साथ सभी एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी के लागू होने की समय सीमा दी?
0: यूसीसी का मुद्दा बीजेपी 2029 को लेकर ही आगे नहीं बढ़ा रही। पार्टी कुछ महीनों बाद हो रहे यूपी के चुनाव में भी इसे अहम मुद्दा बना सकती है। यहीं पर इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। यूपी में देश के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष को खबरदार करना शुरू किया तो ध्रुवीकरण से विपक्ष को नुकसान होना तय है।
15: दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है, और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं।
1: 2029 के चुनाव से पहले अमित शाह ने एनडीए शासित राज्यों में जो यूसीसी लागू करने की बात कही है, उसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां पर इसे योगी आदित्यनाथ लागू करेंगे।
15: हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी चाहिए।
1: 2029 के चुनाव से पहले 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां पर देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब यूसीसी नया मुद्दा बनने जा रहा है, जिसके सहारे बीजेपी विपक्ष को खबरदार करेगी?
16: भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है, अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे।
1: 2027 से पहले अगर योगी सरकार यूसीसी राज्य में लागू करती है तो इससे विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी को घेरने का उसे बड़ा मुद्दा हाथ लगेगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इसे लेकर अभी से अलर्ट हो गई है।
17: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का घोषणा पत्र 2024 में हुआ था। 2024 के बाद हम 26 में बात कर रहे हैं। 2014 से 19 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब नहीं लागू किया। 19 से 24 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब नहीं लागू किया। अब जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, इसका ठीकरा विपक्षियों पे डाल रहे हैं।
18: यूसीसी लागू हो ना हो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये परंपराओं का देश है, लोग अपनी परंपराओं को मानेंगे, तो आप कुछ भी लागू कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है।
19: सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो बाकी जो सारे राज्य हैं उनके अंदर क्या होगा, क्या वोट
18: मैं ये तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, इसमें इसका कोई मतलब नहीं। महंगाई पे बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, इन चीजों पर बात करते रहोगे जिनका कोई महत्व नहीं है।
1: आज से 3 साल पहले जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से चर्चा तेज हुई थी, तब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी यूसीसी के खिलाफ है।
20: तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं, और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ला। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने?
1: 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुद्दों का मुकाबला करने में कामयाब रही, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके लिए ऐसा कर पाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यूसीसी के पीछे मुस्लिम मतदाताओं के साथ पार्टी के रिश्ते और विपक्षी राजनीति की दिशा भी जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ अगर विधानसभा चुनावों में यूसीसी को लेकर आक्रामक हुए तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी। पहली चुनौती ये कि वो अपने कोर वोटर यानी कि मुस्लिम समुदाय में अपना संदेश साफ दे, और दूसरी चुनौती ये है कि वो इस मुद्दे का धार्मिक ध्रुवीकरण होने से रोके। लेकिन उसके सामने योगी खड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं।
15: इस संबंध में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने यहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लॉ कमीशन इसको देख रहा है।
1: अखिलेश की एक बड़ी चिंता ओवैसी के रूप में भी होगी, जो यूसीसी पर उनसे ज्यादा मुखर चुनाव प्रचार करेंगे। यूसीसी से लेकर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश की नरमी को कटघरे में खड़ा करेंगे, तब यूसीसी पर अखिलेश कितनी बड़ी लाइन ले पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा।
2: भारत के वजीर आजम क्या बोलते हैं कि एक एक भारत एक इलेक्शन, एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक कल्चर, एक भारत एक मजहब, एक भारत एक शनाख्त। अब हद ये हो गई कि रुके ने उन्होंने बोले ने एक भारत एक फर्टिलाइजर।
1: 2027 की सियासी टक्कर में यूसीसी की एंट्री राज्य में ध्रुवीकरण को पहले से कई गुना ज्यादा तेज कर सकता है। बीजेपी के सामने 2022 में मिली जीत को दोहराने की चुनौती है। वहीं योगी 2027 में ये साबित करना चाहेंगे कि 2024 में जो हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। इसलिए अब एक तरफ बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर विकास परियोजनाओं के जरिए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन हिंदुत्व के करीब रहकर।
16: ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी, राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: बीजेपी जानती है कि 2027 का चुनाव जीतने के लिए उसे सरकार के कामकाज को जनता के पास पहुंचाने के साथ संगठन और चुनावी तैयारियों पर पहले से ज्यादा फोकस करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या इस तैयारी में 2027 से पहले यूपी में यूसीसी लागू करना भी शामिल है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान में हुए निकाय चुनावों के नतीजों की। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है।
21: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
22: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
21: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
23: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
21: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
22: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
21: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
23: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
21: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली, क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाम लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
23: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस 2.5 साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
21: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
23: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
21: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी को 5 नगर निगम क्षेत्र में जीत मिली है और 4 में मामला फंस गया है, किसी को वहां बहुमत नहीं मिला है। वहीं एक जगह निर्दलीय ही सबसे ज्यादा जीते हैं। अब ताजा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता शरद कुमार के पास। शरद, ये कौन से इलाके हैं जहां पर मामला फंसा, और खासकर निर्दलियों के पक्ष में जाने वाला इलाका?
23: देखिए श्वेता, निर्दलियों के पक्ष में जो इलाका गया है वो बड़ी वजह रही। यहाँ पर यूजीसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला, अंडर करंट रहा। अगड़ी जातियों में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो निर्दलीय के साथ गया या घर बैठा, जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं जीती तो बीजेपी भी नहीं जीती। आप अजमेर देख लीजिए, जोधपुर देख लीजिए, या फिर पाली जो गढ़ है बीजेपी की वहां पर देख लीजिए, ये हंग रहे। हालांकि भरतपुर में कांग्रेस चूंकि खड़ा ही नहीं हुई थी वहां पर, तो वॉकओवर था, तो निर्दलीय हुए थे, निर्दलीय बीजेपी के साथ चले गए, तो भरतपुर को मान सकते हैं कि बीजेपी के खाते में गया। लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें अगर बीजेपी उलझी है तो उसका बड़ी वजह रही है यूजीसी बड़ा मुद्दा बनना। लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि जो नगर पालिका जो 252 थे उसमें से 144 में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस केवल 90 के आसपास सिमट कर रह गई। वहां भी देखिएगा आप, 16 निर्दलीय हैं, तो छोटे कस्बों में बीजेपी का जनाधार बढ़ना ये दिखा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे जगहों पर अपने को मजबूत किया है जहां पर पहले कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। जिला परिषद में भी 47 में से 21 में आगे है, और कांग्रेस केवल 17 पे, वहां पर भी 9 निर्दलीय हैं। निर्दलीय बहुत जीते हैं श्वेता। हालांकि जो 2.5 साल का एंटी कंपेंसी था उसे भजनलाल शर्मा ने अपनी मेहनत के बदौलत और पार्टी ने संगठन के बदौलत इसे जीत में बदला है।
4: सही बात है, केवल जीत किसकी हुई है उसके आधार पर नहीं, बल्कि शरद जिस तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं। मंथन आगे होगा। बहुत शुक्रिया शरद कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां सियासत हर चीज पर हो रही है। वाराणसी में सड़कों पर पानी भरा तो अखिलेश ने दिल्ली से लखनऊ तक पर तंज कसा, लेकिन वाराणसी के मेयर ने यह कहकर चौंका दिया कि इसके पीछे साजिश है, काशी को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है।

0: 12 तारीख को वाराणसी की सड़कों के डूबने पर विदेशी पर्यटकों के गंदे पानी से गुजरने पर अखिलेश यादव तंज कसते हैं। अपने ट्वीट में प्रधान नगरी का जलमग्न विकास लिखकर काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी को जलमग्न मुख्य नगरी गोरखपुर जैसे बनाने के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए हमला करते हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद वाराणसी के मेयर सामने आते हैं और दावा करते हैं कि सीवर ब्लॉक कर अव्यवस्था फैलाने की साजिश के पीछे समाजवादी पार्टी है।
1: लगातार 10 दिन से जैसे बुखार लगातार वायरल चल रहा है, वैसे ही लगातार सोशल मीडिया पर नगर निगम को जलकल को बदनाम करने के लिए एक अभियान छिड़ा हुआ है।
0: ये वही बालू से भरी बोरियां हैं जिन्हें वाराणसी की सीवर लाइन से निकालने का दावा वाराणसी नगर निगम की तरफ से किया गया। कहा गया कि सीवर लाइन में सीमेंट बालू की बोरियां, पत्थर और लकड़ी का बुरादा फेंककर बरसात के मौसम में शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची गई। वाराणसी में बीते दिनों सब जगह पानी भरा तो सीवर लाइन की सफाई की गई, वहां से जो जो मिला उसने प्रशासन को चौंका दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर यहां बोरियां किसने फेंकी, क्या जानबूझकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश हुई।
1: कई जगह ये देखने के मिला है कि सीवर में सीमेंट का बोरा रख के उसको सीवर जो हमारा मेन लाइन है उसको जाम कर दिया गया। आज देखिए अभी हम लोगों ने सुबह ये हमारे कर्मचारियों ने ये हमारा निकला हुआ है सीवर का बोरा, ये देखिए ये हमारा पूरा सीवर का बोरा एक ही कंपनी का ये किया जा रहा है, ये पूरा बोरा यहाँ रखा हुआ है। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन लगातार 10 दिन से जैसे बुखार लगातार वायरल चल रहा है वैसे ही लगातार सोशल मीडिया पर नगर निगम को जलकल को बदनाम करने के लिए एक अभियान छिड़ा हुआ है।
0: वाराणसी में सीवर चोक होने की शिकायतों के बाद नगर निगम की टीम ने जब अलग अलग इलाकों में सीवर लाइनों की सफाई शुरू की तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए। सीवर लाइन में सामान्य कचरे की बजाय बड़ी मात्रा में बालू, पत्थर और लकड़ी का बुरादा मिला। शिवाला इलाके में सफाई के दौरान करीब 12 बोरी बालू सीवर लाइन से निकाली गई।
2: बीते दिनों वाराणसी में जहां लगातार हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी तो नेताओं के लिए भरपूर सियासत का मौका भी लेकर आई। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो और वाटर लॉगिंग की समस्या जब वायरल हुई तस्वीरों के जरिए तो नगर निगम ने इसकी साफ सफाई कराई, जांच कराई और खुद मौके पर पहुंचकर वाराणसी के मेयर और नगर आयुक्त ने बनारस की छवि को खराब करने के पीछे बड़ी साजिश की बात कही और कहा कि जानबूझकर सीवर को चोक किया जा रहा था मलबों के जरिए, कुओं के जरिए और दर्जनों बालू भरी बोरियों के जरिए। इतना ही नहीं, भेलूपुर थाने में अधिशासी अभियंता नगर निगम भेलूपुर की तरफ से मुकदमा भी अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत करा दिया गया।
0: इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।
3: कई बोरी मलबा इस मैनहोल के अंदर मिला है जो सामान्यतः किसी भी तरीके से किसी मैनहोल के अंदर जाने का कोई साधन नहीं है। एक ही तरीके के रंग के अंदर बोरी के अंदर मलबा, निर्माण सामग्री, गिट्टी, बालू सब डालकर मैनहोल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि चोक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मैनहोल से ये सामग्री निकाली गई है पीछे के क्षेत्र में जहां भी सीवेज की समस्या थी सब क्लियर हो गया।
0: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई इस घटना ने तब सियासी रंग ले लिया जब शहर के मेयर ने इस बहाने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल उठा दिया।
4: शिवाला पे, दुर्गा कुंड पे, ये हमारे क्या कहते हैं बेनिया पे, ये जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वीडियो आ रहा है वहीं पे हम लोग जो जांच कर रहे थे यही चीजें पाई जा रही है। मुझे लगा अखिलेश यादव जी अगर ट्वीट करें इतनी छोटी बातों को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई सूचना उनको दे रहा है, लेकिन जो सूचना का स्रोत है वो बहुत बिना जानकारी का है और ये अच्छी बात नहीं।
0: वाराणसी के मेयर की तरफ से ये आरोप लगाने के बाद अखिलेश की तरफ से सीधा पलटवार किया गया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपाइयों का एक घिसा पिटा फॉर्मूला है, खुद गलत काम करो, दूसरों को बदनाम करो। 2027 के चुनाव से पहले छोटी से छोटी बात पर राजनीति हो रही है। यह मामला तो वाराणसी से जुड़ा है जिसके चितईपुर में महिलाओं का सड़क पर उतरकर बदहाली और पानी भरने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच काशी में पानी भरने के पीछे साजिश की बात से इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं वाराणसी के मेयर के बयान से सियासत यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच नए विवाद पर जंग छिड़ गई है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
5: आज हिंदी दिवस है। इस दिन हिंदी के सम्मान और हिंदी को बढ़ावा देने की बातें खूब होती हैं। सरकारी दफ्तरों में हिंदी पखवाड़ा तक मनाया जाता है। 3 साल पहले मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का बड़ा प्रयोग शुरू हुआ। करोड़ों रुपए खर्च हुए, हिंदी में किताबें तैयार हुई, खूब प्रचार हुआ। लेकिन अब जब इस प्रयोग की जमीन पर आकर पड़ताल की गई तो तस्वीर परेशान करने वाली है। हिंदी में सिलेबस वाले कोर्स को छात्र नहीं मिल रहे, तो वहीं हिंदी की जो किताबें बिकनी चाहिए थी वहां गोदामों में किताबें धूल खा रही।
0: साल 2022 यानी आज से 3 साल पहले मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने का फैसला सरकार लेती है। इसे लेकर तर्क दिया गया था कि इससे हिंदी भाषी छात्रों को आसानी होगी, लेकिन तभी छात्रों ने सरकार को इसे लेकर खबरदार कर दिया था।
6: हमारी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हम किसी का इलाज करेंगे, उस टाइम पे हम अगर हिंदी पर्चा लिख के देते हैं तो वो सामने वाला हमको इस तरह का समझेगा कि नहीं समझेगा, वो सबसे बड़ी बात आती है। वो अगर हमें नहीं समझेगा इस स्तर का तो वो हमारे पास आएगा ही नहीं।
7: ये फैसला जो है सिर्फ हमारे एमपी में ये एमबीबीएस कराने का, लेकिन हम एमपी से हटके मुंबई
8: तो
7: चले जाए कहीं भी।
8: देश में इस तरह का फैसला लागू होना चाहिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको हिंदी में एमबीबीएस भी कराया जाए और एमडी और एमएस भी।
7: लेकिन फिर हम इंडिया से बाहर नहीं जा सकते ना, हमें तो इंडिया के बाहर भी जाना है, वहां भी प्रैक्टिस करनी है, हमें सिर्फ इंडिया में बन के थोड़ी ना रहना है।
0: 3 साल पहले छात्रों ने सरकार को

0: बात सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि अगर सरकार उनकी सुन लेती तो हिंदी में मेडिकल की ये किताबें गोदाम में धूल नहीं खाती, मेडिकल कॉलेजों और लाइब्रेरी में होती। लेकिन हकीकत ये है कि ये गोदाम में पड़े पड़े धूल खा रही है। ये तस्वीरें सिर्फ किताबों के ढेर की नहीं है, ये सवाल है उस प्रयोग पर जिसे बताया तो ऐतिहासिक था लेकिन 3 साल बाद भी सफल होता नहीं दिखता।
1: हिंदी में छपी मेडिकल की किताबें हैं, ये एनाटॉमी है, शरीर रचना विज्ञान, आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। मेडिकल की पढ़ाई, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले हिंदी में शुरू की थी, ये देखिए मेडिकल बायोकेमिस्ट्री प्रथम हिंदी संस्करण। तो ऐसी तमाम किताबें ये जो आप देख रहे हैं पीछे, जो आप ढेर के ढेर देख रहे होंगे, छत छू रहे हैं ढेर अब किताबों के। और इस ये देखिए शल्य चिकित्सा, ये किताब लिखी है, शल्य चिकित्सा सिद्धांत और अभ्यास। ऐसी तमाम किताबें जो मध्य प्रदेश जिसने जोर शोर से प्रचार किया था कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, आखिर 4 साल के भीतर स्थिति आ गई है कि ये देखिए किताबों पे धूल, देखिए आप धूल देख रहे हैं आप ये किताबों पे, आप इससे अंदाजा लगाएंगे ये धूल खा रही है किताबें।
0: मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने के सपने दिखाए गए, अंग्रेजी की टेक्निकल किताबों का हिंदी में अनुवाद करवाया गया, विशेषज्ञों को पेमेंट देने से लेकर प्रिंटिंग पर भी पैसा लगा। लेकिन किताबें तैयार होने के बाद सामने आया सबसे बड़ा सवाल, इन्हें पढ़ेगा कौन? मांग कम हुई तो पब्लिशर्स का पैसा स्टॉक में फंस गया, किताबें छप गई लेकिन खरीदार नहीं मिले, और भोपाल के मनीष जैन जैसे पब्लिशर फंस गए जिन्हें सरकार ने साल 2022 में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए किताबें पब्लिश करने का काम सौंपा। सरकार के उत्साह को देखकर मनीष ने ये सोचकर बड़ा निवेश किया कि हिंदी तकनीकी शिक्षा का बाजार तैयार होगा। लेकिन अब नौबत ये है कि स्टॉक छापना मुश्किल हो गया, कारोबार सिकुड़ गया, करोड़ों रुपए का बिना बिका स्टॉक धूल फांक रहा है, साथ ही प्रकाशकों का भुगतान अटका है सो अलग।
2: शुरुआती दिनों साल में जो मध्य प्रदेश सरकार ने किताबें खरीदी उसके बाद किसी भी राज्य से, हमने हर राज्य से संपर्क किया पर किसी भी राज्य ने एक भी पुस्तक खरीदने में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इन किताबों की क्वालिटी बिल्कुल इंग्लिश की ही रखी गई, प्राइस भी उतनी ही थी, इसलिए हमको थोड़ा सा इन किताबों की ज्यादा छापना पड़ा था उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। हमने तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए का निवेश किया था, 5,000 किताबें हमने लगभग छापी थी जिसमें से आधी किताबें आज भी हमारे पास हैं
1: जी। क्या लागत होगी जो गोदाम में इस वक्त किताबें पड़ी हैं, इनकी कीमत कितनी होगी?
2: सर 9 से 10 करोड़ रुपए।
0: कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, छात्र संगठनों की माने तो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने के दावों के बीच कई जगह छात्रों की रुचि ही नहीं बन पाई, क्योंकि छात्र मेडिकल से पहले अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें डर है कि क्या हिंदी माध्यम का छात्र ग्लोबल कम्पिटिशन में अंग्रेजी माध्यम के छात्र के बराबर खड़ा हो पाएगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च मेडिकल साइंस इंटरनेशनल जर्नल और ग्लोबल एकेडमी, इन सब में अंग्रेजी का दबदबा अभी मजबूत है। तो छात्र के सामने सवाल साफ है, आज हिंदी में पढ़ें या उस भाषा में पढ़ें जिसमें उसे कल अपना करियर बनाना है।
3: मध्य प्रदेश की सरकार शायद ये भूल गई थी कि मध्य प्रदेश हो या देश हो या विश्व में कोई भी देश हो, किसी भी देश में जो मेडिकल फील्ड की टर्मिनोलॉजी रहती है वो हिंदी में काम नहीं आती है, वो इंग्लिश में ही काम आएगी। अब जिस तरीके से मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हम लीवर को लीवर ही बोल सकते हैं, अगर यकृत बोलेंगे तो ना आम आदमी समझेगा ना विदेश में कोई व्यक्ति समझेगा। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी छात्रों ने MBBS की पढ़ाई हिंदी में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, जिससे कि आज हालात ये हैं कि MBBS की जो पढ़ाई हिंदी में करवानी थी सरकार को, वो सिर्फ कागजों में कागजी कार्रवाई होकर रह गई है।
0: आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदी सिलेबस को छात्रों का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। साल 2022 में इसकी शुरुआत के बावजूद, साल 2024-25 में हिंदी में MBBS कोर्स होने के बावजूद एक भी छात्र ने हिंदी में परीक्षा नहीं दी, जबकि 2025-26 में कुल मेडिकल सीटों के महज 10% छात्रों ने ही हिंदी में परीक्षा दी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल भी मानते हैं कि मौजूदा हालात में मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी का ही दबदबा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल ने इसकी वजह भी बताई, कहा कि शुरुआत में मेडिकल का साहित्य ग्रीक में होता था, इसलिए अंग्रेजी में जब इसकी शुरुआत हुई तब ठीक ऐसी ही कठिनाइयां आई थी जैसे आज हिंदी को आ रही है।
4: शुरुआत में हम एक बात स्वीकार करते हैं कि मेडिकल लिटरेचर बहुत मजबूत है इंग्लिश में, हम उसमें बहुत कमजोर है अभी, लेकिन धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, हम भी मजबूत हो जाएंगे। शुरुआत में तो मेडिकल लिटरेचर पूरा ग्रीक और लैटिन में था, जब अंग्रेजी में हुआ तो शुरुआत में उनको भी यही दिक्कत आई थी, आज हमको भी आई है। तो पहले दिन से शुरुआत शुरू से ही होती है, कोई नए काम में विरोध भी होता, आज हमारी नकल करते हुए दूसरे स्टेट भी कर रहे हैं।
0: विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी के

0: मान की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम हिंदी को सिर्फ गौरव की भाषा बनाना चाहते हैं या उसे रोजगार, रिसर्च और उच्च शिक्षा की वास्तविक भाषा भी बनाना चाहते हैं। हिंदी दिवस पर डर यही है कि हिंदी के प्रति हमारा बहुत सा प्रेम कहीं सिर्फ दिखाने वाला प्रेम बनकर ना रह जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: अब बात 3 साल से मानदेय के लिए भटक रही महिला कर्मचारियों की, जिन्होंने अफसरों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। जब इन महिला कर्मचारियों की किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने आज तक से कहा कि खबरदार किया जाए। जिनके समर्थन में अफसरों को खबरदार करती ये रिपोर्ट देखिए।
0: मैनपुरी में अफसरों को खबरदार करती ये महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM से जुड़ी हैं। इनके हाथों में बैनर और चेहरे पर आक्रोश की वजह 3 साल का लंबा इंतजार है, जिसने इन्हें सड़कों पर आकर नारेबाजी के लिए मजबूर कर दिया। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, जिसमें ये अपने बकाए का पूरा हिसाब किताब लिख कर लाई, जो इन्हें पिछले 3 साल से नहीं मिल पा रहा। इनके मुताबिक मिशन अंत्योदय का 34,920 रुपए, BPRP का 29,970 रुपए, लॉकर्स के 31,200 रुपए और लखपति CRP का 20,900 रुपए का मानदेय लंबे समय से बकाया है। इसके अलावा समूह सखियों का 3 साल का करीब 79,200 रुपए का मानदेय भी दबा कर रखा गया है। आरोप है कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर मानदेय घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है।
2: 9 ब्लॉक हैं, उनमें जितने भी CLF आते हैं, एक ब्लॉक के अंदर 4 CLF आते हैं, तो उन सभी CLFों की जांच करी जाए, और क्योंकि CBI जांच की जाए, जिला स्तर से सभी भ्रष्टाचारी हैं उनको हटाया जाए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं DMM, BMM, DC वगैरह कोई भी है उनको हटाया जाए। बस मेरी यही मांग है कि इन भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल हटाया जाए। बस
3: नहीं, आपने DM, CDO वगैरह शिकायत की
2: तो कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। साच बोलते हैं कि साच लेके आओ, मैं साच लेके आती हूँ, मैं मेरे प्रूफ है, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। लेकिन जो पहले मानदेय निकल गया है उसके साच कहाँ है, वो हमें भी दिखाएं।
4: हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, पूरा सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, समूह बनाते हैं, फिर उसके बाद में ग्राम संगठन में जोड़ते हैं, फिर CLF पे ले जाते हैं। जब मेरे मानदेय की बात आती है तो मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। हम 22 से काम कर रहे हैं, अभी तक कोई एक रुपया नहीं दिया गया,
3: अभी तक नहीं मिला,
4: नहीं मिला 22 से, सन 2022 से।
3: हाँ, अधिकारी के पास जाती तो क्या जवाब देते
4: हैं? अधिकारियों के पास जाते वो ये कहते हैं कि अभी आया ही नहीं ऊपर से, और जब आएगा तब दे देंगे, और फिर जब CLF पर जाते हैं तो वहाँ पे पिछला रिकॉर्ड मतलब दिखाते नहीं है।
0: अपनी मांगों को लेकर इन पीड़ित महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा।
5: शाम को वार्ता के लिए बुलाया था मैंने उनको, उनसे बात हुई और उनको बताया गया कि वो अपने काम करने का एविडेंस दे दें कि कब से कब तक काम किया है, और नहीं कोई कागज हो तो एक शपथ पत्र दे दें, और आज 3 बजे तक का समय दिया गया था दे दें, जिनकी जांच करा के विद इन ए वीक हम उनको मान दे दें। इस संबंध में DC NRLM को मौके पे भी गांव भेजा गया है, जो CLF है और जो BMM है उनकी पूरी रजिस्टर पूरी डिटेलिंग कर लें, जो भी जेन्युइन है उनको हम लोग विद इन वीक दे देंगे, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनको भुगतान संभव है।
0: जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी इन कर्मचारियों को हफ्ते भर में इनका बकाया मानदेय दिए जाने का भरोसा दिया है, जिसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इन महिला कर्मचारियों के मानदेय का 3 साल का इंतजार खत्म होगा। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी आज तक।
1: तो दिशा सालियान संदिग्ध मौत मामले में CBI ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। आज तक को CBI की FIR की कॉपी मिली है, जिसमें जिन लोगों की भूमिका की जांच की बात कही जा रही है उनमें आदित्य ठाकरे हैं, एक्टर डीनो मोरिया हैं, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। इसके साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने CBI अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंग रेप और हत्या की गई थी। खबरदार में अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, और हरदम रहिए खबरदार।

0: state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है।
8: हां, ओ ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: ओ बेटा चार्ज हुआ यार।
10: ओ बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर, करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ओए जाके से खड़ी की,
5: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
4: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
5: क्या
6: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
1: भारी बारिश से भूस्खलन. सिक्किम के रिम्बी गांव में बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के साथ भूस्खलन हुआ. पूरे सड़क पर मलबा आ गया. वहीं तबाही के बाद मलबा बहकर ढलान की ओर पहुंचा. वहां स्थित दो मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है. लगातार बारिश के बीच इलाके में और लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई. वहीं गुजरात के भरूच में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने एक बार फिर जोरदार दस्तक दी है. रात में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांवों तक मौसम बदल दिया. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है. हालांकि तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली. महज दो घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तालाब में बदल दिया. इन हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं नवसारी में भी लंबे समय के बाद बारिश देखने को मिली है. बारिश के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई. इस बीच मानसून का कहर मुंबई पर भी बरपा. छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव देखने को मिला. मानसूनी आफत ने मुंबई के सायन इलाके में भी मुश्किलें बढ़ा दी है. प्रतीक्षा नगर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया. कई जगह सड़कें जलमग्न नजर आईं और लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. जलभराव की वजह से वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है. लगातार बारिश को देखते हुए आने वाले घंटों में भी इलाके में जलभराव की चुनौती बनी रहने की आशंका है. यानी सिक्किम से लेकर गुजरात और मुंबई तक कहीं बारिश के बाद बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी. सड़कों पर जलभराव ने रफ्तार पर ब्रेक लगाया है. आज तक ब्यूरो,

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी भारत अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत से दुनिया के बड़े मंचों पर अपनी धाक जमाता है, तब तब पश्चिमी मीडिया का एक पूर्वाग्रह सामने क्यों आ जाता है। चाहे G20 हो या हाल का ब्रिक्स सम्मेलन, भारत की सफल कूटनीति की तस्वीरों को दरकिनार कर विदेशी मीडिया ने जानबूझकर होर्डिंग्स के आगे साइकिल चलाते व्यक्ति की तस्वीरों को प्रमुखता दी। ये केवल एक इत्तेफाक है या भारत के बढ़ते कद को कमतर दिखाने की सोची समझी विजुअल ट्रोलिंग। आज सवाल ये है कि 1963 में साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले भारत से लेकर आज की अंतरिक्ष शक्ति तक पश्चिमी मीडिया का ये नजरिया बदलता क्यों नहीं है। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को कैसे चीन का सरकारी मीडिया रिश्तों का नया अध्याय मान रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत के यूपीआई और चीन की फिनटेक ताकत मिलकर ब्रिक्स का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश कृषि, ऊर्जा, आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं।

इसके बाद आपको बताएंगे जिस ब्रिटेन ने कभी दुनिया के कई मुल्कों को मारा, कभी भारत के सीने पर विभाजन के जख्म दिए, कि आज वही ग्रेट ब्रिटेन खुद टूटने की कगार पर है। ब्रिटेन का हिस्सा रहे स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये तीनों देश अब अलग होकर अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसकी नौटंकी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक नजदीक आते ही पाकिस्तान फिर से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ड्रामेबाज मोड में आ गया है और पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर पर घोषित इनाम को 70 लाख पाकिस्तानी रुपए कर दिया। गजब कलाकारी, खुद ही आतंकियों की नर्सरी चलाओ, उन्हें अपनी ही सरपरस्ती में पालो पोसो और जब FATF की ग्रे लिस्ट का डंडा चले तो नाम मात्र का इनाम बढ़ाकर दुनिया को बेवकूफ बनाने निकल पड़ो। इसके बाद पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत दिखाएंगे। भारत की जाबाज बेटियों ने क्रिकेट के मैदान पर जब एशिया कप अपने नाम किया तो बेशर्मी से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ट्रॉफी पकड़ाने पहुंच गए, लेकिन भारत की चैंपियन बेटियों ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। स्टेडियम में जब ट्रॉफी चोर के नारे गूंजे तो मोहसिन नकवी खिसियाकर ट्रॉफी दबाकर मैदान से ऐसे भागे जैसे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया। यही हरकत उन्होंने मेंस एशिया कप में भी की थी। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही 100 से ज्यादा मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह एक्शन एक सरकारी सर्वे के बाद लिया गया। आरोप है कि यह मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। इस बीच मंत्री दिलीप घोष ने बयान दिया कि कई मदरसों से राज्य में हुए आतंकी हमलों के तार जुड़े थे और बांग्लादेशी चरमपंथी इनमें शरण लेते थे। ब्रिक्स समिट की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवान ने लाइक्स और व्यूज के लिए ड्यूटी को प्राथमिकता देने के बजाय रील्स बनाना ज्यादा जरूरी समझा। स्नाइपर राइफल के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर बनाई गई ये रील जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई महकमे में खलबली मच गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुशासन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जवान को सस्पेंड कर दिया।

0: देश में महंगाई को लेकर बड़ी खबर। सरकार द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई है, जो कि जुलाई के 4.45% के आंकड़े से ज्यादा है। सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल को इस वृद्धि की वजह माना जा रहा है। उधर राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राज्य के 10 नगर निगमों में से 5 पर बीजेपी का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस केवल 1 पर सिमट गई। अलवर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भीलवाड़ा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया। हालांकि अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों में मिली हार चिंता का सबब बीजेपी के लिए जरूर है। यूपी चुनावों से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रायबरेली में कहा कि सनातन धर्म का ध्वज भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। जो शक्ति सनातन को कमजोर करने की कोशिश करती है वो भारत के विकास में बाधा बनती है।
1: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सऊदी अरब की विशाल सेना यमन में हूती लड़ाकों के सामने इतनी बेबस और लाचार क्यों है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रक्षा बजट सऊदी अरब की सेना का है, जो लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए का है। यह पैसा नेपाल, जॉर्जिया और लेबनन जैसे देशों की कुल जीडीपी से दोगुना है, या जिस यमन के खिलाफ सऊदी अरब संघर्ष कर रहा है उसकी कुल जीडीपी की तुलना में सऊदी अरब का एक साल का रक्षा बजट 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ मिडल ईस्ट देशों की बात करें तो कोई भी देश अपनी सेना और हथियारों पर उतना पैसा खर्च नहीं करता जितना सऊदी अरब करता है। इस मामले में इसराइल भी सऊदी अरब से काफी पीछे है। इसी वजह से ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि जब सऊदी अरब के पास इतनी विशाल सेना है, इतना बड़ा रक्षा बजट है और इतने आधुनिक हथियार हैं, तब आखिर परेशानी कहां है और क्यों सऊदी अरब हूती के सामने हथियार नहीं उठाता। 8 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के ठिकानों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए, और खुद सऊदी अरब ने इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की, लेकिन इन हमलों का उसकी सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 और 11 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, और केवल 2 दिनों के भीतर रणनीतिक रूप से बेहद अहम अल मोखा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। और यहां भी सऊदी अरब की सेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टा यमन की सेना ने अमेरिका और सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों के इस अप्रत्याशित हमले के खिलाफ मांगी गई हवाई मदद देने से इनकार कर दिया, जिससे मोखा पोर्ट उनके हाथ से निकल गया। मोखा पोर्ट के बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक अहम द्वीप पर भी कब्जा कर लिया, जिसे बाब अल मंदेब पर हूती का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। और इसके बाद दावा है कि हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहरों अभा और खमीस मुशायत में हवाई हमले किए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ बड़े हमले नहीं किए। कुछ जगहों पर उसने एयर स्ट्राइक जरूर की, लेकिन हूती का दावा है कि यह एयर स्ट्राइक उसकी स्थिति को बदलने में नाकाम रही। और इसीलिए आज यह समझना जरूरी है कि इस युद्ध में सऊदी अरब की परेशानी क्या है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को जरा देखिए।
2: I'm gonna go to the hospital.

हुती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को बंद कर दिया है, जो 1200 किलोमीटर लंबी है और जो फारस की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ, तब इसी पाइपलाइन के रास्ते सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात को जारी रखा और उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो हॉर्मूज बंद होने के बाद भी सऊदी अरब मिस्र की सुमेध पाइपलाइन और सूज कनाल के रास्ते यूरोप में अपना कच्चा तेल भेज रहा था और बाबल मंदेप के रास्ते एशिया के देशों को कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था। लेकिन अब बाबल मंदेप पर हूती लड़ाकों के कब्जे के बाद यह निर्यात पूरी तरह ठप हो सकता है और इसका असर भी दिखने लगा है। केपलर के मुताबिक जून में सऊदी अरब एशिया को करीब 34 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेज रहा था, जो अगस्त में घटकर केवल 1,28,000 बैरल प्रतिदिन रह गया और अब यह और कम हो सकता है या यह आपूर्ति पूरी तरीके से रुक भी सकती है, क्योंकि बाबल मंदेप पर हूती लड़ाकों का कब्जा है। यानी मौजूदा स्थिति यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता था वो भी बंद है, और जिस बाबल मंदेप से दुनिया का 12% कच्चा तेल गुजरता था उसे भी ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बंद कर दिया है। और यहां यह भी समझिए कि हूती के लड़ाकों को रोकना मुश्किल क्यों है। हूती के लड़ाके इस युद्ध में ह्यूमन वेव टैक्टिक्स की रणनीति अपना रहे हैं, जिन्हें आप समुद्र की लहरों जैसा मान सकते हैं। जैसे एक लहर आती है, किनारे से टकराती है, उसके टूटते ही दूसरी बड़ी लहर आ जाती है, ठीक वैसा ही हूती के लड़ाके भी कर रहे हैं। सबसे पहले हूती अपने 50 से 100 लड़ाकों के एक ग्रुप को सीधे सामने वाली सेना की चौकियों पर हमला करने के लिए भेज देता है, और इनका मकसद जीतना नहीं बल्कि सामने वाली सेना को उलझाना और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवाना होता है। जैसे ही पहली लहर के लड़ाके मारे जाते हैं या घायल होते हैं, हूती तुरंत पीछे से 100 लड़ाकों की दूसरी लहर भेज देता है। जब तक विरोधी सेना संभलती है, तीसरी चौथी लहरें आ जाती हैं और हूती लड़ाकों की यह कतार अंतहीन लगती है। और ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझिए। जब सैकड़ों लड़ाके एक साथ दुश्मन देश की सेना की तरफ दौड़ रहे हों तो मशीन गन लगातार चलती है, और इसी दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब सामने वाली सेना की बंदूकें गर्म होकर बंद होने लगती हैं, जाम होने लगती हैं, उनकी गोलियों का स्टॉक खत्म होने लगता है। इसी चीज का हूती विद्रोही फायदा उठाते हैं और सामने वाली सेना से उसके नियंत्रण के इलाके छीन लेते हैं, और अभी यमन में भी यही हो रहा है।

अब आप ये समझिए कि सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के सामने इतना लाचार और बेबस क्यों दिख रहा है। पहला कारण है अकेले पड़ जाना। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वो हूती विद्रोहियों पर सीधे जमीनी या बड़े हमले करने का इरादा नहीं रखता, जबकि तुर्की और पाकिस्तान ने भी मक्का समझौते के तहत सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया है। दूसरा, सऊदी अरब के पास महंगे लड़ाकू विमान, टैंक और पेट्रियट जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हूती ईरान की तरह बेहद सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए लाखों डॉलर की एक पेट्रियट मिसाइल से हूती के कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को गिराना आर्थिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है। और तीसरा, हूती सीधे सामने आकर लड़ने के बजाय सऊदी अरब के तेल के कुओं और अरामको की रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुंच रहा है और वो जवाबी कार्रवाई करने से हिचक रहा है। यानी सऊदी अरब नहीं चाहता कि हूती उसके आर्थिक ढांचों को निशाना बनाए और इसके कारण क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट 2030 खतरे में पड़ जाए। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना और उसकी अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक और वैश्विक बिजनेस हब के रूप में विकसित करना, जैसे नियोम सिटी, यानी ऐसा शहर बनाना जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चले, लाल सागर के द्वीपों पर मालदीव की तर्ज पर लग्जरी रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट हब बनाना, धार्मिक पुलिस की शक्तियों को खत्म करना, महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना, पर्यटन के लिए सऊदी अरब को विश्व के लिए खोलना। अब अगर सऊदी अरब हूती के साथ युद्ध में उलझता है तो मोहम्मद बिन सलमान का यह मिशन खतरे में पड़ जाएगा और इसीलिए सऊदी अरब यमन में हूती के खिलाफ सीधा सैन्य मोर्चा खोलने के लिए सहज नहीं दिखता। यहां यह भी समझिए कि हूती की सऊदी अरब से लड़ाई क्या है, और जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना जैसे इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक शहर हैं, उस सऊदी अरब से हूती के इन मुस्लिम लड़ाकों की क्या दुश्मनी। हूती का मतलब उन शिया मुसलमानों से है जो यमन के उत्तरी पहाड़ों में रहते हैं। इन्हें जैदी शिया भी कहा जाता है, जो यमन की कुल आबादी का 35-40% है। 1990 के दशक में जब यमन सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा से प्रभावित हो रहा था, तब इन्हीं जैदी शिया मुसलमानों ने अपनी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था शबाब अल मुअमिनीन, यानी वो युवा जो अल्लाह और उसके नियमों पर सच्चा ईमान रखते हैं। यह आंदोलन हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने शुरू किया था, और क्योंकि उनका सरनेम हूती था इसीलिए उन्हें मानने वाले लोगों ने बाद में इस संगठन को हूती कहना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत 2003 में हुई। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हुसैन अल हूती अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो गए और उन्होंने यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह, जो सऊदी अरब और अमेरिका के दोस्त माने जाते थे, उनके खिलाफ बगावत कर दी। इसी वजह से 2004 में यमन की सेना ने हुसैन अल हूती को मार गिराया और इसके बाद इस आंदोलन ने हथियार उठा लिए, अपने मारे गए नेता के नाम पर खुद को हूती कहना शुरू कर दिया। और जानते हैं हूती और सऊदी अरब की लड़ाई क्या है। आज सऊदी अरब हूती को आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन यह हूती बना था सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा के खिलाफ, वही विचारधारा जिसमें सुन्नी सूफियों और शिया मुसलमानों को भटके हुए या काफिर बुलाया गया, जिस विचारधारा में यह माना गया कि किसी सूफी संत की मजार पर जाना या पैगंबर के परिवार के सदस्यों की कब्रों का सम्मान करना पाप है। जब सऊदी अरब में वहाबी ताकत में आए तो उन्होंने मक्का और मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब के साथियों, उनकी पत्नी और परिवार की सदियों पुरानी ऐतिहासिक कब्रों और मजारों को बुलडोजर से तुड़वा दिया, जिससे सऊदी अरब के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। यही नहीं, इस वहाबी विचारधारा से प्रेरित होकर अलकायदा और आइसिस जैसे संगठन बने, और आज हूती के तमाम विद्रोही यही कहते हैं कि सऊदी अरब उन्हें आतंकी संगठन मानता है, जबकि सऊदी अरब खुद कट्टर वहाबी विचारधारा से जुड़ा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी देखिए। 1700 के दशक में
आज का सऊदी अरब जैसा कोई देश नहीं था। उस वक्त पूरा अरब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। मक्का और मदीना पर उस्मानी साम्राज्य का नियंत्रण था और सऊदी अरब के बिल्कुल बीच में एक सूखा पथरीला बेहद पिछड़ा इलाका था जिसे नज्द कहा जाता था। इसी इलाके में दो लोग रहते थे जिनकी मुलाकात ने इतिहास रच दिया। इनमें पहले थे मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब जो एक धार्मिक स्कॉलर या मौलवी थे। इनका मानना था कि अरब के मुसलमान असली इस्लाम भूल चुके हैं और वो सूफियों की मजारों पर जाकर या पेड़ों पत्थरों का सम्मान करके पाप कर रहे हैं। दूसरे थे मोहम्मद बिन सऊद जो नज्द इलाके के एक छोटे से कस्बे दिरिया के अमीर थे। उनके पास सेना और ताकत तो थी लेकिन वो पूरे अरब पर राज करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी बड़ी धार्मिक वजह चाहिए थी जिसके नाम पर वो दूसरे कबीलों पर हमला कर सके और अपनी सत्ता को सही ठहरा सके। जब अल वहाब को उनके गांव से निकाला गया तो वो शरण मांगते हुए मोहम्मद बिन सऊद के पास पहुंचे और इसी दौरान ये समझौता हुआ कि मोहम्मद बिन सऊद वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और बदले में अल वहाब एक फतवा जारी करके ये घोषणा कर देंगे कि मोहम्मद बिन सऊद और उनका परिवार ही इस पूरी धरती का असली और वैध शासक है। और इसी के बाद सऊद परिवार कई इलाके जीतता गया और बाद में 1932 में सऊदी अरब नाम का देश बना और आज यही सऊद परिवार वहां की सत्ता में है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि ब्रिक्स समिट से भारत को हासिल क्या हुआ और भारत ने कैसे ब्रिक्स की कूटनीतिक परीक्षा को पास किया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ब्रिक्स समिट के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई अनसीन और कैंडिड वीडियो वायरल हो रहे हैं और इन वीडियोस में दुनिया के बड़े नेताओं के बीच औपचारिक बैठकों से हटकर कुछ हल्के फुल्के और दिलचस्प पल कैमरे में कैद हुए हैं। जैसे इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद अनौपचारिक अंदाज में बैठकर बातचीत और चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि इस समिट में गंभीर मुद्दों और भाषणों से परे पर्दे के पीछे इन वैश्विक नेताओं के बीच काफी दोस्ताना और सहज माहौल था।

इस बार का ब्रिक्स समिट भारत के लिए सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा थी और भारत उसमें काफी हद तक सफल रहा। मुख्य रूप से भारत के सामने पांच बड़ी चुनौतियां थी। पहला, ब्रिक्स के अंदर अलग अलग देशों के बीच मतभेद थे। दूसरा, ईरान और यूएई के बीच तनाव था। तीसरा, रूस और ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख चाहते थे। चौथा, चीन ब्रिक्स को अमेरिका के मुकाबले एक मजबूत धड़े के रूप में देख रहा था। और पांचवा, इस सब के बीच भारत चाहता था कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बने, और ऐसा करना कूटनीतिक रूप से आसान नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार यही लिख रहा था कि भारत जॉइंट डिक्लेरेशन के मोर्चे पर नाकाम रह सकता है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भारत इसमें सफल रहा और इसीलिए इस बार का ब्रिक्स पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन बना। ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि ईरान और यूएई के बीच युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद थे और इन मतभेदों के कारण मई महीने में जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तब उसमें संयुक्त बयान नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईरान और यूएई दोनों देशों ने मिडल ईस्ट में संयम दिखाने की अपील को स्वीकार किया, जॉइंट डिक्लेरेशन पर अपनी सहमति जताई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और यूएई के क्राउन प्रिंस अल नाहयान की दिल्ली में मुलाकात भी हुई। यानी भारत ने सिर्फ ब्रिक्स के भीतर सहमति नहीं बनाई बल्कि युद्ध में आमने सामने आए दो देशों के बीच बातचीत के लिए दिल्ली को मंच बना दिया। इससे दुनिया को यह कूटनीतिक संदेश भी गया कि भारत खुद किसी एक पक्ष में खड़े हुए बिना भी बातचीत का रास्ता खोल सकता है। जॉइंट डिक्लेरेशन पर चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे पुराने देशों की सहमति जताने का सीधा मतलब यह था कि ब्रिक्स अभी भी काम करने वाला और प्रासंगिक संगठन है। तीसरा और सबसे बड़ा बिंदु यह है कि संयुक्त बयान में पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की गई और यह भी तब हुआ जब ब्रिक्स में चीन भी है और चीन को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। भारत ऐसा इसलिए भी कर पाया क्योंकि हमने इसे केवल भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं बनने दिया, हमने इसे ग्लोबल टेररिज्म के रूप में पेश किया। यानी भारत का संदेश था कि आतंकवाद चाहे कहीं से भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके समर्थकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। चौथा, भारत ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी ब्लॉक दिखने या बनने से भी रोका। हमने संयुक्त बयान में इस भावना को डाला कि ब्रिक्स देश पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ देशों के पक्ष में। और आखिर में इसी समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 15 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और इनमें भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के, राष्ट्रपति पुतिन रूस के और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात से भारत को काफी कुछ हासिल हुआ और इसीलिए आज इस सम्मेलन को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।

अब इस सवाल पर आते हैं कि जब भी भारत किसी बड़े वैश्विक मंच की मेजबानी करता है तो विदेशी मीडिया जानबूझकर ऐसी तस्वीरें क्यों चुनता है जो भारत को केवल एक गरीब या विकासशील देश के रूप में दिखाएं। G20 की तरह इस बार भी कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी और मीडिया संस्थानों ने ब्रिक्स समिट की कवरेज करते हुए ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जिनमें बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स सम्मेलन का एक विशाल होर्डिंग दिख रहा है और उसके ठीक आगे से साइकिल सवार गुजर रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, एसोसिएटेड प्रेस, ब्लूमबर्ग, यहां तक कि ढाका ट्रिब्यून में भी पश्चिमी मीडिया के हवाले से खास तौर पर इसी तस्वीर को प्रकाशित किया गया। और यह भी तब हुआ जब इस बार के ब्रिक्स समिट की कई आधुनिक तस्वीरें मौजूद थी और भारत मंडपम से ऐसी भव्य तस्वीरें आई थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान छाप सकते थे, लेकिन इनके द्वारा खास तौर पर इसी एक तस्वीर को चुना गया जो वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद को कम करके आंकती है। और ऐसा नहीं है कि यह तस्वीर बिना किसी उद्देश्य के इस्तेमाल की गई होगी, इसके पीछे बड़ा उद्देश्य यही रहा होगा कि दुनिया ब्रिक्स की मेजबानी कर रहे भारत की आर्थिक हालत, उसकी गरीबी पर भी गौर करे। और ये पश्चिमी मीडिया ने पहली बार नहीं किया है। 2023 में जब भारत ने G20 समिट की मेजबानी की थी तब भी इसी तरह की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने छापी थी जिनमें G20 के बड़े बड़े होर्डिंग्स के सामने से एक साइकिल सवार गुजर रहा था। और ठीक उसी पैटर्न को इस बार भी पश्चिमी मीडिया ने दोहराया। और यहां बात केवल इन सम्मेलनों की मेजबानी की नहीं है। 2013 जब भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ तब द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक ऐसा ही कार्टून प्रकाशित हुआ था। तब इसमें एक भव्य कमरा दिखाया गया था जिस पर एलीट स्पेस क्लब लिखा हुआ था और इस कमरे के अंदर सूट बूट और टाई पहने हुए कुछ पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बैठे थे जो हाथ में अखबार लिए गंभीर दिख रहे थे, जबकि कमरे के बाहर एक पारंपरिक भारतीय किसान हाथ में गाय की रस्सी पकड़े हुए उस एलीट क्लब का दरवाजा खटखटा रहा था। और ये कार्टून उस वक्त भारत के प्रति एक मानसिकता को दिखा रहा था। और आज भी ब्रिक्स को लेकर जो तस्वीरें इस्तेमाल हुई वो भी इसी का हिस्सा दिखती है। हम मानते हैं कि भारत पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और हमारे देश में बुनियादी तौर पर कई कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लिए जानबूझकर ऐसी तस्वीरें चुनी जाएं जो उसके सामर्थ्य को कम करके आंकती हैं। कड़वा सच तो यह है कि भारत ने इस पूर्वाग्रह को कई बार झेला है और हमारी ये विजुअल ट्रोलिंग कई दशकों से हो रही है। 21 नवंबर 1963 को जब भारत ने थुम्बा से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था तब रॉकेट के नोज कोन को साइकिल के पीछे कैरियर पर बांध कर ले जाया गया था। और इसके कुछ समय बाद जब भारत के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल का परीक्षण होना था तो उसे एक बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सैटेलाइट के मेटल कंटेनर के कारण गाड़ियों के सिग्नल में दिक्कत आ रही थी और नॉन मैग्नेटिक व्हीकल के रूप में उस वक्त बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन तब भी पश्चिमी मीडिया ने भारत का मजाक बनाया और ये कहा कि जो देश अपने नागरिकों को ठीक से खाना नहीं खिला सकता और जहां रॉकेट और सैटेलाइट ढोने के लिए भी साइकिल बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है वो अंतरिक्ष में जाने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इस मजाक और अपमान के बावजूद हमने अपना वो सपना पूरा किया और आज भारत दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष शक्ति है।

जब भारत में ब्रिक्स जैसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था और दुनिया की नजरें दिल्ली पर थीं, तब खबरें नेताओं की बैठकों, ब्रिक्स देशों के बीच हुए समझौतों और भारत की कूटनीतिक सफलता पर होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने एक दूसरी ही खबर खोज ली और ये खबर भी सोशल मीडिया पर होने वाली विजुअल ट्रोलिंग के बारे में बताती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए ये लिखा कि जब इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, वहां कई देशों के शीर्ष नेता मौजूद हों, तब भारतीय अधिकारियों को बिना खाना खाए नहीं भेजना चाहिए। कुछ लोगों ने रणधीर जायसवाल पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए ये तक लिखा कि वो इस बैठक में शायद खाना खाने आए थे। लेकिन जानते हैं इन वीडियोज की पूरी और असली सच्चाई क्या है? हकीकत तो यह है कि इन वीडियोज को सामान्य वीडियोज की तुलना में 3 गुना तेज फास्ट फॉरवर्ड किया गया था, और ऐसा इसलिए हुआ ताकि रणधीर जायसवाल या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बैठक में सिर्फ खाना खाते हुए ही दिखाई दें। और यह सिर्फ ट्रोलिंग के लिए नहीं हुआ, यह हुआ एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए, यानी कुछ लोगों ने व्यूज पाने के लिए असली वीडियोस से छेड़छाड़ की। बाद में इन्हीं के आधार पर भारतीय अधिकारियों का मजाक उड़ाया जाने लगा, जबकि ऐसे सम्मेलन और बैठकों में हिस्सा लेने वाले हर सदस्य के लिए उसकी टेबल पर ऐसा खाना या स्नैक्स रखे जाते हैं जो स्ट्रेस ईटिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था, कई घंटे तक चलने वाले ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी लगातार काम करते हैं, बैठकों में रहते हैं, दूसरे देशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, और ऐसे में बीच में कुछ खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल हमारे देश में वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके किसी का मजाक उड़ाना सामान्य हो गया है, और दुख की बात यह है कि इस तरह की ट्रोलिंग में कई लोग पूरा सच जाने बिना शामिल भी हो जाते हैं, और इस मामले में भी यही हुआ है।

खैर, इस बार के ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 7 साल बाद भारत में पहली बार द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब चीन का सरकारी मीडिया इस मुलाकात को और इस समिट को भारत और चीन के रिश्तों के लिए नया अध्याय मान रहा है। खासकर ये बात चीन के सरकारी मीडिया में लिखी जा रही है कि अगर भारत और चीन सहयोगी बनकर एक दूसरे के साथ काम करें तो दोनों देश दुनिया की बड़ी ताकत बन सकते हैं। जैसे चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा कि भारत और चीन ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ला सकते हैं क्योंकि भारत के पास यूपीआई का अनुभव है और चीन के पास डिजिटल पेमेंट फिनटेक और अलीपे वीचैट पे जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। इसी तरह दोनों देश मिलकर ब्रिक्स देशों में कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी और उत्पादन व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिसका फायदा एशिया, अफ्रीका और दूसरे विकासशील इलाकों में देशों को मिले। और यही वजह है कि इस खबर के साथ ग्लोबल टाइम्स ने इस तस्वीर को प्रकाशित किया जिसमें भारत और चीन की केतली से ब्रिक्स के पौधे में पानी डाला जा रहा है, यानी दोनों देशों के बीच सहयोग का सुनहरा मौका माना जा रहा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच इस बात की भी काफी चर्चा हुई कि उनकी गाड़ी को दिल्ली में काले कपड़े से क्यों ढककर रखा गया था। इस कार का नाम है होंकी N701, जिसे चीन की होंकी कंपनी ने बनाया है और इसका मतलब होता है लाल झंडा या रेड बैनर। दिल्ली पहुंचने से पहले जब इस कार को हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तब इसे पूरी तरह काले कपड़ों से ढका गया था और अभी यही देखकर कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या किसी खतरे की वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकारी गाड़ी को भारत में काले कपड़ों से ढका गया था। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा किसी खतरे को देखते हुए नहीं किया गया था, ऐसा प्रोटोकॉल के तहत होता है और इसके पीछे चार वजहें बताई जाती हैं, जिनमें पहली वजह है सुरक्षा। चीन अपने राष्ट्रपति की कार को संवेदनशील मानता है और इसीलिए यात्रा के दौरान कार को लोगों की नजरों से दूर रखना सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है। दूसरी वजह है कार की पहचान और जानकारी छिपाना। इस तरह की गाड़ियों की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक नहीं की जाती, इसीलिए यात्रा के दौरान उन्हें ढक कर रखने से उनकी बनावट और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को अनावश्यक रूप से देखने से रोका जाता है। तीसरी वजह है कार को सुरक्षित रखना, यानी कार को धूल, बारिश, मौसम, खरोंच, सामान या दूसरी चीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काले कपड़े से ढक देना। और चौथी वजह है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो सामान्य व्यवस्था का हिस्सा होता है और दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। और इसीलिए ये कहना कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गाड़ी को दिल्ली में खतरा था इसीलिए उसे काले कपड़े से ढका गया, ये सही नहीं होगा। अब आपको ये बताते हैं कि जिस ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने भारत का विभाजन किया, कैसे वही आज खुद विभाजन की कगार पर खड़ा है। संभव है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह खत्म हो जाए और दुनिया के नक्शे पर केवल इंग्लैंड का नाम रहे। बहुत सारे लोग इसे समय का चक्र या वक्त का हिसाब कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के भीतर अलगाव और आजादी की राजनीति बेहद मजबूत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम चार देशों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है और मौजूदा विवाद यह है कि इंग्लैंड को छोड़कर बाकी तीनों देशों में पहली बार ऐसी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं जो ब्रिटेन से अलग होना चाहती हैं। और इसी चीज को देखते हुए आज वेल्स की राजधानी कार्डिफ में एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। इस समिट में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्वीनी, वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर रून अप योवर्थ और उत्तरी आयरलैंड की नेता मिशेल ओनील शामिल हुए और इन तीनों नेताओं ने एक साझा घोषणा पत्र यानी जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इसमें ब्रिटेन सरकार से मांग की गई है कि वो इन देशों को अपने भविष्य का फैसला करने और आजादी के लिए जनमत संग्रह कराने का अधिकार दें। यूनाइटेड किंगडम 319 वर्ष पहले 1707 में बना था, जब किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड और किंगडम ऑफ इंग्लैंड और वेल्स एक संघ बनाने पर सहमत हुए थे। बाद में 225 साल पहले इसमें आयरलैंड भी शामिल हुआ और 104 साल पहले आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इससे अलग हो गया। पिछले 104 सालों में यूनाइटेड किंगडम का नक्शा एक बार नहीं बदला, लेकिन अब इंग्लैंड को छोड़कर बाकी देश इस यूनाइटेड किंगडम से निकलना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो यूनाइटेड किंगडम केवल इंग्लैंड तक सीमित हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 53% क्षेत्रफल इंग्लैंड में आता है। विभाजन की सूरत में यही 53% क्षेत्रफल उसके पास रह जाएगा, जहां 84% आबादी रहती है। अगर दुनिया के कुल क्षेत्रफल में देखें तो अभी यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी 0.16% है, लेकिन विभाजन की सूरत में यही क्षेत्रफल 0.09% रह जाएगा। और सोचिए, ये वही यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन है जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाया। एक जमाना था जब कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लगभग 100 देशों पर उसने राज किया था, यानी किसी न किसी ऐसे देश में सूरज आसमान में रहता था, अस्त नहीं होता था, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। 23% आबादी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रही, दुनिया के 24% क्षेत्रफल पर कभी ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा, लेकिन आज ब्रिटेन की हालत यह है कि उसने भारत, फिलिस्तीन, साइप्रस और आयरलैंड का बंटवारा किया। आज यही यूनाइटेड किंगडम बंटवारे की दहलीज पर खड़ा है।
अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर गुंडागर्दी की एक अलग कहानी सामने आई है। यहां पर एक कार चालक ने महिला बाइक राइडर को जानबूझकर टक्कर मारी और यह दिखाया जैसे अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस कार चालक को यह नहीं पता था कि महिला बाइक राइडर ने अपनी बाइक में कैमरा लगाया था। उस कैमरे में सब

0: कर दी और फिर जानबूझकर टक्कर मारना साफ साफ दिख रहा है। पूरे वीडियो में पीड़ित लड़की शिवानी चौहान ने खुद ही सारी कहानी बताई। वो खुद बता रही हैं कैसे एक सफेद कार चला रहे लड़के ने पहले तो छेड़छाड़ की, बाइक रोकने के लिए कहा, जब लड़की ने बाइक आगे भगाई तो इस बात से कार सवार भड़क गया, उसने जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी।
1: मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। आयन वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको। वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहां से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
0: पीड़ित शिवानी ने शुरुआत में इस मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कार चलाने वाले इन लड़कों का वीडियो पोस्ट किया था, पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध में शामिल कार की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक ये कार मनीष नाम के एक शख्स की थी, जिसने अपने दोस्त कल्याण बैंसला को ये कार कुछ दिनों के लिए दी थी। हमारी टीम ने जल्द ही कल्याण बैंसला को ढूंढ निकाला। इस केस के आरोपी ने इस मामले में कुछ अलग ही कहानी बताई। उसके अनुसार बाइक राइडर्स का एक ग्रुप सड़क पर चल रहा था, वो कई बार उसकी गाड़ी के बगल से निकले। आरोपी का कहना है कि वो लोग उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। छेड़छाड़ के आरोपों पर उसने कहा कि वो उस लड़की से धीमे चलाने के लिए कह रहा था। हालांकि जब उससे ये पूछा गया कि उसने लड़की को टक्कर क्यों मारी, तो उसने कहा कि टक्कर गलती से लगी। जब ये पूछा गया कि गलती से टक्कर लगी तो उसने रुक कर मदद क्यों नहीं की, माफी क्यों नहीं मांगी, तो इस सवाल पर उसने कुछ अलग ही जवाब देना शुरू कर दिया।
2: मैंने जैसे आगे बढ़े, वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे। मैं 22 जने, मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे। फिर भी मैंने बत्ती पे रोकी, मैंने सीसा डाउन किया। मैं सीसा डाउन ही नहीं करता इस बात। मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ गए मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल लो। मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे। मैंने भाई से बोला भी कि मैंने कि यार दुख हो रहा मुझे।
0: अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की, जो साल दर साल हो रही है और भारतीय टीम के हाथों हो रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अपनी किस्मत में भारतीयों से अपमानित होना लिखवा कर लाए। कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वुमेन्स टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल जीता और जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी को पता तो था कि भारत की लड़कियां उन्हें सबक सिखा सकती हैं, इसके बावजूद वो मंच पर पहुंच गए। मोहसिन नकवी को लगा था कि मेंस टीम इंडिया भले ही उनसे ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, लेकिन भारतीय लड़कियां ट्रॉफी लेने जरूर आएंगी, लेकिन भारत की लड़कियां किसी से कम है क्या, वो भी ट्रॉफी लेने नहीं गई। भारतीय लड़कियों ने मंच पर जाने के बजाय अवार्ड सेरेमनी के दौरान हेड कोच अमोल मजूमदार के पास जाकर जीत को सेलिब्रेट करना सही समझा। हेड कोच ने इस जीत पर भारतीय लड़कियों की सराहना की। मतलब यह है कि विमेन्स टीम इंडिया ने चैंपियन बनने की खुशी का सेलिब्रेशन आपस में ही करना बेहतर समझा। विमेन्स टीम इंडिया जब नकवी से ट्रॉफी नहीं ली तो वही हुआ जो करीब एक साल पहले हुआ था, मोहसिन नकवी बेइज्जत होकर ट्रॉफी लेकर भाग गए, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी मोहसिन नकवी की ऐसी हूटिंग शुरू कर दी थी कि उनके लिए स्टेडियम में रुकना मुश्किल हो गया। दर्शकों ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर कहना शुरू कर दिया था। ये सुनकर वो तुरंत स्टेडियम छोड़कर भागने लगे। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मोहसिन नकवी की बेइज्जती का समय और जगह वही था जो पिछले साल था। अब बात 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस की। हर साल 14 सितंबर आता है, हर साल वही पुरानी बातें दोहराई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, दीवारों वाले पोस्टर अब सोशल मीडिया की वॉल पर आ गए हैं। नारे वही हैं, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी सबसे प्यारी है, और फिर हिंदी को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज हम हिंदी दिवस पर सीधा, तीखा और कड़वा सवाल पूछेंगे। अगर हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, अगर 52,83,00,000 लोगों की यह मातृभाषा है, तो फिर यह भाषा सिर्फ मनोरंजन, चुटकुलों और रील्स तक क्यों सिमट कर रह गई? जब कोई छात्र क्वांटम फिजिक्स

0: समझना चाहता है, कोई किसान फसलों की एडवांस्ड बायोटेक समझना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन शेयर बाजार और एआई का एनालिसिस चाहता है, तो इंटरनेट पर हिंदी में इसकी गहन जानकारी मिलना क्यों मुश्किल होता है? इस सवाल का उत्तर खोजने से पहले आपको भारत में इजराइल के राजदूत रुवे नजार का वीडियो दिखाते हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषी लोगों को हिंदी भाषा में ही शुभकामनाएं दी।
1: नमस्ते भारत, मेरा नाम रुवे नजार है। मैं भारत में इसराइल का राजदूत हूँ। जब मैं 2 साल पहले भारत आया था, उस समय मैंने हिंदी सीखनी शुरू की थी। आज 2 साल बाद मैं आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: ये वास्तव में गर्व कराने वाली बात है कि दुनिया अब हिंदी और हिंदी बोलने वालों का महत्व समझ रही है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इसराइल के राजदूत ने हिंदी में वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दे दी। इंटरनेट पर 95 करोड़ भारतीय ऑनलाइन आ गए, लेकिन क्या हिंदी अब ज्ञान और एआई की भाषा बनने के लिए तैयार है? जब इसराइल के राजदूत हिंदी बोलकर देशवासियों को बधाई देते हैं, तो यह केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि दुनिया समझ चुकी है कि भारत की असली पावर उसकी भाषा में बसती है। IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट सर्च में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का मार्केट शेयर 95% से ज्यादा हो चुका है। YouTube पर रेसिपी, न्यूज, एजुकेशन और टेक रिव्यू के 85% दर्शक ये कंटेंट हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में देखना पसंद करते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में बैठा युवा अब टाइप नहीं कर रहा, वो वॉइस कमांड दे रहा है, सीधे पूछ रहा है कि AI उसके खेत के लिए सही उर्वरक कौन सा है, या गांव में पंचायत चुनावों के लिए ये वाला पोस्टर डिजाइन करके दो। यही वजह है कि टेक कंपनियां लाखों करोड़ रुपए बहा रही हैं ताकि AI मशीनें हिंदी के मुहावरे, टोन या उससे जुड़े संदर्भ को इंसानों की तरह समझ सकें। खुद भारत अब अपने सर्वम AI और नेटिव LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रहा है। भारत GPT जैसी देसी चैटबॉट तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि देश की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को समझकर जवाब देंगे। लेकिन यहां सबसे गंभीर सवाल यह पैदा होता है कि जब AI से हिंदी में सवाल पूछा जाएगा, तो क्या उसका डिजिटल डेटाबेस सही और वैज्ञानिक जवाब दे पाएगा? आज जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंटरनेट पर हिंदी में क्या बिक रहा है। कॉमेडी, गॉसिप, रेसिपी, सनसनीखेज खबरें और रील्स। लेकिन जैसे ही कोई छात्र हिंदी में ढूंढता है साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मेडिसिन या मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक थ्योरी, हिंदी इंटरनेट जवाब देने में हांफने लगता है। गूगल पर हिंदी में कंटेंट की मात्रा तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा सूखा है। अगर एक गरीब छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो क्या उसे इंटरनेट पर लेटेस्ट रिसर्च हिंदी में मिलेगी? अगर कोई आम इंसान साइबर फ्रॉड से बचने के तकनीकी तरीके हिंदी में आसान भाषा में समझना चाहता है, तो क्या पर्याप्त डेटा है? अगर AI को हम सिर्फ काम चलाऊ और गलत हिंदी का डेटा फीड करेंगे, तो AI भी हमें अधूरा और गलत ज्ञान ही लौटाएगा। इसीलिए हिंदी को बचाने की चिंता करना नहीं, असल में हिंदी को खतरा नहीं, चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि क्या हिंदी ज्ञान की भाषा बन पाएगी। कॉर्पोरेट ब्रांड्स, PR एजेंसियां, मीडिया हाउसेस और टेक कंपनियां लोकलाइजेशन एक्सपर्ट्स को लाखों का पैकेज दे रही हैं, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तो सिर्फ हिंदी के दम पारंपरिक कॉर्पोरेट डेस्क पर आज भी रास्ते बहुत कठिन हैं। लेकिन AI और डिजिटल युग ने कुछ नई नौकरियों के दरवाजे खोले हैं, जहां भाषा ही आपकी मुख्य स्किल है। गूगल, मेटा जैसी कंपनियों को अपने AI को हिंदी सिखाने के लिए शुद्ध हिंदी भाषियों की जरूरत है। डिजिटल मीडिया, OTT और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में हिंदी स्क्रिप्ट राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स के सैलरी पैकेज अंग्रेजी वालों को मात दे रहे हैं। ग्लोबल गेम्स, विदेशी फिल्में और एप्स को हिंदी में ढालने का बाजार हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन यहां यह जरूरी है कि अगर सिर्फ हिंदी के दम पर बड़ी नौकरी चाहिए, तो आपकी हिंदी काम चलाऊ नहीं बल्कि मास्टर क्लास होनी चाहिए। इस बीच जब तमाम लोग ये मान रहे हैं कि अंग्रेजी ने ही हिंदी का रास्ता मुश्किल किया, तब उन लोगों को ये बातें भी समझनी चाहिए। जापान अपनी भाषा पर अड़ा रहा, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बना डाली। चीन ने कोडिंग से लेकर AI तक सब कुछ मैंडरिन में किया, और आज अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। स्पेन और फ्रांस अपने अपने देश का व्यापार, विज्ञान, कानून और मेडिकल अपनी राष्ट्रभाषा में चलाते हैं। इन देशों ने साबित किया कि अपनी भाषा को समृद्ध बनाना देशभक्ति का दिखावा नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक जरूरत है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हिंदी को अब दया या संरक्षण की जरूरत नहीं है, हिंदी को जरूरत है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कोडर्स की। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: एक तो एक
5: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोला स्पा एट होम।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूसी सी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का समय, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले देखेंगे ड्राफ्ट फिर तय करेंगे अपना रुख। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में जीत, सिर्फ एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। पार्टी दफ्तर में सीएम भजनलाल ने मनाया जश्न। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डिनू मोरिया और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। और महंगाई ने फिर बढ़ा दी टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%, केंद्र ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन और अखिलेश यादव के दलित वाले दांव पर। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए महायुद्ध शुरू हो चुका है और योगी को सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व ही नजर आ रहा है, क्योंकि योगी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी को किनारे योगी को लगाना है, थर्ड टर्म की सरकार का रिकॉर्ड भी योगी को बनाना है, तो दूसरा अखिलेश के पीडीए वाले दांव की कार्ड को भी खोजना है। जबकि विपक्ष ने न सिर्फ श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया है, बल्कि दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए अखिलेश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में योगी रायबरेली से सनातन की पताका ऊंची रखने की बात करते हैं। आइए आपको दिखाएं 2027 की लड़ाई कैसे जाति धर्म पर आई।
1: योगी का सनातन वाला प्रचार 2027 में चुनावी नैया पार। उंचाहार से सीएम योगी का प्रहार, सनातन पर भरी हुंकार। योगी का सनातन फैक्टर, पीडीए से अखिलेश का नया चैप्टर। कथा की आस्था, सनातन की पताका, 2027 में चुनावी धमाका। 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई जाति और धर्म पर आई। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के दिन घट रहे हैं और योगी सरकार के प्रचार और विपक्ष के प्रहार बढ़ रहे हैं। सीएम योगी को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, क्योंकि 2027 की लड़ाई तगड़ी है, इसीलिए योगी ने सनातन की पताका पकड़ी है। सीएम योगी के सामने दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, यूपी में बीजेपी की हैट्रिक लगवाना। दूसरा, अखिलेश के जाति वाले यानी पीडीए फॉर्मूले की काट निकालना। जब रायबरेली के ऊंचाहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव महापुराण कथा में हिस्सा लेने पहुंचते हैं, सनातन की ध्वजा पताका को ऊंची रखने की बात कहते हैं।
2: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: जिस जगह पर, जिस अंदाज में और जिस तरह से योगी का ये बयान आया है, इसके सियासी मायने भी निकालना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि शिव पुराण महाकथा का आयोजन मनोज पांडे ने करवाया है। वो मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से आकर बीजेपी का दामन थामने वाले और योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का अहम ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं, फिर इस कथा में शामिल होकर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में सनातन की शक्ति को अतीत के आक्रांताओं तक ले जाते हैं।
2: हमने धर्म को केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रखा, हमने उसे समाज की जीवन शक्ति के रूप में माना है। उस कालखंड में भी जब विदेशी आक्रांता भारत के धर्मस्थलों को, भारत की आस्था को रौंदने का कार्य करते थे, तब भी इन पावन कथा के माध्यम से, हमारे व्यासपीठ से सदैव जो धारा प्रस्फुटित होती थी, वह सामाजिक एकता के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकता को और आध्यात्मिक उन्नयन को आगे बढ़ाती रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही काम किया। मध्यकाल में राम कथा के माध्यम से उनको भी बहुत सारे प्रस्ताव आए कि अकबर के दरबार में आप भी चलिए, आपको भी नौ रत्नों में से सम्मान मिल जाएगा। उन्होंने कहा बादशाह क्या होता है, तो उन्हें समझाया कि बादशाह का मतलब राजा होता है। उन्होंने कहा भाई देखो आप गलत बोल रहे हैं, मेरा तो एक ही राजा है, वह राम है। राम के अलावा मैं अकबर को या किसी विदेशी को अपना राजा नहीं मान सकता।
1: जब पीडीए के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर 2027 की लड़ाई में उतरे हैं, साथ ही अखिलेश यादव राम आस्था, हनुमान भक्ति और इटावा के केदारेश्वर शिव की बात कर रहे हैं, तो योगी विपक्ष की काट के लिए ब्रांड हिंदुत्व पर लौट रहे हैं। योगी रायबरेली में सनातन की हुंकार भरते हैं और शिव की भक्ति की बात करते हैं।
2: सनातन धर्म की परंपरा में शिव की भक्ति भी हम सब के लिए वही है। जब हम भारत की बात करते हैं, शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनके पवित्र ज्योतिर्लिंग हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, रामेश्वरम तक भारत की राजनीतिक सीमाओं को भी तय करती हैं और भारत की एकात्मकता का दर्शन भी सभी को करवाते हैं।
3: सनातन संस्कृति का फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से है सनातन संस्कृति का एक हिस्सा।
4: भारतीय जनता पार्टी यही करती है, राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो धर्म की राजनीति करते हैं उनका अयोध्या में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका मथुरा में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका काशी में क्या होने वाला था ये भी समझ में आ गया। तो भगवान महादेव ने बताया था कि सुधर जाओ, 5 राउंड तक हराया है, ज्यादा करोगे तो अगले 15 राउंड भी हराए जाएंगे।
1: सनातन कई बार बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ है, लेकिन अब की बार विपक्ष के पास राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, तो अखिलेश यादव का फोकस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर है। अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को भी साधने में लगे हैं।
5: पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए भी पीडीए हमारा काम कर रहा है। पीडीए का मतलब प्रेम दया अपनापन भी है, उसी से हमारी पार्टी और छात्र सभा को और लोग जोड़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे और सामाजिक न्याय का राज की स्थापना करने का काम आने वाले समय में 2027 से आगे करेंगे हम लोग।
1: योगी के हिंदुत्व और सनातन कार्ड की काट के लिए समाजवादी पार्टी अब आगरा में 15 नवंबर को दलित महासम्मेलन करने जा रही है। टारगेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पश्चिमी यूपी कभी बीएसपी यानी मायावती का मजबूत गढ़ हुआ करता था, और अब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद युवा दलितों के बीच पश्चिमी यूपी में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 21% है और पश्चिमी यूपी के कई जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ में इनकी अच्छी खासी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ है। इसमें जाटव समुदाय सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि वाल्मीकि, खटिक, पासी और कोरी जैसे गैर जाटव दलित भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए बीएसपी के वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में खींचने की कोशिश में लगे हैं।
6: पराया धन अपना, पी फार पराया, डी फार धन और ए फार अपना। पराया धन अपने को करने के लिए लोग पी पीटेंगे और डी डकैती डालेंगे, ए अपहरण करेंगे।
1: और इसीलिए अखिलेश यादव ने पार्टी के पारंपरिक लाल रंग के साथ अब नीले रंग को भी अपनाया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने अपनी यूथ विंग समाजवादी छात्र सभा का नया ड्रेस कोड लाल से बदलकर नीली टी शर्ट और नीली पैंट किया है। इन नीली टी शर्टों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी छापी गयी है।
7: समाजवादी पार्टी के पास कोई पार्टी के नाम का कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी के नाम पे कार्यकर्ता बताया जरूर जाएगा, लेकिन वह सब छठे छटाए उत्तर प्रदेश के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी हैं, और ऐसे लोगों के बल पर चुनाव न लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है।
1: 2027 की लड़ाई में जाति और धर्म की टक्कर अब साफ साफ दिखाई देने लगी है।
8: समाजवादी पार्टी 15 नवंबर को दलितों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आगरा में करने वाली है, जो अब तक उसका बेस नहीं रहा है। लेकिन अब ये चुनाव क्या हिंदुत्व बनाम जातियों के बीच होगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन दोनों पार्टियों की कोशिश अपने अपने एजेंडे पर चुनाव को लाने की है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
9: और अब खबर वाराणसी में सीवर पॉलिटिक्स की। बारिश के मौसम में वाराणसी में जलभराव पर सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक पोस्ट पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया। अखिलेश यादव ने पानी भरने को लेकर दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई से जोड़ा, तो अब वाराणसी के मेयर का आरोप है कि वाराणसी की छवि खराब करने और बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। आरोप यही है कि जलभराव के कारण नगर निगम की लापरवाही बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीवर की मेन लाइन में डाली गई बालू से भरी बोरियां हैं। अब सवाल यही कि सीवर की लाइन में बोरियां बालू वाली आई कहां से।
1: क्या क्या सीवर लाइन में साजिश के तहत डाली गई बोरियों की वजह से जल भराव हुआ? क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की छवि को धूमिल करने के लिए सीवर की मेन लाइन में बोरियां डाली गईं? सब जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग अब FIR में बदल चुकी है। वाराणसी जल निगम की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है।
10: जल निगम के जलकल के अधिकारियों ने FIR कराया है और कानून अपना काम करेगा।
1: अब समझिए वाराणसी में जल भराव पर सियासी महाभारत की कहानी क्या है। हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर वायरल जल भराव की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट 12 सितंबर को शेयर किया। अखिलेश यादव ने लिखा, काशी में विदेशी पर्यटकों के सामने पानी पानी हुआ देश की प्रधान नगरी का जलमग्न विकास। जब तक प्रधान नगरी काशी को जलमग्न मुख्य नगरी गोरखपुर जैसा नहीं बना देंगे, तब तक लखनऊ वाले मानेंगे नहीं। दरअसल अब आपस का झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। बात दिल्ली बनाम लखनऊ से ऊपर उठकर क्योटो बनाम स्पेन की हो गई है। अखिलेश यादव ने जल भराव के बहाने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा। दावा यही किया कि वाराणसी की बदहाल तस्वीर के पीछे दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है। अखिलेश ने जैसे ही पूरे मामले को सियासी रंग दिया, वैसे ही पूरी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी में बदल गई। वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने सनसनीखेज आरोप लगाया। दावा यही है कि जिस सीवर में बालू की बोरियां मिली, वहां की तस्वीर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, यानी सीवर में साजिश की बोरियों के पीछे समाजवादी पार्टी है।
11: जहां बोरी डाली गई वहीं से ट्वीट हुआ, ये लगता
10: है। मैं बता रहा हूं, ये हमारे
12: सीवर
10: शिवाला पे, दुर्गा कुंड पे, ये हमारे क्या कहते हैं बेनिया पे, ये जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वीडियो आ रहा है, वहीं पे हम लोग जब जांच कर रहे हैं, यही चीजें पाई जा रही
11: है। ये कोई राजनीतिक पार्टी इस पे खेल कर रही है?
10: देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा अखिलेश यादव जी अगर ट्वीट करें इतनी छोटी बातों को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई सूचना उनको दे रहा है, लेकिन जो सूचना का स्रोत है वो बहुत बिना जानकारी का है और ये अच्छी बात नहीं है।
1: सफाई के दौरान सीवर से निकली बोरियों को मेयर सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। मेयर का दावा यही है कि काशी को बदनाम करने के लिए सीवर में बालू से भरी बोरियां डाली गईं, ताकि सीवर लाइन जाम हो और बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति पैदा हो।
13: जब आज हम लोग तीन दिन से लगातार जब इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, तो कई जगह ये देखने को मिला है कि सीवर में सीमेंट का बोरा रख के उसको, सीवर जो हमारा मेन लाइन है उसको जाम कर दिया गया। आज देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह ये हमारे कर्मचारियों ने, ये हमारा निकला हुआ है सीवर का बोरा, ये देखिए ये हमारा पूरा सीवर का बोरा एक ही कंपनी का। ये
1: बड़ी बात ये है कि जल भराव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। विश्वकर्मा नगर कॉलोनी के लोगों ने जल भराव और सीवर की दिक्कत को लेकर नगर निगम पर सवाल उठाए। आरोप यही लगाया कि वाराणसी में मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बावजूद इसके आम जनता जूझ रही है। वाराणसी के मेयर की माने तो साजिश के तहत सीवर को ब्लॉक किया गया ताकि शहर में जल भराव हो और आम जनता आक्रोशित हो। वहीं दूसरी तरफ मेयर के आरोप का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर नए पोस्ट से सीधा हमला बोला। दिल्ली के खिलाफ लड़ाई में बनाया बनारस के मेयर ने लखनऊ के संग पेयर, भाजपाइयों का एक घिसा पिटा फॉर्मूला है, खुद गलत काम करो दूसरों को बदनाम करो। अब तो सुरंग जीवियों की सियासत सीवर तक उतर गई है और कितना नीचे जाएगी।
14: जगह जगह सीवर ओवरफ्लो और वाटर लॉगिंग की समस्या जब वायरल हुई तस्वीरों के जरिए, तो नगर निगम ने इसकी साफ सफाई कराई, जांच कराई और खुद मौके पर पहुंचकर वाराणसी के मेयर और नगर आयुक्त ने बनारस की छवि को खराब करने के पीछे बड़ी साजिश की बात कही और कहा कि जानबूझकर सीवर को चोक किया जा रहा था।
1: अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यहां बोरियां किसने फेंकी? क्या जानबूझकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश हुई? दरअसल सीवर चोक होने की शिकायतों के बाद नगर निगम की टीम ने जब अलग अलग इलाकों में सीवर लाइनों की सफाई शुरू की, तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। सीवर लाइन में सामान्य कचरे के बजाय बड़ी मात्रा में बालू, पत्थर और लकड़ी का बुरादा मिला। शिवाला इलाके में सफाई के दौरान करीब 12 बोरी बालू सीवर लाइन से निकाली गई।
12: तो कई बोरी मलबा इस मैनहोल के अंदर मिला है, जो सामान्यतः किसी भी तरीके से किसी मैनहोल के अंदर जाने का कोई साधन नहीं है। एक ही तरीके के रंग के अंदर बोरी के अंदर मलबा, निर्माण सामग्री, गिट्टी, बालू सब डालकर मैनहोल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि चोक करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है और चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। यही वजह है कि अब सीवर को लेकर सियासी तूतू मैमै जारी है।
15: पुरानी कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति नजर आती है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की जल समस्या को लेके, जल भराव को लेके, गंदगी को लेके लगातार सवाल उठाए और अब सवाल पूछने वालों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
10: विभिन्न प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप में सत्यता होनी चाहिए। और चुनाव आ रहा है कि चुनाव ठीक है, हमारे विकास पर बात करिए, काशी का जो विकास है उस पर बात करिए, आइए मॉडल बनाइए काशी को, पूरे देश का मॉडल। मैं तो चाहता हूँ कि विपक्षी जो हमारे लोग हैं वो मॉडल बनाए काशी को किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ।
1: मौसम चुनाव का है, लिहाजा कोई भी पार्टी सियासी दांव चलने में पीछे नहीं है। अभी पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है, लेकिन बीजेपी के मेयर ने सीवर में मिली बोरियों के तार समाजवादी पार्टी से जोड़कर सियासी एंगल जरूर दे दिया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
9: आपने वाराणसी में जल भराव को लेकर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई देखी और अब हम आपको सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का एक और पोस्ट और उस पर बचे बवाल का सच दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने बलिया के एक सरकारी स्कूल में चले बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए, दावा किया कि योगी सरकार का बुलडोजर अब सरकारी स्कूलों को जमींदोज करने लगा है। अखिलेश यादव के इसी दावे को बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने झूठा बता दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी का दावा है कि जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं, असल में उस स्कूल की इमारत का एक हिस्सा जर्जर हो चुका था और इसीलिए छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर इमारत का हिस्सा और उस हिस्से का ध्वस्तीकरण हमने किया जहां अब नई बिल्डिंग बनेगी।

0: मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल पर अखिलेश यादव हमेशा से हमलावर रहे हैं, लेकिन ना तो योगी का बुलडोजर एक्शन रुका और न ही मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के संकेत दिए। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का दौर जारी है।
1: बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
2: आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है।
1: बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है।
2: बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर।
1: दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दे।
0: अखिलेश यादव के लिए बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाना नई बात नहीं है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बलिया के एक प्राथमिक विद्यालय के ध्वस्तीकरण पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर बुलडोजरी बार, अब की बार भाजपा पक्का बाहर। अखिलेश ने जो लिखा उसका मतलब यही है कि अब योगी सरकार स्कूलों पर बुलडोजर चला रही है, लिहाजा 2027 में बीजेपी की हार तय है। यानी योगी आदित्यनाथ अब चंद दिनों तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। अखिलेश ने स्कूलों पर बुलडोजर एक्शन पर सवाल तो उठाए, लेकिन बुलडोजर एक्शन की सच्चाई कुछ और है। दरअसल बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक 1990 में बनी स्कूल की इमारत जर्जर थी, लिहाजा बरसात के मौसम में हादसे की आशंका थी। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के चलते स्कूल का ध्वस्तीकरण किया गया। उसी जगह पर जल्द ही नया क्लासरूम तैयार किया जाएगा।
3: उसमें एक वीडियो वायरल हुआ कि एक अच्छे भवन को जो है कि गिराया जा रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि यह भवन 1990 में निर्मित था और पूरी तरह से भवन जो है कि जर्जर हो गया था। उसके भवन के हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, जिसको देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को जनहित में देखते हुए जो त्रिस्तरीय कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस विद्यालय के जो है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उसी कैंपस में हमारा दो रूम का और भी भवन है, जिसमें बच्चों की सकुशल जो है कि गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन का कार्य भी कराया जा रहा। शीघ्र ही जो जर्जर भवन टूटा है वहाँ एक नया भवन जो है कि निर्मित किया जाएगा।
0: अखिलेश ने यही दावा किया कि योगी सरकार का बेलगाम बुलडोजर अब स्कूलों को रौंद रहा है, जबकि बीएसए की माने तो बुलडोजर एक्शन के पीछे इमारत का जर्जर होना था। इससे पहले अखिलेश यादव ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए थे। जिला प्रशासन का दावा था कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी, इसीलिए बुलडोजर चला, लेकिन अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन को साजिश का हिस्सा बताया था।
4: तो जब नौकरी नहीं दे पा रहे, महंगाई नहीं रोक पा रहे, बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे, निवेश नहीं ला पा रहे, इसलिए इन्होंने सहारनपुर में मस्जिद को गिराने का काम किया। और ऐसे लोग जो इसमें शामिल थे, आज नहीं कल कानून इन्हें सजा देगा। अगर 12 घंटे में 14 घंटे में आप दूसरे को कभी मौका नहीं दोगे कि दूसरे कोर्ट में जाकर के अपील कर ले, न्याय के लिए खड़े हो जाए, क्या जल्दी थी कि अगर वो हाई कोर्ट चले जाते अपना न्याय के लिए।
0: दूसरी तरफ कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी अपने बुलडोजर एक्शन को सही ठहरा चुके हैं।
5: ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सिखाया।
0: योगी का दावा है कि बुलडोजर माफियाओं की जमीनों पर चल रहा है, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को गिराने के लिए चल रहा है, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है।
6: किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता।
0: मतलब यही है कि 2027 में भी बुलडोजर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन बुलडोजर मॉडल से किसे चुनावी फायदा होगा या नुकसान, ये यूपी की जनता तय करेगी। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई में गणेश उत्सव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बप्पा की पूजा अर्चना की। जी हां, गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। पीले रंग के कुर्ते में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, गणपति बप्पा की आस्था में वो लीन है। पीयूष गोयल के घर बप्पा विराजमान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बप्पा की पूजा अर्चना की, आरती की। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे होती का सऊदी अरब में हाहाकार। आप देखते रहिए दस्तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: देखे जन्म पहला पहला कदम।
7: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 ग्रुप celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
8: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
11: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
12: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां। इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
13: अब मैं क्या ही बोलूं?
14: परिवार अटूट भरोसा।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
19: एक तो एक
20: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
8: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
9: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
10: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
11: है। अंडमान निकोबार आइलैंड, तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
12: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
13: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
8: आज तक, देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है। यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी। दलील दी गई कि गृह मंत्री का दावा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही, जिसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही साझा सहमति से यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है। यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अब देख रहे हैं दस्तक आपके साथ, मैं हूं सईद दंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। ईरान और अमेरिका युद्ध में एक नया फ्रंट खुल चुका है। अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधा युद्ध छिड़ गया। बीते कुछ दिनों में हूती की मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब में बारूदी कहर बरपा रहे हैं। ईरान का दावा है कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिश को हूती अंजाम दे रहे हैं। हूतियों ने ऐलान कर दिया कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर अब उन्हीं का कब्जा है। मतलब यह हुआ कि होर्मुज़ को ईरान ने बंद कर रखा है। लाल सागर से गुजरने वाले तेल टैंकर्स पर हूतियों की मिसाइलों ने ब्रेक लगा दिया है। तो क्या हूती के बहाने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पर हमले करवा रहा है ईरान?
1: ईरान से डरे ट्रंप का हूती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हूती के निशाने पर सऊदी। अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हूती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हूतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हूतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए दो बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही हमले हूतियों के ठिकाने पर करे। लेकिन ईरान के साथ साथ हूतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था कि मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हूतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
2: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इंड का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
1: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
2: लाल, हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
1: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को

0: Doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
1: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनीश और लेसर हनीश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हुर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हूतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हूतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5 से 7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
2: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
3: एक और मुद्दा है सर जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
4: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
1: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साथ पर बट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर रूस और यूक्रेन युद्ध की जो अब रुकने के बजाय हर दिन और भड़क रही है। उधर नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन खत्म हुआ तो इधर रूस ने यूक्रेन समेत यूरोप को दहला कर रख दिया। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर 863 ड्रोन से हमला किया और इस ड्रोन हमले में यूरोपीय देश पोलैंड की बॉर्डर पर एक ट्रेन को भी रूस ने निशाना बनाया। बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस रेलवे लाइन पर रूस ने ड्रोन से अटैक किया वहां से कुछ ही देर पहले कई विदेशी नेता गुजरे थे जिनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट्स और कई दूसरे यूरोपीय राजनयिक शामिल थे। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इसे रूस का यूरोप तक हमला माना जाएगा। आइए हम आपको दिखाएं यूरोप में इस हमले को लेकर इस समय क्या चर्चा चल रही है।

0: आखिरकार रूस ने यूरोप तक कर दिया वार। पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचा रूसी ड्रोन, ट्रेन पर हमला। बाल बाल बचे पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। ड्रोन हमले के बाद रूस और नेटो में सीधी जंग का खतरा। पुतिन के दिमाग में क्या है? रूस ने यूरोप को ललकारा। इधर भारत में ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होता है, उधर रूस के ड्रोन अटैक से पूरा यूरोप दहल उठता है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने करीब 863 ड्रोन लॉन्च किए और इसी दौरान पोलैंड सीमा से बहस 2 किलोमीटर दूर यूक्रेन के याहोदिन में एक यात्री ट्रेन पर हुए रूसी ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस ट्रैक पर हमला हुआ ठीक 15 मिनट पहले, उसी ट्रैक से पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व CIA डायरेक्टर डेविड पेट्रियस समेत कई पश्चिमी राजनयिकों को ले जा रही एक डिप्लोमेटिक ट्रेन गुजरी थी। हमले में ट्रेन का इंजन तबाह हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी 206 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर इस यात्री ट्रेन को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के रेलवे ऑपरेटर का दावा है कि रूस का असली निशाना शायद वही राजनयिकों वाली ट्रेन थी। पूर्व CIA चीफ डेविड पेट्रियस ने इस धमाके को बेहद खौफनाक बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने पोलैंड से आ रहे पश्चिमी हथियारों के सप्लाई रूट को निशाना बनाया था, लेकिन पोलैंड सीमा के इतने करीब हुए इस हमले के बाद नेटो देश अलर्ट पर हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सो में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाकर चेतावनी दी है कि रूस युद्ध को और भड़का रहा है और ये तनाव अब पोलैंड तक भी पहुंच सकता है। हमले के बाद पोलैंड ने अपने विमान एक्टिव कर दिए। रूसी हमलों में बॉर्डर के पास एक पेट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। पोलैंड की सेना ने कहा है कि उसकी कार्रवाई एहतियाती थी और इसका मकसद देश के एयर स्पेस को सुरक्षित रखना था। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा ने हमले को लेकर कहा कि पुतिन का आतंक सीधे EU और नेटो के दरवाजे तक पहुंच रहा है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। आपको बता दें कि ब्रिक्स में नई दिल्ली से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों को यूक्रेन में सैनिक भेजने को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने कहा था कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिक भेजते हैं तो इसे रूस के साथ युद्ध की स्थिति माना जाएगा। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूरोप के लिए कोई खतरा नहीं है और मॉस्को की यूरोपीय देशों के साथ टकराव की कोई इच्छा नहीं है। यूरोप के कुछ नेता रूस के नाम पर अपने लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और एक ऐसे खतरे की बात कर रहे हैं जिसे रूस के राष्ट्रपति ने काल्पनिक बताया। और ब्रिक्स खत्म होते ही रूस के ड्रोन पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, यानी बिल्कुल यूरोप तक। रॉयटर्स के मुताबिक क्रेमलिन ने इस घटना को लेकर बयान भी जारी किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। इससे पहले 9 सितंबर की रात यूक्रेन ने रूस के मशहूर ब्लैक सी रिसोर्ट शहर सोची में ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने सोची के तट और पोर्ट इलाके को निशाना बनाया। हमले के बाद तट के पास आग और धुएं के वीडियो सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में सोची के करीब सीरियस इलाके में मौजूद एयर डिफेंस ठिकाने को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। कुछ ओपन सोर्स विश्लेषणों में यहाँ S-300 या S-400 सिस्टम की मौजूदगी का दावा किया गया। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन ने रूस में 3200 किलोमीटर अंदर घुसकर भी हमले किए। जी हाँ, यूक्रेन के घातक ड्रोनों ने रूस के सुदूर उत्तर में स्थित आर्कटिक क्षेत्र के पामालो निनेट्स स्वायत्त इलाके में धावा बोला। निशाना बने रूस के सबसे महत्वपूर्ण गैस प्लांट नोवी ओरेंगोए और कुर्स्की। इसे यूक्रेन का रूस पर सबसे लंबी दूरी वाला हमला बताया गया। रूस के करीब 80% प्राकृतिक गैस यामालो निनेत्स क्षेत्र से आती है। गैस कंडेंसेट से मिलने वाला अरबों डॉलर रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद करता है। यूक्रेन के फायर पॉइंट ड्रोनों ने 3200 किलोमीटर दूर इस ठिकाने पर सटीक निशाना साधा। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने रूस और यूक्रेन का दौरा कर दोनों पक्षों से बातचीत की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस के डीजल ठिकानों पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों ने तेल कीमतों में आग लगा दी है।
1: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: रूस पर हुए हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई तो रूस ने भी पलटवार में ऐसे ड्रोन दागे जो पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच गए। अब सवाल यह है कि जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वाला महायुद्ध छिड़ा है, अब इस जंग के बंद होने के आसार ना के बराबर लगते हैं। पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश भी करार दिया है।
2: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। यहाँ के मेरे परिवारजनों के इस जनादेश से एक बात साफ हो गई कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इससे राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का हमारा संकल्प और भी सशक्त होगा। ये इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, इस अवसर पर सभी बीजेपी के विजयी प्रत्याशियों के साथ पार्टी के समर्पित परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: Papa!
7: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: In association with Signature Finest Cardamom Seeds,
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
8: भारी बारिश से भूस्खलन। सिक्किम के रिम्बी गांव में बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के साथ भूस्खलन हुआ। पूरे सड़क पर मलबा आ गया। वहीं तबाही के बाद मलबा बहकर ढलान की ओर पहुंचा। वहां स्थित दो मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के बीच इलाके में और लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई। वहीं गुजरात के भरूच में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने एक बार फिर जोरदार दस्तक दी है। रात में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांवों तक मौसम बदल दिया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। हालांकि तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। महज दो घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तालाब में बदल दिया। इन हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं नवसारी में भी लंबे समय के बाद बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इस बीच मानसून का कहर मुंबई पर भी बरपा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव देखने को मिला। मानसूनी आफत ने मुंबई के सायन इलाके में भी मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रतीक्षा नगर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई जगह सड़कें जलमग्न नजर आईं और लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव की वजह से वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। लगातार बारिश को देखते हुए आने वाले घंटों में भी इलाके में जलभराव की चुनौती बनी रहने की आशंका है। यानी सिक्किम से लेकर गुजरात और मुंबई तक कहीं बारिश के बाद बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर जलभराव ने रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। आज तक ब्यूरो

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: बच्चों को देख के दूसरा भी एक टाइम कूदता है, उसको देख के दूसरा भी कूदने लगता है, इसलिए थोड़ा संभाल के रहिए।
3: बढ़ा जल स्तर, बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से राहत, घरों से निकला पानी, उफनती नदियां खतरे के निशान पार। बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर को लेकर तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। तस्वीर प्रयागराज की है। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद घाटों और आसपास के इलाकों में पानी उतरने लगा है। जलस्तर घटने के साथ ही बंद किए गए मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं। हालांकि प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन की नजर लगातार हालात पर बनी हुई है। अगली तस्वीर मुरादाबाद की है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटीय इलाकों में पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, रास्ते नदी में तब्दील हो गए हैं।
4: समस्या तो बहुत है, दुकानदारी का काम है, आना जाना भी है, मैं अंत मजूरी वाले आदमी है, कहाँ पे जाएंगे हम?
5: घर में आना जाना रास्ता बंद हो गया,
6: घर में भी पानी है,
5: घर में पानी है।
7: और खेती भी साहब बिल्कुल पट हो गई।
3: वहीं बाढ़ की मार झेल रहे बिहार में कुछ इलाकों में अब पानी कम होता नजर आ रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। देखिए ये तस्वीरें बेगूसराय की है। बाढ़ का पानी अब कम होना शुरू हो गया है, पानी घटने के साथ लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन कई इलाकों में अब भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है।
8: मायावती के मन में क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 27 के समर के पहले मायावती के अपने दल में ही बवाल मचा है। पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में शामिल किया, कुछ महीनों बाद उनके ससुर को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर आकाश आनंद को भी पार्टी के सभी पदों से बाहर कर दिया और अब मायावती ने भतीजे आकाश पर गंभीर आरोप लगाए।
9: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में न आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है।
8: तो मायावती आरोप लगा रही है कि आकाश आनंद और उनके ससुर मायावती की बीमारी की अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपस में ही ये सिर फुट ऑफ वॉल क्यों है? बीजेपी कहती है कि अकेले BSP ही नहीं पूरा विपक्ष भ्रम में है। इधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि BSP का कोर वोटर यानी दलित कब का BSP से दूर जा चुका है, अब वो PDA का हिस्सा है। मौका अच्छा देख आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने चौका मारने की कोशिश की। उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया।
10: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुष के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए।
8: अब सवाल ये है कि BSP की ये कैसी रणनीति है जिसमें पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
11: चुनौती चाहे विपक्ष से हो चाहे परिवार से हो, मायावती लड़ने के लिए तैयार हैं। काफी दिनों से चर्चा इस बात की थी कि क्या आकाश आनंद के रूप में मायावती के बाद एक उत्तराधिकारी तैनात हो रहा है, लेकिन आज मायावती ने उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में अलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस वाले भी। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। और महंगाई ने फिर बढ़ाई है टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सुशांत सिंह राजपूत की कुछ वक्त के लिए मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की फाइल 6.25 साल बाद फिर से खुलने जा रही है। दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया है। दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत 6 दिन के अंदर हुई थी और तब इन दोनों ही मौत को एक ही साजिश का हिस्सा बताया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के 4.5 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, साथ ही ये भी कहा कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। दो सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। इसी ऑर्डर के बाद 11 सितंबर को सबसे पहले सीबीआई ने सतीश सालियान का बयान दर्ज किया। करीब 3 से 4 घंटे तक सतीश सालियान ने अपना बयान लिखवाया। तब उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि दिशा सालियान के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर उसका कत्ल हुआ और उसके बाद उस साजिश और सबूत को मिटाने में अनगिनत लोग शामिल हुए। सतीश सालियान के बयान दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद 13 सितंबर को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की।
1: दिशा सालियान का सामूहिक अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया। उसके बाद में ये जो आरोपी थे आदित्य ठाकरे एंड आदर्श, इनको बचाने के लिए पूरे पुलिस के रिकॉर्ड चेंज किए गए, झूठे गवाह बनाए गए, झूठा रिकॉर्ड बनाया गया और इसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। इस बारे में हाईकोर्ट ने जो रिकॉर्ड चेक करके पाया था हमारे केस में प्राइमा फैसी सब्सटेंस है, और उसके बाद में कोर्ट ने हमारा केस सीबीआई को आदेश दिया था कि इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर दर्ज किया जाए। तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवरअप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है।
0: इस एफआईआर में इतने नाम लिखे हैं जिन्हें एक सांस में पढ़ना भी मुश्किल है। ये उस एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर में दर्ज वो नाम। तो पहले नाम पे नजर दौड़ा लेते हैं, एफआईआर की असली सच्चाई और कहानी इसके बाद। आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, पुलिस अफसर सचिन वाजे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख, एपीआई अशोक देवाड़े, पीआई जगदेव कलापड़, पीआई शैलेंद्र नागरकर, पीआई चीमा जी आघव, पीआई अर्जुन राज ने, मालवाणी पुलिस स्टेशन के संबंधित पुलिस अफसर, देरी से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एंड स्टाफ, कलीना एफएसएल के डॉक्टर संजय जाधव, एनपी भाले, तत्कालीन संबंधित पीआई और अन्य पुलिस अफसर, रिजन गैलेक्सी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड सुशील कुमार यादव और शिव मुराद गौतम, प्रीति राणे, प्रवीण राणे, अंकिता सातुर, इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा, हिमांशु शिखारे, रेशा पड़वाल, सतवंत सिंह, नवेद मुजावर, प्रवेश राणे, साथी एसआईटी के सभी सीनियर पुलिस अफसर और बाकी अज्ञात लोग।
1: ये जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: अगर एसआईटी की टीम और थानों के कुल स्टाफ को जोड़ लो तो एफआईआर में दर्ज इन नामों की गिनती आसानी से 50 पार पहुंच जाती है। तो क्या अगर दिशा सालियान की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है और कत्ल से पहले गैंगरेप भी, तो इस साजिश में एक साथ इतने सारे लोग शामिल थे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एफआईआर में इन सारे नामों का मतलब क्या है? क्या ये सभी आरोपी हैं या फिर एफआईआर की कहानी आधी अधूरी है? तो सबसे पहले सतीश सालियान के वकील की ये बात सुन लीजिए, जो उन्होंने 11 सितंबर को तब कही थी जब सतीश सालियान सीबीआई को अपना बयान देकर बाहर निकले थे।
2: दो आदेश थे कोर्ट के, पहले इनका डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और दूसरा उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना है। और सीबीआई की प्रोसीजर क्या है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वही एफआईआर को लगता है, मतलब दैट इज द एफआईआर। आज पूरा डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है और जैसा ही इनका एफआईआर अपलोड हो जाएगा आप सब लोगों को मिल जाएगा।
0: तो सुना आपने, सतीश सालियान के वकील साफ साफ और आसान लफ्जों में ये बता और समझा रहे हैं कि पहले बयान दर्ज हुआ और फिर उसी बयान को एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा। 11 सितंबर को ही सतीश सालियान के बयान दर्ज होने के बाद ये साफ हो गया था कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि यही बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था।
3: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के मामले में जो उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन की थी कि उनके मौत की जांच होनी चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, उनका गैंग रेप भी हुआ है, ऐसा उन्हें शक है और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन पर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था। आज सतीश सालियान अपने वकील एडवोकेट नीलेश ओझा के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, 3 से 4 घंटे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है इस मामले में और फिर से ये जांच हो सकती है कि दिशा सालियान की मौत कैसे हुई थी।
0: तो जैसा कि उम्मीद थी, बयान दर्ज करने के 48 घंटे के अंदर सीबीआई ने 13 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत दिशा सालियान केस में एफआईआर दर्ज कर दी। पर इस एफआईआर की सच्चाई ये है कि इसमें जो 50 से भी ज्यादा नाम लिखे गए उनमें से किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है, न ही इनमें से किसी का भी नाम आरोपी के खाने में लिखा गया है। असल में सतीश सालियान ने अपने बयान के दौरान जितने भी नाम सीबीआई के सामने लिए उसी बयान को उठाकर सीबीआई ने एफआईआर में शामिल कर दिया।
2: कोर्ट ने क्या कहा, स्टेटमेंट एफआईआर कोई अलग से कुछ नहीं होता है, यही स्टेटमेंट अटैच होता है उनके एफआईआर के फॉर्मेट।
0: 2 सितंबर को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया था, उसी वक्त ये साफ कर दिया गया था कि तब तक सीबीआई किसी को आरोपी करार न दे जब तक की जांच में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिल जाए।
4: पार्टली अलाउड कर दी है, सीबीआई को डायरेक्शन दिया है वो सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर रजिस्टर करे और सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट करे, और मालवनी पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है सारे रिकॉर्ड हैंड ओवर करे सीबीआई को। और दूसरा, इसमें जिस किसी के भी खिलाफ सबूत मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई, जिस किसी के खिलाफ सबूत नहीं रहेगा उसको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। और इसमें अगर कुछ सीबीआई का निगेटिव रिपोर्ट आया तो हमारे को उसको ऑब्जेक्शन लेने का, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, ये भी ऑर्डर में कोर्ट ने कह दिया है।
3: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है।
0: दरअसल सतीश सालियान ने सीबीआई को दिए अपने बयान में ये कहा है कि दिशा सालियान कुछ ऐसे राज जानती थी जिसकी वजह से पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसका कत्ल और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश। इसी बयान के आधार पर उन्होंने जितने संदिग्ध के नाम लिए उन सभी के नाम एफआईआर में शामिल कर दिए गए। सतीश सालियान के वकील ने दिशा की मौत की जो कहानी सुनाई वो कहानी कुछ यूं है।
4: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजर चाइल्ड ट्रैफिकिंग
2: और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे डीनो मौर्या ये गैंग के साथ है। उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया। इसमें ये सभी लोग शामिल है और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप फिर मर्डर और फिर कवर अप किया। और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में एसआईटी ने दूसरा कवर अप किया। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: सतीश सालियान के वकील जिस सचिन वाजे का नाम ले रहे हैं वो मुंबई पुलिस का अफसर था, फिलहाल पिछले 5 सालों से तालोजा जेल में बंद है। सचिन वाजे पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ियां और धमकी भरा खत रखने की साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का ये भी मानना है कि उनकी बेटी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस आपस में जुड़ा हुआ है। दिशा की मौत का सच सामने आते ही सुशांत की मौत का सच भी सामने आ जाएगा।
2: दोनों केस इंटरकनेक्टेड है और वही हमारा एफिडेविट भी है, वही कोर्ट के हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी मेंशन है और वही हमारा स्टेटमेंट है। तो सुशांत का केस और ये केस, आपको याद होगा जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: साल 2020 जब पूरा देश ठीक से कोरोना बोलना सीख रहा था, कोरोना के खतरे का बस अंदाजा लगा रहा था, ठीक उसी वक्त दो ऐसी रहस्यमयी मौत होती है जो कोरोना के वायरस से भी कहीं ज्यादा तेजी से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए 2 गज की दूरी को काटते हुए घर घर पहुंच जाती है। इनमें से एक रहस्यमयी मौत थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की और दूसरी उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की कुछ वक्त के लिए मैनेजर रही दिशा सालियान की। सिर्फ 6 दिन के अंदर ये 2 मौत हुई थी। पहली मौत 8 जून 2020 को दिशा सालियान की और दूसरी मौत 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की। दूसरी मौत की जांच पहले मुकम्मल हुई। करीब 4.5 साल की जांच के बाद 22 मार्च 2025 को सीबीआई ने मुंबई की सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि सुशांत सिंह की मौत कत्ल नहीं, खुदकुशी थी। इस मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। जबकि पहली मौत यानी दिशा सालियान की मौत की जांच मुंबई पुलिस ने पहले 3 महीने में बंद कर दी, ये कहते हुए कि दिशा की मौत एक एक्सीडेंट यानी हादसा थी, दिशा ने खुदकुशी की थी। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में जो कागजात तैयार किए वो भी एक्सीडेंटल डेथ के ही थे। दरअसल तब खुद दिशा के माँ बाप ने ही ये कहा था कि उन्हें उनकी बेटी की मौत के पीछे कोई साजिश नजर नहीं आती। यहाँ तक कि उन्होंने दिशा के साथ रेप होने की बात से भी इनकार किया था। इतना ही नहीं, तब पुलिस की जांच पर भी उन्होंने भरोसा जताया था। दिशा के पिता सतीश सालियान से तब आज तक ने बाकायदा कैमरे पर बात की थी।
5: मैं एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उन पुलिस ने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, हर एक चीज बताया उन्होंने। अच्छा। वो किधर गई थी, क्या करती थी, सब डिटेल उनके पास है और जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब एक्सप्लेन करके बताया था। प्रेगनेंसी नील है, रेप ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ऑर्गन अच्छा है, प्रेगनेंसी का एकदम क्लीन है, वो कुछ है ही नहीं,
6: सब रूमर्स
5: है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बेटी के लिए ऐसा रूमर्स फैला के आप उसका फायदा मत उठाइए प्लीज। उतना पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल सोशल मीडियाज एंड ऑल पॉलिटिशियंस आल्सो।
0: अब सवाल ये है कि 6.25 साल बाद दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच हाईकोर्ट

0: कोर्ट ने सीबीआई को क्यों सौंपी? तो जवाब ये है कि दिशा सालियान के जो पिता शुरुआत में अपनी बेटी की मौत के पीछे किसी साजिश की बात से इनकार कर रहे थे, उन्हीं सतीश सालियान ने 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिशा की मौत की दोबारा जांच कराने और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इसी मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका मंजूर कर ली और केस की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया। पर सवा 6 साल बाद क्या इस केस में सीबीआई के हाथ कोई नए सबूत लग पाएंगे? पहले लोकल पुलिस और फिर एसआईटी जिस केस में कुछ नहीं ढूंढ पाए, क्या ऐसा कुछ सीबीआई के हाथ लग पाएगा? कम से कम सतीश सालियान के वकील को भरोसा है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके पास गवाह और सबूत दोनों है।
1: केस को जब कोर्ट में लाया गया तब एसआईटी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, मालवनी पुलिस स्टेशन ने इसको एक्सीडेंटल रिपोर्ट बता दिया था, कई चैलेंजेस के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी, किसी को लगा नहीं था सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी।
2: अरे आपने अगर देखा होगा कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
3: इंजरी को लेकर।
2: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का? और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो। तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता है गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है।
1: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिशियल को है इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
2: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर और वो भी सीनियर ऑफिसर।
1: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया है सीबीआई की
2: तरफ? हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
1: किसी को आरोपी ना समझा जाए जब तक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल पाते, तो क्या इतने साल बाद क्राइम होने के एविडेंसेस मिल पाएंगे?
2: सब एविडेंस है, चिंता मत कीजिए। आई विटनेस से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब विटनेस है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एफिडेविट पे कंप्लेंट है, कंप्लेंट झूठी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट सही है तो इनको अरेस्ट कीजिए।
1: बस अरेस्ट किसको करना चाहिए?
2: अरेस्ट तो आदित्य ठाकरे से शुरुआत है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, तुम्हारा सूरज पांचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती, और इसके पहले का एसआईटी का मेंबर हो चिमाजी आड़ाव, ये शैलेंद्र नगरकर, सब लिस्ट है इनकी।
1: हाँ, कत्ल को आपको लगता है सुसाइड बताया गया, क्या वजह?
2: गैंग रेप किया, मर्डर किया सुशांत से, क्या दिशा ने इनके वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ड्रग्स के बिजनेस वाले पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था, उसके पास सबूत थे, उसने ट्रांसफर किया सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत सिंह ने बताया रिया चक्रवर्ती को, रिया अभी रिया और आदित्य पार्टनर इन क्राइम है, ये बात सुशांत को पता नहीं थी, तो रिया ने क्या किया, रिया ने मैसेज दिया और फिर आदित्य और उन्होंने पूरा सचिन वाजे को लेके जाके ये सब गलत काम कर दिया। बाद में आकर दोनों लोगों ने स्टेटमेंट दिया, आदित्य ने कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता हूं, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब फोन उसका ये किया, उसने जो चार्ट डिलीट किए थे फोरेंसिक में रिकवर हुए, उसमें पता चला कई सालों से दोस्ती है, पार्टनर इन क्राइम है ये लोग। तो ये ऐसे कई, मैं तो आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, कल का सीसीटीवी देखा आपने? सीसीटीवी में साबित हो गया पूरा सुसाइड का स्टोरी झूठा है। वो जो कह रहे थे इनका स्टोरी क्या था? इनका स्टोरी था कि दिशा 4 जून को पिताजी के घर से पहुंची, कहां पर? फ्लैट पे। 4 जून के बाद वो फ्लैट से कभी बाहर ही नहीं आई। बाद में 8 जून को हम 7:30 से दारू पीते बैठे थे और वो सब देख रहे थे प्रोग्राम नाच गए थे। बाद में 12:06 से 1:21 तक वो बात कर रही थी उसकी फ्रेंड है अंकिता सत्तूर से लंदन में, तो उसका डेथ हुआ 1:21 के बाद में। सीसीटीवी में आया है कि जो टाइम पे वो बात करती हुई दिखाए उसके पहले से दिशा जा रही है फ्लैट नंबर 1101 में, बाहर आने का एविडेंस कुछ दिख नहीं रहा है, और पुलिस ये कह रहे कि पुलिस आई थी 3 के बाद।
1: टाइमिंग गलत भी तो हो सकता है सीसीटीवी का।
2: हाँ, एफिडेविट हो चुका है,
1: जब तक जेल में आरोपी नहीं जाते आप चुप नहीं बैठे।
2: हाँ, नहीं, एक वो सेकंड पार्ट सुन लीजिए। सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है

0: कि पुलिस वहां पहुंच गई थी 12 बजे, उनको मतलब मालूम है अभी वो वहां से सुसाइड करने वाली, और यहाँ स्टेशन डायरी में एंट्री लिख रहे हैं कि पुलिस पहुंची दूसरे दिन 9:40।
1: कहते हैं कि अगर दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ न जोड़ा जाता तो ये इतना बड़ा केस कभी बनता ही नहीं। पर क्या सचमुच दिशा और सुशांत की मौत में आपस में कोई कनेक्शन है, सिवाय इसके कि दोनों की मौत 6 दिन के अंदर हुई और मौत से पहले दिशा कुछ वक्त के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही। ये सवाल इसलिए भी है कि अगर सचमुच दिशा और सुशांत की मौत एक दूसरे से जुड़े थे तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने वाले सीबीआई की टीम ने इस केस से कभी दिशा की मौत के केस को क्यों नहीं जोड़ा। अगर वाकई दोनों मौत एक साजिश थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई तो तब उस सीबीआई टीम ने सुशांत की मौत का सच जानने के लिए दिशा की मौत की पड़ताल क्यों नहीं की। हालांकि उस वक्त भी सीबीआई की उस टीम से ये सवाल पूछा गया था, तब जांच टीम से जुड़े सीबीआई के एक अफसर ने कहा था कि दोनों केस अलग अलग है। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। दिशा सान्याल की मौत के 5 साल बाद तक दिशा के पिता खामोश रहे। फिर 2025 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और मांग की कि उनकी बेटी की मौत की जांच फिर से की जाए, क्योंकि उन्हें शक है कि उसका कत्ल हुआ है। इससे पहले 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने भी दिशा की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, हालांकि उस एसआईटी की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। ये दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दिशा की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये वो हिस्सा है जो कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की मौत की वजह सिर पर चोट और पूरे शरीर पर मल्टीपल इंजरी है। सिर पर लगी चोट की वजह से खून भी काफी बह गया था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि दिशा के प्राइवेट पार्ट में जख्म के कोई निशान हो जो इस बात की गवाही दे कि मौत से पहले दिशा के साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक जांच में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई जिससे ये पता चलता कि दिशा के साथ रेप हुआ है। तब बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने ये दावा किया था कि दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट अंगों में जख्म के निशान मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि दिशा के साथ रेप हुआ था। लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि रेप नहीं हुआ है। दरअसल महिलाओं की खुदकुशी एक्सीडेंटल डेथ के मामले में अमूमन वेजाइनल स्वैब के नमूने लिए जाते हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कहीं मौत से पहले उस महिला के साथ रेप जैसा कोई जुर्म तो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जगह इसी वेजाइनल स्वैब के नमूने लिए जाने की बात लिखी है। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में अलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस वाले भी। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। और महंगाई ने फिर बढ़ाई है टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणेशोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। विधि विधान के साथ उतारी गजानन की आरती। मुंबई में अंबानी परिवार में भी बप्पा की स्थापना हुई। फिल्मी हस्तियां समेत सियासी हस्तियों ने भी शिरकत की। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी पहुंचे एंटीलिया। सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ बप्पा के स्वागत के लिए पहुंचे। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत। ऑरेंज साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। कथावाचक जया किशोरी ने भी बप्पा का स्वागत करने के लिए एंटीलिया पहुंची। लालबाग के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला। अनोखा श्रृंगार देखने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी बंगले वर्षा में गणपति की स्थापना की। अमित शाह ने भी फडणवीस के आवास पर पहुंचकर पूजा की। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने भी गणपति पूजा की। भक्तिभाव के साथ विनायक की आरती की गई। नवनीत राणा और रवि राणा के घर गणेशोत्सव की धूम। बप्पा की भक्ति में लीन नजर आया पूरा परिवार। जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी। 40 वर्षों से गणेश जी के 3000 से ज्यादा स्वरूपों का संग्रह। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ू से गणपति की भव्य शोभा यात्रा। रथ पर सवार नजर आए गणपति। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार। बाल गणपति से सेल्फी और माखन चोर तक कई रूप नजर आए। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने भी अपने घर में गणपति की स्थापना की। इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को शेयर किया। अभिनेता रामचरण ने विधि विधान के साथ अपने घर में की बप्पा की स्थापना। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हर साल की तरह इस साल भी परिवार के साथ गणपति स्थापना की। फैंस के साथ तस्वीरों को शेयर किया। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर पर भी पधारे हैं बप्पा। परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी बप्पा की स्थापना हुई है। तस्वीरों में बप्पा की आरती करते हुए नजर आए सचिन। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी भक्ति में लीन नजर आईं। बप्पा की आराधना करती हुई दिखी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर पर पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। बॉलीवुड में मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बप्पा के दर्शनों के साथ मनाई गणेश चतुर्थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा किया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज हम आपको दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री के बारे में विस्तार से पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं श्री गणेश कर रहे हैं बप्पा के भक्तों के जश्न के साथ। पहले हम आपको दिखाएंगे गणेश चतुर्थी के मौके पर कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ लालबाग के राजा का आशीर्वाद लिया है, कैसे अमित शाह सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे, वहां बप्पा का पूजन किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बात पर विपक्ष नाराज नजर आया। देखिए,

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जाएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है।

0: सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
1: गणपति बप्पाचं आगमन झालंय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरताय आणि बप्पा समोर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
2: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
3: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
4: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
3: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
5: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली, मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि, चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
3: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
2: गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी, शेयर की तस्वीरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महाराष्ट्र सदन में गणपति दर्शन करने के बाद पीयूष गोयल के आवास पर पूजा अर्चना की। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया गया है और आपको बता दें कि पीयूष गोयल के घर पर गणपति की स्थापना हुई है, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भगवान का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है, तस्वीरें शेयर की गई हैं। तो इस दौरान मराठा आरक्षण की हम बात करेंगे क्योंकि गणपति उत्सव शुरू हुआ है गणेश चतुर्थी के साथ, लेकिन आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल भी जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कल सुबह 11 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी उन्हें मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की मंजूरी नहीं मिल पाई है, जरांगे पाटिल ने कहा कि वो बहुत सीमित लोगों के साथ मुंबई आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मराठा समाज से अपील की है कि वो कम संख्या में गणपति उत्सव के दौरान ही यहां पर आएं, बड़ी संख्या में आंदोलन के लिए न पहुंचे मुंबई और

धैर्य को बनाए रखें। जरांगे पाटिल के कूच करने पर मुंबई फडणवीस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि उम्मीद है कि जरांगे गणेशोत्सव में जश्न में विघ्न नहीं डालेंगे।

0: महाराष्ट्र समेत पूरा देश गणपति बप्पा की आराधना कर रहा है। मुंबई में खास तौर पर रौनक बनी हुई है। गणेश पंडालों में गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। मायावती सरकार और मुंबई पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा भी कर रही है, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार और पुलिस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जरांगे ने गणपति महोत्सव के दौरान 15 सितंबर की सुबह मुंबई कूच का ऐलान कर दिया है। जरांगे सुबह 11 बजे अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए रवाना होंगे। हालांकि जरांगे गणपति महोत्सव की वजह से सिर्फ 2 गाड़ियों, 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे। मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील की है कि जल्दबाजी ना करें, शांति बनाए रखें। जरांगे ने मराठा समाज से फिलहाल मुंबई की ओर बड़ी संख्या में रवाना नहीं होने की अपील की है। मनोज जरांगे के अनशन का ये तीसरा हफ्ता है। उनकी मुख्य मांगे हैं, सभी मराठों को ओबीसी श्रेणी के तहत कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हैदराबाद और सतारा गजेटियर के रिकॉर्ड को पूरी तरह से लागू किया जाए। अनशन समाप्त होने से पहले बाकी बची मांगों पर आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव जारी किया जाए। जरांगे ने बताया कि मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन और अनशन के लिए पुलिस की अनुमति नहीं मिली है, फिर भी वो मुंबई जाने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जरांगे ने कहा कि त्योहार की पृष्ठभूमि में आंदोलन की अनुमति नहीं देकर सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बप्पा के जश्न में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए।
1: जवळजवळ सगळ्या मागण्या पूर्ण झाल्या सगळ्या, आणि काही मागण्या अशा आहेत की ज्या आता कोर्टामध्ये आहेत, विविध टप्प्यांवर आहेत, तेही आम्ही अवगत केलेलं आहे की या मागण्या करण्याकरता कोर्ट आहे किंवा इतर संवैधानिक पद्धती आहेत, त्याचा अवलंब केल्याशिवाय मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत। आमची पहिलेपासून एक भूमिका राहिली आहे, आम्ही चर्चेची द्वारं कधीच बंद केली नाही। केवळ एवढंच सांगितलं की जे संवैधानात्मक आहे, जे या ठिकाणी राज्यघटनेप्रमाणे आहे, त्या गोष्टी आम्ही करायला तयार आहोत। ज्या गोष्टी कायदा, कोर्टाने आखून दिलेले नियम याच्या बाहेर जातील, ते आम्हाला करता येणार नाहीत। त्यामुळे अतिशय खुल्या मनानं सगळ्या मागण्या आम्ही मान्य केलेल्या आहेत। मला असं वाटतं की गणेश पर्व सुरू असताना मुंबईमध्ये आंदोलन करणं, गणेश भक्तांना त्यानिमित्ताने असुविधा होणं, हे कोणाच करता योग्य नाही। मला असं वाटतं की निश्चितपणे या गोष्टीचा पुनर्विचार झाला पाहिजे।
0: इससे पहले भी जरांगे कह चुके हैं कि वो मुंबई न्याय के लिए आ रहे हैं। सरकार निश्चित रहे, हम गणेशोत्सव में खलल नहीं डालेंगे।
2: आम्ही छत्रपतींना मानणारे पण आहेत, हिंदू धर्माला पण मानणारे आणि अन्यायाविरुद्ध लढणारे पण आहेत। अन्याय झाल्याच्या नंतर त्याविरुद्ध लढावं लागतं। सणावारात, गणेशोत्सवात कधीही विघ्न आमच्याकडून येणार नाहीये। आम्ही मुंबईला न्यायासाठी येतोय, विघ्न आमच्याकडून कधीच होणार नाही। परंतु हेही लक्षात ठेवावं की सण उत्सव कशासाठी आहे।
0: कॉक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी जालना पहुंचकर जरांगे के आंदोलन को खुले समर्थन का ऐलान कर चुके हैं।
3: आज मनोज सर के अनशन को 14 दिन हुए हैं। 14 दिनों से एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, अनशन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार से कोई इनकी बात तक सुनने को आ नहीं रहा है, कोई मिलने को भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने को भी नहीं आ रहा है।
0: सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस गणेश उत्सव के दौरान मराठा आंदोलनकारियों को आने से रोक पाएगी या फिर सरकार के पास इसका कोई स्थायी समाधान है।
4: मुंबई में गणेशोत्सव के धूम के बीच मराठा आंदोलनकारियों का संकट पूरी तरह से मुंबई पर मंडराते नजर आ रहा है, क्योंकि अब इजाजत ना मिलने के बावजूद मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले मुंबई की तरफ कूच करेंगे। अब उन्हें कौन रोक सकता है, ये वो चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि जितनी मांगे पूरी कर सकते थे उतनी वो कर चुके हैं। अब कुछ चीजें जो है वो कोर्ट के स्तर पर और संवैधानिक तरीके से ही हो सकती है। हालांकि फडणवीस ये कहने से नहीं चूके कि उनकी तरफ से चर्चा के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मनोज जरांगे पाटिल जब मुंबई की तरफ अकेले कूच करेंगे, कितनी संख्या में मराठा आंदोलनकारी उनके साथ जुड़ते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: और अब बात करेंगे दिशा सालियान मामले की, क्योंकि मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज किए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका की भी जांच दायरे में।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
6: जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा।
7: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
6: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है, इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में FIR दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई के FIR की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
8: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत FIR रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो SIT के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और SIT के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
9: CBI ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है, जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। आपको बता दें कि सतीश सालियान के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियान के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनू मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार है, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार है और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
10: अदालत ने यह भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियन के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन, जो दिशा सालियन के पिता हैं, उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इश्ारा कर दिया।
5: और चलिए अब गणेश चतुर्थी पर किस तरीके से बॉलीवुड में गणपति बप्पा को देखने को मिला है, किस तरीके से सब लोगों ने अपने अपने घर में गणपति को स्थापित किया है, और आज इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए एक नजर।

0: और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वडोदरा में भारी बारिश के बीच प्रशासन की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि जासपुर चौराहे के पास नई ड्रेनेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में दादी और पोती गिर पड़े। गनीमत यह रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही दोनों को बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ड्रेनेज का काम पूरा होने के बाद गड्ढे को ठीक से भरा ही नहीं गया था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसी तरह के ड्रेनेज की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: भारत एशिया का चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर भारत ने श्रीलंका को मात दी लेकिन जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मंच पर मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी। ट्रॉफी भारत को सौंपने की बारी आई लेकिन भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी चलती रही लेकिन भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए। इसके बाद कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले पर टीम का रुख साफ कर दिया और बोला, ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है। यानी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन खिताब भारत के नाम है। मैदान पर चैंपियन और अपने फैसले पर भी कायम भारतीय टीम। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मोरिया और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज।

यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, बिना चर्चा के न हो लागू। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले समानता के साथ विविधता का भी सम्मान जरूरी। चिराग पासवान ने आगे कहा, पहले ड्राफ्ट देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे। राजस्थान में चला बीजेपी का जादू, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में जीत, सिर्फ एक सीट पर सिमटी है कांग्रेस। पार्टी दफ्तर में सीएम अजलनान ने मनाया जश्न। विशाल सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, नीरू मौर्या और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। दिशा सालियान केस पर वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का समर्थन किया, कहा दिशा सालियान केस का राजनीतिकरण न हो। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर से बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को संबोधित करेंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज। पीयूष गोयल के घर गणेश पूजा में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बप्पा का आशीर्वाद लिया। मनोज जरांगे पाटिल मुंबई कूच का ऐलान कर चुके हैं, अंतरवाली सराठी से होंगे रवाना, 2 गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे। मराठा समाज में जरांगे की अपील, जल्दबाजी न करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान की अनुमति नहीं मिली, फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम जरांगे। जरांगे पाटिल को लेकर फडणवीस का भी दावा, लगभग सभी मांगे पूरी, न्यायालय के दायरे वाली मांगों पर प्रक्रिया जरूरी। गणेशोत्सव में मुंबई में आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की अपील, लोगों को परेशानी में डालना उचित नहीं है। यूसीजी पर सीएम फडणवीस बोले, समिति की रिपोर्ट जल्द आएगी, रिपोर्ट के बाद होगा अमल। विमल इलायची केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाहरुख ख्वाजा टाइगर को नोटिस का खिलाफ याचिका खारिज। वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार की सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता निलंबित। योगी सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। एबीवीपी ने परीक्षा सुधार टास्क फोर्स को सुझाव दिए, नीट 2 चरणों में कराने की सिफारिश। एनटीए ने बदला अपना दफ्तर, अब मिंटो रोड से सरकारी प्रेस भवन से काम होगा। बागपत में ऑनलाइन शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में शादी के बाद पति लापता, तलाश में बागपत पहुंची पत्नी। नागपुर में रेत कारोबारी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या, सिम्बा नेटग्रिड और एआई तकनीक से पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। भीड़ में निर्माण कार्य के दौरान लगा बिजली का तेज झटका, 2 मजदूरों की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। पंचकुला में बड़ा सड़क हादसा, कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, 3 की मौत। गुजरात विधानसभा और सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी, बिहार झारखंड से 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में महिला दरोगा से बदसलूकी और थप्पड़ का वीडियो सामने आया, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में नकली कैंसर की दवाओं का रैकेट, 90 से ज्यादा अस्पताल जांच के दायरे में आए। भोपाल में फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह पर तीसरी एफआईआर, नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी। सिंगरौली में टायर खोलने के दौरान हुआ था ब्लास्ट, ड्राइवर से उड़े, ड्राइवर के चिथड़े उड़े, घटना का लाइव वीडियो सामने आया। अलवर में पिता ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की, बेटे की मौत हुई, बेटी की हालत गंभीर। धनबाद में नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार बरामद। फजिलका के जलालाबाद में सिटी थाने पर ग्रेनेड हमले का खुलासा, पाकिस्तान एजेंसी के इशारे पर बदलाव, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या, 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के मेहसाड़ा में एक तेज रफ्तार कार ने बरपाया था कहर, एक बुजुर्ग और स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी। वाराणसी में डॉक्टर की सुसाइड की वजह से खुलासा, घरेलू कलह और एनेस्थीसिया की ओवरडोज से गई जान। बलिया में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान की निर्मम हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार की, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग। फजिलका में एक डॉक्टर का खून से लथपथ मिला था शव, सिर और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान, पुलिस ने जांच शुरू की। पंचमहल से महाकाल के दर्शनों को जा रहे यात्री की सड़क हादसे में मौत हुई, कलोल एक्सप्रेस वे पर भीषण टक्कर हुई। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बन गया था मौत का कुआं, जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत की खबर, बचाने गया तीसरा शख्स भी घायल हुआ। मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत करके आग को बुझाया। हाथरस में नगर पालिका की जेसीबी के नीचे दबकर 11 साल की बच्ची की मौत। सोनभद्र में ज्वेलर की दुकान में लाखों रुपए के गहने चोरी हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जामनगर में पान की दुकान में घुसकर युवक पर डंडे के पाइप से हमला किया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सहारनपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उल्टा लटका कर पीटा गया, युवक को छोड़ने के बदले में 5 लाख रुपए के लेनदेन की चर्चा, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी।
दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश के आसार, अगले तीन दिन तक छाए रहेंगे बादल, कुछ अलग जगहों पर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ है माहौल, सैलानियों के लिए स्वागत। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है मेडिकल की टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम सुहाना हुआ, डल झील के शिकारे का मजा ले रहे हैं सैलानी। राजौरी में इस बार अखरोट की शानदार पैदावार, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, अहमदाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट। अहमदाबाद में बारिश ने किया लोगों को परेशान, कई इलाकों में भरा है बारिश का पानी। लातेहार में गहरे पानी में दो आठ साल की बच्चियों के डूबने से मौत हुई है, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। महबूबाबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर भर गया है पानी, कई जगह ट्रैफिक ठप। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय से बारिश के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है, डांग में कई इलाकों में बारिश के बाद पानी ही पानी। तालबा के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखकर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, अमित शाह ने भी फडणवीस के आवास पर पूजा अर्चना की। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने भी गणपति पूजा की, भक्तिभाव से विनायक की आरती की गई। नवनीत राणा और रवि राणा के घर गणेशोत्सव की धूम, बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए परिवार। जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी, 40 वर्षों से गणेश जी के 3000 से ज्यादा स्वरूपों का संग्रह। पुणे में निकली श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा, रथ पर सवार दिखे गणपति, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में शानदार तरीके से सजाई गई मोती डूंगरी वाले गणपति का दरबार सजा, भक्तों का सैलाब। हैदराबाद में बेगम बाजार में फीलखाना इलाके में अनोखे गणपति के दर्शन, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना। अकोला में सजा गणपति बप्पा का दरबार, बाल गणपति से सेल्फी और माखन चोर तक कई रूप नजर आए। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मनाया गया तीज का त्यौहार, बड़ी संख्या में महिलाएं हो रही थी शामिल। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर पर भी बता रहे हैं बप्पा, परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां पर भी बप्पा की स्थापना, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते हुए नजर आए सचिन। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति में लीन नजर आई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर पर पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इंदौर में 7 करोड़ के आभूषणों से सजे खजराना गणेश, ध्वजा पूजन के साथ गणेश उत्सव शुरू हुआ। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव में रंगे हुए हैं। पुणे में नाना पाटेकर के घर गणेशोत्सव की धूम, बप्पा की भक्ति में डूबा पूरा परिवार। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बप्पा के दर्शनों के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा किया। गणेश चतुर्थी पर सुनीता आहूजा ने बप्पा की पूजा की, परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दुहन के अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की वहां पहुंचकर। बेतिया में एक ज्वेलरी शोरूम में उद्घाटन में शोरूम पहुंची थी अभिनेत्री करिश्मा कपूर, शहर में ग्लैमर का रंग नजर आया। एसबीआई रिसर्च ने आरबीआई को अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की रेपो रेट बढ़ोतरी की सलाह दी है, अगर सलाह मानी गई तो 50 लाख के होम लोन की ईएमआई में करीब 1600 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 1 जनवरी 2027 से नए नियम लागू होने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा और 30 दिनों की सबसे कम कीमत दिखानी होगी। त्योहारी सीजन के दौरान सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका, 15-16 सितंबर से अमेरिकी फंड बैठक से मिलने वाले संकेत तय करेंगे सोने और चांदी के आगे की चाल। सितंबर की शुरुआत में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस 11 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची, इतना ज्यादा नकदी से लोन और एफडी की ब्याज दरों में कमी की संभावना। भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत पहले 2.5 लाख भारतीय कारों को केवल 8% शुल्क पर यूरोप में एंट्री मिलेगी, 5 साल में भारतीय कार कंपनियों के लिए शुल्क खत्म हो जाएगा। यूक्रेनी हमलों में रूसी रिफाइनरियां प्रभावित होने से अगस्त में रूस के कुल पेट्रोल आयात में भारत की हिस्सेदारी 94% रही, कुल तेल के उत्पादन के आयात में भारत का करीब 70% हिस्सा। 2025-26 में बने 57,000 से ज्यादा यूएन प्लान, करीब 69% हिस्सेदारी 18 से 30 साल के जेंजी कर्मचारियों की रही। क्विस कॉर्प की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी 28%। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा है कि सुपर इंटेलिजेंट को तभी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जब इससे इंसानियत को फायदा हो। उन्होंने एआई के इंसानों के कंट्रोल में रहने की भी वकालत की है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने घरेलू और विदेशी टूरिज्म की बढ़ती डिमांड के बीच देश में एयरक्राफ्ट बनाए जाने के फैसले का जानकारी दी है।
जीएटीओ डायनेमिक्स ने एनालिसिस के मुताबिक कार बाजार में अभी भी पेट्रोल कारों का दबदबा बना हुआ है। माइल्ड लॉ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों का मुख्य ईंधन पेट्रोल को ही माना जाएगा। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी ट्रेन पर हमले को लेकर रूस पर भड़के नेटो महासचिव मार्क रूट, कहा इस हमले से पुतिन की बेताबी और लापरवाही उजागर हुई। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हुए ट्रेन हमले को लेकर यूरोपीय संघ का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी देशों को डराने के लिए रूस ने किया है हमला। सऊदी अरब के खमीस मुशैत एयरबेस पर हूती का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में हुए जानलेवा हमले में मदद के दावों पर चीन ने जताया कड़ा विरोध भी जताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ओमान में ईरान और खाड़ी देशों के बीच होने वाली बैठक टल गई है, नई तारीख पर बनी है सहमति, ईरान के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। इराक ने ईरान के साथ तीन प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। सुरक्षा और तकनीकी समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। जापान के दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख बिरोल, राजधानी टोक्यो में जापानी पीएम तकाईची के साथ मुलाकात। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जिंग म्यूंग से मुलाकात की। दोनों ही देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन से अलग हो सकते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ने 319 साल के बाद ब्रिटेन से अलग होने की मांग हुई है फिर से तेज। सीरिया में ईंधन की कीमत बढ़ाने पर भड़काए लोगों का गुस्सा, एलेप्पो में सड़कों पर उतर आए सैकड़ों प्रदर्शनकारी, विरोध में जलाए गए टायर।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी भारत अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत से दुनिया के बड़े मंचों पर अपनी धाक जमाता है, तब तब पश्चिमी मीडिया का एक पूर्वाग्रह सामने क्यों आ जाता है। चाहे G20 हो या हाल का ब्रिक्स सम्मेलन, भारत की सफल कूटनीति की तस्वीरों को दरकिनार कर विदेशी मीडिया ने जानबूझकर होर्डिंग्स के आगे साइकिल चलाते व्यक्ति की तस्वीरों को प्रमुखता दी। ये केवल एक इत्तेफाक है या भारत के बढ़ते कद को कमतर दिखाने की सोची समझी विजुअल ट्रोलिंग? आज सवाल ये है कि 1963 में साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले भारत से लेकर आज की अंतरिक्ष शक्ति तक पश्चिमी मीडिया का ये नजरिया बदलता क्यों नहीं है। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को कैसे चीन का सरकारी मीडिया रिश्तों का नया अध्याय मान रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत के यूपीआई और चीन की फिनटेक ताकत मिलकर ब्रिक्स का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश कृषि, ऊर्जा, आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं।

इसके बाद आपको बताएंगे जिस ब्रिटेन ने कभी दुनिया के कई मुल्कों को माटा, कभी भारत के सीने पर विभाजन के जख्म दिए, कि आज वही ग्रेट ब्रिटेन खुद टूटने की कगार पर है। ब्रिटेन का हिस्सा रहे स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये तीनों देश अब अलग होकर अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसकी नौटंकी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक नजदीक आते ही पाकिस्तान फिर से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ड्रामेबाज मोड में आ गया है और पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर पर घोषित इनाम को 70 लाख पाकिस्तानी रुपए कर दिया। गजब कलाकारी, खुद ही आतंकियों की नर्सरी चलाओ, उन्हें अपनी ही सरपरस्ती में पालो पोसो और जब FATF की ग्रे लिस्ट का डंडा चले तो नाम मात्र का इनाम बढ़ाकर दुनिया को बेवकूफ बनाने निकल पड़ो। इसके बाद पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत दिखाएंगे। भारत की जाबाज बेटियों ने क्रिकेट के मैदान पर जब एशिया कप अपने नाम किया तो बेशर्मी से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ट्रॉफी पकड़ाने पहुंच गए, लेकिन भारत की चैंपियन बेटियों ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। स्टेडियम में जब ट्रॉफी चोर के नारे गूंजे तो मोहसिन नकवी खिसिया कर ट्रॉफी दबा कर मैदान से ऐसे भागे जैसे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया। यही हरकत उन्होंने मेंस एशिया कप में भी की थी। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही 100 से ज्यादा मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह एक्शन एक सरकारी सर्वे के बाद लिया गया। आरोप है कि यह मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। इस बीच मंत्री दिलीप घोष ने बयान दिया कि कई मदरसों से राज्य में हुए आतंकी हमलों के तार जुड़े थे और बांग्लादेशी चरमपंथी इनमें शरण लेते थे। ब्रिक्स समिट की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवान ने लाइक्स और व्यूज के लिए ड्यूटी को प्राथमिकता देने के बजाय रील्स बनाना ज्यादा जरूरी समझा। स्नाइपर राइफल के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर बनाई गई ये रील जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई महकमे में खलबली मच गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुशासन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जवान को सस्पेंड कर दिया।

0: देश में महंगाई को लेकर बड़ी खबर। सरकार द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई है, जो कि जुलाई के 4.45% के आंकड़े से ज्यादा है। सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल को इस वृद्धि की वजह माना जा रहा है। उधर राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राज्य के 10 नगर निगमों में से 5 पर बीजेपी का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस केवल 1 पर सिमट गई। अलवर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भीलवाड़ा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया। हालांकि अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों में मिली हार चिंता का सबब बीजेपी के लिए जरूर है। यूपी चुनावों से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रायबरेली में कहा कि सनातन धर्म का ध्वज भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। जो शक्ति सनातन को कमजोर करने की कोशिश करती है वो भारत के विकास में बाधा बनती है।
1: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सऊदी अरब की विशाल सेना यमन में हूती लड़ाकों के सामने इतनी बेबस और लाचार क्यों है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रक्षा बजट सऊदी अरब की सेना का है, जो लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए का है। यह पैसा नेपाल, जॉर्जिया और लेबनन जैसे देशों की कुल जीडीपी से दोगुना है, या जिस यमन के खिलाफ सऊदी अरब संघर्ष कर रहा है उसकी कुल जीडीपी की तुलना में सऊदी अरब का एक साल का रक्षा बजट 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो कोई भी देश अपनी सेना और हथियारों पर उतना पैसा खर्च नहीं करता जितना सऊदी अरब करता है। इस मामले में इसराइल भी सऊदी अरब से काफी पीछे है। इसी वजह से यह सवाल कई लोग पूछते हैं कि जब सऊदी अरब के पास इतनी विशाल सेना है, इतना बड़ा रक्षा बजट है और इतने आधुनिक हथियार हैं, तब आखिर परेशानी कहां है और क्यों सऊदी अरब हूती के सामने हथियार नहीं उठाता। 8 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के ठिकानों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए और खुद सऊदी अरब ने इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की, लेकिन इन हमलों का उसकी सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 और 11 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और केवल 2 दिनों के भीतर रणनीतिक रूप से बेहद अहम अल मोखा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। और यहां भी सऊदी अरब की सेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा यमन की सेना ने अमेरिका और सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों के इस अप्रत्याशित हमले के खिलाफ मांगी गई हवाई मदद देने से इनकार कर दिया, जिससे मोखा पोर्ट उनके हाथ से निकल गया। मोखा पोर्ट के बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक अहम द्वीप पर भी कब्जा कर लिया, जिसे बाब अल मंदेब पर हूती का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। और इसके बाद दावा है कि हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहरों अभा और खमीस मुशायत में हवाई हमले किए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ बड़े हमले नहीं किए। कुछ जगहों पर उसने एयर स्ट्राइक जरूर की, लेकिन हूती का दावा है कि यह एयर स्ट्राइक उसकी स्थिति को बदलने में नाकाम रही। और इसीलिए आज यह समझना जरूरी है कि इस युद्ध में सऊदी अरब की परेशानी क्या है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को जरा देखिए।
2: I'm gonna go to the hospital.

हुती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को बंद कर दिया है, जो 1200 किलोमीटर लंबी है और जो फारस की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ, तब इसी पाइपलाइन के रास्ते सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात को जारी रखा और उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो हॉर्मूज बंद होने के बाद भी सऊदी अरब मिस्र की सुमेध पाइपलाइन और सूज कनाल के रास्ते यूरोप में अपना कच्चा तेल भेज रहा था और बाबल मंदेप के रास्ते एशिया के देशों को कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था। लेकिन अब बाबल मंदेप पर हूती लड़ाकों के कब्जे के बाद यह निर्यात पूरी तरह ठप हो सकता है और इसका असर भी दिखने लगा है। केपलर के मुताबिक जून में सऊदी अरब एशिया को करीब 34 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेज रहा था, जो अगस्त में घटकर केवल 1,28,000 बैरल प्रतिदिन रह गया और अब यह और कम हो सकता है या यह आपूर्ति पूरी तरीके से रुक भी सकती है, क्योंकि बाबल मंदेप पर हूती लड़ाकों का कब्जा है। यानी मौजूदा स्थिति यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता था वो भी बंद है, और जिस बाबल मंदेप से दुनिया का 12% कच्चा तेल गुजरता था उसे भी ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बंद कर दिया है। और यहां यह भी समझिए कि हूती के लड़ाकों को रोकना मुश्किल क्यों है। हूती के लड़ाके इस युद्ध में ह्यूमन वेव टैक्टिक्स की रणनीति अपना रहे हैं, जिन्हें आप समुद्र की लहरों जैसा मान सकते हैं। जैसे एक लहर आती है, किनारे से टकराती है, उसके टूटते ही दूसरी बड़ी लहर आ जाती है, ठीक वैसा ही हूती के लड़ाके भी कर रहे हैं। सबसे पहले हूती अपने 50 से 100 लड़ाकों के एक ग्रुप को सीधे सामने वाली सेना की चौकियों पर हमला करने के लिए भेज देता है, और इनका मकसद जीतना नहीं बल्कि सामने वाली सेना को उलझाना और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवाना होता है। जैसे ही पहली लहर के लड़ाके मारे जाते हैं या घायल होते हैं, हूती तुरंत पीछे से 100 लड़ाकों की दूसरी लहर भेज देता है। जब तक विरोधी सेना संभलती है, तीसरी चौथी लहरें आ जाती हैं और हूती लड़ाकों की यह कतार अंतहीन लगती है। और ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझिए। जब सैकड़ों लड़ाके एक साथ दुश्मन देश की सेना की तरफ दौड़ रहे हों तो मशीन गन लगातार चलती है, और इसी दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब सामने वाली सेना की बंदूकें गर्म होकर बंद होने लगती हैं, जाम होने लगती हैं, उनकी गोलियों का स्टॉक खत्म होने लगता है। इसी चीज का हूती विद्रोही फायदा उठाते हैं और सामने वाली सेना से उसके नियंत्रण के इलाके छीन लेते हैं, और अभी यमन में भी यही हो रहा है।

अब आप ये समझिए कि सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के सामने इतना लाचार और बेबस क्यों दिख रहा है। पहला कारण है अकेले पड़ जाना। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वो हूती विद्रोहियों पर सीधे जमीनी या बड़े हमले करने का इरादा नहीं रखता, जबकि तुर्की और पाकिस्तान ने भी मक्का समझौते के तहत सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया है। दूसरा, सऊदी अरब के पास महंगे लड़ाकू विमान, टैंक और पेट्रियट जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हूती ईरान की तरह बेहद सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए लाखों डॉलर की एक पेट्रियट मिसाइल से हूती के कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को गिराना आर्थिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है। और तीसरा, हूती सीधे सामने आकर लड़ने के बजाय सऊदी अरब के तेल के कुओं और अरामको की रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुंच रहा है और वो जवाबी कार्रवाई करने से हिचक रहा है। यानी सऊदी अरब नहीं चाहता कि हूती उसके आर्थिक ढांचों को निशाना बनाए और इसके कारण क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट 2030 खतरे में पड़ जाए। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना और उसकी अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक और वैश्विक बिजनेस हब के रूप में विकसित करना। जैसे नियोम सिटी, यानी ऐसा शहर बनाना जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चले। लाल सागर के द्वीपों पर मालदीव की तर्ज पर लग्जरी रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट हब बनाना। धार्मिक पुलिस की शक्तियों को खत्म करना। महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना। पर्यटन के लिए सऊदी अरब को विश्व के लिए खोलना। अब अगर सऊदी अरब हूती के साथ युद्ध में उलझता है तो मोहम्मद बिन सलमान का यह मिशन खतरे में पड़ जाएगा, और इसीलिए सऊदी अरब यमन में हूती के खिलाफ सीधा सैन्य मोर्चा खोलने के लिए सहज नहीं दिखता। यहां यह भी समझिए कि हूती की सऊदी अरब से लड़ाई क्या है, और जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना जैसे इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक शहर हैं, उस सऊदी अरब से हूती के इन मुस्लिम लड़ाकों की क्या दुश्मनी। हूती का मतलब उन शिया मुसलमानों से है जो यमन के उत्तरी पहाड़ों में रहते हैं। इन्हें जैदी शिया भी कहा जाता है, जो यमन की कुल आबादी का 35-40% है। 1990 के दशक में जब यमन सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा से प्रभावित हो रहा था, तब इन्हीं जैदी शिया मुसलमानों ने अपनी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक पहचान को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था शबाब अल मुअमिनीन, यानी वो युवा जो अल्लाह और उसके नियमों पर सच्चा ईमान रखते हैं। यह आंदोलन हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने शुरू किया था, और क्योंकि उनका सरनेम हूती था इसीलिए उन्हें मानने वाले लोगों ने बाद में इस संगठन को हूती कहना शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत 2003 में हुई। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हुसैन अल हूती अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो गए, और उन्होंने यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह, जो सऊदी अरब और अमेरिका के दोस्त माने जाते थे, उनके खिलाफ बगावत कर दी। इसी वजह से 2004 में यमन की सेना ने हुसैन अल हूती को मार गिराया, और इसके बाद इस आंदोलन ने हथियार उठा लिए, अपने मारे गए नेता के नाम पर खुद को हूती कहना शुरू कर दिया। और जानते हैं हूती और सऊदी अरब की लड़ाई क्या है। आज सऊदी अरब हूती को आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन यह हूती बना था सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा के खिलाफ। वही विचारधारा है जिसमें सुन्नी सूफियों और शिया मुसलमानों को भटके हुए या काफिर बुलाया गया। जिस विचारधारा में यह माना गया कि किसी सूफी संत की मजार पर जाना या पैगंबर के परिवार के सदस्यों की कब्रों का सम्मान करना पाप है। जब सऊदी अरब में वहाबी ताकत में आए तो उन्होंने मक्का और मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब के साथियों, उनकी पत्नी और परिवार की सदियों पुरानी ऐतिहासिक कब्रों और मजारों को बुलडोजर से तुड़वा दिया, जिससे सऊदी अरब के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। यही नहीं, इस वहाबी विचारधारा से प्रेरित होकर अलकायदा और आइसिस जैसे संगठन बने, और आज हूती के तमाम विद्रोही यही कहते हैं कि सऊदी अरब उन्हें आतंकी संगठन मानता है, जबकि सऊदी अरब खुद कट्टर वहाबी विचारधारा से जुड़ा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी देखिए। 1700 के दशक में
आज का सऊदी अरब जैसा कोई देश नहीं था। उस वक्त पूरा अरब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। मक्का और मदीना पर उस्मानी साम्राज्य का नियंत्रण था और सऊदी अरब के बिल्कुल बीच में एक सूखा पथरीला बेहद पिछड़ा इलाका था जिसे नज्द कहा जाता था। इसी इलाके में दो लोग रहते थे जिनकी मुलाकात ने इतिहास रच दिया। इनमें पहले थे मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब जो एक धार्मिक स्कॉलर या मौलवी थे। इनका मानना था कि अरब के मुसलमान असली इस्लाम भूल चुके हैं और वो सूफियों की मजारों पर जाकर या पेड़ों पत्थरों का सम्मान करके पाप कर रहे हैं। दूसरे थे मोहम्मद बिन सऊद जो नज्द इलाके के एक छोटे से कस्बे दिरिया के अमीर थे। उनके पास सेना और ताकत तो थी लेकिन वो पूरे अरब पर राज करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी बड़ी धार्मिक वजह चाहिए थी जिसके नाम पर वो दूसरे कबीलों पर हमला कर सके और अपनी सत्ता को सही ठहरा सके। जब अल वहाब को उनके गांव से निकाला गया तो वो शरण मांगते हुए मोहम्मद बिन सऊद के पास पहुंचे और इसी दौरान ये समझौता हुआ कि मोहम्मद बिन सऊद वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और बदले में अल वहाब एक फतवा जारी करके ये घोषणा कर देंगे कि मोहम्मद बिन सऊद और उनका परिवार ही इस पूरी धरती का असली और वैध शासक है। और इसी के बाद सऊद परिवार कई इलाके जीतता गया और बाद में 1932 में सऊदी अरब नाम का देश बना और आज यही सऊद परिवार वहां की सत्ता में है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि ब्रिक्स समिट से भारत को हासिल क्या हुआ और भारत ने कैसे ब्रिक्स की कूटनीतिक परीक्षा को पास किया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ब्रिक्स समिट के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई अनसीन और कैंडिड वीडियो वायरल हो रहे हैं और इन वीडियोस में दुनिया के बड़े नेताओं के बीच औपचारिक बैठकों से हटकर कुछ हल्के फुल्के और दिलचस्प पल कैमरे में कैद हुए हैं। जैसे इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद अनौपचारिक अंदाज में बैठकर बातचीत और चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि इस समिट में गंभीर मुद्दों और भाषणों से परे पर्दे के पीछे इन वैश्विक नेताओं के बीच काफी दोस्ताना और सहज माहौल था।

इस बार का ब्रिक्स समिट भारत के लिए सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा थी और भारत उसमें काफी हद तक सफल रहा। मुख्य रूप से भारत के सामने पांच बड़ी चुनौतियां थी। पहला, ब्रिक्स के अंदर अलग अलग देशों के बीच मतभेद थे। दूसरा, ईरान और यूएई के बीच तनाव था। तीसरा, रूस और ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख चाहते थे। चौथा, चीन ब्रिक्स को अमेरिका के मुकाबले एक मजबूत धड़े के रूप में देख रहा था। और पांचवा, इस सब के बीच भारत चाहता था कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बने, और ऐसा करना कूटनीतिक रूप से आसान नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार यही लिख रहा था कि भारत ज्वाइंट डिक्लेरेशन के मोर्चे पर नाकाम रह सकता है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भारत इसमें सफल रहा और इसीलिए इस बार का ब्रिक्स पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन बना। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि ईरान और यूएई के बीच युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद थे, और इन मतभेदों के कारण मई महीने में जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तब उसमें संयुक्त बयान नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईरान और यूएई दोनों देशों ने मिडल ईस्ट में संयम दिखाने की अपील को स्वीकार किया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर अपनी सहमति जताई, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और यूएई के क्राउन प्रिंस अल नाहयान की दिल्ली में मुलाकात भी हुई। यानी भारत ने सिर्फ ब्रिक्स के भीतर सहमति नहीं बनाई बल्कि युद्ध में आमने सामने आए दो देशों के बीच बातचीत के लिए दिल्ली को मंच बना

अब इस सवाल पर आते हैं कि जब भी भारत किसी बड़े वैश्विक मंच की मेजबानी करता है तो विदेशी मीडिया जानबूझकर ऐसी तस्वीरें क्यों चुनता है जो भारत को केवल एक गरीब या विकासशील देश के रूप में दिखाएं। G20 की तरह इस बार भी कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी और मीडिया संस्थानों ने ब्रिक्स समिट की कवरेज करते हुए ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जिनमें बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स सम्मेलन का एक विशाल होर्डिंग दिख रहा है और उसके ठीक आगे से साइकिल सवार गुजर रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, एसोसिएटेड प्रेस, ब्लूमबर्ग, यहां तक कि ढाका ट्रिब्यून में भी पश्चिमी मीडिया के हवाले से खास तौर पर इसी तस्वीर को प्रकाशित किया गया। और यह भी तब हुआ जब इस बार के ब्रिक्स समिट की कई आधुनिक तस्वीरें मौजूद थी और भारत मंडपम से ऐसी भव्य तस्वीरें आई थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान छाप सकते थे, लेकिन इनके द्वारा खास तौर पर इसी एक तस्वीर को चुना गया जो वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद को कम करके आंकती है। और ऐसा नहीं है कि यह तस्वीर बिना किसी उद्देश्य के इस्तेमाल की गई होगी। इसके पीछे बड़ा उद्देश्य यही रहा होगा कि दुनिया ब्रिक्स की मेजबानी कर रहे भारत की आर्थिक हालत, उसकी गरीबी पर भी गौर करे। और ये पश्चिमी मीडिया ने पहली बार नहीं किया है। 2023 में जब भारत ने G20 समिट की मेजबानी की थी तब भी इसी तरह की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने छापी थी जिनमें G20 के बड़ी बड़े होर्डिंग्स के सामने से एक साइकिल सवार गुजर रहा था। और ठीक उसी पैटर्न को इस बार भी पश्चिमी मीडिया ने दोहराया। और यहां बात केवल इन सम्मेलनों की मेजबानी की नहीं है। 2013 जब भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ तब द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक ऐसा ही कार्टून प्रकाशित हुआ था। तब इसमें एक भव्य कमरा दिखाया गया था जिस पर एलीट स्पेस क्लब लिखा हुआ था और इस कमरे के अंदर सूट बूट और टाई पहने हुए कुछ पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बैठे थे जो हाथ में अखबार लिए गंभीर दिख रहे थे, जबकि कमरे के बाहर एक पारंपरिक भारतीय किसान हाथ में गाय की रस्सी पकड़े हुए उस एलीट क्लब का दरवाजा खटखटा रहा था। और ये कार्टून उस वक्त भारत के प्रति एक मानसिकता को दिखा रहा था। और आज भी ब्रिक्स को लेकर जो तस्वीरें इस्तेमाल हुई वो भी इसी का हिस्सा दिखती है। हम मानते हैं कि भारत पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और हमारे देश में बुनियादी तौर पर कई कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लिए जानबूझकर ऐसी तस्वीरें चुनी जाएं जो उसके सामर्थ्य को कम करके आंकती हैं। कड़वा सच तो यह है कि भारत ने इस पूर्वाग्रह को कई बार झेला है और हमारी ये विजुअल ट्रोलिंग कई दशकों से हो रही है। 21 नवंबर 1963 को जब भारत ने थुम्बा से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था तब रॉकेट के नोज कोन को साइकिल के पीछे कैरियर पर बांध कर ले जाया गया था। और इसके कुछ समय बाद जब भारत के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल का परीक्षण होना था तो उसे एक बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सैटेलाइट के मेटल कंटेनर के कारण गाड़ियों के सिग्नल में दिक्कत आ रही थी और नॉन मैग्नेटिक व्हीकल के रूप में उस वक्त बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन तब भी पश्चिमी मीडिया ने भारत का मजाक बनाया और ये कहा कि जो देश अपने नागरिकों को ठीक से खाना नहीं खिला सकता और जहां रॉकेट और सैटेलाइट ढोने के लिए भी साइकिल बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है वो अंतरिक्ष में जाने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इस मजाक और अपमान के बावजूद हमने अपना वो सपना पूरा किया और आज भारत दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष शक्ति है।

जब भारत में ब्रिक्स जैसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था और दुनिया की नजरें दिल्ली पर थी, तब खबरें नेताओं की बैठकों, ब्रिक्स देशों के बीच हुए समझौतों और भारत की कूटनीतिक सफलता पर होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने एक दूसरी ही खबर खोज ली और यह खबर भी सोशल मीडिया पर होने वाली विजुअल ट्रोलिंग के बारे में बताती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए ये लिखा कि जब इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, वहां कई देशों के शीर्ष नेता मौजूद हों, तब भारतीय अधिकारियों को बिना खाना खाए नहीं भेजना चाहिए। कुछ लोगों ने रणधीर जायसवाल पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए ये तक लिखा कि वो इस बैठक में शायद

खाना खाने आए थे। लेकिन जानते हैं इन वीडियोस की पूरी और असली सच्चाई क्या है? हकीकत तो यह है कि इन वीडियोस को सामान्य वीडियोस की तुलना में 3 गुना तेज फास्ट फॉरवर्ड किया गया था, और ऐसा इसलिए हुआ ताकि रणधीर जायसवाल या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बैठक में सिर्फ खाना खाते हुए ही दिखाई दें। और यह सिर्फ ट्रोलिंग के लिए नहीं हुआ, यह हुआ एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए, यानी कुछ लोगों ने व्यूज पाने के लिए असली वीडियोस से छेड़छाड़ की। बाद में इन्हीं के आधार पर भारतीय अधिकारियों का मजाक उड़ाया जाने लगा, जबकि ऐसे सम्मेलन और बैठकों में हिस्सा लेने वाले हर सदस्य के लिए उसकी टेबल पर ऐसा खाना या स्नैक्स रखे जाते हैं जो स्ट्रेस ईटिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था, कई घंटे तक चलने वाले ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी लगातार काम करते हैं, बैठकों में रहते हैं, दूसरे देशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, और ऐसे में बीच में कुछ खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल हमारे देश में वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके किसी का मजाक उड़ाना सामान्य हो गया है, और दुख की बात यह है कि इस तरह की ट्रोलिंग में कई लोग पूरा सच जाने बिना शामिल भी हो जाते हैं, और इस मामले में भी यही हुआ है।

खैर, इस बार के ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 7 साल बाद भारत में पहली बार द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब चीन का सरकारी मीडिया इस मुलाकात को और इस समिट को भारत और चीन के रिश्तों के लिए नया अध्याय मान रहा है। खासकर ये बात चीन के सरकारी मीडिया में लिखी जा रही है कि अगर भारत और चीन सहयोगी बनकर एक दूसरे के साथ काम करें तो दोनों देश दुनिया की बड़ी ताकत बन सकते हैं। जैसे चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा कि भारत और चीन ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ला सकते हैं, क्योंकि भारत के पास यूपीआई का अनुभव है और चीन के पास डिजिटल पेमेंट फिनटेक और अलीपे वीचैट पे जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। इसी तरह दोनों देश मिलकर ब्रिक्स देशों में कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी और उत्पादन व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिसका फायदा एशिया, अफ्रीका और दूसरे विकासशील इलाकों में देशों को मिले। और यही वजह है कि इस खबर के साथ ग्लोबल टाइम्स ने इस तस्वीर को प्रकाशित किया जिसमें भारत और चीन की केतली से ब्रिक्स के पौधे में पानी डाला जा रहा है, यानी दोनों देशों के बीच सहयोग का सुनहरा मौका माना जा रहा है।

0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच इस बात की भी काफी चर्चा हुई कि उनकी गाड़ी को दिल्ली में काले कपड़े से क्यों ढककर रखा गया था। इस कार का नाम है होंकी N701, जिसे चीन की होंकी कंपनी ने बनाया है और इसका मतलब होता है लाल झंडा या रेड बैनर। दिल्ली पहुंचने से पहले जब इस कार को हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तब इसे पूरी तरह काले कपड़ों से ढका गया था और अभी यही देखकर कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या किसी खतरे की वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकारी गाड़ी को भारत में काले कपड़ों से ढका गया था। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा किसी खतरे को देखते हुए नहीं किया गया था, ऐसा प्रोटोकॉल के तहत होता है और इसके पीछे चार वजहें बताई जाती हैं, जिनमें पहली वजह है सुरक्षा। चीन अपने राष्ट्रपति की कार को संवेदनशील मानता है और इसीलिए यात्रा के दौरान कार को लोगों की नजरों से दूर रखना सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है। दूसरी वजह है कार की पहचान और जानकारी छिपाना। इस तरह की गाड़ियों की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक नहीं की जाती, इसीलिए यात्रा के दौरान उन्हें ढक कर रखने से उनकी बनावट और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को अनावश्यक रूप से देखने से रोका जाता है। तीसरी वजह है कार को सुरक्षित रखना, यानी कार को धूल, बारिश, मौसम, खरोंच, सामान या दूसरी चीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काले कपड़े से ढक देना। और चौथी वजह है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो सामान्य व्यवस्था का हिस्सा होता है और दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। और इसीलिए ये कहना कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गाड़ी को दिल्ली में खतरा था इसीलिए उसे काले कपड़े से ढका गया, ये सही नहीं होगा। अब आपको ये बताते हैं कि जिस ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने भारत का विभाजन किया, कैसे वही आज खुद विभाजन की कगार पर खड़ा है। संभव है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह खत्म हो जाए और दुनिया के नक्शे पर केवल इंग्लैंड का नाम रहे। बहुत सारे लोग इसे समय का चक्र या वक्त का हिसाब कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के भीतर अलगाव और आजादी की राजनीति बेहद मजबूत हो गई। यूनाइटेड किंगडम चार देशों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है और मौजूदा विवाद यह है कि इंग्लैंड को छोड़कर बाकी तीनों देशों में पहली बार ऐसी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं जो ब्रिटेन से अलग होना चाहती हैं। और इसी चीज को देखते हुए आज वेल्स की राजधानी कार्डिफ में एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। इस समिट में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी, वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर रून अप यूवर्थ और उत्तरी आयरलैंड की नेता मिशेल ओनील शामिल हुए और इन तीनों नेताओं ने एक साझा घोषणा पत्र यानी जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इसमें ब्रिटेन सरकार से मांग की गई है कि वो इन देशों को अपने भविष्य का फैसला करने और आजादी के लिए जनमत संग्रह कराने का अधिकार दें। यूनाइटेड किंगडम 319 वर्ष पहले 1707 में बना था, जब किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड और किंगडम ऑफ इंग्लैंड और वेल्स एक संघ बनाने पर सहमत हुए थे। बाद में 225 साल पहले इसमें आयरलैंड भी शामिल हुआ और 104 साल पहले आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इससे अलग हो गया। पिछले 104 सालों में यूनाइटेड किंगडम का नक्शा एक बार नहीं बदला, लेकिन अब इंग्लैंड को छोड़कर बाकी देश इस यूनाइटेड किंगडम से निकलना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो यूनाइटेड किंगडम केवल इंग्लैंड तक सीमित हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 53% क्षेत्रफल इंग्लैंड में आता है। विभाजन की सूरत में यही 53% क्षेत्रफल उसके पास रह जाएगा, जहां 84% आबादी रहती है। अगर दुनिया के कुल क्षेत्रफल में देखें तो अभी यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी 0.16% है, लेकिन विभाजन की सूरत में यही क्षेत्रफल 0.09% रह जाएगा। और सोचिए, ये वही यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन है जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाया। एक जमाना था जब कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लगभग 100 देशों पर उसने राज किया था, यानी किसी न किसी ऐसे देश में सूरज आसमान में रहता था, अस्त नहीं होता था, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। 23% आबादी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रही, दुनिया के 24% क्षेत्रफल पर कभी ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा, लेकिन आज ब्रिटेन की हालत यह है कि उसने भारत, फिलिस्तीन, साइप्रस और आयरलैंड का बंटवारा किया। आज यही यूनाइटेड किंगडम बंटवारे की दहलीज पर खड़ा है। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर गुंडागर्दी की एक अलग कहानी सामने आई है। यहां पर एक कार चालक ने महिला बाइक राइडर को जानबूझकर टक्कर मारी और ये दिखाया जैसे अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस कार चालक को यह नहीं पता था कि महिला बाइक राइडर ने अपनी बाइक में कैमरा लगाया था। उस कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, उस कार चालक की हरकतें और जानबूझकर टक्कर मारना। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार चालक की छेड़छाड़, गुंडागर्दी और फिर जानबूझकर टक्कर मारना साफ साफ दिख रहा है। पूरे वीडियो में पीड़ित लड़की शिवानी चौहान ने खुद ही सारी कहानी बताई। वो खुद बता रही हैं कैसे एक सफेद कार चला रहे लड़के ने पहले तो छेड़छाड़ की, बाइक रोकने के लिए कहा, जब लड़की ने बाइक आगे भगाई तो इस बात से कार सवार भड़क गया, उसने जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी।
1: मैंने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया एंड आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
0: पीड़ित शिवानी ने शुरुआत में इस मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कार चलाने वाले इन लड़कों का वीडियो पोस्ट किया था, पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध में शामिल कार की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक ये कार मनीष नाम के एक शख्स की थी, जिसने अपने दोस्त कल्याण बैंसला को ये कार कुछ दिनों के लिए दी थी। हमारी टीम ने जल्द ही कल्याण बैंसला को ढूंढ निकाला। इस केस के आरोपी ने इस मामले में कुछ अलग ही कहानी बताई। उसके अनुसार बाइक राइडर्स का एक ग्रुप सड़क पर चल रहा था, वो कई बार उसकी गाड़ी के बगल से निकले। आरोपी का कहना है कि वो लोग उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। छेड़छाड़ के आरोपों पर उसने कहा कि वो उस लड़की से धीमे चलाने के लिए कह रहा था। हालांकि जब उससे ये पूछा गया कि उसने लड़की को टक्कर क्यों मारी, तो उसने कहा कि टक्कर गलती से लगी। जब ये पूछा गया कि गलती से टक्कर लगी तो उसने रुक कर मदद क्यों नहीं की, माफी क्यों नहीं मांगी, तो इस सवाल पर उसने कुछ अलग ही जवाब देना शुरू कर दिया।
2: मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने के लग रहे। मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पे रोकी, मैंने शीशा डाउन किया। मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और तुम सारे के सारे समझ रहे हो मेरी बात, तुम सारे के सारे मत चढ़ो। अब फिर भाई ने बोला मेरे ने, वो एक लड़के ने, कि भाई फायदा नहीं है रुकने में, निकल। मैं उस लड़की के लिए मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे, मैंने भाई से बोला भैया कि मैंने यार दुख हो रहा मुझे।
0: अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की, जो साल दर साल हो रही है और भारतीय टीम के हाथों हो रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अपनी किस्मत में भारतीयों से अपमानित होना लिखवा कर लाए। कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वुमेन्स टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल जीता और जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी को पता तो था कि भारत की लड़कियां उन्हें सबक सिखा सकती हैं, इसके बावजूद वो मंच पर पहुंच गए। मोहसिन नकवी को लगा था कि मेंस टीम इंडिया भले ही उनसे ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, लेकिन भारतीय लड़कियां ट्रॉफी लेने जरूर आएंगी, लेकिन भारत की लड़कियां किसी से कम है क्या, वो भी ट्रॉफी लेने नहीं गई। भारतीय लड़कियों ने मंच पर जाने के बजाय अवार्ड सेरेमनी के दौरान हेड कोच अमोल मजूमदार के पास जाकर जीत को सेलिब्रेट करना सही समझा। हेड कोच ने इस जीत पर भारतीय लड़कियों की सराहना की। मतलब यह है कि विमेन्स टीम इंडिया ने चैंपियन बनने की खुशी का सेलिब्रेशन आपस में ही करना बेहतर समझा। विमेन्स टीम इंडिया जब नकवी से ट्रॉफी नहीं ली तो वही हुआ जो करीब एक साल पहले हुआ था, मोहसिन नकवी बेइज्जत होकर ट्रॉफी लेकर भाग गए, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी मोहसिन नकवी की ऐसी हूटिंग शुरू कर दी थी कि उनके लिए स्टेडियम में रुकना मुश्किल हो गया। दर्शकों ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर कहना शुरू कर दिया था। ये सुनकर वो तुरंत स्टेडियम छोड़कर भागने लगे। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मोहसिन नकवी की बेइज्जती का समय और जगह वही था जो पिछले साल था। अब बात 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस की। हर साल 14 सितंबर आता है, हर साल वही पुरानी बातें दोहराई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, दीवारों वाले पोस्टर अब सोशल मीडिया की वॉल पर आ गए हैं। नारे वही हैं, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी सबसे प्यारी है, और फिर हिंदी को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज हम हिंदी दिवस पर सीधा, तीखा और कड़वा सवाल पूछेंगे। अगर हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, अगर 52,83,00,000 लोगों की यह मातृभाषा है, तो फिर यह भाषा सिर्फ मनोरंजन, चुटकुलों और रील्स तक क्यों सिमट कर रह गई? जब कोई छात्र क्वांटम फिजिक्स समझना चाहता है, कोई किसान फसलों की एडवांस्ड बायोटेक समझना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन शेयर बाजार और एआई का एनालिसिस चाहता है, तो इंटरनेट पर हिंदी में इसकी गहन जानकारी मिलना क्यों मुश्किल होता है? इस सवाल का उत्तर खोजने से पहले आपको भारत में इसराइल के राजदूत रुबेन अजार का वीडियो दिखाते हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषी लोगों को हिंदी भाषा में ही शुभकामनाएं दी है।
3: नमस्ते भारत, मेरा नाम रुबेन अजार है। मैं भारत में इसराइल का राजदूत हूँ। जब मैं 2 साल पहले भारत आया था, उस समय मैंने हिंदी सीखनी शुरू की थी। आज 2 साल बाद मैं आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: ये वास्तव में गर्व कराने वाली बात है कि दुनिया अब हिंदी और हिंदी बोलने वालों का महत्व समझ रही है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इसराइल के राजदूत ने हिंदी में वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दे दी। इंटरनेट पर 95,00,000 भारतीय ऑनलाइन आ गए। लेकिन क्या हिंदी अब ज्ञान और एआई की भाषा बनने के लिए तैयार है? जब इसराइल के राजदूत हिंदी बोलकर देशवासियों को बधाई देते हैं, तो यह केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि दुनिया समझ चुकी है कि भारत की असली पावर उसकी भाषा में बसती है। IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट सर्च में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का मार्केट शेयर 95% से ज्यादा हो चुका है। YouTube पर रेसिपी, न्यूज, एजुकेशन और टेक रिव्यू के 85% दर्शक ये कंटेंट हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में देखना पसंद करते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में बैठा युवा अब टाइप नहीं कर रहा, वो वॉइस कमांड दे रहा है, सीधे पूछ रहा है कि AI उसके खेत के लिए सही उर्वरक कौन सा है, या गांव में पंचायत चुनावों के लिए ये वाला पोस्टर डिजाइन करके दो। यही वजह है कि टेक कंपनियां लाखों करोड़ रुपए बहा रही हैं ताकि AI मशीनें हिंदी के मुहावरे, टोन या उससे जुड़े संदर्भ को इंसानों की तरह समझ सकें। खुद भारत अब अपने सर्वम AI और नेटिव LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रहा है। भारत GPT जैसी देसी चैटबॉट तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि देश की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को समझकर जवाब देंगे। लेकिन यहां सबसे गंभीर सवाल यह पैदा होता है कि जब AI से हिंदी में सवाल पूछा जाएगा, तो क्या उसका डिजिटल डेटाबेस सही और वैज्ञानिक जवाब दे पाएगा? आज जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंटरनेट पर हिंदी में क्या बिक रहा है। कॉमेडी, गॉसिप, रेसिपी, सनसनीखेज खबरें और रील्स। लेकिन जैसे ही कोई छात्र हिंदी में ढूंढता है साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मेडिसिन या मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक थ्योरी, हिंदी इंटरनेट जवाब देने में हांफने लगता है। गूगल पर हिंदी में कंटेंट की मात्रा तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा सूखा है। अगर एक गरीब छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो क्या उसे इंटरनेट पर लेटेस्ट रिसर्च हिंदी में मिलेगी? अगर कोई आम इंसान साइबर फ्रॉड से बचने के तकनीकी तरीके हिंदी में आसान भाषा में समझना चाहता है, तो क्या पर्याप्त डेटा है? अगर AI को हम सिर्फ काम चलाऊ और गलत हिंदी का डेटा फीड करेंगे, तो AI भी हमें अधूरा और गलत ज्ञान ही लौटाएगा। इसीलिए हिंदी को बचाने की चिंता करना नहीं, असल में हिंदी को खतरा नहीं, चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि क्या हिंदी ज्ञान की भाषा बन पाएगी। कॉर्पोरेट ब्रांड्स, PR एजेंसियां, मीडिया हाउसेस और टेक कंपनियां लोकलाइजेशन एक्सपर्ट्स को लाखों का पैकेज दे रही हैं। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तो सिर्फ हिंदी के दम पारंपरिक कॉर्पोरेट डेस्क पर आज भी रास्ते बहुत कठिन हैं। लेकिन AI और डिजिटल युग ने कुछ नई नौकरियों के दरवाजे खोले हैं, जहां भाषा ही आपकी मुख्य स्किल है। गूगल, मेटा जैसी कंपनियों को अपने AI को हिंदी सिखाने के लिए शुद्ध हिंदी भाषियों की जरूरत है। डिजिटल मीडिया, OTT और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में हिंदी स्क्रिप्ट राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स के सैलरी पैकेज अंग्रेजी वालों को मात दे रहे हैं। ग्लोबल गेम्स, विदेशी फिल्में और एप्स को हिंदी में ढालने का बाजार हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि अगर सिर्फ हिंदी के दम पर बड़ी नौकरी चाहिए तो आपकी हिंदी काम चलाऊ नहीं बल्कि मास्टर क्लास होनी चाहिए। इस बीच जब तमाम लोग ये मान रहे हैं कि अंग्रेजी ने ही हिंदी का रास्ता मुश्किल किया, तब उन लोगों को ये बातें भी समझनी चाहिए। जापान अपनी भाषा पर अड़ा रहा, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बना डाली। चीन ने कोडिंग से लेकर एआई तक सब कुछ मैंडरिन में किया और आज अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। स्पेन और फ्रांस अपने अपने देश का व्यापार, विज्ञान, कानून और मेडिकल अपनी राष्ट्रभाषा में चलाते हैं। इन देशों ने साबित किया कि अपनी भाषा को समृद्ध बनाना देशभक्ति का दिखावा नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक जरूरत है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हिंदी को अब दया या संरक्षण की जरूरत नहीं है, हिंदी को जरूरत है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कोडर्स की। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजनलाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजनलाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजनलाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दांव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजनलाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस 2.5 साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
1: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 के चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
9: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की।
10: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4-1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
9: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
10: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
11: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
10: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
12: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
13: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
12: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
13: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
12: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
14: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बम बना रहे, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
12: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
15: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
12: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
16: सरकार ता ना करे ये मदरसा गुलो के बंद कर दिए, चक्रांत कर मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम अत्याचार, मुस्लिम जुलूम, मुस्लिम छोड़ो देखा हम कि बांगलार मानुष बुझते ना।
12: अब मदरसों पर बंगाल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हैं हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से सबको राहत।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपत्ति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए। उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा चा आगमन झालाय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बाप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
6: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
7: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
6: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
8: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
6: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजनलाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजनलाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजनलाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दांव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजनलाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव। यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 के चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की पवन।

0: के
1: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
0: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
1: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित

0: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
1: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
2: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है। जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
1: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
2: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
1: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
3: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बम बना रहे, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ मतलब इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
1: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
4: इसे होना नहीं चाहिए। सब कुछ समझ बूझ के चलना चाहिए और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
1: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
5: और का ता ना बोले मद्रासा गुरु के बंद कर दिए चक्रांत कर मुस्लिम बिरोधी, मुस्लिम अत्याचार, मुस्लिम जुलूम, मुस्लिम छोटो देखा हम कि बांगलार मानस बुझते ना।
1: अब मदरसों पर बंगाल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख

0: एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
1: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाव साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
2: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
3: गणपति बप्पा चा आगमन झाला आहे आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
4: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
5: जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा उसका।
6: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
5: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई के एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
7: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। उसमें जो हमने नाम दिए सतीश सलयान जी ने, उसमें आरोपी नंबर वन आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
8: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको बता दें कि सतीश सालियान के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियान के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनू मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
9: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियान के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थीं। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारी सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियान जो दिशा सालियान के पिता हैं उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
0: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
10: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए, इस उम्मीद के साथ ही एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है, क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
8: बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट हैं उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं, और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है, और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं, और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई। कैमरा पर्सन बहादुर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
4: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा, बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले, पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है। आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहां पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा, जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई। अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की।
11: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
10: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
11: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
12: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
11: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
13: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
14: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
13: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
14: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है, और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
13: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
15: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बॉम्ब बना रहा है, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
13: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
16: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण नहीं बोलना चाहिए।
13: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
17: और ना कोई ये मद्रासा गुनु के बंद कर दिए चक्रांत कर मुस्लिम विरोधी मुस्लिम अत्याचार मुस्लिम जुलूम मुस्लिम छोटो देखा कि बांगलार मानुष बुझते ना।
13: अब मदरसों पर बंगाल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपत्ति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा चा आगमन झाला आहे आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
6: जो जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा उसका।
7: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
6: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनु मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
8: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर वन आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
9: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको बता दें कि सतीश सालियान के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियान के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनु मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार है, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार है और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
10: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियान के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता हैं उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
0: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
11: छह वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए इस उम्मीद के साथ ही एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है, क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपाभूति करते नजर आई।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
9: अब बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए, पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है। और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादुर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
5: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा, बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले, पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दांव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृहमंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
4: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
4: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
5: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है, और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
4: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
6: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बॉम्ब बना रहा है, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ

0: लगाना गलत है।
1: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए। और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
0: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
2: और का ता ना करे এই মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে, যে চক্রান্ত করছে, এটা কি না মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোটগুলো দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না?
0: আব মাদ্রাসো পর বঙ্গাল মে জবরদস্ত জঙ্গ ছিড়ি হুই হ্যায়। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हैं हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद मैं जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से सबको राहत मिले।

0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
1: गणपति बप्पाचं आगमन झालंय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरताय आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांच्या जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
2: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
3: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
4: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
3: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
5: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
3: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
6: जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा उसका।
7: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
6: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है, इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
8: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर वन आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
9: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। आपको बता दें कि सतीश सालियान के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियान के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनो मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
10: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियान के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियान जो दिशा सालियान के पिता हैं, उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
0: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
11: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए इस उम्मीद के साथ एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है, क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
12: अब बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादुर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाम लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृहमंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की।
11: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4-1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
10: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
11: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
12: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
11: दरअसल जिस उचहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
13: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
14: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
13: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
14: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
13: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
15: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बॉम्ब बना रहे, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इल्लीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
13: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
16: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण नहीं बोलना चाहिए।
13: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
17: सरकार मद्रासा गुरु के बंद कर दिए चक्रांत कर मुस्लिम बिरोधी मुस्लिम अत्याचार मुस्लिम जुलूम मुस्लिम छोड़ो देखा हे कि बांगलार मानुष बुझते ना।
13: अब मदरसों पर बंगाल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
9: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
18: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हर साल की तरह, इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
9: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
19: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
9: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
0: ईरान अमेरिका युद्ध में एक नया फ्रंट खुल चुका है। अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। बीते कुछ दिनों में हूती की मिसाइलें और ड्रोन्स सऊदी अरब में बारूद बनकर कहर बरपा रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिश को हूती अंजाम दे रहे हैं। हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर उनका कब्जा है।
9: ईरान से डरे ट्रंप का हूती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हूती के निशाने पर सऊदी।
1: अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हुती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हूतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हूतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए दो बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही हमले हूतियों के ठिकाने पर करे। लेकिन ईरान के साथ साथ हूतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था कि मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हूतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
20: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इनका जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
1: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
20: अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
1: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।
21: It's one of the weakest right now. It's our life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
22: Diagnostic.
21: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
1: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनिश और लेसर हनिश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हुर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हूतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हूतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5-7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
2: Immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
0: एक और मुद्दा है सर जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
3: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
1: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साख पर पट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है। आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाम लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा, जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई। अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के

0: इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हैं हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
1: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या? क्या अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
1: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: कि हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
1: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा च आगमन झालाय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरताय आणि बप्पा सोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
1: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
6: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
7: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
6: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि

0: पति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
1: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली, मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
0: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
2: ईरान अमेरिका युद्ध में एक नया फ्रंट खुल चुका है। अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। बीते कुछ दिनों में हूती की मिसाइलें और ड्रोन्स सऊदी अरब में बारूद बनकर कहर बरपा रही हैं। ईरान का दावा यह है कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिश को हूती अंजाम दे रहे हैं। हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर उनका कब्जा है।
0: ईरान से डरे ट्रंप का हूती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हूती के निशाने पर सऊदी। अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हूती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हूतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हूतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए 2 बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही हमले हूतियों के ठिकाने पर करे। लेकिन ईरान के साथ साथ हूतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था कि मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हूतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
3: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इंड का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन 3 कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
0: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
3: हमारे तालुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
0: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।
4: It's one of the weakest right now. It's our life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
5: Bad prognostic.
4: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
0: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनीश और लेसर हनीश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज दहब के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हुर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हुतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हुतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हुतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हुतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5-7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
6: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है, क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
2: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है, दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं, अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
5: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साथ पर बट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजनलाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजनलाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजनलाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दांव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजनलाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव। यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 के चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत।

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
4: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
4: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
5: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
4: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
6: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बम बना रहे, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इल्लीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
4: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
7: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
4: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
8: और का ताना बोले ये मदरसा गुनु के বন্ধ করে দিয়ে যে চক্রান্ত করছে, এটা কি না মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোটগুলো দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না।
4: আব মাদারসো পর বঙ্গাল মে জবরদস্ত জং ছিড়ি হুই হ্যায়। কলকাতা সে অনুপম মিশ্রা কে সাথ আজ তক ব্যুরো।
3: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हैं हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से सबको राहत मिले।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपत्ति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा चा आगमन झालाय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बाप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
6: जो जो कंप्लेन देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा उसका।
7: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
6: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेन दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
8: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर वन आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
9: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको बता दें कि सतीश सालियान के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियान के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनू मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
10: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियान के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता हैं उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
0: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
11: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए इस उम्मीद के साथ एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है। क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
9: अब बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादत के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
5: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त। कहा, बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले, पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है। आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दांव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा, जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई। अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की, पवन

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने

0: प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
1: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
1: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाव साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
1: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा चा आगमन झाला है आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा सोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
1: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
6: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
7: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
6: मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
8: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सब

0: सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली, मुंबई सा राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
1: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगडू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगडू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
3: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
4: जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा।
5: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
4: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
3: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में FIR दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की FIR की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
6: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत FIR रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो SIT के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और SIT के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
3: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
7: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के केस में FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। आपको बता दें कि सतीश सालियन के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियन के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनू मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंग रेप के लिए भी जिम्मेदार हैं, और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियन का कहना है।
3: दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
8: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियन के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता हैं, उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
3: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
9: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए, इस उम्मीद के साथ एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है। क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
3: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे, और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
7: बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं, और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है, और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं, और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया, और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादत के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये ढाई साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ढाई साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं, और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है, और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
9: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं, तो खुद सीएम योगी वहां जाते हैं और संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सनातन से होकर गुजरेगा।
10: यावर रामचंद्र भगवान की पवन।

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं। अब इन मदरसों पर महाभारत मची हुई है।
4: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
4: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
5: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है, और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
4: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
6: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बॉम्ब बना रहा है, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
4: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
7: इसे होना नहीं चाहिए। सब कुछ समझ बुझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण भी बोलना चाहिए।
4: सिर्फ टीएमसी नहीं, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
8: और कत्ता ना कोई ये मदरसा गुनु की বন্ধ করে দিয়েছে, যে চক্রান্ত করছে, এটা কিনা মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোট করে দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না।
4: আব মাদারসো পর বঙ্গাল মে জবরদস্ত জঙ্গ ছিড়ি হুই হ্যায়। কলকাতা সে অনুপম মিশ্রা কে সাথ আজ তক ব্যুরো।
3: गणेश चतुर्थी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और साथ ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात भी विपक्ष को नागवार गुजरी है।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते हैं उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वही एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया।
4: गणेश उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर कोलकाता तक, शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है।
5: गणपति बप्पा घर घर पधारे हैं, चारों ओर बस गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं भव्य आरती और मंगल गान से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आस्था और भक्ति के रंग मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे भव्य तस्वीर मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां गणपति उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।
6: वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने भक्तों को देखकर वो कह रहे हैं कि अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सारी चीजें ठीक कर दूंगा।
5: मुंबई के चिंच पोकली चिंतामणि के गणपति के दरबार में भी आस्था अपरंपार है। ये मुंबई के सबसे पुराने, लोकप्रिय और ऐतिहासिक गणेश पंडालों में से एक है। यहाँ भी मनभावन तस्वीरें दिख रही हैं।
7: सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। परेल लालबाग वो इलाका है जहां पर 5 बड़े गणपति स्थापना होती है। लालबाग का राजा उसमें सबसे बड़े गणपति तो है, उसके साथ साथ मुंबई, आप कह सकते हैं गणेश गली मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, उसके साथ ही चिंतामणि चिंचपोकली, ऐसे कई बड़े एक तरह से आप मान रखने वाले गणपति जो है वो विराजमान होते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ी हुई है।
5: गणेशोत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली। यहाँ श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ढोल ताशे के साथ गणपति का स्वागत किया गया है। श्रीमान दगड़ू शेठ गणपति की शोभा यात्रा में नारी शक्ति की झांकी भी देखने को मिली और महिलाओं ने युद्ध कौशल की झलक भी पेश की। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
0: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
8: जो कंप्लेन देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा उसका।
9: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
8: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
0: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में FIR दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई के FIR की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
10: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत FIR रजिस्टर किया है। जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो SIT के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और SIT के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
0: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।
11: सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियन के मौत के केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको बता दें कि सतीश सालियन के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियन के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनो मोरिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियन का कहना है।
0: दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
12: अदालत ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियन के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता हैं उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
0: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
13: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए इस उम्मीद के साथ एफआईआर हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है। क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
11: बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादत के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
4: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
14: क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा? क्या नकारात्मक ऊर्जा जीवन की उन्नति को रोक देती है? क्या नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत बीमार कर देती है? नकारात्मक ऊर्जा के आने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस ऑफिसर्स। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी